ओम शांति। जिस तरह भगवान ने हमें पाला उसी तरह हम दूसरों को पालें। कितने भाग्यशाली हैं वो आत्माएं जो प्रभु पालना में पल रहे हैं। प्रभु पालना पाकर जिन्होंने दूसरों की पालना करना सीख लिया है वे सचमुच महान बन जाते हैं, वे पूर्वज बन जाते हैं। उनके द्वारा जन्म जन्म भी अनेकों की पालना होती है।

बाबा ने हमें पाला प्यार देकर, बाबा ने हमारी पालना की बहुत अच्छी गाइडेंस देकर, उसने हमारी पालना की बहुत बहुत अच्छी समय पर टचिंग देकर, शक्तियां देकर हम भी दूसरों की पालना करना सीखें। जहां दूसरों की पालना बहुत अच्छी होती है वहां सेवाओं में रौनक रहती है, चारों ओर हरियाली रहती है, सभी का मन प्रेम और आनंद से भरपूर रहता है, और जहां पालना का अभाव रहता है वहां लोगों में दूरी रहती है, संगठन में एकता का अभाव दिखाई देता है, सूखापन नजर आता है। सेवाओं की सफलता के लिए भी पालना आवश्यक है। हम एक पौधा भी लगाते हैं, उसकी पालना करते हैं, उसको पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं, चिड़िया पशु पक्षी उसे खा न जाएं। हम भी जो पौधा लगाते हैं, जिन आत्माओं को बाबा का बनाते हैं, उनको सींचना, उनकी पालना करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें अवसर देना, उनकी योग्यताओं का लाभ उठाना या उनको योग्य बनाना, ये सब पालना हमें दूसरों को देनी है। ये बहुत सुंदर कला है और प्रभु पालना हमें देनी है सबको, इसका भी हमें बहुत ध्यान रहे। कई आत्माएं डायरेक्ट प्रभु पालना का अनुभव नहीं कर पाते हैं, परंतु हमारे द्वारा उन्हें ईश्वरीय पालना की अनुभूति हो, उन्हें वही अलौकिक आत्मिक प्रेम मिले, उन्हें गाइडेंस मिले, उनकी समस्याओं का हम समाधान कर पाए, उन्हें मदद दे पाए, ये बहुत श्रेष्ठ पालना है। जिसे सबको पालना देनी है उसे दो गुणों को विशेष रूप से अपने जीवन में धारण करना होगा, एक रहम भाव, दूसरा सहयोग देने की वृत्ति। हमें सबको सहयोग देना है, क्योंकि जो आत्माएं हमारे पास आई हैं वो संपूर्ण नहीं हैं, वो प्राप्त करने आई हैं, वो समस्याएं लेकर आई हैं, वो विषय विकार और पापों की बड़ी बड़ी गठरियां, बोझ की गठरियां अपने सिर पर लेकर आई हैं, हमें उन्हें हल्का करना है, हमें उनके बोझ उतारने हैं। हमारे पास आते ही यदि कोई व्यक्ति बहुत हल्का हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए, तो समझ लें ये उनकी बहुत श्रेष्ठ पालना हम कर रहे हैं। और हमारे पास आकर कोई भारी हो जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए, हमारी बात सुनकर किसी के दुख बढ़ जाएं, तो समझो हमारे अंदर पालना का गुण संस्कार नहीं है। बाबा भी चाहते हैं जैसे मैंने सब महान आत्माओं की पालना की है, अब ये महान आत्माएं अपने दूसरे छोटे भाई बहनों की बहुत अच्छी तरह पालना करें, तो पालना करने को अपनी नेचर बनाएंगे। आज सारा दिन हमें संसार की पालना करनी है, प्रकृति की पालना करनी है, और ये पालना होती है वाइब्रेशंस देकर। सभी को ख्याल रहे संसार में और पालना भी दूसरे मनुष्य दूसरों को दे सकते हैं, कोई सहयोग भी देते हैं, कोई दूसरों को मेडिकली बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई और बहुत तरह की सहायता दूसरों को करते हैं हम जानते हैं, परंतु वाइब्रेशंस देना, वाइब्रेशंस देकर वायुमंडल को पवित्र और पावरफुल बनाना, वाइब्रेशंस देकर निराश आत्मा को, दिल शिकस्त हुई आत्मा को जो बहुत सब कुछ अपना गंवा चुकी है, उसको फिर से खुशी देना, उसके जीवन में आशाओं की किरण जगाना, जो आत्माएं सुसाइड करने को तैयार हैं उन्हें नवजीवन देना, ये पालना हम वाइब्रेशंस देकर ही करते हैं। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ग्लोब के ऊपर स्थित हूँ, परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा है, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं और फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं।
फैलाएंगे सारा दिन और संकल्प देंगे संसार को, सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, शांत हो जाएं, निर्भय हो जाएं। आज सारा दिन विश्व की ये पालना करते रहना है। ओम शांति।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए और अपने आप से कहते रहना चाहिए कि दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास से ही शक्ति प्राप्त हो सकती है, और हमें ऐसे ही दृढ़ निश्चय में विश्वास करना है। प्रतिदिन इस प्रकार की शब्दावली दोहराते रहिए कि मैं अपने जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं सर्वाधिक गौरवपूर्ण पद प्राप्त करूँगा। मैं संकट आने पर साहस एवं दुगुनी शक्ति से कार्य करूँगा और हर संकट को सु अवसर में बदल डालूंगा। मैं अपने में और दूसरों में केवल गुण ही देखूंगा, अवगुण नहीं। अब से मेरा प्रत्येक शब्द उत्साहजनक, स्फूर्तिदायक, प्रेरणा प्रदान करने वाला और साहसी होगा। मैं सदा लोकोपवाद के ही कार्य करूंगा। अब मैं उन्हीं वस्तुओं और सफलताओं की आशा करूंगा जो मनुष्य जाति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकेगी। इस प्रकार की शब्दावली को बार बार मन ही मन दोहराते रहने से आप मैं नहीं रह जाएंगे। तब उसका अर्थ सात्विक हो जाएगा, तब उसका अर्थ आत्मा हो जाएगा जिसका परमात्मा से निकटतम संबंध है और जिसकी शक्तियां असीम हैं। तब मैं का अर्थ केवल मेरा शरीर मात्र रहकर इन घोषणाओं के करने तक सीमित रह जाएगा। तब जब आप इस प्रकार की शब्दावली को दोहराएंगे तो आपके मन में एक महामंत्र उदित होगा जो अत्यंत गौरवशाली और महान शक्ति प्रदाता है, और वह महामंत्र है, मैं उस परम पिता की संतान हूँ जो संसार का सृष्टा है, जो संसार का रचयिता है। उनमें जो गुण है मुझ आत्मा में भी वही गुण निहित है। बस जरूरत है मुझे उन गुणों को उजागर करने की। वह मेरा पिता सर्वशक्तिमान है तो मैं दुर्बल कैसे रह सकता हूँ। यह है वह महामंत्र जिसको बार बार दोहराने से आप में इतनी अधिक शक्ति आ जाएगी कि आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।

0: for your own family, can you feel like that for anyone and everyone else? Can you treat every single human being that you come across with that same love and trust? Well, that's what the Brahma Kumaris teach you, to treat every single human being that comes across with you with that same kind of feeling, with that same kind of love.
1: संसार के किसी भी प्रतिभाशाली दार्शनिक विचारक अथवा लेखक को अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उनका प्रबल आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। विश्वास पूर्वक कहे गए शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और आत्मविश्वास द्वारा कहे गए शब्दों में तो इतनी अधिक शक्ति रहती है कि लोग उन्हें सच मानते हैं और उनके अनुरूप आचरण करने को भी तैयार हो जाते हैं। आप भी स्वयं से वार्तालाप कर अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप लोगों से जो भी कहें लोग उसे सच माने और उसके अनुरूप आचरण करने को तुरंत तैयार हो जाए। इसलिए संदेह को छोड़िए, भय को छोड़िए, भय को भगाइए, घबराहट को दूर कीजिए और मत कहिए कि मैं कोशिश करूंगा, बल्कि इसके स्थान पर विश्वास पूर्वक कहिए, मैं इस काम को करके ही दम लूंगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ। इस प्रकार की शब्दावली को बार बार दोहराने से आपकी आत्मा के भीतर ईश्वरीय रूप प्रकाशित हो उठेगा। तब आत्मा यह अनुभव करेगी कि परमात्मा से उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही है और इस प्रकार आपकी हर प्रकार की दैहिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाएगी। याद रखिए कि आपके शब्दों को आपकी आत्मा से ही शक्ति मिलती है और आपकी आत्मा को उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह भी याद रखिए कि आप चाहे जो कुछ भी कहते हैं उसकी सच्चाई पर भी आपका अटूट विश्वास हो। आप जिन शब्दों का मुंह से उच्चारण करते हैं यदि उन्हीं को अपने अंतःकरण से स्वीकार नहीं करते तो वह शब्द निर्जीव सिद्ध होंगे, उनका किसी पर भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए आपके मुंह से निकले प्रत्येक शब्द के पीछे आपकी संपूर्ण मानसिक एवं आत्म शक्ति का होना आवश्यक है। उस परमपिता की दृष्टि में तो उसकी सारी संतान समान है। वह तो सबको समान रूप से प्रेम करता है और उसने सबको एक ही जैसा अधिकार भी दिया है, लेकिन इच्छा और आकांक्षा की पूर्ति उसी को हो पाती है जो कार्य

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही स्वयं को शब्दों द्वारा प्रोत्साहित करना होगा, इसके साथ साथ ही कर्म भी करना होगा। इसके लिए दोबारा समय नहीं आएगा। यदि अभी से आपने प्रयत्न करना आरंभ नहीं किया तो फिर वही कहावत सिद्ध होगी, अब पछताए हो तो क्या है जब चिड़िया चुग गई सब खेत। यदि आपने दूसरों की निंदा की और ध्यान न देकर अपने उद्देश्य को और अपनी समस्त शक्तियों को एकत्र कर कर्म करना आरंभ कर दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए आप सफल अवश्य होकर ही रहेंगे। आप में इतनी सामर्थ्य है कि इस संसार में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना। उन्हें पहचानिए। जीवन में कुछ करने कुछ बनने के लिए आपकी शक्ति ही आपकी सर्वश्रेष्ठ सहायिका है। स्वयं से बातचीत करके देखिए, आप इसे पहचान जाएंगे और तब उस शक्ति की सहायता से जो चाहे प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हर बात में संदेह करना अथवा आवश्यक कार्यों को भूल जाना या उस ईश्वरीय शक्ति में विश्वास न रहने पर ही बढ़ते जाना आपको सफलता से कोसों दूर धकेल देता है। इन दुर्गुणों से भयभीत होने अथवा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई बुराई नहीं जिसे दृढ़ निश्चय द्वारा दूर न किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसे कोई भी बुराई परास्त नहीं कर सकती है, और वह है ईश्वरीय शक्ति। यही वह शक्ति है जिससे किसी भी बुराई का अंधकार क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाएगा। अतः आप जो काम करना चाहते हैं और जिस काम को करने के लिए आपकी अंतरात्मा भी आपका समर्थन करती है, उस पर आवश्यकता से अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने। अगर आप किसी सही कार्य के लिए, परमार्थ के कार्य के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी अंदरूनी शक्ति आपको सहयोग दे रही है, तो आप किसी की भी निंदा की परवाह किए बिना, किसी भी परिस्थिति में मुश्किलातों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने के समय परिस्थितियां तो आती हैं, मुश्किलातें तो आती हैं, लेकिन सच को हमेशा सत्य परमात्मा का साथ होता है। वह सत्य शक्ति सदा आपको सफलता दिलाने में सक्षम है। तो कभी भी किसी बात की भी परवाह किए बिना अगर आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी मंजिल तय होना निश्चित है।

0: रुक भाई, रुक रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

दुविधा को छोड़कर अंधकार पूर्ण स्थिति को सुनहरा रूप प्रदान कीजिए। आपका आदर्श ही आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है। यदि आप किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं तो वह ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कार्य कुशलता, जिसकी क्षमता एवं जिसके आत्मविश्वास की सभी लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। ऐसा ही व्यक्ति आदर्श बन सकता है। उसी को आदर्श बनाकर आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कोई काम आरंभ करेंगे तो भूलें तो होंगी ही, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराकर पीछे हट जाना कायरता की निशानी है, और आप पहले कह चुके हैं कि आप कायर नहीं हैं। इसीलिए अब कहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और केवल यह कह देना ही काफी नहीं है। इन शब्दों को साकार रूप देने के लिए अपनी इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास नियोजित कर दीजिए। सदा अपने हृदय में विश्वास रखिए। आपके मुखमंडल से, नेत्रों से, वाणी से, चाल ढाल से, यानी कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व से विजय की झलक दिखनी चाहिए। यह भी स्मरण रखिए कि स्वयं विजय प्राप्त कर, स्वयं अपने आदर्श को प्राप्त कर दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दीजिए। आप एक मानव हैं, तो यह भी आपके लिए बहुत आवश्यक है कि दूसरे मानव की उन्नति के भी आप सहायक बने। प्रायः यह देखा गया है कि मनुष्य अपना स्वार्थ साधन पहले करता है। स्वार्थ उसका सबसे प्रिय अलंकार है, पर इसके कारण किसी और का जो आहित होता है उसे इसका ध्यान नहीं रहता है। हम प्रायः दूसरे की उन्नति में सहायक नहीं बनते हैं, हम उल्टे उसकी उन्नति में बाधक बनते हैं। यह सर्वथा निंदनीय बात है। अगर हम किसी भी उन्नति में सहयोग देते हैं तो यह परोपकार है। इसके बदले में हम भी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे की उन्नति पर हमें कदापि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमें अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर ईर्ष्या से बचकर स्वयं प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, स्वास्थ्य एक बहुत ही बहुमूल्य पूंजी है। जीवन में लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई जमीन खरीद कर रखता है, कोई मकान खरीद के रखता है, कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज, बैंक में FD, न जाने हम क्या क्या चीजें अपने सेविंग्स के हिसाब से रखते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि भाई, जीवन में कभी ऐसी समय का सामना करना पड़े जब स्वास्थ्य बिगड़े या कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति आए, तो कम से कम पैसे की पूंजी होनी चाहिए। मगर क्या ये बात सत्य नहीं है कि हम पैसे को इकट्ठा करने की इस कोशिश में हम अपने स्वास्थ्य को अगर गंवा बैठे, तो कमाए हुए उन्हीं पैसों को वापस स्वास्थ्य को हासिल करने के लिए खर्चना पड़ेगा? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि स्वास्थ्य की पूंजी को बरकरार रखने के लिए हम मेहनत करना शुरू करें, कुछ ऐसी चीजें करें ताकि स्वास्थ्य हमारा बिगड़े ही नहीं? थ्योरी में तो ये बात सुनने को बहुत अच्छी लगती है, मगर क्या प्रैक्टिकल में ये संभव है? आइए स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए एक्सपर्ट से ही इन चीजों पर राय करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में इनका लंबा अनुभव है। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जो भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक है। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्रश्न तो मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा जो भूमिका मैं हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। लोग या अंग्रेजी में बहुत प्रचलित कहावत कहते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये कहा जाता है। और मैं ये बात कह रहा था कि हम अक्सर पैसा इकट्ठा करते हैं, धनोपार्जन कर रहे होते हैं, तो पैसा बचा के रखते हैं सेविंग्स के लिए, सोने में, जमीन में, अनेक चीजें करके रखते हैं। सोचते हैं कि कल को कोई मुश्किल घड़ी आए, तबीयत बिगड़ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उस समय पर ये पैसे काम में आएंगे। मगर अक्सर पैसे कमाने की होड़ में हम पहला टारगेट जो हमारा हेल्थ है वो ही मिस हो जाता है। हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके भी नौकरी और जॉब और बिजनेस और प्रोफेशन पे लगे रहते हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि हम कल को तबीयत बिगड़े तब के लिए आज पैसे कमा कर रखें, या फिर कुछ हम ऐसा कार्य ना करें कि हम स्वास्थ्य को एक पूंजी बना लें कि भाई वही बिगड़े ना और वो स्वस्थ बने रहे हम?
1: भैया, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने और आपने बात की कि 5 मिनट में भोजन करके आता हूं, और मैंने उस पर कहा कि 10 से 15 मिनट में भोजन कर लीजिए। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे शरीर को भी बहुत कुछ नहीं चाहिए। उसको समय से भोजन, थोड़ा शांत मन से भोजन और थोड़ा व्यायाम चाहिए। इतना अगर हमारे शरीर को मिल जाता है तो हमारा शरीर गारंटेड स्वस्थ रहेगा। और ये भगवान की बनाई हुई सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे अच्छी मशीन है। एक सिंगल सेल से लेकर हम इतने बड़े 5.5 फुट 6 फुट के आदमी बन गए। सोचिए, एक कोशिका ने ही हमारी आंख भी बना दी, नाक भी बना दी, मुंह भी बना दिया, कान भी बना दिया, हृदय भी बना दिया, सब कुछ बना दिया एक सिंगल कोशिका ने। हम चाह कर भी 9 महीने से पहले तो बाहर आ नहीं सकते। मेरा ये मानना है, जब आप समय से बढ़ रहे हैं तो प्लीज समय अपने शरीर को भी दीजिए, अपने भोजन को भी दीजिए, व्यायाम को भी दीजिए। और अगर आप समय अभी देंगे तो आपका भविष्य सुखद होगा। एक कहावत और है कि जब संतोष धन पायो सब सुख धूल समाओ। दौड़ते रहिए, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, एक सूट, दो सूट, तीन सूट, एक घर, दो घर, तीन घर, एक जमीन, उससे बड़ी जमीन, 1 किलो सोना, 5 किलो सोना, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, तो हम लोग दौड़ते रहेंगे। जैसे श्री भैया भी बहुत ट्रैवल करते हैं और मैं भी ट्रैवल करता हूं, और मैं तो भी इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूं, तो मन में हमेशा एक हो रहता है, काश थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाए कि मैं उस बिजनेस क्लास तक पहुंच जाऊं। तो वो सोच जरूरी है, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि हम थोड़ा आगे बढ़ पाए। पर अब ये मैं दिन भर सोचता रहूं, अरे मैं कैसे बिजनेस क्लास में बैठूंगा, अरे मैं कैसे, तो मैं अपने शरीर का नुकसान करूंगा, अपने मन का नुकसान करूंगा। तो धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, संतोष जरूर करना चाहिए, और अपने शरीर अपने मन उस पे भी टाइम रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप हफ्ते भर नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज वीकेंड में इन्वेस्ट करिए। आप मंडे टू फ्राइडे नहीं काम कर पा रहे हैं तो प्लीज सैटरडे संडे अपने शरीर के लिए कुछ करिए। और आप करेंगे तो आपका शरीर आपको उसी हिसाब से फल भी देगा। भाई हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, तो इफ यू हैव हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड देन ओनली यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और अगर हम बीमार पड़े रहेंगे तो अस्पताल में पड़े रहेंगे, शरीर से भी नुकसान होगा और आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा।
0: अक्सर ये चीज देखने को मिलती है कि हम अस्पताल में पड़े रहेंगे, इसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं। लोग बोलते हैं मेडिक्लेम ले लो, थोड़ा बड़ा कवरेज कर ले लो, कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कम से कम 5 लाख 10 लाख तक कवरेज होना ही चाहिए। आजकल लोग बड़े शहरों में ये चीजें बातें करते हुए सुनाई देते हैं, और ये भी है कि साथ में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो।
1: भैया मैंने दीदी का एक एपिसोड में सुना था, उन्होंने बोला था गॉड इज माई इंश्योरर। तो आप भगवान पे भरोसा न करके, हम क्यों भगवान पे भरोसा न करके इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य अपने शरीर के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो जब हम अपने शरीर के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, भगवान का भी भरोसा हमारे काम नहीं आएगा, तब तो इंश्योरेंस वाले ही काम आएंगे।
0: फिर वो इंश्योरेंस के लिए जितना अमाउंट इंश्योरेंस का सब कवर है वो भी कम पड़ता जाता है, पर बोलते नहीं उससे भी ज्यादा चाहिए।
1: भैया इंश्योरेंस कम पड़ता है, वो कैशलेस की जगह कहता है कि पूरा कवर नहीं हो रहा है, इसमें भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक अलग मेंटल स्ट्रेस टेंशन। तो क्यों हम उस टेंशन स्ट्रेस में पड़े? अच्छा खाएं, अच्छा टहलें, शरीर के लिए अच्छा करें।
0: जब अच्छे खाने की बात आप कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे कि भोजन की मात्रा पे आपने कहा कि हम भोजन की मात्रा पर ध्यान रखें। आजकल अनेक चीजें सुनने को मिलती हैं कि कितने समय खाना है, किस समय खाना है और कितना खाना है, ये अनेक चीजें हैं। पहले तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंसान को 3 वक्त खाने की जरूरत है? कुछ लोग हमेशा ही मुंह चलाते रहते हैं कि आते जाते जो दिखता है भाई मुंह में डालते रहो, चलता रहता है। तो अनेक चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं, तो पता चलना चाहिए कि सही तरीका क्या है। कई कहते हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा मत खाओ, बट थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर खाते रहो तो कोई नुकसान नहीं होता। अब इन अनेक चीजों की जब बात आती है तो प्रश्न उठता है कि आखिर सही क्या है, कब खाया जाए, कितना खाया जाए।
1: एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पकाई हुई चीज से कच्चा जो सलाद और फल है उसमें ज्यादा अधिक गुण होते हैं। तो अगर आप निबलिंग करते रहते हैं या जब मिल रहा है तो कुछ खा लिए, तो कोशिश करना चाहिए कोई फ्रूट ही अपने मुंह में डालें। और फ्रूट की बात कर रहा हूं, फ्रूट जूस की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रूट की बात कर रहा हूं। दूसरा, आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग रही है, कुछ होना चाहिए, तो प्लीज टेक अ सिप ऑफ वाटर। जहां आपने थोड़ा सा पानी पिया वो आपकी जो क्रेविंग है वो बंद हो जाएगी। 2 कंसेप्ट है भैया जो कहता है, और दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है कि सुबेरे का जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे हेवी होना चाहिए, और हम फिर शाम होते होते हल्का भोजन करते करते हमको सो जाना चाहिए, क्योंकि रात का भोजन भारी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम आराम करने जा रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि हल्का मीडियम ब्रेकफास्ट, लाइट लंच, हैवी डिनर। तो सब लोग ये सोचते समझते चले आ रहे हैं। पहली चीज, सुबेरे उठते ही कुछ भी चीज अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए, थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, थोड़ा टहलना घूमना चाहिए कि हमारा शरीर पूरी तरह से जग जाए। अगर हम योग करने जा रहे हैं तो थोड़ा गुनगुना पानी, कोई काढ़ा या कुछ नींबू पानी, नींबू शहद, वो पीकर हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद हम जो भी फ्रूट जूस पीना चाहें या हम कुछ स्नैक्स खाना चाहें, सुबेरे के जो स्नैक्स हैं वो खा के हमको अपने काम में निकलना चाहिए। कुछ लोग जो भैया मॉडर्न काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जो 10 o'clock एक हैवी ब्रेकफास्ट करके जाते हैं क्योंकि उनका पूरा दिन उस हिसाब से चलता है, तो वैसे लोगों को दोपहर में 2-3 बजे कुछ फ्रूट या कुछ सैलेड जरूर लेना चाहिए। और रात का डिनर अगर आप करते हैं हैवी या लाइट, जैसा भी आप करते हैं, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सोने से करीब 1.5 से 2 घंटा पहले वो भोजन आप कर चुके हो। आप भोजन करते ही ना सो जाइए, वो आपके लिए सबसे हानिकारक है। हम लोग ने वाटर वाले एपिसोड में बात की थी कि हम लोग को दिन भर सिप्स ऑफ वाटर जरूर पीना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और एक्स्ट्रा तली चीजें, एक्स्ट्रा भुनी हुई चीजें, चाय, कॉफी, अल्कोहल, इससे हमको परहेज करना चाहिए। करिए वो जो आपके लिए आपके टाइम फ्रेम को सूट करता हो, बट उठते ही भोजन नहीं करना चाहिए या कोई हैवी चीज नहीं खानी चाहिए, और सोने से करीब 1.5 से 2 घंटा पहले अपने भोजन को खत्म कर देना चाहिए।
0: ये बात तो समझ में आती है कि भोजन के इस क्लॉक को भी समझना है कि हम कब नाश्ता कर रहे हैं, कब भोजन कर रहे हैं, कब रात्रि का भोजन कर रहे हैं। खासकर तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज देखने को मिलती है कि भाई यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है, लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी खेतों में जाना हो रहा है, इसके हिसाब से लोग जल्दी भोजन कर लेते हैं। और शहरों में थोड़ा भोजन के टाइमिंग में देरी होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें, ये भी चीज सुनने को मिलती है। क्या इसके पीछे भी कोई तथ्य है या इसे सही तरीके से समझा जाए?
1: जो मॉडर्न शहर में 2 घंटा पहले वाला भोजन था, वो हमारे जैनिज्म में इसको सूर्यास्त से पहले भोजन करने की बात करते हैं। आपके आश्रम में भी भैया बहुत सारे लोग जब बड़े बड़े शहरों से और कॉर्पोरेट कल्चर से आते होंगे, तो उनको 1-2 दिन डिफिकल्टी होती है आश्रम लाइफ में एडजस्ट करने में, और वो बहुत बार बात करते हैं बड़ा कष्ट थोड़ा सा है, अरे इट इज सो अर्ली फॉर माई डिनर, ओ आई के नॉट, यू नो दिस इज द टाइम फॉर माई इवनिंग कॉफी या इवनिंग स्नैक। हाँ, तो वो बड़ा ही, और आप खुद देखते हैं कि वो 3 से 4 दिन में पूरा आपके आश्रम लाइफ में एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये सब हमने अपने लिए बना के रखा है। क्यों सूर्यास्त से पहले भोजन का महत्व है? यही है कि आप अगर उस भोजन को कर लेंगे तो वो पचने में उसको आसानी होगी, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, हम हिल डुल रहे हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। अगर हम लेट गए हैं तो हमारा शरीर थोड़ा सा कहते ना शांत हो जाता है, और ऐसा भोजन जो है वो हमारे शरीर को लगता भी ज्यादा है। जैसे लोग बोलते हैं ना चावल खा के नींद बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसने पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन को भोजन की तरह खींच लिया, और आप हिल भी नहीं रहे, डुल भी नहीं रहे, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होकर आपके शरीर का फैट बढ़ाएगा। तो इसीलिए आप अगर जल्दी भोजन करते हैं, या और आप ये देखिए कि मॉडर्न सिटीज में आदमी घर पहुंच के ही, अब कुछ लोग जो कॉर्पोरेट की लैडर को ग्रो कर गए हैं, वो अब हेल्थ की टॉक्स पे बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ लेक्चर्स के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, और सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स सिर्फ एक ही, उनका अगर सार निकाला जाए तो यही बोलते हैं कि कम खाइए फ्रूट एंड सैलेड, ज्यादा खाइए, प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए, और खाने के बीच में भी गैप रखिए कि अभी खा के निकले, फिर घूमे, फिर कुछ खा लिए, फिर कुछ, थोड़ा पेट को भी अपने आराम दीजिए, अपने दांतों को आराम दीजिए, क्योंकि अगर आप आराम देंगे तभी तो जो आगे काम कर रहे हैं वो ठीक से काम कर पाएंगे।
0: यानी सदा एक के बाद एक चीज खाने की आदत नहीं है, मगर बीच में, खाने के बीच में गैप्स देने की भी जरूरत है। अब ये एक आइडियल टाइम फ्रेम क्या होता है कि भाई हमने एक मील खाया, उसके बाद में नेक्स्ट मैं कुछ खाना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए? खैर आपने डिटेल में ये चाय और इत्यादि चीजों की और बीच में मंचिंग करने की आदतों के बारे में भी विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा हमने दोपहर को 1 बजे खाना खाया, शाम को 4 बजे चाय पीनी है, फिर रात्रि का भोजन करना है, फिर चाय के साथ भी कुछ खाना है, फिर सुबह भी नाश्ते के बाद 11 बजे के करीब कुछ फिर एक चाय पीना है या कॉफी है, कुछ एक स्नैक खाना है, ये ऐसे अलग अलग एक प्लान बना के चलते हैं, और कभी कभार तो मतलब इन प्लान्स को तोड़ के बीच में भी अगर कोई कुछ दे देता है तो लोग खा लेते हैं। तो क्या ये सही चीज है?
1: एक्सेसिव ईटिंग इज ऑलवेज बैड फॉर द हेल्थ एंड ईटिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स इज ऑल्सो नॉट गुड. नॉर्मली ये कहा जाता है कि योर ब्रेकफास्ट शुड बी बिटवीन 7 and 8, योर लंच शुड बी बिटवीन 1 to 2, एंड योर डिनर शुड बी बिटवीन 8 to 9. ये एक इधर जो हम काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है. और आप ये देखिए कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 5 to 6 hours का गैप है और लंच और डिनर के बीच में 7 to 8 hours का गैप है और जो स्नैकिंग टाइम है ये 4 o'clock वाला, वो 4 to 5 वाला जो स्नैकिंग टाइम है ये इंडिया में इधर कुछ ज्यादा हो गया था, बट अब धीरे धीरे उस पर भी बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं और वो इवनिंग स्नैक को लाइम एंड वाटर से या किसी फ्रूट से या किसी सैलेड से उसको चेंज कर रहे हैं. थोड़ा खाइए और ज्यादा ज्यादा देर में खाइए. ये मत करिए कि थोड़ा खाइए और हर थोड़ी देर में खाइए, तो वो आपके शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है कि अगर आप थोड़ा खाएं और थोड़े गैप्स में खाइए, तो क्योंकि तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करेगा उसके लिए.
0: अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भोजन के बारे में है, जैसे हम दोपहर को खाना खा रहे हैं, रात को खाना खा रहे हैं, आपने ये कहा कि भोजन की मात्रा पर भी ध्यान होना चाहिए. प्रायः कुछ लोगों के घरों में जैसे आप कह रहे थे कि जो मेन मील ऑफ द डे होता है वो दोपहर का भोजन होता है, वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और उसमें बहुत सारी आइटम्स बनी होती हैं, और रात्रि के समय पर कम होता है. और कईयों के घरों में इसका उलट होता है कि रात्रि के भोजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि या तो हम दिन भर काम कर रहे होते हैं, शाम को घर आए तो भैया शाम को हम सारा फुल मील खाएंगे, वे सारी चीजें कम से कम 7-8 आइटम हो घर पे, वो वैरायटी भी लोग पसंद करते हैं. तो क्या भोजन के प्रति ये जो हमारा कल्चर है इसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के दिनचर्या में भोजन की शैली में चीज देखने को मिलता है. कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो कहते हैं कि हर भोजन के बाद दोपहर का खाना होती है उनको कुछ मीठा चाहिए, फिर रात्रि का भोजन, अरे कुछ मीठा नहीं है, ये लोग पूछते भी हैं. कभी कभार मेहमान घर पे आए उनको खिलाने की बात अलग है, यहाँ हर दिन की आदत बन जाती, ये चीजें क्या है?
1: भैया आप स्वस्थ हैं तो सब करिए. आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, जितने लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, जहाँ जो 9 to 5 नहीं कर रहे हैं, बोला तो 9 to 5 जाता है, वो टेक्निकली वो घर सुबेरे 7:30-8 बजे छूटता है और वो घर वापस आते आते शाम का 7 बज जाता है. तो ऐसे लोग एक अच्छी मील रात में अपने घर में करते हैं और उसको कहते हैं ना गर्म खाना, फ्रेश खाना खाते हैं, क्योंकि वो सुबेरे का टिफिन जो है वो खाके उनको 1 बजे जो उन्होंने खाया. आपको बहुत सारे शॉपकीपर्स या दुकान वाले ऐसे मिलेंगे जो अपनी दुकान 11 बजे या 10 बजे खोलते हैं, वो सुबेरे 10 बजे पूरा खाना खा के जाते हैं कि शाम तक भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कंप्लीट कर पाए. एंड सो हाउ इज योर प्रोफेशन, हाउ इज योर वर्क, ये भी डिसाइड करता है कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए. भैया सबका रूटीन अलग है, जैसे मैं क्रिकेटर्स के साथ काम किया, अभी IPL चल रहा है, आप अगर उस गेम को देखते हो तो 10:30-11 बजे वो गेम खत्म होता है, सेरेमनी होते होते उसके बाद सारे प्लेयर फ्रेश एंड अप होंगे, तो वो 11:30-11 बजे कुछ खाएंगे अपने शरीर के लिए क्योंकि गेम उस समय खत्म हुआ. सो व्हाट इज योर वर्क, जैसे हम डॉक्टर्स हैं भैया, इमरजेंसी में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि रुक जा भाई थोड़ी देर का समय दे, मैं 15 मिनट में खाना खा के रेडी होकर आता हूँ, वो नहीं हो सकता. तो योर सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद योर टाइमिंग, बट जिस दिन आप फ्लेक्सिबल नहीं है उस दिन प्लीज अपने एक बेसिक रूटीन को जरूर फॉलो करिए. एंड योर वर्क, योर टाइम ऑफ वर्क, कितने लोगों ने भैया कॉल सेंटर में इंडिया में काम किया, उनका पूरा लाइफ साइकिल ही उल्टी हो गई. और मैं ये नहीं कह सकता कि आप मत काम करिए भाई, पुलिसिंग, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर्स, ये सब इंजन ड्राइवर्स, पायलट्स, ये सब भाई एनी टाइम ऑफ द डे काम कर रहे हैं, तो इनका बॉडी साइकिल जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका भोजन होना चाहिए। क्वांटिटी कम रखिए, पेट में प्रेशर ना हो कि आपने बहुत खा लिया, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। आपका पेट अगर साफ हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं, आप पानी ठीक से पी रहे हैं, आप प्रचुर मात्रा में सैलेड और फ्रूट खा रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आज की ये चर्चा रही है डॉक्टर साहब। ये बातें समझ में आई है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनने के लिए भोजन के प्रति जागरूक बनना आवश्यक है। दोस्तों, भोजन में आप क्या खा रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना है। सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं, सलाद को बढ़ाएं, फलों को खाना शुरू करें। जो एम्प्टी कैलोरीज हैं, जैसी तली हुई चीजें हैं या मिठाइयां हैं, उन चीजों को खाने से बचें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चीज आप खा रहे हैं उसके प्रति सजग होना भी जरूरी है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो भोजन के लिए अपने टाइम टेबल को ध्यान पे रखें। कोशिश करें कि भाई आप समय पर खाना खाएं, अच्छे से चबा कर खाएं, और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप खा रहे हैं तो आप एक शांत मन शांत चित्त से भोजन ग्रहण करें। और जितना आप हेल्दी चीजें खाएंगे, कम खाएंगे, उतना आप बेहतर और स्वस्थ रहेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही दोस्तों। समय को देखते हुए रुकते हैं, कल की बातचीत में कुछ और विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने इन सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा किया। इसके लिए डॉक्टर साहब, हमारे सभी श्रोता मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज सहज स्वास्थ्य में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ और विषयों और आयामों पर हम कल चिंतन करेंगे। आज जो कुछ भी आपने सुना है वो सब कुछ आप आजमाएंगे और सहज स्वास्थ्य को हासिल करेंगे, ऐसी शुभ आशाएं हैं। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 107.8

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नज़र से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स थे, हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदले, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था। और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए, मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट? एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर, उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई,
0: पर काम करने
1: काम नहीं किया, तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार, उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम? आई नीड टू एक्सपेरिमेंट कि टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इनमें इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते ही वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: सही, अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है। हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता, कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता। लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है।
0: लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है।
1: एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया एज नेचुरल, नहीं बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैकएक के साथ भी क्यों चले, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया, उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। नाउ व्हाई वी सेड इट्स नेचुरल, क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं था कि कैसे मेहनत करनी है, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया, उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। नाउ व्हाई वी सेड इट्स नेचुरल, क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं कि कैसे मेहनत करनी है। तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक. टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैकएक, ये अल्सर्स. तो फिर क्योंकि उनका कोई यू नो फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना. वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी, क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है. तो अगर दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है, तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे. तब मैंने हेडेक को, ये बैकएक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया. एंड नेचुरल नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो. फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा. आएगा ही, मैं फिजिकली दर्द में हूँ, इमोशनली दर्द में हूँ, व्हाट डू आई गिव इन टू माई रिलेशनशिप्स. फिर मेरे रिलेशनशिप्स में थोड़ा थोड़ा टक्कर, थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार ये होने लगा, एक दूसरे से हम थोड़ा सा खिंचे रहने लगे. फिर उसको भी हमने क्या कहना शुरू किया,
0: नेचुरल है. यस, रिश्तों में खिंचाव तो मतलब इतनी इतनी तो बात चलो ठीक है ना, इतना तो होता ही है.
1: रिश्तों में खिंचाव नेचुरल है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना ये सब होना ये तो नेचुरल है. अब हमारी
0: हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो.
1: तो नेचुरल नेचुरल करते करते फिर कितनी सारी अननेचुरल चीजों को
0: हमने नेचुरल की पदवी दे दी है.
1: क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चीज थी उसको ही हमने कहा ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल है.
0: एक्चुअली हमारे पास इलाज ही नहीं थे, सच्ची, वेरी ट्रू. यू नो हमने अगर थोड़ा सा भी कोशिश भी की हमें समझ में ही नहीं आया क्या करें, तो हम फिर आगे तो बढ़ना ही है, तो आगे बढ़ते.
1: और टेंशन थोड़ा थोड़ा नेचुरल है ये कहने पर थोड़े की डेफिनेशन या थोड़े का पैरामीटर कौन फिक्स करेगा कि थोड़ा क्या? क्योंकि हमारी टेंशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. आज हमने कहा सिचुएशंस स्ट्रेस क्रिएट करती, तो आज छोटी मोटी सिचुएशंस है, हमने कहा थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये तो नेचुरल है. लेकिन क्या कल सिचुएशन मुझे बताकर आएगी? टुमारो कुड बी अ बिगर सिचुएशन. कल हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस हिट्स में, कल हो सकता मेरे घर पे कुछ हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाए, नेचुरल कलामिटी हिट. आई मीन इट्स अनप्रडिक्टेबल जिन समय में हम चल रहे हैं. तब क्या करेंगे? तब क्या हम अपने टेंशन पर काम कर पाएंगे कि वो थोड़े वाले पर ही रखना है, टेंशन को बढ़ाना नहीं है? विल आई बी एबल टू, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आज मेरा टेंशन नंबर 2 पर है, लेकिन कल परिस्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, विल आई बी एबल टू कीप इट एट नंबर 2? It will immediately go up. And तब हम कहें क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी,
0: ये तो होना ही था,
1: होना ही था.
0: अच्छा एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं, इस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये छोटी छोटी बातों पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो इन्हें इरिटेट करती है, लेकिन कोई बड़ी बात आ जाती है ना अगर, तब स्टेबल रहते हैं. सो व्हाट इज दैट पर्सनालिटी?
1: इट इज अ पर्सनालिटी जो सिचुएशंस को, जब सिचुएशन बड़ी आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं. एक होता है छोटे छोटे लेवल्स पर इरिटेट होना, यू नो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एक होता है बड़ी जब सिचुएशन आती है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन को तो मैंने फेस करना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है.
0: अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीजें जो थी उनमें नहीं,
1: उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया. अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है. ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी. अगर वो छोटी चीज़ में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे वो नहीं है, लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं. नॉट यू नो जैसे अगर घर में सारे टेंशन में है तो आई इमिजिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को. वो फिर उनको खुद को ही पता है,
0: अंदर अंदर
1: वो उनको खुद पता है. और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर परिवार में देर इज अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है, तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते, लेकिन कई बार उसके बाद वो
0: ब्रेकडाउन
1: हो जाते हैं. एंड यू नो एवरीथिंग, तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर
0: तो
1: ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम जिस लेवल की बात करें कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा। कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है, कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं,
0: तो हो ही नहीं पाएगा।
1: क्या सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता सो वी गो एंड चेक आर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता सो वी गो एंड चेक आर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैर। सिमिलरली रोज सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है। अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है, हम ये नहीं रियलाइज़ करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई। तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना ज़रूरी है, अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं। जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कंसंट्रेशन पावर पर इफ़ेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफ़ेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति। कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंडर हैं डोंट टेक अ डिसीशन, क्योंकि वो डिसीशन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर ये उनके लिए बहुत कॉमन होता। एंगर है तो कैंसर, यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति तो वो क्रिएट हो जाता। बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है। सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को ब्लॉकेज को क्लीन करते जाएं, ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना चाहिए।
0: दैट्स वेरी टाइम्स वी से दैट इफ यू आर अंडर स्ट्रेस टेक अ ब्रेक, यू नो इट विल एक्चुअली टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, और उसके बाद आपके आप फ्रेश होकर एक बार फिर से ज़िंदगी को, मतलब जिस भी सिचुएशन में थे वो शुरू कर सकते हैं। डज इट रियली हेल्प?
1: टेम्प्ररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे, तो आपको लगता है एग्ज़ाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज़्यादा तनाव है चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते, लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन। इट इज़ अ टेम्प्ररी, इट्स अ रिलैक्सेशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज़ करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं। अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है। तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता, लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में एक मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है। हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है। और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते, तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग
0: बिकम्स अ हॉलीडे,
1: हॉलीडे की फीलिंग कब आती है, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा, जब मैं यहाँ अभी आई एम नॉट यू नो हैप्पी, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड लास्ट। क्योंकि अगर आप हर रोज को एंजॉय कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो ब्रेक लेकर क्या करेंगे, यही सब कितना, यू नो, यू एंजॉय योर वर्क, आप जो कर रहे हो उसी के अंदर अगर आप राइट थॉट से उसको कर रहे हो, यू आर एंजॉयिंग ईच डे, यू डोंट नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर दैट देन एनीथिंग।
0: वेरी ट्रू, समवेयर वही स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि हॉलीडे या ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वहीं रहा, वो फैक्टर्स वहीं रहे।
1: तो और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है, मेरे तनाव, क्यों हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे, टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते, तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते, तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला, फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ आई एक्सेप्टेड माय टेंशन एज नेचुरल,
0: यू नो, कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, यू नो, अमेजिंग, यस, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली
1: तब हमने कहा कि तब, इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है, क्यों, क्योंकि मेरी टेंशन का कारण कौन है, वो समाज, एंड समाज मींस एवरीवन अराउंड,
0: सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होते, कोई ऐसी चीज है, यू नो, कोई ऐसी जगह है जहाँ से टेंशन ना हो, सो मेनी टाइम्स पीपल से
1: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है। इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, नो वन एंड नथिंग, नो वन, एंड जब हम कहते हैं नो वन मींस नो वन एंड नो सिचुएशन,

0: मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट. लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल.
1: अमेजिंग, यस, यू नो.
0: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जिससे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पोंड कैसे करना, ये मेरे हाथ में है. वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहाँ क्रिएट होता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता. स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाली थॉट्स, परिस्थिति उसी परिस्थिति में. और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है, लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है. तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है. और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा, उसको स्ट्रेस नहीं होगा. और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को, वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा. मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, या मेरे साथ ऐसा हो गया, या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे करते जाएंगे. वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ टेंशन, ऑफ स्ट्रेस, एंड देयरफॉर ऑफ पेन. सो वन बिलीफ सिस्टम शिफ्ट, कि स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है. आई क्रिएट इट एंड आई कैन एक्चुअली क्रिएट इट इवन इफ नथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड. सब कुछ ठीक भी होगा ना. कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, सब ठीक चल रहा है बाहर, नथिंग इज रॉन्ग, तो भी उनको टेंशन है.
1: कुछ कुछ बाहर का सोच के या कुछ कुछ
0: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
1: ये क्या हो गया है.
0: सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है,
1: गड़बड़ होगा ही होगा.
0: सो देयर यू हैव गॉन एंड क्रिएटेड अ नेगेटिव थॉट इन रिस्पांस टू सब कुछ ठीक है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद. एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम. जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है, वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है. लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते, माई एनर्जी फ्लोज आउट, आई डिस एम्पावर माई सेल्फ, समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल. टोटली एनर्जी हैज़ फ्लोन आउट. जैसे ही आई डू दिस, माई एनर्जी का सर्किट इज कम्प्लीट. इट्स हेयर, आई हैव द पावर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, दैट्स ऑल. वो ऐसे हैं, वो कैसे भी हैं, परिस्थिति इतनी खराब है, कैसी भी है, फिर भी थॉट कौन सी क्रिएट करना. अब मुझे सिर्फ ये सीखना है कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी.
1: मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है.
0: अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट. अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे. क्या कर उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं.
1: लेकिन वो कैसे मैं,
0: व्हाट कैन यू डू, यू ओनली हैव टू सिट देयर,
1: कांट डू एनीथिंग, बट देन इट्स सो नेचुरल,
0: नथिंग यू, इवन देन यू विल ओनली हैव टू टेल योरसेल्फ, होप आई रीच देयर ऑन टाइम, इफ नॉट देन आई विल हैव टू सी नाउ व्हाट नेक्स्ट एंड कीप साइलेंट, दैट्स ऑल. इसके ऊपर तो एक भी सेकेंड थॉट चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो, ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर. यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से इट्स, जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है, हमें उसको रिलैक्स्ड रहने देना है, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा.
1: क्योंकि हमारा एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा.
0: ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए. हैव यू एवर ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स.
1: ओके,
0: एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस. द ट्रेन गेट्स लेट, द फ्लाइट गेट्स लेट, जस्ट स्टे स्टेबल एंड से आई हैव टू रीच, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है. फ्लाइट लेट हो जाएगी आज, एंड इट गेट्स लेट, और द ट्रेन गेट्स लेट. सो मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस.
1: इट्स नॉट दैट आई हैव टू से प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, आई जस्ट हैव टू से कि ट्रेन लेट हो जाएगी,
0: हो जाएगी. एंड हो या नहीं हो, यहाँ नहीं कुछ भी होना चाहिए. And that's all.
1: And then we'll think about it. अगर ट्रेन लेट होगी तब हम उसके बारे में सोचेंगे.
0: पहले से नहीं, you know, ये भी एक, अगर नहीं पहुंचे फिर क्या नेक्स्ट,
1: फिर क्या होगा, फिर क्या.
0: That is present. That is living in the present.
1: लेकिन फिर वो planning, वो फिर हम कहते हैं कि हमें अपने आप के आगे planning.
0: आपकी energy इतनी waste हो जाती है.

0: इतनी देर में आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है कि उस मोमेंट पे जो राइट डिसीजन है आप ले ही नहीं पाते. आप स्टेबल रहे, स्टेशन पहुंचे, फिर अगर ट्रेन चली गई है, देन एट द प्रेजेंट मोमेंट नाउ व्हाट नेक्स्ट. पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो बीइंग इन द प्रेजेंट मींस हर मोमेंट वो सोचें जो उस मोमेंट करना है. हमें लगता है पहले ही सोच के हम टाइम बचा लेंगे और उस टाइम जल्दी डिसीशन ले लेंगे. कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीशन ले लेते हैं एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीशन.
1: यू नो दैट्स वेरी ट्रू,
0: बट यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिसीशन एंड यू क्रिएटेड योर डिसीशन 5 मिनट्स और 50 मिनट्स बैक. सिचुएशन हैज चेंज्ड, टाइम हैज चेंज्ड, यू नीड टू टेक योर डिसीशन नाउ. लेकिन हम कहते हमने तो पहले ही सोच लिया था
1: और अब वो, क्योंकि वो डिसीजन लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे. इट्स सो डिफिकल्ट टू चेंज दैट डिसीजन.
0: हम सोचते नहीं उस टाइम, हमने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया एंड वी थिंक कि हम बहुत टाइम बचा रहे हैं, तो हम तुरंत वो जो पास्ट में डिसीजन ऑलरेडी सोच लिया हम उसको यूज कर लेते हैं. क्रिएटिविटी मीन्स हर मोमेंट को देखते हुए, क्योंकि सिचुएशंस हर चीज मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है. मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता. ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है, अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है. डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन. आप अपना हर चीज
1: चेकिंग तो करनी पड़ेगी.
0: पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो. लेकिन अगर वो निकल गई है, नाउ व्हाट? नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन. एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना, ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट जाए ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है.
1: True. तो समवेयर वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो अब समझ में आया कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी. सो इधर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस. What is it you would like to create? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly. कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूँ वो नॉर्मल हूँ. थैंक यू सो मच. शांति, आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस हम ना ले पा रहे हों. आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहाँ आपको लगता है कि आपका चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, या तो फ़ोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आज इतना ही, आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होगी. ओम शांति.

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल हम लोग डिजिटलाइजेशन के वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो बात अब आती है कि भाई हर चीज़ जब भी हम लोग एक्सेस यूज़ करते हैं तो उसका फिर डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। जब भी आप खाना भी खा लेते हो, एक्सेस खा लेंगे तो फिर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही आज हमारे पास जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, हम लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज्ड हो गए हैं, और जिसका कारण जो है काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमारे बीच में आ रही हैं। लेकिन आप देखिए कि ये नीड भी है और इसके ऊपर हमें अटेंशन भी देना है। जब कोई चीज़ आपको लगता है कि आप घर से बाहर निकलो बिना उसके निकल नहीं सकते, है ना, कहीं भी कुछ भी काम पड़े तो पहले आप मोबाइल को यूज़ करते हो, तो इसका मतलब वो चीज़ें नीड हो गई हैं। लेकिन नीड के साथ हमें अटेंशन देना है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर सुजाता सिंघी, जिनसे हम लोग बातें करेंगे, और पिछले एपिसोड में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी। और वो एक हीलर हैं, साउंड हीलर हैं। आप सभी जानते हैं कि म्यूज़िक जो है हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, क्योंकि जब भी हम लोग साउंड थोड़ा भी कुछ म्यूज़िक सुनते हैं तो खुशी होती है, और हम जब उसको अगर हीलिंग के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो और बेहतर हो सकता है। और आज हम लोग बात करने वाले ख़ास करके डिटॉक्सिफिकेशन पे। तो डॉक्टर सुजाता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: बहुत अच्छे, आप कैसे हो?
1: बढ़िया बढ़िया। और मैं चाहूँगा कि आज का जो हमारा विषय है उसको थोड़ा सा बताइए कि इस पर क्यों बात करना चाहते हैं आप।
2: ये वाला टॉपिक जो चुना है, डिजिटल डिटॉक्स, इसका
1: जी,
2: मतलब ही हमें पता चलता है कि कुछ चीज कुछ अति हो जाती है, जैसे आपने बताया, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और डिजिटल डिटॉक्स, ये मुद्दा मैंने इसीलिए चुना था मेरे टॉक्स में भी रिसेंटली, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और जब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो या तो आपके पास चॉइस है कि आप काउंसलर के पास जाओ या आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। अगर आप काउंसलर के पास जाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई जाती है कि क्यों आप कर रहे हो कोई चीज़, क्यों वो चीज़ आपके साथ हो रही है, और आप क्या कर सकते हो ताकि आप बीमार नहीं पड़ो। और जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो मोर और लेस आपको दवाइयाँ दी जाएगी। तो अब डिजिटल की वजह से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल, यानी कि हम जब डिजिटल की बात करते हैं तो मोबाइल तो नंबर वन है ही, क्योंकि हर किसी के पास है, भले वो कोई गांव में खेडूत है या फिर कहीं ऑफिस में बैठा हुआ ऑफिसर है, सबके पास मोबाइल है, और उनकी ज़िंदगी में बिना मोबाइल कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है, फ्रेंकली स्पीकिंग अब ऐसा हो गया है। छोटे छोटे बच्चे देखो तो वो मोबाइल देखते हुए ही खाना खाएंगे, अगर मोबाइल हटा दो तो रोने लगते हैं, ये काफ़ी सारे टिकटॉक पर भी देखते हैं और हमें हंसी आती है, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बताता है कि हम कितने निर्भर हो चुके हैं उस चीज़ से, जो कोई अपने इमोशंस ही नहीं समझता है बल्कि हमको उनके इमोशंस में जकड़ के रखते हैं। तो अपने पूरा अपना कंट्रोल जो जीवन का है वो उनको दे दिया है, डिजिटल मीडिया को दे दिया है, यानी कि रोबो हमको चला रहा है। अगर छोटी सी बात में कहें तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमको चला रही है, और इसकी वजह से ह्यूमंस, जब हम कहते हैं मानव जीव ऐसा है जिसको सामाजिक रूप में जीना समझता है, दूसरे लोगों से मिलना समझता है, लेकिन जब हम डिजिटल मीडिया में ही रहते हैं तो हम वो वाली चीज़ जो अपने गूढ़ मंत्र जो बोलते हैं खुश जीवन के लिए, खुशहाली जीवन के लिए, वो आपस में मिलना, मिलजुल के रहना, वो चीज़ें लुप्त होती जा रही है, और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो ये डिजिटल डिटॉक्स इसीलिए हमने शुरू किया, इनफैक्ट हमने तो वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे करके एक पूरा ग्लोबल मूवमेंट स्टार्ट किया है अब, और रेखा चौधरी है जिन्होंने इसको पूरे शिद्दत से स्टार्ट किया था, और अब हम काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स मिलके इसको एक पूरा ड्राइव बना दिया है। तो हम इसमें यही सिखाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पुलिस स्टेशंस में, हर जगह पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि आप डिटॉक्स होना सीखिए। डिजिटल मीडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी हेल्थ खराब करें, कि हम पागलों की तरह बिहेव करना शुरू करें, मेंटल हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं वो तो काफ़ी भयंकर है, उसके बारे में भी मैं आगे बात बताती हूँ। लेकिन जी, जी, जी। सबसे पहले यही है कि हमें समझना है कि क्यों डिजिटल डिटॉक्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि इस विषय को लेकर हम बात करना चाहते हैं आज के करंट सिनेरियो को देखकर। और बहुत बार होता है कि हम लोग कभी कभी अचानक ही ऐसी चीज़ें हमारे बीच में आ जाती हैं और हम उसमें ऐसे लिप्त हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये इसके कारण हो रहा है। तो हमें हर चीज़ को जो है ना, अच्छा मराठी में कहावत है अति तीते माती, यानी जो एक्सेस यूज हो जाता है वो फिर बेकार हो जाता है। तो इसीलिए हर चीज़ की जो है ना एक सम्मानजनक यूज़ होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और उसका यूज़ भी सही हो, एक्सेस ना हो। तो वो चीज़ें जो है, अब जे कि खाना भी अगर आप ज़्यादा खाते जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही, है ना। तो इसीलिए उसको भी खाने को भी आप जैसे कि लिमिटेशन होना चाहिए, एक 3 बार आप खाते हो तो आपकी बॉडी की ज़रूरत कितना है, आप बॉडी को कितना काम दे रहे हो, आपका उतना एक्सेस वर्क है क्या, है ना। तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे लाइफस्टाइल में भी ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिजिटल डिटॉक्स के बारे में और क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर सुजाता जी।
2: हाँ बिल्कुल सही, जैसे अति भोजन कर दिया तो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा शक्कर खा ली तो चलो अपने को तो पता ही है क्या क्या होता है। तो जैसे मधुमेह जैसे रोग हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डिजिटल मीडिया को, ये भी एक तरह से खुराक हो रहा है, वो अपने दिमाग में जा रहा है, और ये खुराक दिमाग में जाके काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी करती है बुरी भी करती है, जो लेकिन जो अच्छी करती है वो काफ़ी कम है, बुरी करती है वो ज़्यादा है। अभी सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो हमने ये पाया है, जब स्टूडेंट्स का हमने एक पूरा डेटा लिया था तो सेल्फ वर्थ कम होना शुरू हो जाता है, नंबर वन चीज़। क्योंकि क्या होता है, वो किसी का फ्रेंड का पोस्ट देखते हैं, वो देखते हैं कि उसको इतने लाइक्स आ गए, उतने कमेंट्स आ गए हैं, और उनके खुद के पोस्ट को नहीं आए हैं, तो दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, सबसे पहले ये चीज़। दूसरी, स्ट्रेस इंक्रीज करता है। तीसरा, उनको ऐसे लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, आइसोलेशन वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें मिलके डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो ये जब हम देखते हैं तो एक इम्प्रेशनेबल एज जो हम कहते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है 12 से लेके 24-25 तक इम्प्रेशनेबल एज होती है, उस टाइम पे जब उनका सेल्फ वर्थ सेल्फ एस्टीम वगैरह बूस्ट होना चाहिए, उस टाइम पे वो दबता जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन केसेस जो हमारे इंडिया में आते हैं तो इट इज़ बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 25। ये इसी कारण से है, क्योंकि ये जो है डिजिटल मीडिया, में नहीं कहती हूँ कि खाली ये उम्र के लोग ही लेते हैं, लेकिन उनका वो गोल्डन पीरियड है एज का, जहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं, अपने आप में पोटेंशियल्स को रेज कर सकते हैं, अपना सेल्फ वर्थ बना सकते हैं, वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस मीडिया वो दब जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया से उनको अगर ग्रो करना है तो वो उसको प्रोडक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं इस माध्यम से वो दिखा सकते हैं। तो अगर वो पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो इसके उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो इस जोन में चले जाते जहाँ वो डिप्रेस्ड होने शुरू होते तो वो नेगेटिविटी के जोन में चला जाता है। और डिप्रेशन तभी मैंने देखा है आता है, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि माँ बोलती है कि बच्चा डिप्रेस्ड है, तो मैं सोचती हूँ कि ये माँ खुद ही मुझे डिप्रेस लग रही है। और इसीलिए, क्योंकि वो पूरी फैमिली आपस में बात नहीं कर रहे, वो सबके सब मोबाइल पे बैठे हैं। ये सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि कोई कोई चीज़ें तो ऐसी होती है जो फैमिली को साथ में करनी होती है। जैसे पहले ज़माने में कहते थे जो परिवार साथ में प्रेयर्स करते, पूजा पाठ करते साथ में, वो जुड़े रहते हैं। अब वो पूजा पाठ और जुड़े रहना वो सभी कुछ लुप्त हो चुका है। फिर कहते थे जो फैमिली साथ में मिलके टीवी देखती है, पिक्चर देखती है, वो जुड़े रहते हैं। अब वो भी लुप्त हो गया, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है या आईपैड है, वो उसी में अपने अनुसार कोई भी पिक्चर देख रहा है। तो डिजिटल मीडिया इज प्रोडक्टिव प्रोवाइडेड यू नो हाउ व्हेन एंड हाउ मच टू यूज। अगर उसके आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना आपको हेल्प कर सकता है, आई एम श्योर इट इज़ अ बून, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बून नहीं है अभी, क्योंकि वो कब एक्सेस बन गया लोगों को पता ही नहीं। जैसे ये एडिक्शन हो गया है फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे पहले किसी ने शुरू की होगी एक सिगरेट से, वो अब पैकेट भर सिगरेट हो गया है, बस वैसे ही ये बात हो गई है। तो जैसे जिसने शुरू किया होगा फेसबुक, अब मालूम पड़ा इंस्टाग्राम एक्स वाई जेड यूट्यूब है, सब कुछ है। और आप खुद ही देखिए, अगर आप कुछ एक चीज़ ढूंढने जाते हो मोबाइल में, यूट्यूब पे ही कुछ ढूंढने जाते हो, आप 10 चीज़ लेके देख के ही निकलोगे, क्योंकि ये सब चीज़ सजेस्टिव है। सोशल मीडिया सजेस्टिव है, इंस्टाग्राम सजेस्टिव है, वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार पॉपअप करता रहेगा। और आपका 5 मिनट में जो ढूंढना पूरा होना चाहिए था, वो आधे घंटे में होगा, या मे बी दिन भर में भी आप भूल जाओगे क्या चीज़ ढूंढ रहे थे आप। तो ऐसी लाइफ हो गई है अब, को सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए डिजिटली डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे 6-7 स्टेप्स है जिसमें एक इंसान डिजिटली डिटॉक्स हो सकता है अगर उसको होना है तो। तो जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पीना तो उसी का है उसी का चॉइस है, बट बिफोर इट इज़ टू लेट स्टार्ट गेटिंग डिजिटली डिटॉक्स्ड। क्योंकि वो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे ड्रग एडिक्ट्स को होते हैं, वैसे विड्रॉल सिम्टम्स देखे गए हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये रिसर्च ने बताया है। तो डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है।
1: जी जी, डॉक्टर सुजाता जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। जैसे कि आपने फैमिली बिल्कुल जो है साथ में रहती है, लेकिन हर एक आदमी अपने अपने मोबाइल में बिल्कुल लिप्त है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो रही है। हम वहाँ पर रहते हुए दूसरों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग आज का समय है। और इस समय को देखकर आपने इस विषय को लेकर बातें करना शुरू किया है, तो आइए डिजिटल डिटॉक्स कैसे किया जाए इसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बातें कर रहे हैं हम लोग डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। डॉक्टर सुजाता सिंह हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग की। अब बातें तो हमें समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइजेशन की वजह से हो रहा है, तो अब इसको कैसे हम लोग ठीक करें उसके बारे में आप बताइए।
1: बिल्कुल, इतने सारी प्रॉब्लम्स देखी है जो हमें पता चलता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को लगता है जैसे कि हम कुछ बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हैं अगर सोशल मीडिया में नहीं है तो इसके लिए एक शब्द बनाया गया है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये वाली चीज़ है ना, बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है। इसीलिए हर कोई उसी भागदौड़ में है कि चलो हम जुड़े रहे, ये हमारा कम्युनिटी है, फेसबुक पे कम्युनिटी है, फिर इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी है, तो उनको लगता है कि वही चीज़ हमारी रियलिटी है। लेकिन एक रियल लाइफ जैसे होती है, वो रियल लाइफ है और रियल लाइफ अलग है उससे। तो जब इंसान को आइसोलेशन का फीलिंग शुरू हो जाता है तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। जैसे कि एकांत में कोई इंसान जब रहना शुरू कर, एकांत नहीं कहूँगी, ये आइसोलेशन है, जैसे कि हम बीइंग लेफ्ट आउट, फोमो का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो एकांत तो अच्छी चीज़ है, इंसान को अच्छा लगने लगता है, खुद की कंपनी, वो एकांत हुआ। लेकिन ये आइसोलेशन है, जैसे हम बहिष्कार हो चुका है उनका और वो अकेले रह रहे, तब उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन का केस शुरू हो जाता है। तो फोमो को निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले ही हमको सोशल मीडिया से दूर रखना है, उसके पहले कि वो हमको कंट्रोल करे। तो सबसे पहले अपने को हर दिन, समझो आप 4 घंटे सोशल मीडिया पे रोज स्पेंड कर रहे हो टाइम, तो आपको 30 मिनट्स रिड्यूस करना है। एक साथ में रिड्यूस करेंगे तो ड्रग वाले को जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो होना शुरू हो जाएगा, तो वो और एक अलग एंग्जाइटी का केस हो जाएगा। तो ये नहीं होना, इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि 30 मिनट्स पर डे आप रिड्यूस कीजिए। 3 घंटे का अगर आपका मीडिया टाइम है तो आप उसको 2.5 घंटे कर लीजिए। ऑफ कोर्स ऑफिस में अब सब काम तो डिजिटल मीडिया पे होता है, जैसे कंप्यूटर्स, इवन दैट कम्स अंडर डिजिटल मीडिया, बट दैट इज योर वर्क ओरिएंटेड थिंग एंड यू विल हैव टू डू दैट। लेकिन जो बाकी का आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो आपका खुद का टाइम है, पर्सनल टाइम, उस टाइम पे जो आप यूज कर रहे हो उसको आप रिड्यूस करेंगे। और इसको मॉनिटर करने के लिए काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कितना टाइम यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया पे। एंड द थर्ड थिंग जो आप यूज़ कर सकते हो कि जब आप फैमिली के साथ में हो, जैसे कि इट्स डिनर टाइम है या कोई, सो दैट टाइम आप अपने फ़ोन्स दूरी रखिए अपने आप से। एंड नेक्स्ट इज, फोर्थ पॉइंट इज, आप सोते वक्त अपने साथ फ़ोन ना रखिए। सोने के पहले कम से कम 2 घंटे पहले हमें फ़ोन्स दूर रखने हैं अपने आप से, क्योंकि रिसर्च ने बताया है कि जब हम फ़ोन्स अपने पास रखते हैं, स्पेशली द मोबाइल फ़ोन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो पुराने ज़माने के फ़ोन तो एक ही जगह रहता था, वो घूमता नहीं था, ये मोबाइल फ़ोन तो अपने साथ हर जगह घूम रहा है, और इसी वजह से हम उसको अपना जीवन साथी से भी ज़्यादा महत्व देना शुरू किया है। तो ऑलवेज कीप योर फ़ोन अवे फ्रॉम यू एट नाइट टाइम्स, और 2 घंटे पहले मोबाइल्स ना देखिए ताकि आप प्रॉपरली नींद ले सके। नाउ अगेन, मेंटल हेल्थ इसीलिए इफेक्ट होता है क्योंकि देखा गया है कि 1 out of 5 पीपल, नाउ मोबाइल तो हर किसी के पास है, सो 1 out of 5 पर्सन इज़ हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़। नाउ दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं स्टार्ट होता है मेंटल वेलनेस से। जब मेंटल वेलनेस रहेगा तो मेंटल हेल्थ तक नौबत नहीं आएगी। जैसे मैंने पहले बताया था, गोइंग टू अ काउंसलर और गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट, द चॉइस इज योर्स। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, मेंटली एंड फिजिकली फिट, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटल मीडिया से अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू करें। दूसरी चीज़, कभी अपने आप को अलग ना समझिए, आइसोलेट ना कीजिए, बिकॉज कंपैरिजन्स बहुत होते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे लोग हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर्स हैं, वो रियल लाइफ नहीं है, ये समझ के आपको जीना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को फिजिकली मिलो, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी नीड दैट पर्टिकुलर कनेक्शन। और सिर्फ ऐसे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स भले ही 5,000 होंगे, 10,000 होंगे, जब आपको रियल नेसेसिटी होगी, आपकी नीड होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये 5,000 कहीं नहीं है, कहीं दिखने में भी नहीं है, अगर कुछ हो भी गया तो RIP लिख के बात ख़त्म हो जाती है। तो डिजिटली डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है अपने मेंटल हेल्थ के लिए। सो इफ़ यू लव योर सेल्फ स्टार्ट गेटिंग डिजिटली डिटॉक्स्ड, और ये शुरुआत आपको ही करनी है और आपसे ही होगी. जो पेरेंट्स हैं प्लीज़ आप शुरू कीजिए ताकि बच्चे फॉलो कर सके. ये उम्मीद मत कीजिए कि आप दिन में 10 घंटे मोबाइल यूज़ करोगे और आपका बच्चा मोबाइल नहीं यूज़ करे या डिजिटल मीडिया यूज़ नहीं करे. सो बी द पर्सन हु कैन बिकम देयर रोल मॉडल्स एंड सी दैट यू कैन लीड अ लाइफ विच इज़ फ्रॉम वॉक द टॉक एंड नॉट जस्ट टॉक टॉक टॉक.
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जो शुरुआत है वो कैसे करना है वो आपने बताया, और मुझे लगता है कि माता पिता अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन्हें देखकर फिर बच्चे भी इसे फॉलो करेंगे. ये बहुत ही अच्छी बात बताया आपने. तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज हमारी युवाओं के लिए जो ख़ास इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए एक संदेश के रूप में या मैसेज के रूप में क्या बताना चाहेंगे
1: युवा के लिए, क्योंकि ये तो अपनी धरोहर है.
0: जी.
1: सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि हर एक युवा को समझनी चाहिए कि ये आपका गोल्डन पीरियड है, इसको व्यर्थ न गवाएं. अपने आप को कोई भी तरह का, अब हम कहते हैं कि व्यसन मत रखना, दारू मत पीना, सिगरेट मत स्मोक करना, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये भी एक तरह का नशा ही है, इसका नशा भी मत करो. सो डिजिटली डिटॉक्स करेंगे तो आप तन मन धन से एकदम स्वस्थ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और मेंटल हेल्थ जहाँ पे है वहाँ पे फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड प्रॉस्परस हेल्थ होना शुरू हो जाएगा. सो आई टेल द यूथ ऑफ द कंट्री, जहाँ भी आप हो, जो भी हमें सुन रहे हैं श्रोताओं, ये जानिए कि लाइफ इज़ टू बी लिव टू द फुलेस्ट, एंड एज ह्यूमंस वी हैव अ राइट टू लिव टू द फुलेस्ट. अपना कंट्रोल डिजिटल मीडिया को मत दीजिए, वो अपने सुविधा के लिए है, हम उनके नौकर बनने के लिए नहीं है. So take charge of your life.
0: चलिए डॉक्टर सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया हमारी युवा साथियों के लिए कि आप जो है अपने लाइफ का चार्ज खुद ले, आप जो गुलाम मत बने किसी भी तरह का नशा हो, या इवन मोबाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना ये भी गुलामी करना है, एडिक्शन होना है. तो हम एडिक्शन फ्री इंडिया बनाए, इसके लिए हम सभी को कदम उठाना पड़ेगा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता दी, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर. आज के लिए बस इतना ही. चलिए मित्रों, आशा करूंगा कि आप सभी को डॉक्टर सुजाता की बातें बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं. इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है और न ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको मिलाना चाहेंगे कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सिद्धांत जी। सिद्धांत जी दिल्ली से है और उन्होंने MBA किया है और उनका खुद का बिजनेस है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी है और करियर गाइड्स के ऊपर सभी स्टूडेंट को गाइडेंस भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिद्धांत जी को कहूँगा कि आप अपना परिचय दें।
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। मैं ग्रेटर नोएडा शहर से हूँ और अभी 26 साल का हूँ। मैंने 2018 में अपनी 12वीं ख़त्म की थी, उसके बाद BBA किया मुंबई से और वहीं से MBA भी कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे फादर का जो है केमिकल का बिज़नेस है जी, वो मैं संभालता था 2 साल। उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ इंडिपेंडेंट करना चाहिए, अपना खुद का बेस बना के अपने बलबूते पे करना चाहिए। तो उसी फील्ड से रिलेटेड मैंने पेंट लाइन में घुसा। वहाँ पे मैंने अपनी एक फैक्ट्री डाली मथुरा में और पेंट बनाना शुरू किया। ये पेंट होता है ज़िपर इंडस्ट्री के लिए, जैकेट पे, स्कूल बैग पे, पाउचेस पे जो ज़िप लगती हैं उसके ऊपर पेंट लगता है। तो मैंने देखा ये मार्केट जो है इसमें कंपटीशन कम है, तो मैंने इसमें एंट्री की और आज बाबा की कृपा से धीरे धीरे तरक्की हो रही है, विदेश भी माल जा रहा है जी।
0: अरे वाह, तो पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में आप तो आ गए, लेकिन इसके लिए क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़े, वो भी स्टोरी हम सुनना चाहेंगे।
1: जी जी बिल्कुल। जब मैं 2 साल अपने फादर का बिजनेस देख रहा था
0: जी,
1: तो फादर के कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे पता चला कि पेंट लाइन में बहुत स्कोप है
0: जी,
1: इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है और इसमें कमाई का जरिया बहुत अच्छा है और एम्प्लॉयमेंट कई लोगों को मिलती है
0: जी।
1: क्योंकि हमारे आज के टाइम में इंडिया में कई पेंटर्स ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं
0: जी,
1: और वो तलाशी में हैं कि उनको कहीं अच्छी जॉब मिले, उनकी स्किल यूटिलाइज हो
0: जी जी।
1: तो मैंने ऐसे लोगों को भी रोजगार दिया, वो मेरे यहाँ काम करते हैं अच्छी सैलरी पे और उनका इंसेंटिव दिया जाता है, उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। तो मैंने 2 साल स्टडी की पेंट लाइन के बारे में, फादर के दोस्तों से मिला, इंटरनेट पे और मार्केट रिसर्च की, फिर मैंने जो है इसमें एंट्री की और जो जो बड़ी बड़ी जिप लाइन की कंपनियां हैं जैसे टोनी इंडस्ट्रीज़, YKK, आनंद जिपर्स, इसमें मैंने मटेरियल देना शुरू किया और अब आगे मैं चाहूँगा कि कार के पेंट में जाऊँ, घर के पेंट में जाऊँ जी।
0: जी जी जी, जिस पेंट की आप बात कर रहे हैं जो प्रिंटिंग की है, तो इस लाइन में और कौन सी ब्रांडेड कंपनियाँ हैं
1: इस लाइन में? जैसा कि मैंने बताया भाई जी, अभी कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है, अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो 100 के आसपास ही होंगे लोग जो जिप लाइन के लिए पेंट बना रहे हैं। और आप सबकी दुआ से मैं ये फक्र से कह सकता हूँ कि इंडिया में 60% जिप लाइन की पेंट की मार्केट मेरे हाथ।
0: अरे वाह, बढ़िया। फिर आपके पास स्टाफ कितना है?
1: स्टाफ मेरे पास है 25 लोग हैं मथुरा में,
0: हाँ,
1: और ग्रेटर नोएडा में जो ऑफिस है वहाँ पे 15 लोग हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: क्योंकि हमारे यहाँ जो है सारी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं,
0: सब
1: ऑटोमेटिक हैं
0: जी,
1: और स्टाफ जो है खाली जो है लैब के काम करते हैं
0: जी,
1: और पेंट में R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
0: नई
1: नई चीज़ें लगाते हैं जिससे जो है स्लाइडर में और भी जो है क्वालिटी इम्प्रूव हो और नए नए शेड डेवलप करते हैं
0: जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने कम आयु में इतना अच्छा बिजनेस बढ़ाया और नेशनल लेवल पर न जाके आपने इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए, तो इसमें शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ आपको आई हैं?
1: जी जी बिल्कुल, कठिनाई आई है। जब मैंने फादर का बिजनेस ड्रॉप किया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, स्क्रैच पे था मैं, और समाज से ताने भी सुनने को मिलते थे कि आपने बना बनाया बिजनेस छोड़ दिया, अब आप क्या करोगे, आपके पास जॉब भी नहीं है। तो मैं उन सब चीज़ों को निगलेक्ट करके आत्मविश्वास रखा कि हाँ, मैं अपने बलबूते पर कुछ करूँगा, फादर का नाम नहीं यूज़ करूँगा, अपनी पहचान बनाऊँगा। तो मैंने फादर से पैसे भी नहीं लिए, जो मेरी सेविंग थी
0: जी,
1: उससे मैंने जो है इन्वेस्टमेंट किया और फिर धीरे धीरे लोगों से मिलते मिलते, शुरू के 6 महीने काफ़ी लॉस हुआ, मैंने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और मेरे को 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया, 10 लाख रुपए नुकसान हो गए। तो उस समय काफ़ी हताशा आई, मम्मी ने, बहन ने भी बोला कि नहीं मत करो, अब रहने दो, पर मुझे एक जुनून था कि हाँ लाइफ में आगे बढ़ना है। तो फिर जब 1 साल मेरा हो गया तो धीरे धीरे फिर चीज़ें सही होने लग गई।
0: जी जी जी, बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना कि जब कोई भी शुरुआत होती है तो शुरुआत में डायरेक्ट आप ऊंचाई पे नहीं जाते हो, शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, समस्या आती है, लेकिन समस्या में देखकर आपको डरना नहीं, हटना नहीं, इनके पास वो जुनून था, एक साल में उन्होंने पहले साल में लॉस गया, जहां इन्होंने 15 लाख इन्वेस्टमेंट की थी वहां 25 लाख का लॉस हो गया। फिर लोगों ने, घर वालों ने उन्हें पीछे हटने को कहा, फिर भी इनको खुद के ऊपर आत्मविश्वास था और आत्मविश्वास के बलबूते पर आज वो आगे बढ़े और एक सफल बिजनेसमैन हो गए और आज देखा उन्होंने कि बिजनेस को कितना आगे बढ़ाया। तो सिद्धांत जी, हम कहेंगे कि आप करियर गाइडेंस के ऊपर भी बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मार्गदर्शन करते हैं, तो करियर गाइडेंस के ऊपर आपका क्या कहना है?
1: जी जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं काफ़ी कम उम्र का हूँ गाइडेंस के लिए
0: जी,
1: पर यह है कि बाबा ने मुझे काबिल बनाया है कि मैं इस एज में इस मुकाम पे आ रहा हूँ और लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ। तो छोटी मुँह बड़ी बात रहेगी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो मैं अपनी एज के बच्चों को देख रहा हूँ
0: जी,
1: तो वो पढ़ाई का काफ़ी लोड लेते हैं
0: जी,
1: काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं और मार्क्स को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं
0: जी।
1: आज के ज़माने में कितने ऐसे लोग हैं, पेपर में आए दिन खबर आती है कि आईआईटी क्रैक करने के बावजूद उनको मनचाही रैंक नहीं मिलती तो वो सुसाइड कर लेते हैं
0: जी।
1: तो ये बहुत शर्म की बात है और ये पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई को लेके प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बच्चों पे
0: जी।
1: और सबकी अपनी खूबी होती है, सबका अपना टैलेंट होता है, सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, अपनी अपनी फील्ड में माहिर है। ज़रूरी नहीं है कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो कहीं अच्छा नहीं है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है। जैसे मैं गिटार भी बजाता हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ, तो लौकिक में गीत मैं गाता हूँ, अब जो है अलौकिक गीत भी मैं गाने लग गया हूँ, मेरे प्यारे बाबा के लिए मैं गाने गाता हूँ
0: जी जी।
1: उम्मीद है गॉडलीवुड स्टूडियो में भी मैं जल्द ही रिकॉर्ड करूँ गाने
0: जी जी जी। तो ये बड़ी विशेष बात है, कम आयु में आपने इतना बड़ा बिजनेस संभाला और आपके जो हम जींस है स्टूडेंट्स है उनको आप गाइड भी करते हैं। और यही बात होती है कि जो स्टूडेंट होते हैं जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मेरे करियर का क्या होगा, कैसे होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो एग्ज़ाम के लिए लेकर भी उनको बहुत सारा टेस्ट रहता है। तो इन्होंने बताया कि अपने को जो फील्ड अच्छी लगती है उस फील्ड में जाओ और स्टडी पर ध्यान दो, कोई भी ट्रेस नहीं लो। और इन्होंने कहा कि इनके अंदर बहुत अच्छी कला भी है, गीत भी गाते हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आपसे कुछ गीत भी हो जाए।
1: जी जी, मैं एक बाबा का बहुत मधुर गीत गाना चाहूँगा।
0: जी जरूर।
1: प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। दूसरा गीत। वरदान लुटाने वाले, सद ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सत ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए।

0: थैंक यू।
1: जी, बहुत खूब दोस्तों। मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये गीत बहुत अच्छा पसंद आया हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर एक बार हम सिद्धांत जी के पास जा रहे हैं। सिद्धांत जी ने बहुत सारी बातें बताई, करियर गाइड्स के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे टिप्स दी, तो हम यही चाहेंगे कि और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करियर के लिए, उनको आप क्या बताना चाहेंगे?
3: मैं तो स्टूडेंट्स को अक्सर जो बात बोलता हूँ वही बोलना चाहूँगा कि वो मेरे से सवाल करते हैं कि आप इतनी यंग एज में इतना कुछ कैसे अचीव कर लिए।
2: जी,
3: तो मैं पहले तो ये डाउट निकालना चाहूँगा कि बच्चे एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं कि इसने 25 साल में कुछ अचीव कर लिया, इसने 30 साल में अचीव कर लिया, इसने 35 साल में अचीव कर लिया। तो सबसे पहले तो बच्चे ये चीज़ निकालें मन से कि दूसरों से कंपटीशन करना कि किसको किस टाइम पे मिल रहा है, ये डेस्टिनी होती है। ये सबका अपना टाइम हिसाब से चलता है, सब अपने टाइम में अच्छे हैं, आगे हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए या मन में ये डर नहीं आना चाहिए कि मैं पीछे रह गया, क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं अपने कॉलेज के ही, जो अगर कोई लड़का 30 साल में अच्छी जॉब पा रहा है, कोई लड़का 35 साल में अच्छी जॉब पा रहा है, कोई लड़का 27 साल में बिजनेस कर रहा है, तो लोगों में एक भय आ जाता है और स्ट्रेस आ जाता है और आगे बढ़ने के लिए जो उनका उत्साह होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पहले तो ये आप कंपेरिज़न छोड़ दीजिए, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। दूसरा फिर मैं ये बोलूँगा कि जैसा कि मैंने कहा था कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। अगर आप गाने में अच्छे हैं तो गाने में आगे बढ़िए। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी यूट्यूब चैनल आदमी बना लेता है, और एक्टिंग में है तो आजकल यूट्यूब का सहारा है, वेब सीरीज़ का सहारा है। तो जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं उसमें लगे रहिए, और ये नहीं कि खाली पेरेंट्स के प्रेशर में पढ़ाई के लिए बोला जा रहा है तो आप पढ़ाई में ही दिन रात लगे। पढ़ाई अच्छी चीज़ है, करिए, डिग्री अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, एक पढ़े लिखे इंसान की अलग वैल्यू होती है लाइफ में, पर किसी भी चीज़ का लोड मत लीजिए अपने ऊपर। रिलैक्स होके करिए, स्पिरिचुअलिटी रखिए, वो सबसे ज़रूरी है, मेडिटेशन करिए। इन सब चीज़ों से क्या है, आपका फोकस बना रहेगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, और आप डेफिनेटली करियर में कुछ बड़ा कर जाएंगे।
2: जी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने स्टूडेंट के लिए टिप्स बताए कि किसी से भी कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन करते तो हमें भी टेंशन आ जाता है, इसने साल में ये किया, ये आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे। तो अभी जो नेट की परीक्षा हो गई है, तो नेट के बारे में आपका क्या ख्याल है?
3: अभी तो भाई जी मैं सुन के काफ़ी दुख हुआ मेरे को कि नीट के लिए इतने बच्चों ने तैयारी की, दिन रात मेहनत की, और ये पेपर लीक का जो केस आया है इससे वाकई में सारे लोग ही परेशान हैं। ये हमारे सरकार पे एक दाग है कि उन्होंने एक ऐसा लूप होल दे दिया सिस्टम में कि ये पेपर लीक हो गया। ये तो होना नहीं चाहिए था, पर अब टाइम ऐसा आ गया, चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। तो मैं जो बच्चे अच्छी तैयारी करके पेपर देने गए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हताश ना हो, इसको ड्रामा का एक पार्ट समझें, और आपको अगला मौका ज़रूर मिलेगा, आप उसमें दें पेपर, और आपकी तैयारी तो है ही, इसी बहाने आप इसमें पॉजिटिव सोचें कि आपका रिवीजन हो जाएगा।
2: जी जी,
3: और आप ज़रूर निखरेंगे अच्छे मार्क्स से, बस।
2: जी जी, बहुत, अभी जैसे कि कहा कि कुछ किसी की गलती के वजह से नीट की परीक्षा रीनीट हो रही है, तो आप हिम्मत मत हारिए। आप अगर पूरे जोश और जुनून के साथ अगर फिर से नीट परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे ही होंगे। इसका कोई टेंशन या तनाव नहीं लेना है, क्योंकि अखबार में बहुत सारे सुनने को मिलता है बातें कि कई स्टूडेंट आत्महत्या तक चले जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको एक फेलियर आया तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। नहीं, आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सिद्धांत जी, अभी जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: जाते जाते भाई जी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि स्पिरिचुअलिटी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था वर्ल्ड में आज काफ़ी फेमस है, और अपने ज्ञान को लेके, अपने राजयोग को लेके, अपने मेडिटेशन को लेके आज उनका 140 कंट्री में नाम है। तो आप जो है किसी भी फील्ड में आप महारथी हो जाएं, जब तक आप भगवान से और स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन ये नहीं करेंगे तो भले से आप कुछ भी अचीव कर लें, आपको मन की शांति मन का सुख नहीं रहेगा। तो लाइफ में आप कुछ भी करें बहुत अच्छी बात है, पर स्पिरिचुअलिटी को लेके साथ में चलें।
2: जी जी जी, बहुत खूब। जाते जाते आपने संदेश भी दिया कि आध्यात्मिकता जरूरी है, आध्यात्मिकता होने के कारण आप जो भी परिस्थिति आती है, स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप स्टेबल रह सकते हैं, इसलिए आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता से हम अपने साथ परमात्मा या ईश्वर है उसके साथ का अनुभव कर सकते हैं और अपने को सशक्त अनुभव कर सकते हैं। तो सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आकर हमारे श्रोताओं को लाभान्वित किया। तो चलिए दोस्तों, लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: हेलो जी नमस्कार।
1: नमस्कार बोलिए।
0: मैं मानपुर से बुरीलाल बोल रहा हूँ।
1: बोलिए बुरीलाल जी।
0: आज मेरा एक गाना है सर, आपका कार्यक्रम को सुन करके हम आनंद और मस्ती ले रहे हैं।
1: जी जी।
0: आजकल डिजिटल ये है युग है
1: जी जी,
0: इसके अंदर सारा ऐसे चलता है सर
1: जी।
0: इसलिए मेरा ये है कि पिंजरे के पंछी
1: जी जी जरूर जरूर
0: कोई
1: जी जी जी जी जरूर जरूर जरूर
0: हो जाएगा तो मेरा दिल जरूर खुश हो जाएगा
1: जरूर। आज हम
0: सुना उसका अंदर ये रंग लग जाएगा।
1: जी जी जी जी यस यस यस। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान जुड़े हैं और मेहमान से हम लाभ लेना चाहते हैं, तो मेहमान बहुत सारे उन्होंने बातें भी बताई और इसके बाद और एक मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो जरूर हम आपका गीत भी जरूर सुनाएंगे।

0: तो चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पुणे से है प्रणव मंत्री जी है, तो हम चाहेंगे कि उनसे भी आप कुछ सुने। तो प्रणव जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
1: ओम शांति, मैं पुणे से हूँ, मेरा नाम प्रणव मंत्री है, मैं सीए स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, अभी मधुबन आया हूँ सेवा के लिए, अभी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो जो भी स्पेयर टाइम है 40 डेज का, तो सोचा कि चलो बाबा की सेवा कर दी जाए, तो अकाउंट्स टीम में अभी मेरा सेवा चल रहा है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप सीए कर रहे हैं और थर्ड ईयर भी, और उसके साथ साथ परमात्मा की सेवा भी कर रहे हैं। तो प्रणव जी, आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: एक गीत सुनाना चाहूँगा बाबा का।
0: जी जी, जरूर जरूर सुनाइए
1: जी। तो गीत का नाम है ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है
0: जी।
1: ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।

0: ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा बाबा बड़ा है। थैंक यू।
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा गीत गाया और गीत के बोल कितने सुंदर थे कि ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। जी हाँ, जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन मुश्किलें अगर भगवान साथ है तो मुश्किलें कुछ भी नहीं होती है, वो आसानी से पार हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम हमारे साथ अगले मेहमान आ रहे हैं, तो लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते
2: जी नमस्कार।
1: वो मेरी
3: नमस्कार सर, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
2: बोलिए मदन भाई
3: जी। नमस्कार करते हैं आपको, रेडियो मदन को, नवीकरण को और सभी शो को। सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है और लगता रहेगा।
2: जी जी जी जी
3: जी, हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, ओम शांति। और बस आज बुधवार है
2: जी जी,
3: कहीं गर्मी पड़ रही है, बरसात आने के बाद में और भी गर्मी पड़ रही है।
2: जी जी जी जी,
3: चलता रहता है ये सब, काम करने वालों को कोई गर्मी नहीं रहती।
2: जी बराबर, उनको तो काम करना ही पड़ता है। तो हमारे स्टूडियो में आज बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं, दिल्ली से एक मेहमान आ गए, दूसरे भी पुणे से थे। जी जी जी जी,
3: मेहमानों की सलाम।
2: जी जी, और तीसरे एक मेहमान विजयवाड़ा से भी आ गए है, उनसे भी हम सुनेंगे।
3: जी जी जी, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से, हमारे सही दोस्तों की तरफ से और पूरी मधुबन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है इनका।
2: जी जी जी,
3: खुश होके आए हैं, खुश होके जाएंगे।
2: जी जी जी,
3: दुआएं करते हैं।
2: जी जी जी,
3: तो बच्चे आज क्या सुनाएंगे गाना?
2: हाँ हाँ, अभी मेहमान से हम सुनना चाहेंगे कि मेहमान आए हैं, वक्त भी पूरा हो रहा है, तो हम मेहमान से सुनेंगे कि उनको क्या हमको बताना चाह रहे हैं।
3: हाँ बताइए।
2: यस यस, ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में अतुल जी हैं, वो भी एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस को बढ़ाया और करते करते वो अभी ब्रह्मा कुमारी के विजयवाड़ा वहाँ पर वो रहते हैं। तो अतुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
4: ओम शांति, सबको गुड मॉर्निंग। तो मैं राजयोगा मेडिटेशन से 2020 से जुड़ा हूँ, बट मैं वैसे तो मुझे MBBS करना था, बट लॉकडाउन जब स्टार्ट हो गया तो मैं डे नाइट जॉब करता था और मुझे एक मेरा खुद का एक एम ऑब्जेक्ट था कि मेरे खुद के कमाई से मुझे MBBS क्रैक करना था, जबकि मैं 11th 12th डे को कॉलेज करके नाइट को पार्ट टाइम जॉब करता था और मैं हॉस्पिटल OT में सभी जॉब करता हूँ, ECG को, TMT, होल्टर मॉनिटर, टूडे को, 3D को कमीशन भी करता था, बट जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करके पढ़ाई किया था और मुझे MBBS क्रैक करना था। बट जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में दवा काम नहीं आ रही थी, तो वैक्सीन भी काम नहीं कर रहा था, तो भगवान जी का एक महावाक्य मुझे याद था कि बच्चे जहाँ पर दवा काम को नहीं आती वहाँ दुआ काम को आती है। तो मुझे भगवान के ऊपर बहुत निश्चय हुआ, क्योंकि एक रहती है मन मत जो हम खुद की सुनते हैं, और दूसरी रहता है परमत जो हम दूसरे इंसानों की सुनते हैं, और तीसरी रहती है श्रीमत जो श्रेष्ठ मत रहते हैं, जिसे परमात्मा या ईश्वर, अल्लाह, गॉड की मत बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रीमत। तो जब भी इंसान श्रीमत पे चलता है, श्रीमत को धारण करता है, श्रीमत पर फॉलो करता है, कदम पे कदम रखता है श्रीमत के, तो जरूर ही इंसान वो एक साधारण मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। तो मुझे परमात्मा जो मिला है वो मेरा सत्य बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भगवान मिला है।
2: बहुत अच्छे अनुभव आपने शेयर किए कि आपने मत बताए, मनुष्य मत, ईश्वर मत कैसी होती है, और वो आप ईश्वर की मत पर चल रहे हैं। तो अतुल जी क्या सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आप?
4: एक्चुअली ये तो इट्स अ ड्रामा, इट्स अ प्ले, लाइक अ फेसेस ऑफ द डे एंड नाइट, बट दिस इज माई गोल्डन टाइम, दिस इज माई टाइम टू शाइन, ड्यू टू आई हैव माई पीसफुल माइंड। जो परमात्मा जो लाइट है, जो गॉड है, जो प्रकाश का कुंज है, जो ज्योति बिंदु है, तो मुझे एक स्टार बहुत पसंद है, और जब हम आकाश में भी देखते हैं तो चांद और स्टार्स कितना चमकते हैं, तो हर एक को हमारे घर में भी डेकोरेशन, दिवाली आते हैं तो हमको दिए जलाते, स्टार्स लगाते हैं ना, तो स्टार्स की दुनिया आजकल बहुत पसंद आती है सबको, तो वैसे जी
2: में। हेलो जी नमस्कार।
5: हाँ जी सर नमस्ते, रमनाथ भाई जी कहते हो?
2: जी बढ़िया बढ़िया,
5: सकते हैं, और सभी हमारे जो मेहमान आए उनको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं, और बहुत अच्छी बातें सभी बता रहे हैं।
2: जी जी जी,
5: तो बस ज्यादा बात करने करते हुए कि बस थोड़ा वक्त कम है तो फिर भी कलम में सबको एक शुभकामना भी दे दूं।
2: जी जी।
5: और हमारे सभी मेहमान जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं बाबा का
2: अच्छा
5: परिचय बता रहे हैं तो जरूर बाबा का परिचय हम सुनते हैं। और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते सर।
2: जी जी जी। ओके ओम शांति। धन्यवाद शुक्रिया। तो अतुल जी से हम गाना सुनना चाहेंगे कि अतुल जी आप कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
4: झिलमिल सितारे बनकर उड़के वतन में जाए, आए परम पिता से मंगल मिलन मिलाए।
2: जी जी।
4: हम दोस्तों को सबसे मिले हैं, अभी ये सॉन्ग से हम भगवान से मंगल मिलन मिलाएंगे। ओके
2: जी जी शुरू करें
4: फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी।

नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है महफिल।

सकत है अनोखा अनुभव, बड़ा निराला बेहद अति

0: ओम शांति। थैंक यू।
1: बहुत अच्छा अतुल भाई जी, आपने गीत सुनाया कि परमात्मा की याद में उन्होंने गीत सुनाया। उनका गीत के आधार से लगता है कि कितना ईश्वर के प्रति प्रेम है। वो एक बिजनेसमैन थे और बिजनेस छोड़ के अभी ईश्वरीय सेवा में लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको आज का कार्यक्रम, आज के जो इसके पहले जो वक्ता थे प्रधानमंत्री, उनके पहले थे सिद्धांत जी ने करियर गाइडेंस के ऊपर बहुत अच्छी मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है आज का कार्यक्रम आपको सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं यहाँ पर ही ब्रेक, क्योंकि वक्त हो गया है कार्यक्रम को पूरा करने का। मिलते हैं कल फिर इस कार्यक्रम में फिर एक बार। अच्छा, ओम शांति।
2: आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए बड़ी बातों को ज़्यादा महत्व देने के बजाय अच्छी सोच को ज़्यादा महत्व दीजिए। कैसे, जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, गाय का घी हमारे हेल्थ के लिए किस तरह फ़ायदा करता है और कौन सी बीमारियाँ ठीक करता है, ज़रूर जानेंगे आप सभी। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो हमारे श्रोता बंधु के कहने पर आज हम आपको फिर से सिखाएंगे अचार, लेकिन कौन सा वाला वो अभी नहीं बताएंगे। अगर आपकी कोई विशेष फरमाइश है तो ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आप अचार सीखना चाहते हैं, नहीं तो फिर हमने तो सोच ही लिया है कि कौन सा सिखाएंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओए रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। ओए इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। आज का सुंदर सा विचार है, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए बड़ी बातों को ज्यादा महत्व देने के बजाय अच्छी सोच को ज्यादा महत्व देना चाहिए। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। एक महान विद्वान से मिलने के लिए एक दिन रोशनपुर के राजा आए। राजा ने विद्वान से पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हो? विद्वान ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई गुना महान है। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसे कैसे भला संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवा सकता हूँ। इतना कहकर के विद्वान राजा को लेकर के एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ उनको मिल गया। बूढ़े व्यक्ति के पास एक पानी का घड़ा और कुछ डबल रोटी थी। विद्वान और राजा ने उससे मांग करके डबल रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बुढ़े व्यक्ति को डबल रोटी के दाम देने लगा तो वह व्यक्ति बोला, महोदय मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं इस उम्र में करने योग्य हूँ। मेरे बेटे का डबल रोटी का व्यापार है, मेरा घर में मन नहीं लगता, इसलिए राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना और डबल रोटी खिलाने आ जाया करता हूँ यहाँ पर, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। विद्वान ने राजा को इशारा देते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े व्यक्ति की इतनी अच्छी सोच ही इसे महान बनाती है। फिर इतना कह करके दोनों ने गांव में प्रवेश किया। तब उन्हें एक स्कूल नजर आया। स्कूल में उन्होंने एक शिक्षक से मुलाकात की और राजा ने उससे पूछा कि आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? उस शिक्षक ने कहा राजा से कि महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ कोई शिक्षक नहीं थे और विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर था, इस कारण मैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने आ रहा हूँ। विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला भी बहुत ही महान होता है और ऐसे कई लोग हैं जिनके ऐसी महान सोच ही उन्हें महान से भी बड़ा महान बनाती है। इसलिए राजन, अच्छी सोच व्यक्ति का भाग्य निर्धारित करती है, इसलिए हमेशा अच्छी बातें ही सोच करके कार्य करें और महान बने। आदमी बड़ी बातों से नहीं बल्कि अच्छी सोच व अच्छे कर्मों से महान माना जाता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, इसीलिए कहा गया है, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए बड़ी बातों को ज़्यादा महत्व देने के बजाय अच्छी सोच को अगर ज़्यादा महत्व दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी अच्छी सोच ही आपके कार्य को निर्धारित करती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो,
4: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
4: बस एकदम अच्छे हैं, और कल थोड़ा बिजी था तो फोन नहीं किया।
3: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी देखिए आप जुड़ जाते हैं समय मिलते ही, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो बहुत ही जल्दी हम विषय भी रखेंगे, बहुत ही जल्दी प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है?
4: बराबर, विषय तो मेरे ख्याल से हम समझ गए कि देखो कई कई मथुरा के झगड़े में राम गए वन में वगड़े में जी
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई
4: जी जी जी
3: ठीक है ना। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। आइए यहाँ पर एक कल्प विराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो जी, जय श्री हरि। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हैं आप?
2: हम अच्छे हैं, आप कैसे हो?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
2: आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे होंगे। और बस आप आए तो बाहर आई।
1: थैंक यू।
2: और बस आशियाना प्रोग्राम सुन रहा है तो बस सभी रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं। और दीदी का परसों का दिन हमारे दोस्तों का बर्थडे था
1: जी,
2: तो मैं शुभकामनाएं नहीं दे पाया तो मैं आज देना चाहूंगा
1: जी।
2: हमारे एक कंचन भाई मंडाली वाले और ठाकुर भूपत सिंह सिन्हा, दोनों का जन्मदिन था तो उनको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाबा उनको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे और अपने परिवार में खुशियां ही खुशियां प्रदान है।
1: चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई।
2: थैंक यू।
1: हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। देसी गाय का घी कितना फायदा करता है, कैसे करता है, कैसे इसका उपयोग में लाएंगे, सब कुछ जानेंगे आप। ठीक है, देखिए, देसी घी के बिना तो भारतीय भोजन का स्वाद अधूरा ही माना जाता है ना? लेकिन फिर भी कहते ना कि घी का नाम सुनते ही कुछ लोग मुंह बनाने लगते हैं, क्योंकि इससे उन्हें वजन बढ़ने का डर सताने लगता है और बीमारियों का कारण समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। घी क्यों खाते हैं, वो भी गाय का, खास तौर पर देसी गाय का घी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आयुर्वेद में तो देसी गाय के घी को अमृत समान माना जाता है, जिसे 100 से भी ज़्यादा गुण होते हैं जो दवा की तरह काम करता है। तो जी हाँ, अब मैं आपको इसके फायदे बताऊंगी कि देसी गाय में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इनसे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, और ये हेल्थ को दुरुस्त रखने के साथ ही साथ स्किन और बालों के लिए भी किसी वरदान की तरह होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह आपको कई तरह की बीमारियों से बचाता है। ये बॉडी के वेट को बढ़ाने से रोकता है। देसी गाय के घी में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है, जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जैसे फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो बढ़ते बच्चों की ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। ठीक है, और भी आपको बताना चाहूँगी मैं कि देसी गाय का घी हेल्थ के लिए कितने फायदेमंद है। अब आप देखिए, एक तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, अक्सर हम सोचते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन गाय के घी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, वजन भी नहीं बढ़ता है, बल्कि ये वजन को बैलेंस करता है। यानी कि कमज़ोर व्यक्ति का वजन बढ़ता है, मोटे व्यक्ति का वजन कम होता है। साथ ही मतलब मैं आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय बता रही हूँ। ठीक है, फ़ायदा तो आपने जान लिया। अब गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो गाय का घी नाक में डालिए, इससे एलर्जी खत्म होगी। दूसरा है बहुत ही सुंदर नुस्खा, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। ठीक है, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। फिर तीसरा है, गाय का घी नाक में डालने से लकवा का रोग भी उपचार होता है। गाय का घी नाक में डालने से लकवा का रोग में भी उपचार होता है। अब चौथा आप सुन लीजिए, 20-25 ग्राम घी और मिश्री मिक्स करिए और खाइए, इससे शराब, भांग और गांजे का नशा कम हो जाएगा। तो 20-25 ग्राम घी और मिश्री मिक्स करके खाइएगा, इससे शराब, भांग और गांजे का नशा कम होगा। और पांचवा सुन लीजिए, नाक में घी डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तरोताजा हो जाता है। देखिए, नाक में घी डालने के कितने सारे फायदे हैं, 4-5 फायदे मैं आपको सुना चुकी हूँ। नाक में घी डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तरोताजा हो जाता है। गाय का घी नाक में डालने से बाल झड़ना दूर होकर के नए बाल भी आने लगते हैं। ठीक है, तो गाय का घी नाक में डालिए, इससे बाल झड़ना दूर होगा और नए बाल भी आने लगेंगे। और भी देखिए फायदे इसके, गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। ठीक है, गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। लास्ट उपाय बता रही हूँ, हाथ और पैरों में जलन होने पर गाय के घी को तलवों में मालिश करिए, इससे जलन ठीक हो जाएगी। अगर हाथ और पैरों में जलन रहती हो तो पैरों के तलवों में गाय के घी की मालिश करिए, इससे जलन ठीक हो जाएगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, नो साइड इफेक्ट, आजमा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों का अलविदा कर सकते हैं। तो आइए अब आज के प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नुस्खे तो आपने जाने हैं, बहुत सारे उपाय हैं, हम बताते रहेंगे आपको। आज के लिए इतना ही। और आज का प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए बनाई गई है और क्यों बनाई गई है? सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए बनाई गई है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन का नंबर है 94-14-15-14-15। और आप फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का प्रश्न मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। सरकार ने जो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई है वो किसके लिए है, यह आज का प्रश्न है। आज का खुशनुमा जीवन का विषय भी बहुत ही सुंदर है जिसको मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है, क्या कहेंगे आप? हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। जो भी जुड़े हैं बात जरूर करिएगा। हेलो, तो विषय आपके समक्ष में रख चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर विषय है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। तो ये है आज का विषय जिसमें आपको अपनी राय व्यक्त करनी है और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, इसका आपको जवाब देना है। तो आप जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। जो भी जुड़ते हैं बात करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। भला थोड़ा सा विश्लेषण करिए, ज़्यादा नहीं राय व्यक्त करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन जुड़िएगा ज़रूर। तो हमारे श्रोता बंधु कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए हैं। नव तपा का आज लास्ट दिन है ना। नव तपा मने 9 दिन, इतनी भयंकर गर्मी कि पूछिए मत, आज भी बहुत गर्मी है। बीच में ठीक है, वो थोड़े से हवा पानी हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त आंधी तूफान चले, उससे हल्के से ही राहत मिली, फिर से गर्मी बढ़ गई है। तो ध्यान रखिएगा, और आपको रेडियो से जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको धूप में जाना पड़े, आप घर बैठे जुड़ सकते हैं छाँव में, पंखे के हवा में खाते हुए। तो देखिए, जीवन मिलना तो सचमुच भाग्य की ही बात है ना, और मृत्यु होना भाई समय आएगा तो सभी को जाना पड़ेगा, लेकिन मेन बात है कि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। तो बहुत ही गहरी बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जेठाना।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बस हम भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कार्यक्रम सुन रहे हैं। गर्मी तो दीदी है, क्योंकि गर्मी तो इतनी बढ़ गई है कि पता नहीं
0: जी
1: कैसे इसको संभाल लेता हो गया है, लेकिन फिर भी चलो गर्मी तो गर्मी, तो उसका काम कर रही है, लेकिन हमको संभालना है दीदी
0: जी।
1: तो बाहर ना जाए, कोई ऐसी जगह पे ना जाए, धूप में ना जाए, तो हम इससे बच सकते हैं
0: जी।
1: और विषय भी बहुत अच्छा रखा है दीदी कि देखो आज हम कई लोगों को हम याद कर रहे हैं दीदी, ऐसे तो कोई याद करते नहीं, कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं
0: जी
1: दुनिया से, लेकिन जो अच्छा कर्म करके जाते हैं, अच्छा नाम करके जाते हैं दीदी, उसको हम याद करते हैं
0: बिल्कुल,
1: वरना तो हम किसी को याद नहीं करते। देखो मैं बताऊं दीदी कि कई लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे जब तक जिए तब तक बहुत अच्छे कर्म किए, किसी के साथ कोई संबंध, किसी के साथ कोई ऐसा अनबन नहीं किया है, सबसे अच्छा संबंध रखा है, और जो काम किसी ने किया वो किया है, अच्छा कर्म किया है, सबके साथ मिल मिल के रहे हैं, जाते वक्त भी उसने अच्छा कर्म करके गए हैं, तो ही तो उसको याद करते हैं, वरना तो दीदी देखो आज कई लोग ऐसा एकदम उसको गया तो अच्छा चलो जगह हो गई, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन तक जिया तब तक लोगों से बस झगड़ा किया, ऐसा किया ऐसा किया, लोगों को अच्छी तरह से सबको परेशान किया, घर में भी अच्छा नहीं रहे, किसी के साथ अच्छा संबंध भी नहीं रखा, तो इसको तो कैसे याद करेगी, कोई याद नहीं करेगा। आप देखो हमारे कहा कई ऐसे महानुभाव है गए हैं दुनिया से, कोई फिल्मी कलाकार गए हैं, कोई ऐसा झांसी की रानी है, कई सारे ऐसे
0: महाराणा प्रताप है,
1: महाराणा
0: मीराबाई है, नरसिंह मेहता है जी, बहुत तो सारे एग्जाम्पल है,
1: ऐसे तो याद नहीं करते दीदी, लेकिन अच्छे कर्म करके गए। हमारे समाज में भी कई दीदी ऐसे लोग हैं कि जब तक गया तो समाज का अच्छा कर्म किया, अच्छा काम किया, समाज का सबको आगे लाए, किसी का जो परिस्थिति ऐसी नबड़ी होती है इसको कहाँ से पैसा लाके समाज से उसको मदद किया दीदी, उसको याद करते हैं लोग, देखो हमारे दीदी, हमारे समाज की मैं बात करूँ दीदी, तो एक नया हमारे समाज ने किया है कि जो पुराने जो जो पुस्तक होते हैं बच्चों के, तो वो सब इकट्ठा करके ले लेते हैं, समाज में भेजते हैं, और समाज वाले कोई ऐसी परिस्थिति वाले, गरीब परिस्थिति वाले जो पढ़ा नहीं सकते, पैसा नहीं, उसको ये पुस्तक देते हैं। वरना लोगों को आज तक लोग कश्ती में दे देते थे, रुपये दो रुपये में कश्ती।
0: हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है ये भी, बहुत अच्छी
1: तो
0: पहल है।
1: हाँ, तो ये हमारे समाज में एक अच्छी जो क्रिया प्रक्रिया चालू की है दीदी, की ये सबको एक मंगवाते हैं, सब उसको भेज देते हैं, तो हमारे समाज में जो लोग होते हैं कारोबार करते हैं उसको भेज देते हैं। आज लोगों हमारे लोगों कम से 50 लोगों को दीदी, ठीक है, हमारे सब मैसेज आता है किसने दिया और किसको दिया, ये हमारे सभी मैसेज आता है हमारे मोबाइल में समाज का।
0: अच्छा, बहुत
1: तो सभी जानकारी हमको मिलती है कि चलो भाई इसने पुस्तक दिया, ये बच्चे ने पढ़ते थे तो वो पुस्तक वहाँ पहुँचाया, और उसको जिसको मदद थी, जरूरत थी, उसको मदद किया। तो ऐसे दीदी हम ऐसे पुस्तक में देते थे, उसका कैसा पैसा नहीं आता है, और जो बिना पैसे उसको पुस्तक मिल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो
0: अच्छी बात है।
1: हमारे समाज काम करे दीदी, हमारे समाज तो ऐसा भी काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा निराधार है उसको हर साल 10,000 रुपये का वो किराया दुकान से करियानों लेके उसको देते हैं, ऐसा भी काम कर रहे हैं हमारे समाज वाले।
0: अभी तो बहुत जागरूक हुए हैं लोग, अच्छा अच्छा नए
1: तो
0: कार्य कर रहे हैं।
1: ऐसे लोगों को दीदी याद किया जाता है
0: जी,
1: तो ये देने वाले को याद किया जाते हैं, और जो संभालते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं इसको भी याद करते हैं
0: जी।
1: ऐसा काम करना है दीदी, ऐसा काम करना। मैं बता दीदी, मैं मेरी जो बेटी है उसका जो बच्चे हैं, तो उसका जो चौपड़े हैं, तो दीदी हमारे एक भाई है मेरी साली का लड़का उसको हर साल देते हैं, क्योंकि वो इसके पीछे मेरी बेटी की बेटी आगे है कि वो पीछे है, तो हर साल उसको पुस्तक देना देते हैं, उसको पैसा खर्चना नहीं पड़ता है।
0: जी जी, बहुत अच्छा।
1: तो ऐसे बच्चों को, एक दूसरे बच्चों को ऐसा सहारा मिल जाता है दीदी, तो ये अच्छा काम हो जाता है। तो बस मैं तो दीदी ऐसा कहूँगा कि हर कोई भी वो अच्छा काम करके जाओ तो आपको याद करेंगे, वरना तो आया गया दुनिया में कोई।
0: बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन गया दुनिया से।
1: बस ऐसी बात है दीदी, तो हम तो ऐसा कहेंगे बस, हम भी अच्छे कर्म कर रहे हैं दीदी, हर सुबह में मैं मेरा रूटीन का काम
0: नहीं, आपका तो पता ही है, आपका तो पता ही है कि
1: कर रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं दीदी, मैं मुझे ऐसा परमात्मा ने काम मुझे सौंपा है और मैं कर रहा हूँ, वरना तो ये काम 4 बजे उठ के कौन कर सकता है, 5 बजे उठ के, लेकिन मुझे परमात्मा ने काम सौंपा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है।
0: बहुत अच्छा है, और सुबह जो जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन।
1: दीदी हमारे फायदे है, एक तो हमारा पैदल चलना, मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ सुबह में,
0: क्या बात है।
1: तो ये पैदल चलना भी एक फायदा है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। दूसरा कि जो हम कर्म करते हैं वो जो कीड़ियों को खिलाना, पक्षियों को खिलाना, पक्षियों के पानी के लिए फूल सगुड़ में करता हूँ, और कई सारी कुत्ते को बिस्किट खिलाना, ये सभी काम मैं एक साथ 5-5 काम करता हूँ
0: जी,
1: तो ये भी एक अच्छी मेरी हो जाती है, हेल्प हो जाती है।
0: बहुत बढ़िया
1: जी, नमस्ते दीदी
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई छोटाना से, आपने विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में करते हैं तो वो डंके की चोट बोल भी सकते हैं, और आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, हर एक इंसान कुछ न कुछ तो ऐसा करता ही है जो परोपकारी हो, है ना? तो हर एक कोई कुछ करते होंगे परोपकार का, बहुत जने, जैसे आपने बताया सुरेश भाई ने कि ये किताबें जो होती है बच्चे पढ़ाई करते हैं, पूरे साल के बाद वो किताबें अगर हम रद्दी में डालते तो क्या आता है, और इस तरह हम बच्चों की हेल्प कर देते हैं, परिवारों की हेल्प कर देते हैं, तो कितनी दुआएं मिलती है। हेलो,
2: भूरा राम बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
2: राम, बस ठीक है, अभी ऑपरेशन हो गया, घर पर बैठा हूँ।
0: अच्छा,
2: और आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ दीदी, और बस 2-3 दिन से ट्राई कर रहा, फोन नहीं लग रहा था आपका।
0: अच्छा, चलिए
2: आज लगा है।
0: जी जी जी, तो ऑपरेशन हुआ आपके, ऐसा आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी?
2: ठीक है, मैं अभी आराम आया थोड़ा।
0: हाँ हाँ,
2: और तो अभी एक थोड़ा चलने फिरने में तकलीफ है, लेकिन फिर भी आराम है, पहले से भी आराम हो गया दीदी।
0: जी जी, तबीयत का ध्यान रखिएगा, ठीक है?
2: ओके जी, और सब मधुबन भाइयों को और मेरे सब की तरफ से राम राम
0: जी।
2: और दीदी आ गया है।
0: हाँ जी, हाँ जी, आपकी दुआ से अच्छे हैं। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे या आज के विषय में जुड़ेंगे आप? जी जी जी, आप पहले तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आज का प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है और क्यों क्यों है? ठीक है। और आज का विषय है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है, क्या कहेंगे आप?
2: दीदी, बहुत अच्छा प्रश्न उठा है कि बहुत अच्छे कर्म की आगे भी कर्म किए रहेंगे तो ये मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन में आकर तो अपन अच्छा काम करेंगे या अच्छा अपन बोले तो लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार करेंगे, तब बोले तो किसी के बारे में गलत सोचना करना ये बोले तो करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो मरने के बाद में लोग याद करेंगे, और किसी से झगड़ा फंदा ये, किसी से बैर रखना ये करना, घर में झगड़ा ये करना तो लोग सब जानते हैं और समझ भी जानते हैं, सबको ये अनुभव रहता कि ये तो ऐसा आदमी है, तो मरने के बाद में भी वो वैसे ही नाम निकालते, कर्म करेंगे तो अच्छे बुरे नाम निकलेगा
0: जी। बहुत अच्छा बुरा राम जी, बहुत ही अच्छा बोले आप।
2: ओके।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत है, ठीक है?
2: ओके दीदी।
0: हाँ जी, तो ये थे भूरा राम जी ओर से, और विषय बहुत ही सुंदर है, इसमें और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते तो ठीक है, हम एक ब्रेक के बाद पुनः इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, आप जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी सुना सकते हैं। तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं। हेलो,
3: हेलो, कौन सा लिंक है दीदी?
0: हाँ जी,
3: लिंक कौन सा चल रहा है?
0: हाँ जी, खुशनुमा जीवन का।
3: अच्छा, क्या है राज?
0: अच्छा, खुशनुमा जीवन का विषय है, आपको पहले तो मैं प्रश्न सुना दूं या विषय सुना देती हूँ? चलो, जीवन जी, विषय है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है।
3: बिल्कुल सही बात है ना। देखिए, जीवन भाग्य से मिलता है, ये बात सत्य है, क्योंकि जीवन, मनुष्य जीवन मिला है तो आपको किस कारणों से मिला है, क्या करने के लिए मिला है, ये पहले सोचना जरूरी है
0: जी।
3: और मृत्यु तो वो तो ठीक है, जीवन में आए हैं तो मृत्यु निश्चित है समय के साथ में, वो ठीक है, मगर ये आखिरी पॉइंट है ना, मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना जरूरी है, वो कर्मों का काम है, तो कर्म अच्छे करिए। भगवान ने अपन को इस तरह से जीवन मतलब कर्म करने के लिए भेजा है कि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए या अच्छे किए तो इस जन्म मतलब पूरे किए तो इस जन्म को सुधारो
0: जी।
3: इतने अच्छे करो कि जाने के बाद भी लोग याद करें और मतलब कि आवागमन की गति खत्म हो जाए।
0: जी
3: सही है ना
0: जी।
3: दिल मतलब आपको मतलब कुछ विशेष बन के दिखाना है, जैसे कि देखिए हमारे कुछ क्रांतिकारी मतलब कितने ही लोग आके गए हैं, आज भी अपन याद करते हैं।
0: बिल्कुल,
3: तो उन्होंने अच्छे कर्म किए
0: जी,
3: इसलिए हम याद करते हैं। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आप जिंदा हो तो भी बोलेंगे जाने दो ना इसको, चाय और पिलानी पड़ेगी, जाने दो इसको। और अच्छे कर्म करोगे तो अरे भाई आओ आओ बैठो यार बैठो, आप भगत भी होगी
0: जी,
3: जिंदा भी आप भगत होगी उन मरने के बाद।
0: बिल्कुल,
3: तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे कर्म कीजिए। आप अच्छे कर्म करने का मतलब धन से ही नहीं है, आप किसी भी तरह से अच्छे कर्म कर सकते हैं
0: जी। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी बातें हैं।
3: कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मेरे पास धन ही नहीं है तो मैं अच्छे कर्म कैसे कर सकता। अरे आप अपने दिल को साफ रखिए ना, किसी के प्रति बुराई का व्यवहार ही मत कीजिए ना, बुराई को जड़ से मिटा दीजिए, बुराई के कलंक को मिटा दीजिए
0: जी।
3: और जो भी अपन से बने वैसा कर्म करते रहिए, सही है ना जी?
0: जी बिल्कुल,
3: पशु पक्षियों के लिए, मनुष्य के लिए, जो भी अपने
0: बहुत बड़ा विस्तार है, जिनके लिए भी करना चाहते हो कर सकते हैं, पेड़ पौधों के भी सुरक्षित रख सकते हैं, उनका भी ध्यान रख सकते हो,
3: मगर कर्म कीजिए और अच्छे वाले कर्म कीजिए
0: जी।
3: वो भगवान प्रभु ने भी गीता में कहा है कि कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा ना करे, तो बस अपना कर्म करते जाइए और बस आगे बढ़ते जाइए, तो आपके मरने के बाद भी आप जिंदा रहेंगे लोगों के दिलों में
0: जी।
3: बस यही बात है। और प्रश्न क्या है
0: आज का? प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है?
3: ऑफलाइन दो दे दो।
0: हाँ जी ठीक है।
3: जी,
0: जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आइए एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। कैसे छोटी छोटी बातों से तनाव आता है और कैसे हम इन तनाव को दूर करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, तो विषय बहुत ही सुंदर है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है और क्यों है। जवाब देने के लिए नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ व्यस्त हो गए हैं। अभी तो गर्मी के दिन है, कहते हैं ना गर्मी के दिन लंबे होते रात छोटी होती है, सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रात लंबी होती है। तो भाई अभी तो दिन बड़ा है, तो आपके पास समय पड़ा होगा तो ज़रूर आप जुड़ने की कोशिश करिएगा। और बाकी तो विषय बहुत ही सुंदर है, जीवन मिलना तो भाग्य की ही बात है, लेकिन मृत्यु के बाद सभी के दिलों में जीवित रहना यह अहो सौभाग्य की बात है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा से, आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसा है आप?
2: बस दीदी अच्छे है, काम काज चालू है और प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बातें कर रहे हैं, आप भी अच्छे विषय लेके आए हैं दीदी, और बहुत प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो मैं पहले विषय पर आता हूँ दीदी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: जो हम मनुष्य जीवन जो भगवान ने भेजा है, तो अपने आप जानना चाहिए कि क्या उद्देश्य से हमने भगवान ने भेजा है। एक अपना उद्देश्य लक्ष्य तय करे, और ना कि किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुख चोट पहुंचाने की, गलत कर्म करने की, ये उद्देश्य नहीं है मनुष्य अवतार का दीदी
1: जी।
2: तो मैं यही कहूंगा। और मुझे एक बात भी याद आ रही है कि एक गुरुजी ने एक इंसान को कहा कि 2 दिन में तुम्हारी के मौत हो जाएगी, तो वो तो बहुत बड़ा भयभीत हुआ
1: जी।
2: तो के चलो अब क्या?

0: करे। चलो कि वो मौत तो आनी है तो आएगी, इससे पहले क्यों ना हम जो किसी से वेर जेर सगा संबंधी दुश्मन उससे जो भी किया है तो मैं ठीक करके जाऊँ, तो सभी को न्योता भेज जाओ और कहा कि मेरे घर आओ, जो भी चीज है ले जाओ, और कोई नहीं आ रहा है तो पैरों में गिर कर भी माफी मांग कर भी ये सब किया, और सब किया, सब खुश हो गए कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, तो आज हम पता चला। तो वो था वो मृत्यु का भय। तो फिर दो से तीन दिन हो गए गुरुजी के पास गए कि गुरुजी क्या हुआ, कि आप तो कह रहे थे कि मौत आएगी, तो कहे मृत्यु के तुम्हारी टल गई, अच्छे थोड़े दिन में, दो दिन में, सिर्फ दो दिन में अच्छे कर्म कर लिए तो टल गई,
1: बुरे बुरे विचारों की मृत्यु हो गई।
0: सही सही सही कहना। तो क्यों ना ये दो दिन के लिए वो उसने किया, तो हम मनुष्य जीवन पूरे जीवन दिया है भगवान ने, तो क्यों हम अच्छे कर्म क्यों करना करें। तो बस मैं यही कहूंगा कि हमेशा से कर्म करते रहिए, ताकि लोग मरने के बाद भी याद करें कि ये इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, जाने वाला तो जाएगा ही, और सब कुछ जो संसार में होता है वो तो होता रहेगा, लेकिन बस याद करें वही काफी है, और अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी सब साथ लेकर चले, ये बातें दीदी
1: जी।
0: और दीदी प्रश्न का जवाब है ना, तो हाँ मैं तो प्रश्न का जवाब तो भेजा है, लेकिन
1: हाँ जी, मैंने
0: एक बात मैंने एक बात कहना चाहूंगा कि गांव में कई लोगों को पता भी है और नहीं भी पता,
1: नहीं भी
0: तो
1: है।
0: उसमें क्या है कि 18 साल की जो लड़की है ना उसको ये शादी ब्याह होता है ना तब वो पैसा मिलता है, तो लोग क्या करते हैं 18 साल का इंतजार भी नहीं करते, 16-17 साल में लड़की का ही ब्याह कर देते हैं, तो ये लाभ खास करके इस चीज से भी नहीं लेते ये सरकारी लाभ लोग। तो ये सुनने वालों को कहूंगा कि ये बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है कि
1: भाई 18 साल की तो होने दो कम से कम।
0: अरे थोड़ी जो 15-17-16 साल की हो गई ना तो आजू बाजू लोग वाले कह रहे इनके घर तो ये इतनी बड़ी बेटी है, कुछ ऊंच नीच कर बैठेगी, ये ताने मारते हैं तो लोग ये भी कर ले, अभी भी गांव में है ना वो
1: जी जी
0: पुरानी जैसी प्रथा चल रही है,
1: पुरानी बातें, बहुत
0: ध्यान रखना जरूरी है
1: जी। चलिए बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। हाँ जी नमस्ते जी। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, आपने भी विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है और बिल्कुल सही बात है, गाँवों में लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार क्या क्या योजनाएं दे रही है हम सभी के लिए, बेटियों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सभी के लिए है कुछ न कुछ योजनाएँ, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा और उन तक बात भी ज़रूर पहुँचाइएगा। जाते हम भी गाँवों में जाते हैं, लोगों को सूचना भी देते हैं, जानकारियाँ भी देते हैं, जागरूक भी करते हैं, करना भी चाहिए। और विषय बहुत ही सुंदर है, तो देखिए जीवन तो मिलना भाग्य की ही बात है, लेकिन कहते हैं ना मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में राज करना हर किसी के बस में नहीं होता है, वो सारा कर्मों पर मदार है। हेलो
2: हेलो दीदी नमस्कार, ठाकुर भूपत सिंह सिद्धपुरिया।
1: हाँ जी भूपत सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: बिल्कुल भैया दीदी प्रोग्राम सुन रहा था
1: जी। देखिए आप जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, लेकिन हमारे श्रोता बंधु सभी याद करते हैं आपको, अभी आपका जन्मदिन गया तो भी सभी याद कर रहे थे आपको।
2: अभी सुरेश ने कॉल किया था, अभी वो सुरेश ने की बात चल रही थी, सुन रहा था रेडियो तो सुनता रहता हूँ
1: जी। लेकिन ऐसे विशेष दिन हो तब जुड़ भी जाइएगा रेडियो से।
2: एक बात बताओ दीदी, परसों पर 4 दिन हो गया
1: जी,
2: 8 बजे जो मेरा सीलिंग फैन था ना
1: जी,
2: वो घूमता घूमता गिर गया मेरे पलंग पर।
1: ओहो,
2: तो बिल्कुल बाजू मेरे पैर के बाजू में गिरा।
1: अरे देखो,
2: मैं भी सुबह एकदम आवाज हो गया कि ये क्या हो गया।
1: जी जी जी जी,
2: बिल्कुल इतना आसानी से गिरा कि बाजू में किसी ने रखा हो या इसी तरह गिरा।
1: जी जी जी,
2: मैंने सोचा कि मेरा कर्म कोई काम कर गया, नहीं तो
1: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कर्म काम कर गया।
2: पंखा तो कई दीवार पे टकरा जाता होता है
1: अरे हालत ही खराब कर देता अगर कोई नीचे होता तो।
2: जी एक बाजू मैं सो रहा था, एक बाजू संजीव की बिटिया सो रही थी, और दोनों को बीच में आहिस्ता आहिस्ता गिरा वो पंखा, घूमता पंखा गिरा।
1: ओहो क्या बात,
2: किसी को चोट नहीं लगी। मैं भी देख रहा था कि गिरा कैसे।
1: जी जी जी जी।
2: अरे मैंने सोचा कि दो तीन दिन से तो ऐसे ही एक पंखा, तो फिर मैंने फिट कर दिया। अभी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये एक मेरे पर गिरा क्यों रही है, क्या मेरा कोई पुण्य काम कर गया।
1: बिल्कुल, हमको पता नहीं होता है। इस तरह जब हम बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तब ऐसा लगता है कि किसी ने किसी समय का किया हुआ पुण्य का कार्य ही आड़े आया है। या फिर हम बुजुर्गों को भी उस समय याद करते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने कोई अच्छे कर्म किए, उनका प्रताप से हम खुश है। जी
2: कहवत है ना, को जो पंखा तो गिरने वाला ही था।
1: जी
2: लेकिन क्या है, मेरी कहवत है ना कि जो बाला लगने की जगह पर एक सुई लगी।
1: हाँ जी बिल्कुल।
2: हाँ नहीं, पंखा तो गिरने वाला था, ये लिखा था गिरेगा तो गिरेगा,
1: पहाड़
2: किस्मत में लिखा हो होके रहेगा।
1: जी पहाड़ जैसी समस्या को ईश्वर ने रुई की तरह कर दिया। बिल्कुल, राई कहते ना, राई की तरह
2: पूर्ण होगा ना तो वो कम होगा।
1: जी
2: बस सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, मधुबन डेयरी सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: बहुत बहुत आभार, आप जुड़े हैं जो, और हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने आपको याद किया है, बर्थडे भी विश किया है, और शायद हो सकता है हमारे श्रोता बंधुओं के गुड विशेष से भी आप बच गए है ना, तो वो सबका ही रहता है, सबका योगदान रहता है इसमें। जी तो बहुत बहुत आभार, और आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बहुत अच्छा लगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये थे ठाकुर भूपत सिंह जी। देखे कभी कभी जीवन में इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो किस प्रकार लौट करके आता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन लौट के जरूर आता है, चाहे अच्छे कर्म किए हुए हो चाहे बुरे कर्म किए हुए हो। तो ये अच्छे कर्मों का ही प्रताप है कि भूपत सिंह जी हादसे के शिकार होते होते रह गए। बहुत बड़ा हादसा हो जाता उनके साथ लेकिन टल गया, यही तो अच्छे कर्मों का परिणाम है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि कर्म ऐसे करिए, और हमें ऐसे नहीं कि अरे मैं अच्छे कर्म करूं ताकि मरने के बाद अमर हो जाऊं, ना ये भाव से नहीं, इस भाव से करेंगे तो स्वार्थ हो गया और कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो जाएगी। बस वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, और वो नेचुरल आदत बन जानी चाहिए, खाली दिखावे के लिए नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु हैं जिनकी नेचुरल आदत है ना, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। जैसे सुरेश भाई जोटाना से, अब 4 बजे उठ करके पंछी पक्षियों को दाना देना, पानी, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, पूरे मोहल्ले की सफाई करना, तो ये एक नेचुरल आदत है, न कि दिखावा है। ऐसे ही हम सभी को भी एक आदत बना लेनी है अच्छे कार्य करने की। बहुत जने दिखावा करते हैं, हाँ मीडिया आ गई, फोटो के लिए खड़े हो गए, फिर बाद में तू कौन और मैं कौन, ऐसा हो जाता है। और बहुत जने लोग देख रहे होते तब करते हैं, लेकिन नहीं, वो कितने दिन, वो झूठ कभी टिक नहीं पाता है ना। सच्चाई ही काम आती है जीवन में, दिल से किया हुआ कर्म, सच्चाई से किया हुआ कर्म, और नेचुरल आदत जो वो बन जाती है उस अनुसार अगर हम अच्छा करते हैं। और जाना तो सभी को है, लेकिन जाने के बाद भी लोग याद करते हैं कि अरे भाई फलाना बंदा या फलानी बंदी बहुत अच्छी थी, बहुत मदद करती थी, बहुत अच्छा कार्य करते थे, ये करते वो करते, वो उनको कभी भूल नहीं पाते। जब जब उनका जिक्र होता है या किसी ने उनका नाम छेड़ दिया तो सभी याद करने लगेंगे, अरे भाई बहुत समाज को कमी, मतलब उनकी रहेगी हमेशा के लिए, बहुत अच्छा काम करते थे। तो ऐसा है, इसलिए कर्म अच्छे करिएगा, कर्म के फल की चिंता मत करिएगा, बस अच्छे कर्म किए जा, अच्छे कर्म करेंगे तो मरने के बाद भी हम जीवित रहेंगे कर्मों के रूप में, ठीक है, कर्मों के रूप में याद करेंगे। ऐसे नहीं अरे वो बहुत सुंदर थी तो क्यों चली गई, अरे वो ऐसी थी तो क्यों चला गया, नहीं, बहुत अच्छे कर्म करके गए भाई, बहुत पुण्यात्मा गई, ऐसे कहेंगे, ठीक है। और आइए अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है और क्यों है? ठीक है, तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और फिर से एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का, जिसमें अभी सीजन चल रहा है अचार बनाने का, क्योंकि अभी केरी है, करौंदे है, केर है, गोंदे जिसको लसोड़े भी कहते हैं, इस सीजन में ही मिलते हैं और धीरे धीरे फिर इसका सीजन भी समाप्त हो जाएगा। केरी भी देखिए अब पकने लगी है, फिर भी अभी अचार की केरी मिल रही है, अभी तक तो जुलाई तक तो मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, ठीक है, जुलाई के स्टार्टिंग तक, फर्स्ट वीक तक, उसके बाद देखिए फिर मान लीजिए मिल भी गई तो उसके भाव बढ़ जाएंगे कच्ची केरी के, ठीक है। तो आज मैं आपको कच्ची केरी का अचार बनाना सिखा रही हूँ। कंचन भाई मंडाली वाले, आपका कहना था कि अभी अचार का सीजन चल रहा है तो अचार सिखा दीजिए ताकि हम अचार बना सकें, तो ठीक है अभी अचार ही सिखा रहे हैं, तो हर प्रकार का अचार सिखाएंगे, जिसमें आज कच्ची केरी का अचार सिखाने जा रही हूँ। आप सामग्री लिखिएगा, आशियाना के किचन में पेन और डायरी लेकर के पधारिएगा और सामग्री लिखिए। अगर देसी केरी मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, कच्ची देसी केरी, वो थोड़ी खट्टी होती है और उसके छिलके क्या है, जब हम तोतापुरी दूसरी केरी लेते हैं ना तो उसके छिलके हट जाते हैं, और ये देसी केरी होती है तो अचार आप खाओगे ना तो ये छिलके नीचे वाला भाग जो हटेगा नहीं तो अचार टेस्टी लगेगा, क्योंकि अचार में तो भाई गुठली और मेन छिलके का ही रोल होता है, कि दोनों होते हैं तभी अचार का टेस्ट आता है। तो देसी केरी ले लीजिएगा, फिर आप मसाला में लीजिएगा, नमक तो लेना ही है, राई लीजिए, राई की दाल लीजिएगा, अगर दाल अच्छी तरह ले रहे तो फिर राई नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, सौंफ ले लीजिए, फिर आप लीजिएगा चने की दाल, अब आप लीजिएगा हींग, तेल तो लेना ही है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो ये हो गए मसाले, और मेथी, मेथी दाने लेने हैं, ठीक है। तो फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, सामग्री में आप लीजिए पहले तो केरी तो लेनी ही है, फिर आप लीजिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तेल, हींग, सौंफ जिसको गुजराती में बरियाली कहते हैं, मेथी दाने लीजिएगा और चने की दाल आपको लेनी है, ठीक है, और राई की दाल। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। कच्ची केरी धुलाई करके आप उसको काट दीजिए। आजकल तो क्या है कि घर घर में केरी कट्टा नहीं है तो मार्केट में काट कुटा के भी वो केरी देते हैं बेचने वाले, तो आप कटवा के भी ला सकते हैं अगर घर में काटने की सुविधा नहीं है तो, क्योंकि अचार की केरी हमें गुठली समेत काटनी है, ठीक है, इसलिए भले कटी हुई लाइए, अगर कटी हुई लाते हैं तो घर पर ला करके उसकी धुलाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मार्केट से लाते हैं कटी हुई तो धुलाई तो की हुई नहीं होती है, और अगर घर पर ला रहे हैं तो फिर केरी की धुलाई करके पोंछ करके फिर काटिएगा केरी कट्टे से, ठीक है। तो केरी कट्टे से केरी काट ली, जो भी साइज आपको पसंद है उस साइज में, और अगर आप धुलाई कर रहे हैं, मार्केट से कटी हुई लाए हैं तो धुलाई करके आप पहले इसको सुखा दीजिए, सूती कपड़े पर डाल करके, धूप में नहीं डालना है, ठीक है, छांव में ही, पंखे में आप सुखा सकते हैं तो सुखा दीजिए, थोड़ी सूख जाए उसके बाद सारी फांकों पर आप हल्दी लगा दीजिए, थोड़े से हल्दी सभी पर एक थाली में लेकर के वो फांकों को पहले एक भगोने में एक बड़े चौड़े बर्तन में ये फांके सारी रख करके हल्दी डाल करके उसको उछाला दे करके आप अच्छी तरह हिला दीजिए ताकि सारी फाकों के हल्दी लग जाए, फिर आप सूती कपड़े पर इनको वापस डाल दीजिए, 3-4 घंटा इनको ऐसे ही सूखने दीजिए फिर से, ठीक है, एक बार तो पानी उड़ाया उसका, अब हल्दी लगा करके आपको फैलाना है, 3-4 घंटा फैलाने के बाद आप इधर तैयारी कर लीजिए मसाला की। अगर आप साबुत पसंद करते तो इसमें आप सब मसाले साबुत ले सकते हैं, सौंफ कूटने की ज़रूरत नहीं है, राई की दाल तो आपने ले ही ली है, वो तो वैसे ही दाल आती है, बारीकी आती है, फिर मेथी दाने उसको भी कूटने की ज़रूरत नहीं, चने की दाल भी ले लीजिए, ठीक है, हाँ मेथी दाने थोड़े से सेक लीजिए, बाकी कुछ भी सेकने की ज़रूरत नहीं, सरसों का तेल लेना है, अब सरसों के तेल को आप गर्म करिए, जैसे अब ये 3-4 घंटा फाके हो गई हल्दी वाली, ठीक है, अब आप एक बर्तन में ये सारे फांके ले लीजिए। अब वापिस आप ये जो मसाले तैयार किए हैं वो मसाले डाल दीजिए इसमें फांकों में। नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, हल्दी तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं फांकों के, ठीक है। और अब इसमें आप सौंफ, मेथी, राई की दाल, चने की दाल, ये सब डाल दीजिए मसाला, ठीक है। और तेल गरम करिए, तेल गरम हो जाए तो थोड़ा सा ठंडा होवे उसमें आप हींग पाउडर डालिए, ठीक है। ज़्यादा तेल गरम होगा और उसमें आप हींग पाउडर डालेंगे तो हींग जल जाएगी, इसलिए थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद अब आप थोड़ा सा तेल ये फांकों में डालिए और ये सारे फांक तेल और अचार, मतलब ये मसाला मिक्स करिए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद आप एक भले तो चीनी की बरनी लीजिए और भले आप काँच का जार ले सकते, बरनी ले सकते, जो भी आपके घर में उपलब्ध है लीजिएगा। प्लास्टिक के डिब्बों में अचार नहीं डालना है, ठीक है। भले तो चीनी लीजिए, भले आप काँच के बर्तन लीजिए, दोनों में से एक लीजिए, उसमें ये सारा डाल दीजिए। डालने के बाद अब आप ऊपर से तेल डाल दीजिए, तेल आधा ही डालना है, मतलब फांके जैसे पूरा डिब्बा भर गया आपका, पूरा डिब्बा तो खैर भरना नहीं है क्योंकि तेल भी आएगा ऊपर, इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए और थोड़ा पौन भाग रहे ऐसा आप लीजिए, तो फांके दिखे उससे आधा तेल डालिए और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए टाइट ढक्कन लगा करके। दूसरे दिन देखिएगा कि तेल कितना ऊपर आया, अगर पूरा ही ऊपर आ गया है तो अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला और फांके तेल में डूबनी चाहिए। तो ये अचार आपका साल भर, दो साल, जितने साल आप चलाना चाहो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और तेल की कमी हुई नहीं, फांके ऊपर आ गई, मसाला ऊपर है, तेल नीचे बैठा हुआ है, तो अचार तो बिगड़ना ही है। इसलिए जो भी अचार आप बनाते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि मसाला और जो भी जिसका भी आप बना रहे हैं तेल ऊपर हो, तरमा तेल हो, मसाला सब नीचे बैठा हुआ हो, ठीक है। और वैसे दो चार दिन तो कुछ होता नहीं है, वो दो चार दिन में तो हम नया नया अचार अच्छा भी लगता है तो खा भी लेते हैं, तो तेल का बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह ध्यान रखना है कि तेल मसालों के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। तो ये स्वादिष्ट अचार बन चुका है, आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके खा सकते हैं। तो आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
2: माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: तो बस करो।
1: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
4: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
6: माशाल्लाह, पांच चवन्नी का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर भी जरूर आप गौर करिएगा, और नुस्खे बहुत ही अच्छे दिए हैं। गाय का घी क्यों खाना चाहिए, क्या फ़ायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, वो सभी आपने जाना है। आज का विषय भी बहुत ही सुंदर था, जिसमें आप सभी ने भी अपनी राय व्यक्त की है। और जो अचार बनाना सिखाया है कच्ची केरी का, समय के अभाव से मैं डबल बार रिपीट नहीं कर पाई, कभी और भी सिखा दूंगी, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। साल भर का सवाल है भाई, अचार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है, क्यों है, ठीक है। तो पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगी, सुकन्या योजना बेटियों के लिए है, और वो क्यों है, कारण यह है इसका कि बालिकाओं के उज्जवल भविष्य और शिक्षा के लिए है। बाकी तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है, इतना विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सभी को भी नॉलेज है, और विस्तार में कभी बात भी कर लेंगे फिर भी अगर आप चाहोगे तो। तो हमारे श्रोता बंधु जुड़े हैं अलका जी काबरा कपासन से, सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, ठाकुर भूपत सिंह जी जुड़े हैं सिद्धपुर से, संगीता जी लावटी जुड़े हैं कपासन से। तो जवाब दिया है अलका जी काबरा, सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई झोटाना से, और संगीता जी कपासन से। आपका जवाब सही है, इसके लिए और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई झोटाना से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, तो आपके लिए ढेर सारे। आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है, कोई भी काम अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाला अगला पल मंजिल का हो। अब मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सुंदर पहेली के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: कार्यक्रम हिंसा को नो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता। लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
1: माँ, मारे तो पढ़नो है आगे और तू मारी शादी की बात कर रही। कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को केरी। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो प्लीज। मारो सपनो मत तोड़ो माँ प्लीज।
2: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी। सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे। मैं थन आगे पढ़ाऊ तो दहेज खूब देनो पड़ी और थारी दो छोटी बहन भी है वहां को भी सोचनो है मारे।
3: देख बेटा, मारी माँ भी मैंने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ। बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारों दहेज तो खूब आयो, पर टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू, थे कई चिंता करो, मैं यो सब चला ही नहीं देऊं तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यूं ही कोनी राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो, मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मारी माँ ने पूछन बताओ।
1: बेटा, बीनड़ी तो घनी अच्छी है ये, पर गूंग तो घणो ओछो काढ़े, यो भी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पॉटन कसी मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी, तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता, ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता, अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे है, इन वास्ते अरे मारी मारो केणो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी, जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो। माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बीनड़ी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ठीक है, ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले हमारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा, तू बोल, घना दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता, मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन, हॉस्पिटल तो घी न, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे, ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता, तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा, मैं थारा हूँ कई छुपाऊ, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेनी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अतरो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अतरा सामान को।
2: रीटा, कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वही सामान पे बहू रो कोई अधिकार को नहीं वे वे है।
6: सीता, मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहू का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन, मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन, है ना।

0: माँ सीतन शक्कर आवे रही है, नवा घबराए रही है, तो मैं वहीं हॉस्पिटल लेन जाओगे?
1: चुप बैठ चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो।
2: अरे मैं कई हर मानो, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबियत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा हाँ, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लू, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीनड़ी देख अपना घरे कौन आया।
4: हाँ सासू माँ आई, पावा दो।
2: खुश रहो। अरे बीनड़ी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केड़ी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगी ने की बगै छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
2: काकी सा आप सही कह रहा हो, पर बीनड़ी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है? अरे बीनड़ी की जांच कराई कि नहीं?
1: देख राधा आपरे भी टाबर व्या, एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बीनड़ी ने क्यों ले जानो दवा खाने?
2: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय गणो बदल गयो, आज कल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, डीगड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
1: तो दरपा मत राधा।
2: दरपावा की बात को नहीं काकी सा, आजकल एड़ो हुए रहे है। मैं आई बीनड़ी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रियो है बीनड़ी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
1: चलो बीनड़ी दवा खाने चला।
5: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां और फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहें, ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े, माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती, क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहे, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहे तो जरूर पढ़ाए, ताकि जितनी समझदार महिला होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी, तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, तो इसलिए जरूर पढ़ाइए।
1: बीनड़ी आज से थाने खुद को ध्यान रखनो है, डॉक्टर के अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है, जो भी सलाह देवे वनी अनुसार थारे चालनो है, एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ, ठीक है? राजू सुन, तू बीनड़ी को पूरा ध्यान रख जे।
6: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है, और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं, दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है। आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के। आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
7: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन है उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम यू नो एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। सो कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए। तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है, यू नो कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो यू नो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं। तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं। तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन है दे हैव बिकम यू नो दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजिशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में। उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इश्यू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए।
6: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूँ। घर में नियम भले कोई भी बनाए लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते है तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को समझे और सहयोग भी करें, तभी हम कह सकते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

उत्सुकता जिस घर में होती है उस घर की हालत क्या होती है, आइए गीत के माध्यम से जानेंगे।

लाबे का घर सुना सुना है, कहेगी माँ दुल्हन लाबे का घर सुना सुना है। मन में झूम कहूंगा मैं, माँ इतनी जल्दी क्या है।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता, स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज थोड़े से अंतराल के बाद हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही कार्यक्रम, आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि हम नई नई कहानियों से आप सबको रूबरू करवाएं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें जिस पर आप और हम शायद बात करते नहीं हैं, या कई बार जानबूझ करके हम बात करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती हैं और कई बार शायद उस लेवल तक हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन जीवन की एक ऐसी सच्चाई है किसी भी दिव्यांग के लिए, जिसको जितना जानने समझने का हम प्रयास करते हैं उतना ही उसमें डूबते चले जाते हैं। और यही कारण है कि हमरा ही प्रोग्राम में हम ऐसे ही समाज के, हमारे आपके बीच के लोगों के अनछुए किस्सों को, पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। और खासकर जब हमने शुरू किया था ये प्रोग्राम, तो आप सब जानते हैं कि विवाह के मामले में, शादी ब्याह के मामले में दिव्यांग साथियों को जो दिक्कतें आती हैं, उसके बाद किस प्रकार समाज का, परिवार का उनको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, यही सब तो हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सब में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने अब तक जानने समझने का प्रयास किया है, और हर एक कार्यक्रम के साथ कई सारे नए प्रश्न आते हैं, कई प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और कई प्रश्न अधूरे छूट जाते हैं। इसीलिए रेडियो मधुबन का ये प्रयास हमेशा से रहता है कि जहाँ तक शायद आप और हम नहीं सोच पा रहे हैं, वहाँ तक आप सबको ले जाने का प्रयास किया जाए, और कहीं ना कहीं समाज को उसके हाल पर छोड़ने की बजाय समाज में कुछ अपना भी हम योगदान दें, समाज में कुछ अपनी भी भूमिका का निर्वहन करें, यही सब हमको करना है और करना भी चाहिए। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आज हमरा ही कार्यक्रम, मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि विशेष है। वो विशेष इसलिए है कि आपको शुरू में ही बता देता हूँ, अब तक का केवल ये दूसरा प्रोग्राम है श्रोताओं जो मैं स्टूडियो में बैठ करके लाइव हमारे मेहमानों के साथ आमने सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना ज़्यादातर प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन माध्यम से रिकॉर्ड किया करते हैं। लेकिन आज मुझे ये अवसर मिला, अजमेर में हूँ मैं और अजमेर में ही हमारे मेहमान हैं, तो स्वागत करते हैं अर्पित चौहान जी और मीनल चौहान जी का। ये दोनों अजमेर में हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ किस तरह की परिस्थितियां रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अर्पित जी और मीनल जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू। मेरा नाम अर्पित चौहान है और यहाँ मेरे साथ मेरी वाइफ है मीनल। आज हम दोनों इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए हैं संदीप त्रिवेदी जी के कहने पे, और इसमें हम हमारा जो भी जीवन का एक्सपीरियंस रहा है, जीवन का जो भी अनुभव रहा है, जो दिक्कतें एक विकलांग व्यक्ति को आती है, उसके बारे में हम खुल के चर्चा करेंगे आपके साथ, और जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको देंगे।
1: जी बिल्कुल अर्पित भाई और मीनल जी, आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चूंकि अर्पित जी आपने शुरुआत कर दी है, तो हम चाहेंगे आप अपने हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं, आपकी एजुकेशन क्या रही, अभी आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं आपके लिए।
2: मेरा नाम कैप्टन अर्पित चौहान है, मैं भारतीय सेना में कैप्टन रैंक पर एक आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई और स्नातक की पढ़ाई अजमेर शहर से ही हुई। मैंने कक्षा 1 से लेके 12वीं तक मैंने सेंट एंस्लम स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से, मैंने साइंस मैथ्स के साथ मैंने उसको कंप्लीट किया। तत्पश्चात मैंने सन 2011 में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसके 4 साल बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फिर मैंने UPSC का कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करी, वो मेरा 7वां अटेम्प्ट था आर्मी में ज्वाइन करने का, और उसके बाद मैंने आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं भारतीय सेना की 235 इंजीनियर रेजिमेंट कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन्ड हुआ, और आज मुझे भारतीय सेना में सेवा देते देते मुझे लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय था। अब मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ मीनल भी अपने बारे में थोड़ा बताएंगे।
1: जी जी जी मीनल जी, हमारे सुनने वालों को आप भी बताएं अपने बारे में।
3: मेरा नाम मीनल है, मैं भी अजमेर से ही हूँ। मैंने भी अपना पूरा एजुकेशन अजमेर सिटी से ही किया है। मेरी स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट अजमेर से रही है। मैं इन्फेंट क्लास से 12th क्लास तक सेंट मेरीज में ही पढ़ी हूँ। फिर मैंने बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से ही किया है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स भी गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से किया है डिजिटल कम्युनिकेशन में। फ़िलहाल हमारी शादी 2020 में हुई थी, और उसके आगे मैं अभी UGC नेट की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। आगे के मेरे प्लान्स हैं कि मैं PhD की डिग्री पूरी करूँ। थैंक यू सो मच।
1: तो सुना श्रोता हूँ आपने कि हमारे आज के दोनों मेहमान काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी शिक्षा अर्जित की। अब तक आपको लग रहा होगा कि यार इस कहानी में क्या कुछ खास है। एक तो खास बात ये निकल करके आ रही है दोस्तों कि आप और हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं और हम 75वीं वर्षगांठ अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। और देखिए ऐसे में ये एक संयोग की बात है कि आज मुझे ये कार्यक्रम अनायास ही करने का अवसर मिला, और ठीक आज हमारा ये कार्यक्रम हमारे देश के आज़ाद होने से एक दिन पहले प्रसारित हो रहा है, और आप सब जब तक सुनेंगे तब तक या तो 75 साल का हमारा ये जश्न 15 अगस्त का मना चुके होंगे या फिर मना रहे होंगे। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगता है कोइंसिडेंट है ये। तो इसीलिए अर्पित जी को जय हिंद कहते हुए एक बार फिर से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम को अब आपको धीरे धीरे बताएंगे कि क्या खास बात है इस कहानी में। दरअसल अर्पित के एजुकेशन के बारे में आपने सुना और मीनल जी के बारे में भी आपने सुना। तो मीनल जो है वो लो विज़न है, लेकिन क्या कुछ रहा अब तक इनकी जर्नी। और हाँ, शादी की बात हुई तो बताऊँ, इनकी शादी होने के बाद ही कोरोना आ गया था, तो 2020 में इनकी शादी फरवरी में हुई और मार्च में हम सब लॉकडाउन में थे, तो खैर वो भी एक कहानी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें आप दोनों के साथ। चलिए जैसा कि मैंने बताया श्रोता हूँ आप सबको कि मीनल जी लो विज़न है, तो हम उन्हीं से शुरू करते हैं। मीनल जी, कैसे ये सब शुरुआत हुई और कैसे पता चला आपको या आपकी फैमिली को?
3: जी भैया, मैं आपसे और आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि मुझे दोनों आईज में कैटरैक्ट मोतियाबिंद था बाय बर्थ, और सबसे पहले ये चीज़ मेरे फादर ने ऑब्जर्व करी। मैं सिर्फ 2 या 3 महीने की थी जब मैं किसी भी एक चीज़ को बिना अपनी आंखें ब्लिंक किए कंटिन्यूसली देखती रहती थी। तो मेरे फादर के दिमाग में आया कि इसकी आईज़ में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये चीज़ बहुत पहले ही समझ ली थी कि मुझे आईज़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना समझा। उस वक्त मैं बहुत शायद 2 या 3 महीने की थी, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी दोनों आंखों में कैटरैक्ट है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो सबसे पहला ऑपरेशन मेरा हुआ जब मैं 6 महीने की थी, लेफ्ट आई की सर्जरी सबसे पहले हुई, और मेरा ऑपरेशन अमृतसर में हुआ, डॉक्टर दलजीत सिंह ने ऑपरेशन किया। क्योंकि कैटरैक्ट का ऑपरेशन दोनों आईज में अगर हो तो एक साथ नहीं होता, सो मेरा दूसरा ऑपरेशन जब मैं 1 साल की थी राइट आई में तब हुआ। बट दिक्कत ये आई कि लेफ्ट आई में तो विजन आ गया, लेकिन कुछ कारण से मेरी राइट आई में पूरा विजन न आने के कारण जो पूरा प्रेशर है अभी तक मेरी लेफ्ट आई उठाती है। तो मैंने अपनी जितनी भी स्कूलिंग है पढ़ाई है सिर्फ अपनी लेफ्ट आई के भरोसे पूरी की है। दिक्कतें मुझे ये आती है कि एक आँख में प्रॉपर विजन होने की वजह से मुझे काफ़ी हेडेक या स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था जो अभी भी है, तो उसी जुनून की वजह से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और मैं आगे भी और काफ़ी पढ़ना चाहती हूँ। इलाज तो चलता रहता है, मेरे कई सारे ऑपरेशंस भी हो रखे हैं, अब तक मेरे 7 ऑपरेशंस हो रखे हैं, और सभी ऑपरेशन अमृतसर में ही हूँ।
1: क्या बात है। तो ये श्रोताओं मीनल जी की कहानी आप सबने सुनी, आपके जहन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, मेरे भी जहन में आ रहे हैं। तो मीनल, आपको कब पता चला कि आपको कुछ है दिक्कत, फैमिली को छोड़ दीजिए, आपको कब पता चला?
3: जब हम बहुत छोटी थी तब तो इतना नहीं एहसास होता, लेकिन हाँ जब 3 या 4 साल की हुई तब उस वक्त मुझे हमेशा काला चश्मा पहनाया जाता था और एक आंख पे पट्टी रहती थी, तो मुझे बहुत इरिटेशन होता था। मुझे लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, हमेशा मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ और पूरे टाइम मुझे काला चश्मा पहन के घूमना पड़ता है। मेरे फादर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था मुझे संभालना और उन्हें अकेले ही मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी मदर मेरे भाई के साथ रहती थी जो बहुत छोटा था। तो मुझे लग तो गया था कि कुछ तो मुझे दिक्कत है और मैं कई बार रोती थी, चिल्लाती भी थी कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, इलाज नहीं करवाना। तो उस वक्त मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे बचपन में ही बताया था कि हमें इस दौर से गुजरना होगा और तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। और मुझे कई बार लालच भी देते थे कि मैं तुम अगर अपना चेकअप सही से कराओगी तो मैं तुम्हें फ्रूटी पिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा। तो शायद उन्हीं का बहुत सपोर्ट रहा है जिस वजह से मैंने ये पूरी जर्नी पूरी करी। और हाँ, उन्होंने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था, सो यस, मैं बचपन से ही अवेयर हूँ उस चीज़ को।
1: तो श्रोताओं, बार बार फादर का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा हम मीना जी के फादर के बारे में भी बात करते हैं। बताइए अपने फादर वदर के बारे में मीना जी।
3: मेरे फादर एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में, और मेरी मदर होम मेकर है।
1: किस सब्जेक्ट से हैं आपके फादर?
3: मेरे फादर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, उनका नाम है डॉक्टर फुलाराम परिहार।
1: कहना चाहिए कि आज आप जिस मुकाम पर हैं उसमें ना नजर देना आपके फादर का बहुत बड़ा
3: जी बिल्कुल
1: रोल रहा है
3: जी,
1: राइट
3: जी।
1: तो उस समय जब आप छोटी थी, जब आपको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है
3: जी जी,
1: तो परिवार में आना जाना भी लगा रहता होगा
3: जी,
1: फंक्शंस में भी जाते ही होंगे
3: जी,
1: बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनका क्या रिएक्शन, कभी कुछ थोड़ा होश संभाला 8-10 साल की उम्र में जब पता चला हो आपको, उनका क्या रहता था? कभी मदर फादर बात करते होंगे यार बच्ची को लेकर के इस तरह की बातें हो रही होंगी, कुछ ऐसा आपको कभी लगा हो?
3: हमारा काफी रूरल बैकग्राउंड है, लेकिन मेरे क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं तो वो इस चीज़ को उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिया। लेकिन जो हमारे बाकी फैमिली रिलेटिव्स हैं जो कि काफ़ी रूरल एरिया से हैं, राजस्थान के काफ़ी रूरल एरिया से हैं, बेसिकली हम पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सो उनका ये था कि एक तो मैं गर्ल चाइल्ड हूँ प्लस मुझे आई साइट में भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग एक हमेशा अफसोस जताते थे कि जैसे मैं बहुत बेचारी हूँ और मुझे हमेशा एक हेल्प की ज़रूरत चाहिए और मुझे कभी मोटिवेट नहीं किया जाता था। तो जब मेरे पेरेंट्स ने हॉस्पिटल में देखा कि मेरे जैसे तो कहीं ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको यही प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ से फिर मेरे पेरेंट्स को बहुत हिम्मत आई कि कम से कम हमारी बेटी देख तो सकती है। तो फिर उन्होंने समाज से सोसाइटी से
1: बंद कर दिया
3: कंप्लेन करना, और फिर उन्हें एक हौसला आ गया कि मेरे से भी कई वर्स्ट केसेस इस दुनिया में हैं और वो बहुत बेहतर आजकल की लाइफ में कर रहे हैं।
1: सो मैं कहते हैं ना, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, तो उस बात को आपके फादर ने जिया है राइट।
3: तो फिर उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं और किसी बात का कोई शिकायत भी।
1: तो फैमिली में कभी इस तरह की बात हुई कि आपको स्पेशल स्कूल में कहीं भेजना चाहिए एजुकेशन के लिए?
3: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी फैमिली में सारे डिसीजंस मेरे पेरेंट्स ने लिए हैं, उन्होंने इस मामले में कभी किसी की सलाह नहीं ली, उन्हें पता है मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि मैं उन्होंने मुझे हमेशा बाकी बच्चों की तरह ही समझा, तो उनके दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं किसी स्पेशल स्कूल में जाऊँ, क्योंकि मेरी आईज में प्रॉब्लम थी, ब्रेन में नहीं। सो और मैं बहुत मतलब एवरेज स्टूडेंट ही थी, लेकिन हाँ मैं कर पा रही थी तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो मेरी पढ़ाई एक नॉर्मल स्कूल से ही हुई, नॉर्मल बच्चों के साथ।
1: बात वही बात मैं करना चाह रहा था कि आपने जो बताया जिस स्कूल का नाम लिया वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है
3: जी,
1: आपकी एजुकेशन भी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में रही
3: जी,
1: तो वैसे भी इंग्लिश मीडियम में वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाता है।
3: हाँ होता था। और
1: तो फिर कैसे आपने उसको मतलब गुस्सा नहीं आया कभी?
3: प्रॉब्लम्स तो होती थी कि ये दिक्कत कि बाकी बच्चे जैसे मुझे लगता था कि जो शार्प हैं और आगे निकल जाते हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो चैलेंज जो इन्फेंट क्लास से लगाकर 12th स्टैंडर्ड तक ये रहा कि मेरा पेपर कभी टाइम पे फिनिश नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, और कई बार ऐसा होता था कोई सवाल आते हुए
1: ये चीज कभी टीचर्स ने कही आपको टीचर्स ने
3: बात कभी समझी नहीं।
1: अच्छा,
3: उन्हें लगता था कि क्योंकि मेरे को देख के कभी ऐसा लगेगा नहीं कि मैं डिसेबल्ड हूँ, उन्हें लगता था कि मैं एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह हूँ जिसको थोड़ा बहुत आईज में प्रॉब्लम है तो स्पेक्स पहनने से ठीक हो जाएगी। तो आई थिंक थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ अगेन मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया कि मुझे क्लास में जब पीछे बिठाया जाता था टीचर्स समझते नहीं थे तो मेरे फादर आके लड़ते थे टीचर्स से कि इसको देखने में प्रॉब्लम इसको आगे बिठाओ। तो उन्होंने हमेशा फाइट किया, हमेशा
1: करते रहे। ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत होता है
3: मुझे नहीं दिखता था और बच्चे भी ऐसे होते थे कि अगर उनसे जैसे आप हेल्प मांगो तो हेल्प ही नहीं करते थे। सो एक तरह से मैंने लड़ाई खुद ही लड़ी। फिर मैं घर आके कई बार अपने फादर से भी कहते थे कि मुझे नहीं दिखाई दिया या मेरे नोट्स कम्प्लीट नहीं, उस वजह से मार्क्स भी कम आते थे। कम आने का ये भी कारण था कि मैं मेहनत बहुत करती थी लेकिन पेपर ख़त्म नहीं हो पाता था। तो मुझे कई बार क्लास में ह्यूमिलेट भी किया जाता था, प्रॉब्लम नहीं समझी जाती थी। लेकिन सारे टीचर्स ऐसे नहीं थे, कुछ एक दो टीचर्स अच्छे भी थे और वो समझते भी थे लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स नहीं समझते थे। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा, ये भी कारण था कि उन्हें लगता था कि मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, चीज़ों को बहुत स्लो पिकअप करती हूँ।
1: 10th 12th में जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है बच्चों को, आपको मिला?
3: जी, मुझे CBSE ने 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया हर सब्जेक्ट के लिए 10th और 12th।
1: उसकी ज़रूरत पड़ती थी आपको?
3: बहुत ज़रूरत पड़ती थी। शायद अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता तो मेरी परसेंटेज बिल्कुल बन नहीं पाती। उसी 1 घंटे एक्स्ट्रा की वजह से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली पेपर लिख पाती थी और अच्छे मार्क्स मैंने गेन किए।
1: स्पेक्स वगैरह लगाते हैं?
3: जी, मैं स्पेक्टिकल्स लगाती
1: हूँ। अच्छा, लगाते हैं
3: जी।
1: कितने नंबर का है?
3: जी, +2.5 प्रोग्रेसिव।
1: अच्छा, अब लोग सोच रहे होंगे कि आपने इंजीनियरिंग की
3: जी,
1: तो आपके साथ ही आई साइट का प्रॉब्लम था, तो इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन वाले बंदे इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं अगर चाहें तो?
3: इंजीनियरिंग
1: आपको इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम नहीं है कभी?
3: प्रॉब्लम तो भैया अभी तक आई रही है लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो मैंने वो फेस कर लिए। एक अंदर मेरे हमेशा से वो रहा है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, कुछ करना है। क्योंकि जब मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को देखती थी कि यार काफ़ी अच्छा कर रहे, तो मुझे भी लगता था नहीं मैं भी कर सकती हूँ उनकी तरह।
1: क्या स्ट्रीम था आपका इंजीनियरिंग?
3: BTEC मैंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में।
1: ओके।
3: और फिर मैंने फर्दर मास्टर्स डिग्री भी करी है डिजिटल कम्युनिकेशन।
1: भाई स्कूल में तो थोड़ा सा दिक्कत थी टीचर्स को ये अंडरस्टैंड करने में कि आपको ये प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कैसा रवैया था आपके टीचर्स का?
3: इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैंने
1: फेस किया है
3: प्रॉब्लम, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया क्योंकि कॉलेजेस में टीचर्स इतना ध्यान देते नहीं है पहली बात तो। लेकिन हाँ, मैं ब्लेस्ड रही कि मुझे कॉलेज के एग्जाम्स में भी 1 घंटा, कभी आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला, कभी 1 घंटा, डिपेंड करता है प्रिंसिपल का क्या मन है। तो हमने प्रिंसिपल को कन्विंस किया और वो हो भी गए। तो उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्स में आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया और कुछ एग्जाम्स में उन्होंने मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया। वो भी मेरे फादर ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, उनको सर्टिफिकेट्स दिखाए, तब जाके वो कन्विंस हुए और उन्होंने मुझे टाइम दिया पेपर लिखने के लिए। अगेन मेरी मुझे बहुत हेल्प मिली, शायद नहीं मिलती तो कुछ एग्जाम्स में मेरी बैक भी आ जाती। तो हाँ, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड काफ़ी स्लो है।
1: काफ़ी मतलब चैलेंजिंग रहता है इस तरह से। अगर जो बिल्कुल दिख रही है जिसकी डिसेबिलिटी, उसको तो लोग फिर भी समझ जाते हैं एक बार को, लेकिन आपकी सिचुएशन में जबकि आपको देख करके कोई कह नहीं सकता, और ऐसे में लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। फादर कैसे समझाते थे आपके लोगों?
3: मेरे फादर शॉर्ट टेम्पर्ड है काफ़ी, तो वो ज़्यादा नहीं समझाते थे। अगर कोई नहीं समझता था तो वो सीधा एक्शन लेते थे,
1: दूसरा तरीका था।
3: हाँ, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते किसी को समझाने में। वो सीधा कहते मैं हायर अथॉरिटी के पास जाऊँगा अगर मेरी बेटी को नहीं मिला उसका हक।
1: अच्छा,
3: सो वो मेरे लिए हमेशा उन्होंने फाइट किया और वो अभी भी करते हैं।
1: थ्रू आउट आपकी लाइफ में किसी और आपके जैसे बंदे से मिलने का मौका मिला कहीं?
3: अभी तक तो मैं नहीं मिली क्योंकि पहली बात तो स्कूल और कॉलेज में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, सो इतना इंटरेक्शन
1: जाना भी नहीं हुआ।
3: नहीं, ऐसा
1: हॉस्पिटल्स वगैरह में किसी से इंटरेक्शन हुआ?
3: हॉस्पिटल्स में सिर्फ पेशेंट्स होते थे जो इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि खुद अपनी प्रॉब्लम को लेकर इतना मायूस होते थे।
1: तो इस सब में एजुकेशन तो हो गई, पढ़ते पढ़ते फिर बारी आती है शादी की
3: जी।
1: और कैप्टन साहब को अभी तक अपने बोलने का मौका नहीं दिया है, तो कैप्टन साहब सीधा गन चलाएंगे फिर। लेकिन आएंगे हम अर्पित जी के पास भी। तो मीनल जी, शादी का भी निर्णय हुआ ही होगा घर में कि भाई अब उम्र हो गई है आपकी मैरिज की, क्या सोचा फैमिली ने उस समय? ये क्वेश्चन दोबारा आया होगा सामने।
3: जी जरूर, बहुत बार आया। मेरे पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते थे कि इस प्रॉब्लम के साथ कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और अगर करता है तो मुझे क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर मैं किसी से शादी करूं तो मेरे पेरेंट्स को हमेशा प्रेशराइज किया जाए कि तुम्हारी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है, फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट किया। सो वो उस हिसाब से कुछ डिमांड या कुछ करे वो मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं था। तो मैंने सोच लिया था इनकेस अगर मुझे ऐसा इंसान नहीं मिलता सो आई विल बी हैप्पीली अनमैरिड, एंड क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं रुकने वाली तो थी
1: कुछ
3: तो मुझे किसी के सहारे की भी ठीक है जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट सबको चाहिए होता था। फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैं खुद के लिए बना ली। तो मेरे पेरेंट्स को मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट की चिंता नहीं थी, उनको ये थी कि क्योंकि पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, तो उनको था कि हमेशा इमोशनली और मेंटली मेरे साथ मेरा जीवन साथी रहे। सो वो ढूंढने में उनको बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मेरी आईसाइट के बारे में बताया, पूरा नहीं बताया, क्योंकि किसी को अगर मैं अच्छी लगी उसके बाद ही, जैसे किसी लड़के ने मुझे पसंद किया तो तब उन्होंने बताना, उसके पसंद के बाद बताना मुनासिब समझा कि ये दिक्कत है। तो
1: उसके बाद क्या रिएक्शन रहता था उन लोगों का?
3: वो लोग डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहते थे, वो लोग कहते थे कि कुंडली में कुछ दिक्कत है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हमेशा ऐसा रहा कि जिस लड़के ने भी मुझे पसंद किया वो लड़का मुझे कभी पसंद नहीं आया, तो मुझे कभी अफसोस भी नहीं हुआ। तो मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ, मैं सोचती थी
1: और जो पसंद आया वो साथ में।
3: मुझे लगता वो मेरे लायक ही नहीं है।
1: हे भगवान, मतलब देखिए कैसे कैसे इत्तफाक होते हैं लाइफ में। मतलब उन्होंने मना, यानी वो कर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं जा रहे थे मना ही कर दे भाई तू तो।
3: हाँ, क्योंकि उसने मुझे पसंद किया। फिर इस दिक्कत की वजह से शायद उसने कुछ नहीं कहा, उसके पेरेंट्स ने
1: कॉन्फिडेंस उनका लूज हो रहा था, तो फिर मतलब ही नहीं बनता था, फिर बाद में दिक्कतें आती।
3: तो मैं सोचा बाद में दिक्कत आने से अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ फिर। तो मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो न कभी लोग पसंद आए न कभी लड़का, मुझे लगा कि ठीक है मैं इन सब चीजों से बच गई और मेरी किस्मत अच्छी रही।
1: तो अरविंद भाई, आपने भी बीटेक किया?
4: हाँ जी।
1: कभी मिले थे मीनल जी से?
2: हाँ, मैं मीनल को मैं
1: बीटेक के टाइम से ही जानते हो?
2: बीटेक के टाइम से तो नहीं बोलूंगा मैं मीनल को 11th क्लास से ही जानता हूँ।
1: तब से ही जानते थे आप?
2: मैं तभी से जानता हूँ, पर मेरे अच्छे दोस्त थे शादी का।
1: 11th में कैसे जाने लगे आप? तो बॉयज स्कूल में पढ़ते थे।
2: मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था, बट मीनल के फादर पहले IIT से AIEEE को कोचिंग देते थे ट्राइंग अकेडमी के अंदर।
1: ओके।
2: तो मैं वहाँ पे हम जाते थे पढ़ने के लिए
1: जी,
2: और मीनल भी वहाँ पे आती थी
1: जी,
2: तो मैं उनको जानता तो था, लेकिन हमारी एक दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी, वो समय के साथ साथ बढ़ी, और शादी का डिसीजन तो हमने बहुत आगे चल कर लिया।
1: एक बात बताएं अर्पित भाई
2: जी,
1: जब आपने 11th से आप इनको जानते थे तो मीनल जी से बातचीत भी होती होगी, इनको देखा भी होगा, आपको कभी फील हुआ कि इनको कुछ प्रॉब्लम है आईसाइट में, या पहली बार में इन्होंने बता दिया था कि भाई मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है?
2: नहीं, पहले मुझे कभी फील नहीं हुआ, मतलब
1: कि मुझे कभी लगा
2: एहसास नहीं हुआ कि इनको आईसाइट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम थी कि जब तक आप डीपली किसी को ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो आप इसके बारे में जान नहीं पाओगे। मुझे कभी पहली नज़र में देखकर इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जब हमने शादी करने का डिसीजन लिया, जब हम एक दूसरे के को अच्छे से जानने लगे, तब उस समय ही मीनल ने मेरे को पहले ही
1: अच्छा, इन्होंने बताया आपको आगे होकर?
2: इन्होंने मुझे आगे बढ़कर ही बताया कि मुझे प्रॉब्लम है।
1: क्या बात।
2: और मैंने मेरे को उसको देख के कुछ लगा नहीं, कि मेरे को लगा कि ठीक है ये बाय बर्थ है, तो इसमें कुछ इंडिविजुअल की गलती नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये किस्मत की बात है, ये अगर आज इनको है कल मुझे भी हो सकती है, और मैंने इसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। इसमें कुछ मुझे ऐसा कुछ संकोच नहीं हुआ एक्सेप्ट करने के लिए मुझे
1: आपकी फैमिली को।
2: और हाँ, मैंने मेरी शादी जब हुई, जब हमारी शादी की बात चली, तब हमने पहले ही मैंने मेरे माता पिता, मेरे भाई को, मेरे घर में सभी को मैंने बता दिया था
1: शादी से पहले ही
2: बता दिया था कि मीनल को आईसाइट में प्रॉब्लम है, उसको लो विजन की प्रॉब्लम है उसको, और हमने इसको एक जीवन की रियलिटी मानते हुए इसको एक्सेप्ट करके हम आगे चले। तो यही था हमारे बारे में, इसको मैंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया, कोई संकोच नहीं किया, बिकॉज ये किसी को भी हो सकता है, इसमें संकोच करने वाली कोई बात मुझे नजर नहीं आती है।
1: तो जब आपने पहली बार उनको बताया तो हैप्पीली उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया या कहीं कुछ सवाल थे उनके भी मन में?
2: उनके सवाल तो नहीं थे, जब उन्होंने मीनल को देखा, उनका चरित्र देखा, उनका व्यवहार देखा, तो उसके बाद ये सब चीजें बहुत कम प्राथमिक
1: सेकेंडरी हो गई।
2: सेकेंडरी चीजें होती है, एक इंसान की क्या खूबियां हैं, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण कैसा है जीवन के लिए, वो किस तरह से उसका आचरण कैसा है, ये चीज मेरे और मेरे घर वालों के हिसाब से जीवन में ज्यादा प्राथमिकता रखती है बजाय एक डिसेबिलिटी के। तो यही था, हमने कभी इस चीज को हमारे बीच में आने नहीं दिया और मैंने इसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। और मेरी शादी के बाद भी हमको दिक्कत आई, मीनल का ऑपरेशन हुआ एक, जो उसकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई थी बचपन में, उस टाइम स्टील स्ट्रक्चर्स होते थे, स्ट्रक्चर्स मतलब टाके होते थे, जो बाद में इसको विजन में प्रॉब्लम आने लगी। तब इसका शादी के बाद भी ऑपरेशन हुआ तो मेरे माता पिता भी इसके साथ थे, मैं भी इसके साथ में था। तो आगे चल के हमने चैलेंजेस को, हमने जो भी हमारे सामने समस्या आई थी उसका हमने मिलकर सामना किया। तो यही था।
1: तो कभी लगता है आपको डे टू डे लाइफ में कि इस वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या कहीं कुछ मतलब गड़बड़ है, ऐसा कुछ लगता है कभी आपको इनको देख?
2: मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे को थोड़ा मीनल को समझने में थोड़ा सा समय लगा कि इसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है डे टू डे फंक्शनिंग में। जैसे कुछ लोग रात को जग के पढ़ाई करते हैं पर ये नहीं कर पाती, 10:30-11 बजे के बाद जब आंखों पे स्ट्रेस पड़ना चालू होता है। तो मुझे धीरे धीरे समय लगा इसको समझने में कि क्या दिक्कत है, क्या डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारी समस्या है पर ठीक है, उसको मैंने समझा धीरे धीरे कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये समझा कि मीनल को अगर आगे एक्सेप्ट करना है तो इसको आंखों पे स्ट्रेस लेकर नहीं, इसको इजी गोइंग और कंसिस्टेंट मेहनत रहकर ही आगे कर सकती है और तभी से कर रही है ये। इसने शादी के बाद भी इसने अपनी थीसिस सबमिट करी एमटेक की, अभी ये यूजीसी लैंड में जेआरएफ की तैयारी भी कर रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रही है। तो मेरा यही कहना था कि आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़े, उसी हिसाब से मेहनत करनी है, धीरे चलना है पर लंबी दूरी तक चलना है ये रह के, और तभी हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे हम जो इसको करना है जीवन में हम कर सकते हैं। तो मैंने इसकी समस्याओं को समझा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, क्योंकि मैं इसका जीवन साथी हूँ तो समाज कई तरह के प्रश्न आपके सामने खड़े करता है, तो आपको उसको फेस करने की आप में सहन शक्ति होनी चाहिए, आपको लोगों को समझाने की सहन शक्ति होनी चाहिए। वो भी मैंने फेस किया शादी के बाद। और मैं एक तजुर्बा और कहना चाहूंगा,
1: बिल्कुल बताइए।
2: मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उन्हीं को समझा सकता हूँ जिनमें समझने की काबिलियत होती है, उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है जो इस चीज़।
1: आपकी बातों में एक सच्चाई नजर आ रही है कि
2: जी
1: कई बार आपको भी फेस करना पड़ा, बताएं।
2: हाँ, मेरे को भी फेस करना पड़ा। आर्मी में कुछ लोग समझ पाते थे तो मैंने उनको जनरली समझाया, कुछ लोग मैंने भी उन्हीं को समझाया जिसमें समझने की शक्ति थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि लोग समझेंगे पर लोग नहीं समझते, तो मैं थोड़ा सा उन्हीं लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिनमें समझने की गहराई होती है, जिनमें उस चीज को समझने की शक्ति होती है। तो ये तो चैलेंजेस है हमारे सामने, पर मैं यही कहूँगा कि ये चीजें जो है इंसान के चैलेंजेस आते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि चलो ये तो बाय बर्थ है, पर इस दुनिया में ऐसे ढेरों ऐसे बहुत अनेक उदाहरण है जब लोगों ने अपनी शादी के बाद डिसेबिलिटी करी है। मैं भारतीय फौज का आपको उदाहरण दूंगा, आप गूगल पर पढ़ सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पैर गवा दिए,
1: बिल्कुल
2: जिन्होंने अपनी आंखें गवा दी, जो परमानेंटली डिसेबल हो गए, व्हील चेयर पर आ गए, क्या उनका भी लोगों ने साथ देना छोड़ दिया? उनके जीवन साथी उनके साथ डटकर खड़े रहे, उनके माता पिता उनके। तो ये सब चीजें सब्जेक्टिव है, ये चीजें आपको रोक नहीं सकती। मैं यही कहूँगा कि आप हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं, और यही है कि हमारे विवाह का मूल मंत्र भी यही है। डिसेबिलिटी तो इंसान को जीवन के किसी भी फेज में आ सकती है, चाहे वो बाय बर्थ है जैसे मीनल का एग्जांपल है, चाहे लोग कोई एक्सीडेंट में लेते हैं, कुछ लोग अपने जीवन के आखिरी पलों में डिसेबल हो जाते हैं, कुछ लोग बीच में हो जाते हैं, कुछ लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती है। तो जीवन का तो हम नहीं कह सकते, पर जो जीवन हमको मिला है उसको हमें खुशी खुशी साथ में जीना चाहिए।
1: तो जब आपको बताया मीनल ने तो आपने कुछ सवाल नहीं किया अपनी तरफ से कि बस आपने ठीक है, हाँ भाई आपने बताया मैंने सुन लिया?
2: नहीं, मैंने मीनल से सवाल पूछे कि ये क्या है, मैंने मेरे लिए भी ये चीज नहीं की, तो मैंने पूछा, डेप्थ में जाने की कोशिश की कि ये इसकी समस्या क्या है, मीनल की समस्या क्या है, उसको क्या किस तरह की किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है अपने डे टू डे लाइफ में, मैंने उसको समझा और फिर मैंने उसको समझने की कोशिश की गहराई में, क्योंकि मेरे लिए नई चीज नहीं थी पर सामने वाले के नजरिए से भी मैंने देखने का प्रयास किया और धीरे धीरे मैंने समझा कि हाँ मीनल के लिए ये चीज अलग है थोड़ी, मैं उसको एक आम इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, उसके लिए हर चीज के पैरामीटर्स अलग है, चाहे वो मेहनत करने के हो, चाहे वो अपने डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए हो, चाहे बहुत सी चीजें हो जहाँ मैंने उसकी उसकी मैंने उसको मैंने अपने आप स्वयं को उसकी पोजीशन में रखकर देखा और फिर समझा कि उसके क्या दिक्कतें आती है, कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं ये कर पाता। उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे, मुझे समय लगा पर हाँ मैंने इसका कोशिश मैंने जारी रखी इसको समझने की, तो बाद में चीजें चल के काफी सुलझ गई, कोई आपको कोई समस्या नहीं आई एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में। तो यही कुछ था, धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी इसलिए हम एक दूसरे को समझते गए, पर हाँ मैंने इसको मीनल को समझने का कोशिश हमेशा से की।
1: फैमिली भी समझ गई अब तो?
2: हाँ जी फैमिली भी समझ गई, थोड़ा सा टाइम लगा पर हाँ दे एक्सेप्टेड कि हाँ मीनल को प्रॉब्लम है पर ठीक है, पर मैं यही कहूँगा कि ये चीजें बहुत छोटी हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए।
1: अच्छा इनके पेरेंट्स वगैरह ने भी कुछ बात की थी आपसे इस बारे में?
2: जी हाँ, जब हमारी शादी की पहली बार बात हुई थी, जब मीनल के माता पिता हमारे घर पे आए थे, तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मीनल को आईज में प्रॉब्लम है और हमने पूरी खुलकर बात की थी, इसको छुपाया नहीं हमने कि क्या समस्या है, हमने खुल के बताया इसको कि इसको बचपन से बाय बर्थ प्रॉब्लम है, ताकि चीजें आगे चल के भी ट्रांसपेरेंट रहे, कोई बीच में मन मुटाव नहीं आए लोगों के लिए, इसलिए ये सब चीजें हमने पहले ही क्लियर कर ली थी। इसी यही एक अच्छा कारण था कि हमारी शादी के बाद भी, शादी से पहले भी कोई दिक्कतें नहीं आई, जब शादी हुई भी तब दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि हमको पहले से इसकी समस्या का पता था, तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया, सबको पहले से अवेयर थे और मेरे पेरेंट्स ने भी इसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। तो मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स भी, उनकी भी समझ को मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस चीज़ को समझा, हालांकि वो भी थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, पर अगर व्यक्ति समझना चाहे किसी की समस्या तो वो जरूर समझ सकता है, अगर वो सोच ले कि नहीं मैं नहीं समझूंगा तो उसके आगे फिर कुछ नहीं हो सकता।
1: कभी इस तरह की भी बात तो नहीं है कि और कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी?
2: नहीं, कभी कुछ रिश्तेदार बोलते थे पर मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मीनल से ही प्यार करता हूँ और मैं मीनल को ही चाहता हूँ और मीनल ही मेरे को समझ सकती है, तो ये सब चीज तो लालच की तरह है, लालच तो आज है कल नहीं है, पर इंसान अगर आपके साथ है तो आप जीवन में और आगे उन्नति करेंगे, आप साथ मिलके चलेंगे तो जीवन की आधी कठिनाइयां आपसे आप साथ मिलके हिम्मत से उसको निभा सकते हैं, तो ये सब चीजें तो मैं ये कहूँगा कि एक लालच ही, एक टेम्पटेशन सी है कि आपको और अच्छा मिल जाएगा, पर इंसान एक अच्छा होना चाहिए, इंसान का चरित्र मेरे लिए
1: ज्यादा
2: इम्पोर्टेंट है बजाय एक्सटर्नल ब्यूटी या आंखें। तो यही था मीनल के बारे में।
1: क्या तो श्रोताओं, आज सुन रहे हैं आप हमरा ही कार्यक्रम और उसमें अर्पित चौहान जी और मीनल जी से बातचीत हो रही है। और देखिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि परिस्थितियां अलग अलग तरह की होती हैं, वही आप सबको भी यहां पर जानने समझने को मिल रहा होगा कि अगर कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा यार कि बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, लेकिन डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी है, आज भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, आज भी डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, आज भी वही सब बातें हैं, पढ़ने में खासकर जो प्रिंट डिसेबिलिटी जो हो सकती है वो है ही है अपनी जगह पर, और डे टू डे लाइफ में भी जो चैलेंजेस हैं वो है ही हैं। अगर एक कम्प्लीटली अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड होता है तो उसको पता रहता है कि भाई मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिसको ये है कि कुछ है भी कुछ नहीं भी, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, कार्यक्रम का नाम है हमरा ही, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो मीनल जी, आपने बताया कि कोई पसंद आया नहीं जी, ये भाई साहब पसंद आए कि नहीं?
3: जी पसंद तो आए, लेकिन पहले मैं देखना चाहती थी कि मेरी प्रॉब्लम जानने के बाद इनका क्या रिएक्शन रहता है, उसके बाद ही मैं कुछ
1: डिसीजन,
3: सिर्फ एक आउट ऑफ ब्यूटी से मैं कैसे डिसीजन ले पाती, वो मुझे कुछ दिन अट्रैक्ट करती, कुछ दिन अच्छी लगती, लेकिन फिर बाद में ये चीजें वाकई में काम नहीं आती। जो चीज काम आती है कि वो इंसान आपकी सच्चाई जानने के बाद आपके साथ कैसे बिहेव करेगा, वो आपको लॉन्ग लाइफ के लिए समझेगा या नहीं, वो हमेशा आपका साथ देगा या नहीं। तो मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि अर्पित का क्या रिएक्शन रहता है, और क्योंकि इनका हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव और अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन आया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कई समय तक संतुष्टि नहीं रही कि कोई इतना इजीली कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। सो मैं तब भी काफ़ी महीनों तक डाउटफुल थी क्योंकि मुझे कभी इतना इजी रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो मुझे कभी कई बार हमको कोई चीज़ मिल जाती है तो हमें उस पर भी हमेशा डाउट होता है, यकीन नहीं होता कि ये वाकई में इतना ईजिली कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, इनके पास बहुत बेटर ऑप्शंस थे, काफ़ी सारी लेडी ऑफिसर्स भी होती है जो भी इनके पास मतलब जो इनके बैचमेट्स थी। सो आई थिंक ही हैड न्यूमरस ऑप्शंस, तो इन्होंने मुझे क्यों चूज कर रहे हैं, जिसमें ऐसी बात नहीं है मैं किसी को खुद से कम समझती हूँ या खुद को मैं डीमोरलाइज कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाले की नज़र में मेरी क्या रिस्पेक्ट है, मेरी प्रॉब्लम को वो समझे नहीं समझे। सो मैं थोड़ा रुकना चाहती थी, मैं इतना एक्साइटेड नहीं हुई।
1: कितने समय तक चली आप लोगों की बातचीत?
3: आई थिंक कुछ शायद इनिशियली तो 3-4 महीने।
1: अच्छा, 3-4।
3: हाँ,
1: तो फिर मतलब कब जाकर के यकीन हुआ कि नहीं यार ये बंदा तो वाकई बहुत अच्छा है, ये तो सही तरीके से सोचता है, ये शादी के बाद यकीन हुआ या पहले ही हो गया था?
3: नहीं, पहले हो गया था, तभी तो शादी करी मैंने
1: ये भी ठीक है
3: वरना मैं काफी अपने बहुत स्टबर्न हूँ इस मामले को लेकर, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं सफर नहीं करना चाहती थी, और मुझे चाहिए था कि नहीं, अगर मुझे परफेक्टली कोई हर इस प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट करे तो ही मैं हाँ करूँ, क्योंकि उसके बाद के जो रिपरकशंस हो सकते हैं मैं नहीं चाहती थी मेरे पेरेंट्स फेस करें किसी भी टाइप की, कोई मेरी वजह से कोई इंसल्ट या कुछ भी, जो कि ऐसा हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ। मेरे इन लॉज हैं वो हमेशा इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और अभी भी समझते हैं, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया, वो मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो ये लेकिन इन चीज़ों को मुझे यकीन, खुद को यकीन दिलाने में काफ़ी वक्त लगा, कम से कम 5-6 महीने लग गए जब मुझे यकीन हुआ कि नहीं हाँ वाकई अर्पित समझदार इंसान है और मुझे समझते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो इन्होंने एफर्ट्स भी किए, वो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इंसान आपसे शादी करना चाहता है वो हर सिचुएशन में आपको पाने के एफर्ट्स
1: करता है और एक्सेप्ट करता है हर तरीके से।
3: जी, इन्होंने मुझे हर तरीके से कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया।
1: और जब आप बाकी लोगों को देखते हैं फैमिली मेंबर्स को, तो सेम थिंग या कभी कभी कुछ?
3: नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, स्पेशली हम बहुत छोटी और प्यारी सी फैमिली है हमारी, मम्मी, अर्पित के पेरेंट्स, अर्पित के बड़े भैया, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में इस चीज़ को लेके कुछ डाउट है, क्योंकि ये इस चीज़ का मुझे यकीन तब हो गया, तो यकीन तो पहले से था लेकिन और ज़्यादा यकीन मेरा पक्का हो गया जब मैरिज के बाद भी मेरा एक ऑपरेशन हुआ, वो भी काफ़ी मेजर सर्जरी थी जो अजमेर के JLN हॉस्पिटल में हुई। उस टाइम मेरे जो आँखों में जो स्टिचेस थे वो लूज हो गए थे, तो जो लूज स्टिचेस थे डॉक्टर को उनको काटने पड़े, वो काफ़ी पेनफुल सर्जरी थी जो पिछले साल फरवरी में हुई।
1: अच्छा।
3: और उस वक्त मैं अपने ससुराल में थी और मेरी मदर इन लॉ और फैमिली के सभी मेंबर्स ने मेरा बहुत ध्यान रखा, तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैं ब्लेस्ड हूँ।
1: ये बात तो माननी पड़ेगी, देखिए फादर और मदर वगैरह सब आपको बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, और उसके बाद यहाँ भी जो फैमिली मिली आपको
3: जी,
1: वो लोग भी बहुत ही फूली, मतलब आपको ऐसे
3: अंडरस्टैंडिंग है काफी, उन्होंने हमेशा समझा। और आप यकीन ही करेंगे, मैं थ्रू आउट अपने ऑपरेशन के टाइम पे मैं अपने ससुराल में ही रही, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई।
1: अच्छा, एजुकेशन में तो आपने बताया दिक्कतें आती हैं
3: जी,
1: डे टू डे लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं?
3: डे टू डे लाइफ में एक तो जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी शादी पार्टी में, तो मैं बहुत समय नहीं बिता पाती वहाँ पे, जैसे हम कई बार जैसे किसी चीज़ को देख, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है 2-2, 3-3 घंटे तक, मुझे उसके सामने देखना है, तो मैं लगातार नहीं देख पाती क्योंकि मेरी आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। मुझे एक टाइम के बाद में सोने की आदत है, जैसे आर्मी की पार्टी स्पेशली जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक चलती है, कई बार नाइट्स तक भी चलती है, तो मैंने उन लोगों को भी बताया कि मेरे साथ दिक्कत है। यही है कि मेरा भी मन करता है कि मैं और एंजॉय करूं, लेकिन मेरी आईज कई बार अलाउ नहीं कर पाती। सो हाँ,
1: मूवी वगैरह में
3: मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ पहली बार। अगर कोई बहुत ही अच्छी मूवी हो तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है, आजकल तो मूवीज भी 2 या 2 घंटे से ज़्यादा की होती नहीं, और मैं बहुत कम देखने जाती हूँ, और अगर नॉर्मल सी मूवी हो तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स हो या बहुत एक्शन सीन्स हो तो मैं नहीं देख पाती, मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि उससे मुझे स्ट्रेस पड़ता है।
1: अच्छा एक बात बताइए मैंने, कि आपकी फैमिली आपके फादर के अलावा कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत मोटिवेट किया हो आपको पूरी लाइफ में?
3: फैमिली और फादर के अलावा तो मेरे हस्बैंड ही हैं। और तो किसी को
1: टीचर्स में या फ्रेंड सर्कल में, मेरा मतलब होता आपने कहा फ्रेंड्स तो आपके बहुत कम होते हैं।
3: नहीं, फ्रेंड्स में से तो कोई है नहीं,
1: ऐसा नहीं है।
3: जी नहीं, एक मेरी बचपन की दोस्त है जो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं उससे बात करती हूँ।
1: अच्छा,
3: तो उसने मोटिवेट भी किया, लेकिन हाँ वो मेरे साथ खड़ी रही और मेरी प्रॉब्लम को समझा।
1: समझा
3: जी। और इसके अलावा टीचर्स में से जैसे कुछ टीचर्स जो तो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, लेकिन वो मुझे बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट
1: करते थे।
3: तो एज अ टीचर्स में तो कहो तो, क्योंकि मेरे फादर खुद एक टीचर है, तो मैं तो यही कहूंगी कि उनसे बेहतर तो किसी ने समझा नहीं।
1: भाई टीचर्स का भी रोल उन्होंने कर लिया, फादर का तो कर ही लिया।
3: जी सर।
1: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो श्रोता हूँ, मीनल जी और अर्पित जी से बातचीत जारी है और लगभग अब हम प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। अर्पित भाई थोड़ा सा अब चूँकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आप आर्मी से हैं, तो बताएं ज़रा कुछ आर्मी के अपनी यादें अपनी बातें और कैसी लाइफ है वहाँ की, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
2: मैं बताना चाहूँगा कि आर्मी में मैंने अभी तक 3 जगह सर्व किया है। मेरी पहली पोस्टिंग लद्दाख में थी सन 2018 में, वहाँ पे मैंने लगभग 8 से 9 महीने बिताए थे। हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया में थे जहाँ नेटवर्क नहीं आता है, जहाँ बिजली नहीं होती है, वहाँ सब जनरेटर से चलता है और काफ़ी ठंड होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और चूँकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो धीरे धीरे हमको एहसास नहीं होता, पर हमारी बॉडी की मेमोरी वीक होने लगती है। जो भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हाई एल्टीट्यूड या सियाचिन जैसे एरिया में रहता है, मैं सियाचिन में तो नहीं था, मैं साइकिल से हाई एल्टीट्यूड पर था, मैं 14,500 फीट की ऊँचाई पर था, तो उस जगह के अलग चैलेंजेस हैं। खासकर आपकी मेमोरी वीक पड़ने लगती है, आपको पता नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है और फिर उसको रिकवर होने में मुझे काफ़ी समय लगा, 1 साल लग गया। उसके बाद मैं भटिंडा में मैं 2.5 साल रहा। भटिंडा के बाद मैं अभी गैंगटॉक सिक्किम में पोस्टेड हूँ। तो आर्मी का एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि आप भारत के लगभग हर एक प्रांत हर एक रीजन के लोगों से आप जानते हैं, उनकी संस्कृति को समझते हैं, उनके साथ रहते हैं। मैंने सरदारों खालसों के साथ भी सर्व किया है, मैंने पहाड़ियों के साथ सर्व किया है, मैंने गुरखाओं के साथ सर्व किया है, मैंने तंबी यानी जिनको हम फौज में साउथ इंडियंस लोग बोलते हैं, हमने उनके साथ भी सर्व किया है। और देर आर लॉट मोर, मतलब अलग अलग तरीके के कल्चर, मतलब आप
1: पूरा भारत होता है,
2: पूरा भारत आपके साथ में होता है, और एक अलग ही एक बहुत ही अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप अलग अलग जगहों पे
1: सर्व। किस तरह का रहता है
2: मोरल आर्मी में? मैं ये कहूँगा कि एक आर्मी एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। डिसिप्लिन बहुत गहराई तक है आर्मी के अंदर, आर्मी के रूट्स तक अंदर है। और जो मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक जो देश में सबसे जो एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो मैं सही मायने में कहूँ वो एक आर्मी है।
1: क्या बात,
2: क्योंकि हर एक पर्व पे चाहे जो भी ऑफिसर होता है वो वही धर्म फॉलो करता है, वही धर्म की पूजा करता है यूनिट के अंदर जो उसके जवानों का होता है। आप देखेंगे, आपने कहीं देखा भी होगा, कहीं न्यूज़ में सुना होगा कि आर्मी ऑफिसर सरदार है, लेकिन अगर उसके बंदे क्रिश्चियन है तो वो मंदिर में वो चर्च में जाके पूजा करेगा। अगर ऑफिसर मुस्लिम है लेकिन उसके जवान हिंदू है तो वो आरती भी करेगा, पाठ भी करेगा, सब कुछ करेगा। अगर जवान मुस्लिम से है तो उसके साथ नमाज भी पढ़ेगा। और एक मैं ये कहूँगा कि एक फौज एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा भाईचारे की है, और हमारे फौज में कभी भी मंदिर गुरुद्वारा नहीं होता, वहाँ पे हमेशा सर्वधर्म स्थल होता है जहाँ सभी तरह के लोग मिल बांट के पूजा करते हैं। तो ये एक मुझे संस्था की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पर वाकई में कौमी एकता है जिसको भारत की ज़रूरत है। आज के इस टाइम पर जो भी हालात हैं इस देश के, एक फौज एक इसके लिए बहुत बड़ा एक बेमिसाल उदाहरण है। साथ में कहूँगा कि एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में होती है। और तीसरी बात कहूँगा कि काफ़ी फिजिकली फिट चीज़ है जो मैंने फौज में आके सीखी कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने जीवन में फिजिकल फिटनेस को एक प्रायोरिटी देना, ये सब चीज़ें हैं फौज की जो मैं उसको बहुत ही सराहना करता हूँ उसकी। और ये कहूँगा कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपको काफ़ी सीखने को मिलता है और आप नहीं नहीं करते हुए पूरा भारत आप घूम लेते हैं, आप नहीं चाहते हुए भी। मैंने साउथ में भी गया हूँ, मैं बैंगलोर में रहा हूँ, पुणे में रहा हूँ, मुंबई में रहा हूँ, चेन्नई में ट्रेनिंग की है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, अभी नॉर्थ ईस्ट देखने का मौका मिल रहा है, तो ऐसा मौका शायद बहुत ही कम लोगों को मिलता होगा।
1: क्या बात, तो ये डोकलाम कहीं आप जब थे तभी तो नहीं हुआ?
2: नहीं, डोकलाम मैं उस टाइम मैं लद्दाख में था, मैं लेकिन अभी जहाँ पर हूँ मेरे वहाँ से बहुत

0: आर्मी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं क्योंकि जिनको इंजरीज हो जाती है
1: तो आर्मी कैसा ट्रीटमेंट करती
0: है? आर्मी सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, क्योंकि जो भी डिसेबल्ड होता है सर्विस के अंदर उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, पर उसके लिए सर्विस करना थोड़ा सा दिक्कत आता है बिकॉज
1: बिहेवियरल चेंज होता है क्या पर्सनल्स का?
0: नहीं, वो मैं कहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत सपोर्ट करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस के रूप में उसको डिसेबिलिटी पेंशन देना, उसको स्पेशल जगह पोस्टिंग करवाना, उसकी ऐसे उसको हाई रिस्क एरिया में नहीं भेजना,
1: जॉब आइडेंटिफाई उसके लायक करना,
0: तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट तो है ही है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जो मैन पावर सपोर्ट है, जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं आर्मी में, मैं जैसे मैंने बताया कि बहुत ही भाईचारा है, लोग समझते हैं आपको बिकॉज वो खुद भी आपकी जैसी समस्याओं को फेस कर ही ऊपर बढ़े हैं, वो भी लोअर रैंक से हायर रैंक पर गए हैं। तो मैंने जो ये देखा है मेरे 4.5 साल के टेन्योर में कि लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे सोल्जर्स हैं जो किसी कारणवश इंजर्ड हो गए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सपोर्ट किया, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनके जो स्टाफ ने उनको सपोर्ट किया, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं भारतीय सेना की या इंडियन आर्म फोर्सेज के जनरल में कहना चाहता हूँ।
1: क्या बहुत खूब। तो श्रोता हूँ, अब कार्यक्रम बिल्कुल अब हम समाप्त करने की ओर हैं और उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम तो ज़रूर पसंद आएगा ही, चूँकि आज हम आज़ादी की पूर्व संध्या पर, हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज का ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं आपके लिए। तो अब कार्यक्रम के अंत में कुछ रैपिड फायर हो जाए आप दोनों के साथ।
2: बिल्कुल
1: पूछे, जवाब दे दोगे कैप्टन साहब?
2: बिल्कुल,
1: फेल तो नहीं हो जाओगे?
2: नहीं
1: होंगे। अच्छा चलिए, तो बताइए मिनल की फेवरेट बुक।
0: मिनल की फेवरेट बुक है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक बहुत ही अच्छी किताब है, मैं यही रिकमेंड करूंगा, सबसे सस्ती और उसमें इतना नॉलेज है कि आपके जीवन को आपको लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए, आपको लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है डेल कार्नेगी की, एक बहुत ही यूएस के ऑथर है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
1: क्या बात, एक बार वापस नाम बता दीजिए।
0: मैं फिर से बताऊंगा, डेल कार्नेगी की किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 99 से 100 रुपए की है, अमेजन पे उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, बहुत ही अच्छी किताब है, मीनल की फेवरेट बुक है और मेरी भी फेवरेट बुक है।
1: सही कहा मीनल
3: जी, बिल्कुल।
1: चलिए मीनल की फेवरेट डिश बता दीजिए।
0: मीनल की फेवरेट डिश चूंकि राजस्थान की है तो दाल बाटी चूरमा है। तो
1: फास्ट फूड वगैरह नहीं है?
0: फास्ट
1: फूड तो बच्चों को फास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता है।
0: फास्ट फूड में मीनल को चाउमीन और नूडल्स पसंद है जो कि मुझे पसंद नहीं है, मैं ज्यादा, मेरे को इंडियन डिश ज्यादा अच्छी लगती है।
1: अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों में ज्यादा डिसिप्लिन कौन है?
0: ज्यादा डिसिप्लिन तो मैं ही हूँ।
1: अगर कभी फॉरेन जाना हो
0: हाँ,
1: तो मीनल आपको कहाँ जाने के लिए कहेगी?
0: पेरिस।
1: सारे राज मालूम है मतलब। ठीक है, तो मीनल की फेवरेट मूवी बता दीजिए।
0: मीनल की फेवरेट मूवी
1: कहीं तो आउट करना पड़ेगा ना आप तो कैप्टन साहब।
0: मीनल की फेवरेट मूवी तो मीनल ही
1: बताइए जी।
3: जी मुझे लक्ष्य मूवी बहुत पसंद है।
1: सुन लिया, आज देखो आपका भी नॉलेज बढ़ा दिया हमने।
0: ये बात तो मैं कहते
1: हैं। हाँ जी, अब मीनल जी आपकी बारी है, बताइए अर्पित की पसंदीदा सिटी।
3: अजमेर।
0: अजमेर को कोई भूल नहीं सकता। अजमेर
3: मेरी और अर्पित की आई थिंक इस वर्ल्ड में सबसे फेवरेट जगह अजमेर ही है, हम कहीं पे भी चले जाए बट अजमेर हमेशा हमारे दिल के करीब है। अजमेर एक सिटी नहीं है हमारे लिए, इट्स एन इमोशन।
1: क्या बात है, वाह गुड। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कार्यक्रम भी अजमेर में रिकॉर्ड हो रहा है। और स्पोर्ट्स?
3: स्पोर्ट्स में अर्पित का फेवरेट स्पोर्ट साइकिलिंग ऑफ कोर्स एंड स्विमिंग।
1: सही कह रहे हैं
0: आप, बिल्कुल सही।
1: मैं बताऊं श्रोता हूँ, ये साइकिलिंग भाई साहब जो है वो आप और हम तो मिनटों करते हैं, ये कई किलोमीटर तक साइकिलिंग करते हैं, कुछ बताना जरा कितनी साइकिलिंग की है आपने?
0: मैंने एक BRM कंसेप्ट होता है साइकिलिंग के अंदर, तो उसमें आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस साइकिलिंग होती है, तो मैंने उसमें 200 किलोमीटर की होती है, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, तो ये चारों रेस मैंने अलग अलग समय पे 2 महीने के अंदर मैंने 2 बार कर रखी है, तो 600 किलोमीटर मैंने जो हाईएस्ट है वो मैंने 2 बार कर रखा है, तो ये मेरा अभी तक रिकॉर्ड है, अभी और भी आगे करना है, अब नेक्स्ट टारगेट

0: हजार किलोमीटर का है।
1: क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा बताइए मिनर जी, चूंकि अर्पित तो आर्मी में है, किससे इंस्पायर्ड है ये सबसे ज्यादा?
2: अर्पित किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है? अर्पित जी, अर्पित ने SSB के टाइम पे कर्नल मनीमोहन नेहरू है जिनसे गाइडेंस ली थी, और अभी तक अर्पित के वही सबसे बड़े
1: इंस्पिरेशन। वैसे मेरा फ्रीडम फाइटर्स में पूछने का था,
2: फ्रीडम फाइटर्स में महाराणा प्रताप।
0: मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को इतिहास पढ़ने का शौक है, हालांकि मैं बीटेक से हूं, पर इंटरेस्ट मेरा हमेशा हिस्ट्री की तरफ रहा था। थोड़ा कैजुअलिटी हो गए थे 12th के बाद कि जाना कहीं और था, चले गए और गए।
1: जाना था चीन, पहुंच गए जापान।
0: लेकिन मैं कहूंगा कि जितने भी मैंने इतिहास पढ़ा है उसमें जो सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी है वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप की। आप कभी पढ़िए उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। ऐसा कोई राजा या कोई लीडर, कोई नेता चाणक्य के बाद मुझे नहीं लगा जिसने भारत के लिए इतना किया हो और जिसका जीवन अपने आप में एक उदाहरण हो। आप, मैं बस शॉर्ट में कहूँगा, जो जिन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है वो महाराणा प्रताप ही है, क्योंकि जीवन की अंतिम सांस तक जिसने संघर्ष करा हो और जो कभी झुका नहीं हो वो महाराणा प्रताप है।
1: कितने वर्षन हो गए भाई? चलिए तो अर्पित कहाँ जाना चाहेंगे फॉरेन में?
2: अर्पित पेरिस ही जाना चाहेंगे अगले साल।
1: सेम है, ओहो, ये भी प्लान्ड है।
2: अगले साल इनकी एक रेस है।
1: अच्छा, आप पूरी ले जाएंगे मतलब?
2: जी, खर्चा बहुत हो जाएगा इसके। अकेले ही जाना प्रेफर करेंगे फिलहाल।
1: हो सकता है इस कार्यक्रम के बाद ले जाने के बारे में सोचे।
2: आई होप सो।
1: देखो भाई, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली है।
2: जी
1: चलिए लास्ट में, फेवरेट वेपन।
2: फेवरेट वेपन
1: अर्पित का?
2: फेवरेट वेपन तो क्या होगा? AK-47 ही होगा। हर आर्मी पर्सनल का यही फेवरेट वेपन।
1: चलिए तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको बड़ा मजा आया होगा और आप सबको हम आजादी की यादों में छोड़े जाते हैं इस कार्यक्रम के साथ में। और चलते चलते मीनल जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को?
2: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन हो जो अपनी लाइफ में कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहा हो, जो जिसको कुछ डिसेबिलिटी हो, ऑलवेज बी काइंड टू देम, नेवर मेक फन ऑफ देम, अंडरस्टैंड देम, हेल्प देम, मोटिवेट देम, नेवर डिस्करेज देम। थैंक यू।
1: क्या बात है अरविंद भाई, आप भी चलते चलते हमारे सुनने वालों को।
0: मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में है, उसके विचारों में है। हर इंसान अपने आप में स्पेशल होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डिसेबल हो। तो हर एक इंसान की खूबी को समझिए। हर एक इंसान के अंदर एक नया व्यक्ति है, एक नई कामना है, एक नई उद्देश्य है, एक नई एनर्जी है। तो चाहे वो डिसेबल हो या नहीं हो, मैं मीनल को डिसेबल नहीं मानता हूँ, मैं उसको एक इक्वल इंसान की तरह मानता हूँ। वही मैं कहना चाहूँगा कि डिसेबल को आप डिसेबिलिटी की तरीके से नहीं देखें, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। आप उस एक इंसान को समझिए, उसके अंदर एक बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप उनसे सीखना चाहेंगे। तो मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि एक डिसेबल एक सिर्फ एक शरीर के अंग से है पर दिमाग से नहीं है। हर एक इंसान अपने आप में स्पेशल है, उसकी अपनी खूबियाँ हैं, उसमें ऐसी खूबियाँ हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हर एक इंसान से सीखिए, चाहे वो डिसेबल हो या नहीं हो। हर एक इंसान के अंदर एक बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जिनसे आपको सीखने को मिल सकता है।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं, आपको लग रहा होगा अर्पित जी की आवाज़ में एनर्जी, एंथुसियाज्म और आप सबके लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन भी होगी होगी उनकी बातों से, आप सबको लग रहा होगा। तो चूंकि अब बहुत सारी बातें हो गई, आर्मी की बातें हो गई, फैमिली की बातें हो गई, डिसेबिलिटी पर भी बातें हो गई, कार्यक्रम समाप्त होने का समय भी हो गया है। तो अब अनुमति दीजिए संदीप त्रिवेदी को, आज इस कार्यक्रम में आपको जो भी कुछ अच्छा लगा हो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा 94-14-15-14-15 पर। आप ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। और 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, चाहे आज़ादी हो, चाहे गणतंत्रता दिवस हो, चाहे राखी हो, चाहे कुछ भी हो, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। और सुनने के साथ साथ सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए तो मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर बर्वे उर्फ ज्ञानी विशेष मुलाकात में आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक विशेष अतिथि आए हैं। वैसे तो विशेष मुलाकात में ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही पर्सनैलिटीज आती है जिनके जिंदगी से हम कुछ सीख लेते हैं। आज ऐसे ही एक पर्सनैलिटी से आपके साथ मुलाकात करने वाले हैं, और वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो आपकी जान पहचान की है, क्योंकि कुछ साल पहले वो एक कार्यक्रम करते थे रेडियो मधुबन पे, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। चलिए, तहे दिल से हम डॉक्टर सिंह का स्वागत करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि डॉक्टर सिंह MBBS और MD दोनों है। MBBS उन्होंने 1966 में किया, MD कलकत्ता से 1971 में किया, और MBBS उन्होंने पटना में 1966 में किया। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस भी की, उनका नर्सिंग होम था, 35 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो शांतिवन में सेवा के लिए आते हैं। एवर हेल्दी हॉस्पिटल में वो कंसल्टेशन देते हैं और साथ साथ अपना अनुभव जो होता है साझा करते हैं हमारे साथ। तो चलिए, फिर से एक बार हम डॉक्टर सिंह का तहे दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, वैसे तो स्वास्थ्य हर कोई चाहता है, अपनी जिंदगी में स्वस्थ होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्वस्थ होना कभी कभी हमारे हाथ में रहता भी नहीं है। छोटी मोटी बीमारी तो आती ही रहती है, लेकिन कभी कभी बड़ी बीमारी आती है जिसकी जानकारी हमें फिल्मों में भी मिलती है। बड़ी बीमारी अगर कहे तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बहुत भयंकर होती है, अगर किसी को हो गया तो उसका मनोबल खत्म हो जाता है। और उसमें भी ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हमने अभी तक तो फिल्मों में देखा है। यहाँ हमारे डॉक्टर सिंह साहब को कैंसर हुआ, वो भी ब्लड कैंसर हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की, और ये बहुत बड़ी चीज है। और इसलिए हमने सोचा कि उनके साथ हम रूबरू करें और उनका अनुभव जो है वो आपके साथ साझा करें। तो सिंह साहब, हमने जो सुना कि आपको ब्लड कैंसर हुआ था, वो कैसे हुआ, उस समय आप कहाँ थे, उसके बारे में जरा बताइए।
1: ब्लड कैंसर कैसे हुआ ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका कॉज पता नहीं रहता है। कैंसर की बीमारी का जिस दिन कॉज पता लग जाएगा कि क्यों कैसे होता है, तो बीमारी का निदान निकल जाएगा। केवल ये गेस किया जाता है कि टुबैको खाने से होगा, सिगरेट पीने से होगा, शराब पीने से होगा, ऐसे बैड हैबिट से होगा। ये जितना भी लक्षण है ये बीमारी को बढ़ने का मौका देता है, लेकिन हुआ कैसे ये कहना मुश्किल चीज है।
0: अच्छा, ओके।
1: कैंसर कैसे होता है ये नहीं पता है किसी को,
0: तो उसके लिए क्या परहेज रखनी है ये पता नहीं चलता।
1: हाँ, इसके लिए क्या परहेज रखनी है, मैं अपने ऊपर एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने जो करीब करीब 5-6 साल तक लगातार 7 साल तक यहाँ पर हर संडे को रविवार के दिन मेरा प्रोग्राम चलता था 1 घंटे का, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ,
0: बिल्कुल।
1: उसमें मैं लोगों को बताता था कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, सुबह से लेकर के आपकी दिनचर्या कैसी हो, कैसे आपका हेल्थ रहेगा, कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसमें क्या क्या छोटे नुस्खे हैं, उसको लेकर के दवा कम खा करके कम से कम में कैसे हम फिट रह सकते। लेकिन ऐसी बीमारियां जो है वो केवल जो ऐसा कहना कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, ये हाथ में नहीं। हाँ, हाथ में कहाँ पर है, जब हो गया ना, होने के बाद में आपका विल पावर क्या है,
0: अच्छा,
1: वो डिपेंड करता है, वही रिकवरी में काम करता है। विल पावर क्या है, और जो हम राज जो मेडिटेशन जो करते हैं उनको 100% ये विल पावर है कि हम इसे रिकवर करेंगे।
0: मैं अभी ये प्रश्न थोड़ा बदलता हूँ, कि ये ब्लड कैंसर आपको डिटेक्ट हुआ, समझ में आया कि आपको ब्लड कैंसर है, वो आप उस समय कहाँ?
1: मैं बता रहा हूँ, मैं US में था उस समय, पहले पहले मैं US में था। मैं यहाँ से मई में गया था, मई जून जुलाई अगस्त में मैं 10 अगस्त को इंडिया लौटा। उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई बीमारी है, क्योंकि 100% मैं फिट था। यहाँ तक कि US में मैं माउंट व्यू में रहता था, वहाँ पर पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने हर संडे को मैं जाता था, और अपनी टीम में सबसे आगे में रहता था। तो जब मैं यहाँ पर आया इंडिया में, उस समय तक भी मेरा लीडिंग रोल था वहाँ पे, इसलिए कोई हमको ये थी नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद में इंडिया में जब आया मैं, तो एक पीछे गर्दन पर एक छोटा सा मस्सा जैसे लंप जैसा एक ग्रोथ आधे इंच का निकला.
2: अच्छा.
1: तो ग्रोथ निकला तो था तो थोड़ा पहले से ही, लेकिन जब थोड़ा डेवलप करना शुरू किया बड़ा हुआ तो मैंने एक सर्जन से कंसल्ट किया. सर्जन ने कहा कि भाई तो बहुत मामूली चीज है, इसको 10 मिनट में काट करके निकाल देंगे.
2: ओके.
1: आप आ जाओ मेरे इसमें हॉस्पिटल में. मैं चला गया. पर्ची डॉक्टर थे. जब उन्होंने पालपेट किया, पालपेट करने का मतलब कि दबा करके देखना.
2: ओके ओके.
1: पालपेट करते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है कि जो कोई ग्रोथ है अगर हार्ड है तो कैंसर का शक होता है.
2: ओके.
1: अगर सॉफ्ट है दब जाता है तो कैंसर नहीं हो सकता.
2: तो हाथ से ही टेस्ट पता चलता
1: है. हाथ से टच करके. हाथ करके टच किया तो उनको कुछ थोड़ा सा शंका हुआ. तो उन्होंने कहा कि अंकल इसको ऐसा करते हैं कि इसका हम एफएनएससी करते हैं, बायोप्सी करके देख लेते हैं.
2: ओके.
1: मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है आप करो. तो वहीं पर किया गया. एफएनएससी भी हुआ, बायोप्सी हुआ. एफएनएससी में तो नहीं पकड़ाया.
2: अच्छा.
1: लेकिन बायोप्सी में पकड़ा गया.
2: ओ.
1: कि ब्लड कैंसर है, फॉलिकुलर लिम्फोमा है. तो ये अब फॉलिकुलर लिम्फोमा किस स्टेज पर है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ब्लड कैंसर है ना, कोई टिश्यू का ग्रोथ नहीं है, कोई ग्लैंड में ग्रोथ नहीं है, न प्रोस्टेट में है, चाहे मेमोरी ग्लैंड में होता है या कहीं भी होता है, तो उसको काट कर सर्जरी से निकाल देते हैं या फिर रेडिएशन देते हैं पार्टिकुलर एक प्लेस पर हो. लेकिन ये तो ब्लड कैंसर है, ब्लड में है.
2: तो ब्लड कैंसर में
1: मरे ना रेडिएशन दे सकते हैं ना काट कर निकाल सकते हैं. इसका इलाज तो जब होगा तो कीमो से ही हो सकता है. तो कीमो कौन सा स्टेज पर दिया जाए, कौन से स्टेज पर है, तो उसका एडवांस एक टेस्ट जो होता है उसके लिए टीएमएच में भेजा गया बॉम्बे.
2: अच्छा. ये टीएमएच क्या होता है?
1: टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट, जो कैंसर का नाम ही है इंडिया का.
2: ओके ओके.
1: टीएमएच में भेजा गया. तो वहां से जो रिपोर्ट आया वो चौंकाने वाला था कि साहब आपका ये थर्ड प्लस स्टेज में है.
2: ओहो.
1: मैंने एडवांस स्टेज में.
2: अच्छा.
1: तो कीमो देना मस्त था. तो उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि आपको कीमो दिया जाएगा. तो कीमो दिया जाएगा तो अब डिसीजन लेने में उन्होंने देखा मेरा ये डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया तो कहा कि साहब 82 के तब हो गए हैं.
2: ओहो.
1: और 80 के बाद हम लोग थोड़ा सा बहुत सोच समझ कर देते हैं, जल्दी देते नहीं.
2: तो डॉक्टर भी डर गए.
1: डॉक्टर डर गए. जो वहाँ के ऑन्को फिजिशियन, जो टॉप फिजिशियन जो है ऑन्को फिजिशियन है अहमदाबाद के, उनसे मैं करा रहा था. उन्होंने कहा कि ना इसमें थोड़ा सा डर है क्योंकि हेमरेज हो सकता है कहीं से भी. जब कीमो होगा तो प्लेटलेट्स काउंट डाउन होंगे.
2: अच्छा.
1: डब्ल्यूबीसी काउंट डाउन होगा. और डाउन होने की वजह से मतलब आपका इम्यूनिटी वाला जो सहने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी. कहीं भी ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर होकर के ब्लीडिंग हो सकता है. तो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा फिर.
2: अच्छा.
1: मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे डेट ऑफ बर्थ से एज मत देखिए, मैं अपने को 60 इयर्स नहीं समझता हूँ.
2: अरे वाह.
1: आप 80 प्लस समझते
2: हैं. क्या बात है, क्या बात है.
1: मैं अभी 60 ही अपने को समझता हूँ. मुझे है वो क्षमता. आप यू गो फॉर दैट. मैं ग्रीन सिग्नल आपको दे रहा हूँ.
2: वैसे तो आपने जैसे बताया कि आप माउंट व्यू में अमेरिका में थे और उस समय पहाड़ी पे चढ़ते थे और पहाड़ी में चढ़ते समय सबसे आगे थे, तो उसे पता चलता है कि आपका मनोबल जो है, एक्टिवनेस जो है, फिटनेस, वो 80 साल की उम्र में भी बहुत अच्छी है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा हमारे दोस्तों को संदेश भी देना चाहता हूँ, कि जिस समय आपको पता चला कि ये ब्लड कैंसर आपको हुआ और वो भी थर्ड स्टेज पे, एडवांस स्टेज पे है, उस समय आपकी रिएक्शन क्या थी?
1: मेरा रिएक्शन 100% पॉजिटिव था कि मैं इसे रिकवर करूंगा. नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है.
2: ये कैसे होता है,
1: कैसे हुआ? क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में जो हम लोग सीखे हैं कि बाबा का हाथ अगर सर पर है, एक बल एक भरोसा है उन पर, अगर भरोसा है, पूरा विश्वास है कि अगर उनका हाथ है तो हमको कुछ नहीं हो सकता है, हमारा जो थेरापी होगा वो 100% सक्सेसफुल होगा.
2: तो ये मनोबल आपके पास, ये जो सिर्फ राजयोग मेडिटेशन करने वाले तो बहुत है, राजयोग करने वाले भी बहुत है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये मनोबल सबका एक जैसा नहीं होता. आप कहेंगे कि मनोबल बढ़ाओ तो मेडिटेशन के जरिए तो बिल्कुल बढ़ता ही है, लेकिन उसके लिए और कुछ युक्ति है या बचपन से आप बचपन से स्वभाव ऐसा है?
1: मैं बताता हूँ कि मेरा ये नेचर है कि मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ.
2: अच्छा.
1: उसमें किसी का भी कोई अपोजिशन करे, कुछ करे, उसमें मैं नहीं जाता. क्योंकि जिस समय मैंने अपना क्लिनिक बंद किया, नर्सिंग होम बंद किया, मैं गोपालगंज में टॉप प्रैक्टिशनर था.
2: अच्छा.
1: ओवर बिजी रहने वाला, 7 बजे सुबह से ही पेशेंट की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी और फिर शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक हम बिजी रहते थे कंप्लीटली।
2: अच्छा,
1: लेकिन एक बार जो डिसाइड कर लिया बाद में, जब एक बार शांतिवन आया था, ये 2001 की बात है, आया था यहाँ पर 2001 में, और ये जो आप हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है, मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो होता है, माइंड बॉडी मेडिसिन,
2: अच्छा,
1: उसका एक सेशन मैंने अटेंड किया, पूरा सेशन अटेंड किया, उसके बाद मैं लाइफ मेंबर बन गया यहाँ का अपने मतलब मेडिकल विंग का। और उसके बाद से धीरे धीरे मेरा ये संकल्प होना शुरू हुआ कि मैं प्रैक्टिस किस लिए कर रहा हूँ।
2: अच्छा,
1: जहाँ सेवा की बात है तो सेवा हम दूसरे जगह दे सकते, यहाँ अभी तो पैसे के लिए कर रहे हैं। हमारे दो लड़के हैं, दोनों लड़के अपने पोजीशन पर, हाई पोजीशन पर हैं, दोनों अपने, उनको पैसे की जरूरत है नहीं।
2: और ऐसे, एक बेटा भी कैंसर स्पेशलिस्ट,
1: हाँ बड़ा बेटा कैंसर स्पेशलिस्ट है और छोटा वाला यूएस में, तो मुझे पैसे की जो पैसा अगर हम गार्जियन होकर के देते हैं तो लेंगे ही, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं था। मेरे पास था सफिशियंट ये कि अगर मैं, मुझे पॉकेट मनी की कमी नहीं होगी ये सोच करके, पॉकेट मनी मेरी मैसेज भी थी, मैसेज इनफैक्ट इस राजयोग मेडिटेशन में और इस संस्था में लाने का मेन श्रेय मेरी मैसेज को है।
2: अच्छा, ओके।
1: वो

0: पहले से थी इसमें ब्रह्मा कुमारीज में, मुझे नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारीज क्या होता है, क्या इतना बिजी प्रैक्टिशनर था वो, धीरे धीरे वो जितना भी यहाँ का लिटरेचर वगैरह था उसको जो अच्छा कोई लाइन होता था उसको लाइन करके मेरे टेबल पर रख देती थी, अच्छा थोड़ा पढ़िए आप,
1: ओके ओके।
0: धीरे धीरे मैं इधर इधर ही हुआ। बाद में वहाँ की जो बहन जो थी अंगूर बहन जो है गोपालगंज की, उन्होंने मेरे घर आकर के मेरा कोर्स कराया।
1: अच्छा, बहुत अच्छा।
0: 7 दिन का फाउंडेशन कोर्स मेरे घर पर ही कराया, क्योंकि इतना प्रैक्टिस में बिजी प्रैक्टिशनर था कि मैं समय निकालना मुश्किल था।
1: तो ये आपका स्वभाव जो है पहले से चैलेंज लेने का था ही, लेकिन राजयोग में उसे सपोर्ट मिला और उसको बढ़ावा भी मिल गया।
0: और उसके पहले मैं खुद ही MBBS करने के बाद मेरा पहला था कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस करूं, मुझे फौज में जाना है।
1: अच्छा, ओके।
0: तो 6 साल तक मैं फौज में भी रहा।
1: फौज में भी रहे,
0: 71 वाले वार में था मैं।
1: हाँ,
0: तो ये अपना कहीं भी कहीं से डरने वाली बात वाली नहीं होती थी। 71 वाले वार में मैं रहा था।
1: अच्छा, उसका भी एक्सपीरियंस लिया।
0: हाँ, तो अपना ये था कि जो सोच रहे हैं वो सही है, एक बार जो डिसीजन ले लिया है, और डिसीजन लेने में पूछना है अपने युगल से, तो युगल तो पहले ही से तैयार रहती थी, चाहती ही थी कि छोड़ करके, वो भी बार बार करती थी कि भाई किस लिए कर रहे हैं आप, तो आप जो हैं वो, तो मैंने छोड़ा। उस समय जो यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को आश्चर्य हुआ, कहा कि टॉप में जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर है वो मेंटल केस हो गया है क्या है?
1: अच्छा,
0: छोड़कर चला गया।
1: ओके ओके।
0: अपना क्लिनिक और बेच वेच करके चला गया, यहाँ से हट गया। तो ये मेरा स्वभाव था।
1: ओके, तो ये स्वभाव आपको काम में आया।
0: हाँ, ये काम में आया है।
1: और जैसे आपका पता चला कि ये थर्ड स्टेज में ब्लड कैंसर है, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये केमोथेरेपी हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या हो गया?
0: तो फिर उन्होंने हुआ डिसीजन हुआ, मैंने कहा कि आप फर्स्ट कीमो दो ना मुझे, फर्स्ट कीमो दे दे। तो उन्होंने 6 कीमो डिसाइड किया।
1: अच्छा।
0: और 1 कीमो का 2 पार्ट किया, क्योंकि ओल्ड एज होने की वजह से। एक फर्स्ट डे वाला 6 घंटे 6.5 घंटे का होता है, और दूसरा होता है 2.5-3 घंटे का होता है।
1: एक्चुअली ये कीमो होता क्या है?
0: कीमो है जो कीमो नाम ही दिया गया है,
1: क्या करते
0: इंजेक्शन है।
1: अच्छा,
0: ड्रिप से बोतल से चढ़ाया जाता है,
1: सलाइन टाइप,
0: लेकिन एकदम बहुत स्लो ड्रिप हल्का करके, कभी भी रिएक्ट कर सकता है। कीमो जो है, समझिए कि इस तरह से ब्लड में जो कैंसर है उस सेल को मारना है।
1: हो,
0: तो पॉइजनस चीज टाइप का है, इतना मैंने पावरफुल है, तो वो बॉडी में जाएगा तो किसी चीज को तोड़ सकता है, कुछ भी।
1: अच्छा,
0: कर सकता है।
1: ओके, ओके।
0: इसलिए कीमो होता है। कीमो से जनरली इसीलिए बाल उल झड़ना शुरू हो जाता है, हर जगह के बॉडी के जहां जहां का भी बाल है सब गिरना शुरू हो जाता है। लोग दुबले पतले हो जाते हैं, सब चीज है, कुछ सहा नहीं जाता है लोगों से, खाना छूट जाएगा, कमजोरी हो जाएगी,
1: टेस्ट भी नहीं आएगा।
0: लेकिन मेरे साथ, मैं एक दिन भी, मेरा 6 कीमो हुआ, 6 दिन 12 मैंने 12 कीमो हुआ, 12।
1: और एक एक कीमो 4-4 घंटे का था।
0: पहला कीमो जो फर्स्ट कीमो होता है वो 6-6.5 घंटे का,
1: 6-6.5 घंटे आपको लेटना है
0: एक
1: और आपके पास सलाइन टाइप ड्रिप।
0: हाँ, ड्रिप उसमें कंटिन्यूस चल रहा है। ये मतलब एक बोतल जो है 500 ml जो है फ्लूइड, वो करीब करीब आपको 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा में चढ़ता है।
1: अच्छा,
0: एक एक बंद करके, तो उसको देखते रहना है, क्योंकि कॉशस रहते हैं लोग डॉक्टर लोग, कब रिएक्शन हुआ क्या। और रिएक्शन को काटने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है।
1: ओके, ओके।
0: तो फर्स्ट डे जनरली लोग कॉशस रहते हैं कि पता नहीं कहीं हेमरेज हो जाए। मेरे बच्चे भी थे, US से भी लड़का आ गया था, यहाँ के जो डॉक्टर, जो कैंसर का ही डॉक्टर, वो भी था। लोग रात में थे कि रात में कुछ हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो वो लोग बहुत चिंतित थे। मैंने कहा कि तुम आराम से सो, मुझे कुछ नहीं होगा,
1: अच्छा
0: मैं सब चीज़ सह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी रात में जो US वाला लड़का था वो साथ में सोया था आकर के मेरे पास में, कि कोई जरूरत हो कोई बात हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, आराम से वो भी सोया मैं भी सोया, बस केवल।
1: अच्छा, आपको नींद आ गई?
0: हाँ, नींद आ गई, सो गया मैं।
1: वहाँ कीमो चल रही थी, आपको नींद आ गई?
0: नहीं, घर पर आने के बाद।
1: अच्छा, घर पे आने के बाद।
0: रात में घर पर आने, रात में वो लोग ICU में रखने का ही किए हुए थे। मैंने कहा कि मुझे आप घर में जाने दो आराम से, सबको टेंशन में डालने की क्या जरूरत है। अगर कोई बात होगी तो हम भाग कर चले आएंगे, हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल है, भाग कर चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आया गया, लोग कॉशस थे कि कुछ हो सकता है, कि कहीं मेलना हो जाए, इपिस्टेक्सिस हो जाए, हेमरेज हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, ब्लड का वोमिटिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कहीं से खून आ सकता है। लेकिन वो सब हुआ नहीं,
1: कुछ नहीं हुआ।
0: हाँ, मैंने
1: वीकनेस आया, लेकिन
0: नहीं, हिकअप हुआ, हिचकी जिसको कहते हैं।
1: अच्छा, हिचकी
0: है। 4 घंटे तक हिचकी हुआ था मुझे शुरू में, तो उसके लिए दवा दिया गया ही करके, तो धीरे धीरे कुछ कम हुआ। हिकअप जो है बहुत बेचैनी करने वाला होता है, तो हिकअप हुआ था। और वर्टिगो तो होता ही था, चक्कर आना, खड़ा हुए तो लगे गिर जाए ऐसा होने।
1: ओके,
0: तो बाथरूम वाथरूम जाना अगर है तो बच्चे को साथ लेकर जाते थे मैं। लेकिन मेरा ये था, और जितना दिन भी हमारा कीमो हुआ, मैंने एक दिन भी मैंने मेडिटेशन नहीं ड्रॉप किया।
1: ओहो,
0: 3:30 बजे सुबह जो मैं उठता हूँ, तो 3:30 बजे सुबह मैं उठा हूँ, और उठने के बाद मेडिटेशन करने के लिए अगर बैठ करके कर सकता हूँ तो मैंने बैठ कर किया है।
1: अच्छा,
0: और जिस दिन नहीं बैठ कर सकते हैं तो सोए हुए किए, लेट करके।
1: एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, कि मेडिटेशन मेडिटेशन तो बहुत बार हमने सुना है, हमारे श्रोताओं ने भी सुना है मेडिटेशन होता है, कोई राजयोग बोलता है, कोई अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, और ये जो राजयोग मेडिटेशन आपने किया और सुबह उठ के 3:30 बजे उठ के करते थे, लेकिन उस समय मेडिटेशन करते समय आप क्या करते थे, एग्जैक्टली होता क्या है मेडिटेशन?
0: मेडिटेशन में क्या है, जो हमको ज्ञान दिया जाता है उस फाउंडेशन कोर्स जो 7 दिन का होता है, इसमें ये बताया जाता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो।
1: ओके,
0: पहला चीज, और तुम उस परम पिता परमात्मा की संतान हो जो इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, और गीता ज्ञान सुना रहे हैं, अपना श्रीमत दे रहे हैं, उसी श्रीमत पर चलना है। तो और दूसरे चीज परमात्मा बताते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं तुमको किसी मंदिर में नहीं मिलूंगा, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ परम लोक धाम, वहां तुमको आना पड़ेगा मेरे पास।
1: ये तो ठीक है, ये तो ज्ञान की बातें हो गई।
0: हाँ।
1: लेकिन जब आप मेडिटेशन करते थे 3:30 बजे उठ के, तो मेडिटेशन में क्या करते थे?
0: बस मेडिटेशन में हमको अपने को, देखिए कहा जाता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, आत्मा तो शरीर से निकलेगी नहीं, निकली तो फिर वापस नहीं आएगी, तो ये मन बुद्धि को ले करके हम परमात्मा के पास जाते हैं।
1: तो क्या विचार क्या करते थे, जैसे विचार, कि एक तो विचार आपके पास आया है कि कैंसर आपको हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है, कीमो हो गई है, शरीर स्वस्थता
0: उस समय
1: भी।
0: उस समय कोई विचार नहीं है कि हमको कैंसर हुआ है, हमको कीमो चला है, ये सब के कोई विचार नहीं,
1: कोई विचार नहीं
0: जी नहीं।
1: लेकिन आप पूरे डिटैच हो सकते थे।
0: डिटैच होना है हमको, डिटैच होकर के हमको परमात्मा के पास पहुंचना है परम लोग।
1: तो ये डिटैच कैसे हो गए आप, ये बताइए।
0: डिटैच तो शुरू से प्रैक्टिस से होता है ना, काफी लंबा प्रैक्टिस होता है। मान लीजिए 2001 से एक से मैं इसमें था, और उसके बाद में 10 साल तक समय लगता ही है जनरली, धीरे धीरे धीरे धीरे डेवलप करने में। और जब वो सीख लेते हैं कि कैसे डिटैच हुआ जाता है, मन बुद्धि को कैसे लेकर के हम परम लोक धाम में बाबा के पास जाएंगे, और जो हैं जैसे हैं जहां पर हैं उनसे उनसे मिलते हैं, और तब उनकी जो किरणें जो हम लेते हैं सकाश उनसे लेते हैं, सारे गुणों को जो सारे गुण हैं शक्तियां हैं उसको हम लेते हैं, सातों गुण।
1: तो उस समय आपके मन में जो संकल्प आता था, डिटैच तो हो गए, डिटैच हो गए, डिटैच होने के बाद गया, तो ये संकल्प आता था, वो संकल्प 2-3 शब्दों में हमें बताइए कि क्या संकल्प आप करते थे और कितने देर तक करते थे?
0: संकल्प में हम कभी भी ये नहीं करते थे कि हमारा जो कैंसर ठीक कर दो बाबा, ऐसा कर दो, वैसे नहीं, संकल्प नहीं करते हैं।
1: बाबा को कुछ नहीं कहते,
0: नहीं, संकल्प नहीं करते हैं हम, बस अपने में विल पावर डेवलप करते हैं, शक्तियां मांगते हैं।
1: अच्छा,
0: कि हमें शक्तियां दो, जो 7 गुण हैं, सातों गुणों में शांति है, शक्ति है, मैं जो भी गुण है, सातों गुण जो, उन गुणों को परमात्मा से हम धारण करते हैं।
1: अच्छा,
0: कि परमात्मा से सारी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है, हम इसको धारण कर रहे हैं, हम शांति स्वरूपा बन रहे हैं, हम आत्मा का स्वधर्म शांति है, हम शांति में जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: शांतचित आत्मा बन रहे हैं। इसी तरह से शक्तियों में कि परमात्मा परम शक्तिमान है, उनकी शक्तियां हमको मिल रही है, उस शक्ति से हमको शक्तिशाली बनना है।
1: तो ये कितने देर तक करते थे आप?
0: करीब करीब 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक तो हम रहते हैं परमात्मा के पास में।
1: अच्छा,
0: उस समय हम कुछ नहीं,
1: और ये होता है आपको चिंता है कोई ब्लड कैंसर हुआ है,
0: कोई चिंता नहीं,
1: कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है आप?
0: निश्चिंत है हम।
1: ओके,
0: बस परमात्मा से वो शक्तियां ले रहे हैं।
1: तो वो बैठ कर होने के बाद, मेडिटेशन होने के बाद आपके इसमें कुछ बदलाव आता था?
0: जो डेली जैसे बाकी रूटीन चला वैसे चला, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता था।
1: ओके,
0: दूसरी चीज की हमारा शुरू से आदत रही है कि मैं मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक जरूर करता हूँ, कहीं भी रहूं, यूएस में जाऊं, यहाँ रहूं, शांतिवन में रहूं, या फिर अहमदाबाद में जाऊं, अपने घर जाऊं, जहां भी रहूं।
1: अच्छा,
0: कभी कभी मैं गांव जाता हूं बिहार में, तभी भी, लेकिन मेरा 1 घंटे का वॉकिंग कम नहीं होता।
1: अच्छा, हमेशा चाहे बारिश हो, ठंड हो, जो भी हो,
0: यहाँ तक छाता लेकर के मैं निकलता हूँ यहाँ शांतिवन में टहलने के लिए।
1: अच्छा,
0: वो इसमें डायमंड हॉल में बरांडे में मैं टहलता हूँ।
1: कितने बजे आप वॉक के लिए जाते हो मॉर्निंग में?
0: मॉर्निंग में वॉक करने के लिए मैं जाता हूँ आपको करीब 6 बजे निकलता हूँ।
1: अच्छा,
0: 6:45 बजे तक मैं लौट करके आता हूँ।
1: ओके, ओके।
0: तो ये वॉकिंग जो है ये वॉकिंग जो है कॉन्फिडेंस दिलाता है बहुत अधिक.
1: अच्छा
0: कि हमको अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको हमको फिक्स रखना ही है, उसको हमको तोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए. तो इसमें डिस्टर्बेंस आया.
1: अच्छा
0: कीमो के बाद में हम नहीं कर सकते थे
1: क्योंकि
0: बैठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो लेटे लेटे ही. और दूसरा क्या है कि सबसे बेनिफिट क्या है कि जो वॉकिंग हम करते हैं, मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ में सबसे अच्छा मेडिटेशन वॉकिंग में होता है.
1: अच्छा
0: बेस्ट मेडिटेशन वॉकिंग में होता है.
1: वॉकिंग में होता है, चलते फिरते.
0: मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मुरली सुनते रहते हैं वॉकिंग में या गाना बजाने में, बाबा का ही गाना बजाना सुनते रहते हैं. उस समय तो बेस्ट मेडिटेशन करना चाहिए बाबा के साथ में.
1: अच्छा.
0: केवल बस आपका लगा रहे, आत्मा कनेक्टेड रहे परमात्मा से डायरेक्ट केवल.
1: अच्छा
0: बस उसी से कनेक्शन में रहिए कि हम उनके साथ हम कनेक्टेड हैं.
1: अच्छा
0: और उन शक्तियों को लेते रहिए अपने में. ये मैं जो फिर से मैंने जो एक घंटा वॉक करता हूँ इसमें मैं पूरा का पूरा उनके
1: तो
0: साथ.
1: जब आप वॉक नहीं कर पाते थे जब केमो चलते समय, उस समय आप
0: बस बस वही लेट करके ही मैं उसको
1: लेट करके वो अनुभव करते थे.
0: हाँ, अनुभव करते थे.
1: ओके
0: वो मैं नहीं छोड़ा. उसके बाद थोड़ा सा वॉक करने लायक हो गया तो स्टिक मंगा करके, लाठी मंगा करके, मोटा सा छड़ी वो मंगा करके मैं अपने ड्राइंग रूम में, जो मेरा अहमदाबाद में ड्राइंग रूम है, बड़ा सा है, 24 फीट लंबा है, करीब 18 फीट चौड़ा है.
1: ओ, अच्छा.
0: तो उसमें मैं दरवाजा खोल करके और मैं लाठी लेकर धीरे धीरे धीरे धीरे वॉक करता.
1: लेकिन वॉकिंग छोड़ा नहीं आप?
0: नहीं वॉकिंग छोड़ा नहीं मैं.
1: अच्छा तो ये कीमो हो गई. कीमो होने के बाद क्या हो गया?
0: तो कीमो होने के बाद में धीरे धीरे रिकवरी होना शुरू. कीमो बंद हो गया, 6 महीने के बाद बंद हो गया कीमो.
1: ओके
0: उस वक्त कमजोरी तो रहे ही. हर 21 दिन पर हमारा ब्लड, पूरे ब्लड का, शरीर का मैंने डिफरेंट वेराइटी का जांच होता था सब चीज.
1: अच्छा
0: कि क्या हो रहा है. उसके बाद एक पेट सीटी होता है, पेट सीटी करके होता है जो पूरे बॉडी का जांच होता है कि कैंसर कहाँ कहाँ पर है. तो कीमो होने के पहले पेट सीटी हुआ तो मैंने ब्लड में तो था ही, और भी कहाँ कहाँ पर था, इंटेस्टिन के पास में कहाँ कहाँ था वो आया था. लेकिन जो 3 महीने के बाद फिर दोबारा जब मेरा हुआ पेट सीटी, तो इसी पेट सीटी का ही अहमदाबाद का इंचार्ज है मेरा बेटा, जो है जो रेडियोलॉजिस्ट है इसका, ओंको का. तो वो तो पहले ही कहा पापा जी आपका तो खत्म हो गया होगा.
1: अच्छा ओके.
0: हाँ तो मैंने दोबारा जो हमारा पेट सीटी हुआ तो कंप्लीट एकदम कुछ भी नहीं था कहीं भी,
1: सब क्लियर हो गया.
0: 3 कीमो जब हुआ था उसी के बाद हमारा सारा चीज क्लियर हो गया था.
1: अच्छा
0: लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं 6 का फुल कोर्स है उसको ले लेना. हमने ठीक है सब दे दिया.
1: तो क्लियर होने के बाद भी 6 का पूरा कर लिया?
0: पूरा कर लिया मैंने, पूरा कोर्स मैंने पूरा किया.
1: तो अभी ये एक चीज बताइए, ब्लड कैंसर जो हम बात सुनते हैं, हमारे श्रोतागण भी सुनते हैं, सबको उत्सुकता है कि ये ब्लड कैंसर एक्चुअली होता क्या है, ब्लड में क्या क्लॉट्स होते हैं, क्या होता है?
0: बताते हैं ब्लड कैंसर कई एक वैरायटी होता है. जैसे मुझे जो हुआ था फॉलिकुलर लिम्फोमा हुआ था.
1: अच्छा
0: समझे. उसमें होता है ल्यूकीमिया होता है, अलग होता है जो सबसे खतरनाक होता है ल्यूकीमिया होता है.
1: अच्छा
0: अलग अलग वैरायटी है, सबके लिए अलग अलग कीमो होता है.
1: ओके
0: सबके लिए अलग अलग होता है, किस स्टेज पर है उसके लिए अलग होता है.
1: ओके
0: तो ये ऑन्कोफिजिशियन ही तय कर सकते हैं कि किस कौन सा देना है.
1: ओके
0: और किस एज में कौन सा पावर का देना है, उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है. इसके पहले 2004 में मुझे सीए प्रोस्टेट हुआ था.
1: अच्छा
0: प्रोस्टेट का कैंसर मुझे हुआ था.
1: तो पहले भी आपको कैंसर हो चुका तो आप कैंसर स्पेशलिस्ट हो गए.
0: 2004 में हुआ, होने के बाद वो भी ऐसे ही डिटेक्ट हुआ था कुछ. मैंने
1: और प्रोस्टेट कैंसर भी मैंने सुना है काफी भयंकर है.
0: भयंकर वो चारों लोब, पूरे लोब में पकड़ लिया था.
1: ओ हो हो
0: पूरा हमारा पूरा प्रोस्टेट काट कर ही निकालना था.
1: तो उस समय आपकी उम्र क्या थी?
0: अब समझिए ना 2004 में अभी मतलब आपका 82-83 चल रहा है. तो उसके हिसाब से हुआ 60 प्लस तो थे ही.
1: 60 प्लस होगा. ओके
0: 60 प्लस तो थे.
1: लेकिन उस समय आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग नहीं करते थे?
0: राजयोग मैंने आ तो कहते 2001 में ही. हाँ लेकिन सीखा था. लेकिन अभी
1: प्रैक्टिस
0: उतना ये नहीं हुए थे. लेकिन विश्वास था.
1: अच्छा
0: विश्वास था. जो मेरा ज्ञान जो हमको मिला वो महादेव नगर में चंद्रिका बहन जो है,
1: अच्छा
0: उनके सेंटर पर मिला.
1: ओके
0: और वहाँ ललित भाई करके जो अभी अकाउंट्स में है यहाँ के, उनके द्वारा मुझे मिला.
1: अच्छा ओके
0: ललित भाई ने दिया था.
1: ओके
0: तो उस ज्ञान को मैंने धारण किया, उस लाइन पर मैं चलता रहा.
1: बस उस समय खाली 1 साल हो गया होगा आपको?
0: हाँ एक साल ही हुआ था. अच्छा. आया था. लेकिन हमको बाबा में दृढ़ विश्वास था पूरा.
1: अच्छा
0: कि एक बल एक भरोसा शुरू से मेरे में था.
1: ओके
0: कि जब उन पर हमको विश्वास है, उनका वरदानी हाथ हमारे सर पर है, तो हमको कुछ नहीं होगा.
1: ओ
0: और उस समय भी प्रोस्टेट कैंसर में क्या हुआ कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे वहाँ के जो यूरोसर्जन जो हैं तो जनक देसाई जिन्होंने उनका था कि साहब इसमें मैनुअल करना पड़ेगा
1: ओके
0: रिबोट अभी आया नहीं है इंडिया में आ चुका था रिबोट सर्जरी लेकिन वहाँ नहीं आया था उन्होंने कहा कि बेटर ये होगा कि सबसे एक्सपर्ट हैं आपका टीएमएच में है डॉक्टर मेनन है करके
1: ओके ओके
0: उनसे आप जाकर कराइए आप अपने परिवार के हैं चूंकि जनक देसाई उनसे भी मेरे लड़के का काफी नजदीकी थी फैमिली वाला ये था मैंने उनको कहा कि क्या कॉम्प्लिकेशन होता है थोड़ा सा बताओ उन्होंने कहा कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन मतलब ऑपरेशन होने के बाद सब चीज ठीक हो जाएगा लेकिन जब भी आप खांसोगे कोई भी करोगे तो हाँ यूरिन पास हो जाएगा ड्रिबलिंग होगा ये कंट्रोल नहीं होता है
1: ओके
0: हमने कहा कि अगर जनक वहां पर मैं कराऊं टीएमएच में तो नहीं होगा
1: अच्छा
0: ये आप कंफर्म करते हैं कि नहीं होगा कहा कि नहीं 15% लेकर चलना पड़ेगा
1: ओके ओके
0: हम कहे कि आप करोगे तो कितना परसेंट होगा तो हंसने लगे कहे कि 25% लेकर चलिए क्योंकि मैंने कम किया है वो अधिक किए हैं ऑपरेशन तो मैंने कहा कि आप करो
1: ओके मींस डॉक्टर के ऊपर आपका ज्यादा विश्वास
0: हाँ मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि यहाँ के टॉप सर्जन आप हो यूरो सर्जन टॉप में हो तो आप ही करो ये 25% वाला रिस्क जो हम बाबा के ऊपर फेंकते हैं
1: अच्छा
0: इसका रिस्क आप मत रखो ये उनके ऊपर मैंने दे दिया कि बाकी सर्जरी मैं आपसे करा रहा हूँ बाकी बाबा के ऊपर छोड़ दिया मैंने
1: मीन जैसे प्रोस्टेट कैंसर का पता चला आप भी निश्चिंत थे
0: एकदम निश्चिंत थे और इसमें निश्चिंत करने वाले में सबसे अधिक मेरी ये जो बहन जो है ना चंद्रिका बहन
1: अच्छा
0: चंद्रिका बहन मेरे पास हमेशा जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती
1: चंद्रिका बहन जी जो ब्रह्मा कुमारी राजयोग महादेव नगर के हैं
0: हाँ महादेव नगर
1: ओके,
0: की है
1: ओके
0: वो बार बार मेरे पास आती थी हॉस्पिटल में भी हमें बाबा का फोटो लगावे आप मेरे सर पर हाथ रखे कहें कि आप 100% कॉन्फिडेंट रहिए कुछ नहीं आपको
1: ओ, ओ, अच्छा
0: साथ साथ ललित भाई भी आते थे साथ साथ
1: अच्छा ओके
0: तो उन लोगों ने कॉन्फिडेंस हमको दिया और वो कॉन्फिडेंस इस समय काम आया हमको अभी भी
1: वो बीज था
0: हाँ उस समय जो था उस समय हमको जो हुआ क्योंकि मेरे साथ एक और आदमी का VIP का ही ऑपरेशन जनक देसाई ने किया था
1: अच्छा
0: हाई कोर्ट के जज थे वो मेरे तीन चार दिन के बाद उन्होंने किया था
1: अच्छा
0: और मुझसे वो छोटे थे उम्र में 3-4 साल छोटे थे हम सोचते हैं 56-57 ईयर्स का होंगे नहीं बच सके थे वो समझे
1: अच्छा
0: और मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इसमें से निकल गया आराम से तो ये मेरा दृढ़ संकल्प जो विश्वास है वो हमेशा रहता है
1: तो चंद्रिका बहन जी जो थे वो आपको सेंटर पे बुलाते थे
0: नहीं सेंटर पर नहीं
1: हाँ।
0: हॉस्पिटल आ जाती थी
1: हॉस्पिटल
0: शाम को हॉस्पिटल आकर के मुझसे हाँ। मिलती थी
1: वहाँ दृष्टि
0: बाबा का फोटो दृष्टि देती थी फोटो देती
1: अच्छा ओके ओके
0: कहती डॉक्टर साहब आप निश्चिंत रहो एकदम फर्स्ट क्लास आपका होगा और यहाँ तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ तो मतलब यहाँ हॉस्पिटल में तो यहाँ कोई किसी से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी मैं खुद ही सक्षम था मुझे पूरा विश्वास था एक बल एक भरोसा कि बाबा का बल है उन पर भरोसा है तो हमारा सब सक्सेसफुल होगा
1: वैसे मुझे ये सब सुनते समय ये लगा कि अभी मैं श्रोतागण को भी निवेदन करता हूँ और मुझे खुद को भी समझाता हूँ कि जब हम कई पेशेंट के पास जाते हैं तब बहुत बार क्या होता है पेशेंट का हौसला मिलने वाले उसको खत्म कर देते हैं उसको केस बताते अरे उसको इतना ये हो गया
0: निगेटिव बात
1: निगेटिव बातें इतनी होती
0: है अगर निगेटिव हमसे बात करता था या टेलीफोन पर किसी का आता था कि उसको भी ब्लड कैंसर हुआ था और उसके बाद में 3 कीमो लेने के बाद उसे सहा नहीं गया उसको एक्सपायर
1: हो गया ऐसे बोलते हैं
0: हाँ तो मैंने कहा कि स्टॉप इट
1: अच्छा
0: मैंने कहा कि आप मुझसे बात मत करो मेरे साथ ये नहीं होने वाला है
1: ये सुनने के बाद मुझे हमारे दोस्तों से बताना है श्रोताओं से बताना है कि ये दोस्तों कभी कभी जाने अनजाने में हम बड़े प्यार से बात करते हैं हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता कि उसका नुकसान हो लेकिन हम प्यार से बात करते हैं सिंपैथी क्रिएट करने के लिए बताते हैं कि बहुत मुश्किल है आप कैसे जीते हो आप क्या होगा कैसे होगा हमें बहुत चिंता है और फिर बहुत सारे केसेस का जिक्र करते हैं और उससे क्या होता है जो हौसला वो जुटाने पाता है
0: कॉन्फिडेंस और डाउन चला जाता है
1: तो हम हौसला बढ़ाने की कोशिश करें हम हौसला तोड़ने की कोशिश
0: देखिए कैंसर थेरेपी में चाहे ब्लड कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो कैंसर थेरेपी में विल पावर नंबर वन है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: विल पावर जैसे है ना डायबिटीज ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो डायबिटीज ट्रीटमेंट में कहते हैं कि चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल चेंज ऑफ फूड हैबिट ये नंबर वन नंबर टू है इलाज का थर्ड इलाज में आता है मेडिसिन
1: अच्छा
0: समझे मेडिसिन थर्ड इलाज में है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो फूड हैबिट चेंज करो
1: अच्छा
0: और तब उसके बाद में मेडिसिन पर आओ तो वैसे है कि कैंसर के इलाज में जो अंको सर्जन या अंको फिजिशियन जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए आप, लेकिन आपका ही आपकी हिम्मत कितनी है, आपका दृढ़ संकल्प क्या है, ये जो विल पावर को डेवलप करना चाहिए। जिसका विल पावर तगड़ा है वो कैंसर से निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा।
1: अच्छा, तो वे विल पावर बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन की सहायता लेनी है।
0: लेनी है।
1: अच्छा, जो मेडिटेशन चाहे किसी भी प्रकार का हो।
0: मैं तो और प्रकार का मेडिटेशन नहीं जानता, मैं तो राजयोग मेडिटेशन ही जानता हूँ।
1: ओके,
0: तो राजयोग मेडिटेशन से विल पावर बढ़ता है। जो नहीं भी मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी अगर कैंसर के रोगी हैं तो विल पावर पर रहना है, ये कॉन्फिडेंस रहना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बार बार आपका संकल्प आवे। अपने परिवार के लोग देखिए, कैंसर होता है एक आदमी को लेकिन सारे परिवार के लोग कैंसर से दुखी हो जाते हैं, और जैसे सारे को ही कैंसर रोग लग गया ये वाली बात हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: सब घबरा जाते हैं और वो घबराहट में उस व्यक्ति का विल पावर और कम खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति विल पावर वाला है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं रिकवर करूंगा, तो वो अपने परिवार वालों को उठाएगा कि तुम घबराओ नहीं, और यही काम मैं करता था।
1: क्योंकि आप खुद डर जाओगे तो परिवार वाले तो पक्का डरने वाले हैं।
0: तो मैं जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मोबाइल में हैं, चाहे इस संस्था के जो भी भाई बहन थे लोग, इस संस्था वालों ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस मामले में।
1: ओके,
0: क्योंकि दुआएं मुझको बहुत मिली है। डायमंड हॉल में भी मुझको दुआएं मिली है, जो मेडिटेशन होता था उसमें मेरे नाम पर हुआ है, मेडिटेशन हुआ है।
1: अच्छा।
0: और हमारा एवर हेल्दी हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ से लेकर के डॉक्टर्स लोग जो हैं, वो बैठते थे 5 मिनट बैठ
1: के, सब पता चला था कि आपको ऐसे ऐसे
0: हुआ है, तो वो अपना सकास देते थे।
1: तो वही चंद्रिका बहन जी और ललित भाई वो मिलने आते थे आपको?
0: नहीं, वहाँ उस समय।
1: अच्छा, उस समय
0: 2004 की बात।
1: अच्छा, उसके बाद जब ब्लड कैंसर का पता चला,
0: ब्लड कैंसर हुआ, तो इसमें तो खैर अपना मैं सक्षम था, तब तक मैं इतना डेवलप कर चुका था, तो मैं दूसरों को देता था।
1: अच्छा,
0: जो भी यहाँ के भाई लोगों का टेलीफोन आता था कि कैसे हुआ, क्या हो गया, हम एकदम ठीक हैं, हम कुछ नहीं हुआ है, आपको आवाज से नहीं लग रही है, हम पूरा फर्स्ट क्लास रिकवर कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमको पता ही नहीं। और जितने परिवार के लोग थे, जितने रिलेशन में थे, व्हाट्सएप पर मैं सबको देता था कि फर्स्ट सेकेंड कीमो वेंट वेरी वेल, आई एम 100% ओके।
1: अच्छा,
0: पहला मैसेज मैं
1: उनका हौसला बढ़ाते थे आप,
0: व्हाट्सएप पर मैं देता था, आई एम 100% ओके।
1: ओके, ओके।
0: तब उन लोगों का टेलीफोन आता था कि कैसे हैं आप, हमको एकदम ठीक है, हमको कोई तकलीफ ही नहीं है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, मैं एकदम रिकवर कर रहा हूँ। तो ये मैसेज मैं लोगों को देता था।
1: तो बहुत बार लोगों को ये लगता है कि ये मेडिटेशन जो है या भगवान के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है और मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले तो जमाने में बोलते थे कि ये एक अंधश्रद्धा है, लेकिन आजकल जब जमाना बदल गया तब अभी उसमें बोलते हैं प्लासिबो इफेक्ट है, और प्लासिबो इफेक्ट मानते हैं, लेकिन हम श्रद्धा कहते हैं तो उसे बोलते हैं अंधविश्वास है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं?
0: मैं ये अंधविश्वास वाली बात मैं नहीं करता। मैं तो जब मन बुद्धि को लेकर मैं मेडिटेशन में परमात्मा के पास हम पहुंचते हैं, उस समय बाबा से हम 7 गुण और 8 शक्तियां धारण करते हैं अलग अलग रूप में, कि शांति की सकाश में ले रहा हूं बाबा से, शांति आत्मा में बन रहा हूं, वैसे शक्तियों को लेते थे। तो ये बाबा से हम लेते थे शक्तियां, 8 शक्तियां हैं उसको हम धारण करते हैं, और उसी समय बाबा के साथ वहां रहते हैं, इसको हम फील करते हैं बजाबता।
1: मीन्स ये अनुभव होना चाहिए।
0: हाँ, ये थियोरेटिकली
1: हम कोई बता नहीं सकते मेडिकल टर्म में।
0: ये तो विश्वास की चीज है, एक विश्वास की चीज है कि शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मैं शांति स्वरूप आत्मा बनता जा रहा हूँ।
1: ये अनुभव जब होता जाएगा तब अपने आप शक्ति आ जाएगी।
0: शांति के सागर के साथ हम हैं, शांति के सागर के हम बच्चे हैं, शांति धाम मेरा घर है, तो शांति हमें आती जा रही है, हम शांति आत्मा बनते जा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे ही शक्तियां हम
1: मुख्य रूप से जैसे शांति की वाइब्रेशन आएगी, आपका मन शांत होगा, तब आपका हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे ये जब बातें सुन रहे थे तब मुझे भी एक बात याद आई कि हमारे ऑफिस में एक मित्र है, अभी भी है, शिव सिंह परदेशी करके नाम है उनका, और उनको जबड़े का कैंसर हो गया, जबड़े का, वो खा रहे थे, माउथ का कैंसर हो गया, और फिर उनको ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन जब ऑपरेशन करना पड़ा, डेट फाइनल हो गई, तब उन्होंने बीच में बुक किया था फॉरेन ट्रिप। तो कितना हौसला, क्या विचार है, वो बोलते हैं पता नहीं बाद में जिंदा रहते या नहीं रहते हैं, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ट्रिप पे जाऊंगा। और वो ऑपरेशन की डेट थी लेकिन वो पहले ट्रिप पे गए फॉरेन गए फॉरेन से वापस आए उनका ऑपरेशन हुआ और फिर नली डालनी पड़ी उनको गले में और उससे जूस लेते थे

0: थे, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए। अभी भले बोलने में तकलीफ है लेकिन उनका भी हौसला, मेरा कहने का मतलब यह है।
1: लेकिन इस यहां पर दिक्कत क्या हुआ, वो जो था मैंने बाहर जाने का, टूर में जाने का उनका था, यहाँ पर मैं थोड़ा डिफर करता हूँ उनके आइडिया से, इसलिए डिफर करता हूँ कि स्टेज में अंतर आ जाएगा। माउथ कैंसर जब हुआ उनको, पहले डिटेक्ट हुआ उस समय जब उनका ऑपरेशन होता और एक महीने के बाद या डेढ़ महीने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, दोनों के स्टेज में अंतर आ गया।
0: अच्छा,
1: समझिए, तब बड़ा सा ऑपरेशन हुआ, और बड़ा ऑपरेशन होने के बाद उनको खाने में दिक्कत होगी, सब चीज होगा, क्योंकि अधिक पोर्शन काट करके निकालना पड़ेगा। तो कैंसर का मतलब हुआ कि अर्लीस्ट जितना जल्दी इलाज शुरू होना चाहिए।
0: अच्छा, लेकिन शायद उनको डेट नहीं मिली थी, ऐसा कुछ था।
1: जो हुआ हो, मतलब वही है कि कैंसर जब डिटेक्ट हो तो डिले नहीं करना है।
0: अच्छा, इन शॉर्ट ये मैसेज है कि अगर जब भी आपको पता चलता है कैंसर आपको हुआ है, तो चाहे कीमो हो या ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, उसको डिले नहीं करना है।
1: डिले नहीं करना,
0: अगर आपको डेट ही नहीं मिल रही है तो बात अलग है।
1: आजकल तो इतने कैंसर हॉस्पिटल हो गए हैं, इतने कैंसर सर्जन हो गए हैं, कितने ऑन्को फिजिशियन हो चुके हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा।
0: अच्छा, ओके,
1: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कमी नहीं है। अपना विल पावर चाहिए कि हमको कराना है। लोग डरते हैं कराने में कि कराएंगे ऑपरेशन, कराएंगे तो बड़ा सा ऑपरेशन होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होगा। तो ये है कि,
0: और मुख्य रूप से एक ये है कि एक तो है कैंसर, एक मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
1: दूसरी बात एक और बीच में मैं आपको बता दूं, कैंसर जो है वो चाहे उसका मेडिसिन हो, कीमो हो, रेडिएशन हो, या ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, है बहुत कॉस्टली इलाज। लेकिन अभी जो हो गया है कि मतलब जो गरीब आदमी जो है या जो भी है, जो हो गया है आयुष्मान वाला जो लेकर के 5 लाख का जो ये हो गया है, तो अब तो करने कराने में किसी को दिक्कत ही नहीं ना। उसके अंदर हो जाएगा, सबका ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, तो डरने की कहां बात है।
0: अच्छा,
1: और अगर सीनियर सिटीजन है, 70 के ऊपर है, तो उनका भी फ्री हो गया है, उनको भी 5 लाख का हो गया है, वो भी अपना करवा लें। तो ये तो अब डरने, पैसे वाला जो होता था कि पहले कैंसर होने का मतलब कि दरिद्र हो जाना, घर
0: बिल्कुल
1: जमीन जायदाद बिक गया। अब वो चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं है, वो चीज गवर्नमेंट ने अपने माथे पर ले लिया है। इसीलिए कभी भी कैंसर मरीज को डरना नहीं है कि कैसे हमारा ऑपरेशन होगा, कैसे क्या होगा।
0: तो ये आयुष्मान अभी अच्छी तरह से चल रहा है,
1: एकदम चल रहा है, हर जगह, हर हॉस्पिटल में एक सेंटर उसका बना दिया गया, वहां जाकर के अपना आयुष्मान कार्ड या स्मार्ट कार्ड आप दिखाओ।
0: तो आयुष्मान कार्ड लेना चाहिए, हर एक को लेना चाहिए आयुष्मान कार्ड।
1: जो बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल वाले जो हैं, जिनका राशन कार्ड है, उनका तो 5 लाख का तो है ही, एनुअल है ही, कवरेज है ही। और जो बीपीएल में नहीं है, उनका नहीं है, लेकिन उसमें जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं 70 एंड अबव,
0: ओके,
1: उनका 5 लाख का बन रहा है।
0: अच्छा,
1: अब वो 5 लाख का शायद 10 लाख हो गया है।
0: चलिए, जो 5 लाख हो, 10 लाख हो, कम से कम कुछ ना कुछ सहारा तो मिल जाता है।
1: बहुत बड़ा सहारा,
0: क्योंकि आजकल मेडिकल में ऑपरेशन कराना है, इतना खर्चा उठाना है, और जो कुछ कर्जा लेके बाय चांस वो अगर पेशेंट गया तो फिर कर्जा चुकाते समय बच्चे
1: हालत खराब हो जाती है। वो चीज मिल गया, बहुत बड़ा। इसलिए कैंसर के इलाज में, उपचार में अब दिक्कत नहीं है। विल पावर चाहिए कि हमको कराना है, ये नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं तो कैसे होगा इलाज, कैसे होगा, गरीब है तो कैसे होगा, ये सब कोई बहाना नहीं चलने वाला चाहिए।
0: ये तो हो गया कैंसर होने के बाद, लेकिन अगर कैंसर ना हो, इसके लिए आप जो लाइफस्टाइल की कुछ बात कर रहे थे, खान पान में क्या करना है।
1: देखिए, खूबी ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इस पर आश्चर्यचकित होता हूँ। देखिए, अपवाद हर जगह होता है। आप हिंदी में चाहे कहीं पढ़े हो कि अपवाद लिखा हुआ रहता है, अपवाद हर जगह। मैं वो अपवाद हूँ। मैंने आज तक लाइफ में सिगरेट का, मैंने पैसिव स्मोकर में रहा हूँ, दूसरा कोई सिगरेट पिया है, डॉक्टर लोग हैं तो उसका धुआं मुझे मिला है।
0: अच्छा, लेकिन आपने पता है,
1: आज तक मैंने टच नहीं किया सिगरेट। अच्छा, को हाथ से नहीं टच
0: किया, टोबैको लिया कुछ,
1: ना टोबैको लिया और न शराब लिया।
0: अच्छा,
1: आर्मी में रहने के बाद भी, कारगिल में मेरी पोस्टिंग रही है, नवम्बर दिसंबर,
0: कारगिल में
1: हमारी पोस्टिंग रही है, उस समय भी मैंने शराब को टच नहीं किया, जबकि वहाँ के खाने में ऑफिसर्स जो हैं उन लोगों को दिन में जिन दिया जाता है, और जो जवान जो है उन लोगों को रम दिया जाता है, फ्री है, डाइट में है, इंक्लूडेड इन डाइट।
0: यस,
1: तो मैंने टच नहीं किया आज तक।
0: तो कारगिल में रहते हुए भी आप शराब नहीं पीते
1: नहीं,
0: थे, कुछ नहीं,
1: नहीं
0: करते
1: नहीं,
0: थे।
1: नहीं,
0: उस समय आप राजयोग करते नहीं थे?
1: कुछ नहीं, राजयोग में नहीं था, लेकिन एक संकल्प था।
0: अच्छा,
1: कि मुझे नहीं लेना है। मैं जब गया, हमारी फर्स्ट पोस्टिंग श्रीनगर में हुई थी, हमारे कमांडेंट एक मिस्टर भंडारी थे, कर्नल थे, तो मैं शराब नहीं लेता था. एक बटालियन में 1000 का स्ट्रेंथ होता है. बटालियन में 11 ऑफिसर्स होते हैं, क्लास वन ऑफिसर 11 होते हैं, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर भी है.
0: ओके.
1: तो उनकी मतलब मैरिज एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी में हम लोग सब जमा हुए फैमिली के साथ, हंसफेर भाई. तो उनसे काफ़ी नज़दीकी थी हमारी, और उनकी पत्नी से हमारी पत्नी को काफ़ी नज़दीकी. तो जब पार्टी शुरू होनी थी तो उस समय शराब का दौर चला, तो उनकी मिसेज ने कहा कि डॉक्टर सिंह अगर आप नहीं लेते हैं एक सिप भी आप लीजिएगा तभी पार्टी शुरू होगी.
0: अच्छा. ओके.
1: नहीं तो पार्टी नहीं शुरू होगी. लगता है कि मिसेज सिंह जो है आपको इशारा कर रही है, मना कर रही है. तो मेरी मिसेज ने कहा कि मैं क्यों मना करूंगी, इनका है, इनका चॉइस है.
0: अच्छा.
1: लेना है तो ले, नहीं तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. तो मैंने कहा कि देखिए बहुत नहीं दिखी है आपसे, मैं जब आर्मी ज्वाइन कर रहा था तो मेरी माँ ने कहा था, एक ही उन्होंने कसम दिया था कि तुम जा रहे हो लेकिन शराब को हाथ मत लगाना.
0: अच्छा.
1: तो उसको क्या मैं तोड़ दूं आपके आपके मैरिज एनिवर्सरी के लिए? कहा कि नहीं, हाथ जोड़ कर कहा कि नहीं. हालांकि ये झूठा था.
0: बहुत अच्छा.
1: अच्छा. बचने के लिए मैंने कहा.
0: ओके, ओके, ओके.
1: तो अपना संकल्प था, मैंने नहीं किया. तो जान करके कमांडेंट ने हमारी पोस्टिंग कारगिल में की. अच्छा. हमारा टेस्ट करने के लिए, और वो भी नवम्बर में. हमारा एक यूनिट, मैंने एक कंपनी वहां पर थी एयरफील्ड के, मैंने रक्षा के लिए.
0: अच्छा.
1: एयरफील्ड को बचाने के लिए उसके चारों तरफ हमारी कंपनी लगी हुई थी. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आपको जाना पड़ेगा कारगिल, जाइए.
0: ओके, ओके,
1: जाकर हम कहें ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, घूमने का अच्छा, मौका मिलेगा कारगिल.
0: ओके.
1: मैं जाऊंगा. तो हंसने लगे, कहे कि तुम्हारा टेस्ट होना है.
0: अच्छा.
1: टेस्ट ले लो ना, तुम देखो टेस्ट क्या होता है. जब मैं लौट करके आया वहाँ ब्रिगेडियर जो थे मिस्टर चटर्जी, उनसे बात उन्होंने किया कि सर वो डॉक्टर जो है ऑफिसर्स में इसमें शराब वराब पीता था कि नहीं? आता नहीं भाई, तो ऐसा जिद्दी है कि कभी उसने हाथ नहीं लगाया.
0: लेकिन इतनी ठंड होने के बाद लोगों को एक धारणा है कि ठंड है तो शराब पीनी चाहिए, रम पीनी चाहिए, जिन पीनी चाहिए.
1: ठंड के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज इंतजाम रहता है ना भाई. रूम जो है उसमें जलता रहता है, बुखारी रहता है, उसके बाद में हर रूम में आग जलाने का ही रहता है.
0: अच्छा. फायर प्लेस
1: रहता है, पूरा रूम गर्म रहता है. और उसके अलावा बाहर निकलने के बाद आइस क्लोथिंग रहता है, आइस बैग रहता है पास में, कोई दिक्कत नहीं होती है. ये सब बहाना है एक देने का.
0: बहुत अच्छा. तो ये और एक प्रेरणा आपके द्वारा मैं श्रोताओं को देना चाहता हूँ कि पीने वालों को पीने का
1: एक बहाना
0: आना चाहिए, आज बाकी कुछ नहीं है. लेकिन आपके ऊपर है, क्योंकि पीने के बाद कुछ ना कुछ आपकी सेहत में तकलीफ आती है.
1: चांसेस है एक बार आप शुरू करोगे दोस्तों के मंडली में तो एडिक्शन होने का डर रहता है.
0: यस.
1: सबसे बड़ी चीज ये है. और क्या वो अमृत है? और आजकल तो समाज में मैं ही जाता हूँ, यूएस में जाता हूँ, बच्चे बैठते हैं, सब चीज होते हैं, सारे सारे पी रहे हैं,
0: सारे पी रहे हैं.
1: हम अलग बैठ करके अपना ये कर रहे हैं.
0: लेकिन बहुत अच्छी बात है कि माहौल अगर बदल जाता है फिर भी आपका संकल्प दृढ़ हो.
1: हाँ, संकल्प
0: वो दृढ़ता जो है वो आपको काम आई आपके जब कैंसर की ट्रीटमेंट जब हो रही थी.
1: वो संकल्प मेरा दृढ़ संकल्प था. बाबा पर मुझे 100% फेथ है, विश्वास है, और ये संकल्प है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ.
0: तो और एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे आपने कहा 71 वॉर में आप थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ अनुभव आपने लिया होगा वॉर का, तो हमारे श्रोताओं को वो भी उत्सुकता होगी. क्योंकि एक तो वॉर आपने जीत लिया कैंसर के साथ, एक बार नहीं दो बार जीत लिया. भारत ने भी दो बार हमारी वॉर जीती है, लेकिन वो भी जंग है, ये भी जंग है. तो वो जंग का कुछ अनुभव बताइए.
1: 71 में जो वॉर छिड़ा ना, उसमें मैं बॉर्डर में था. इसमें मैं बेनापोल पेट्रापोल पड़ता है.
0: अच्छा.
1: बनगांव के पास में, बनगांव बॉर्डर है, वहां पर मेरी बटालियन थी. वहां से हम लोग इन कर गए बांग्लादेश में.
0: अच्छा.
1: अब बांग्लादेश में मैं अपने यूनिट के साथ था.
0: अच्छा.
1: यहाँ तक कि जिस समय सरेंडर हुआ, जब पाकिस्तान वाले पाकिस्तान आर्मी सरेंडर की पंजाब
0: 90,000
1: में जो सरेंडर किया, उस समय हम लोग हमारी ट्रिप जो यूनिट जो था हमारा, हमारे बटालियन जो था, वो करीब करीब हार्डली 26 किलोमीटर ढाका से पहले थे हम लोग.
0: अच्छा. ओके. ओके.
1: तो मैं साथ साथ था.
0: अरे वाह.
1: मेडिकल टीम साथ में थी.
0: तो उसमें आपको कोई तकलीफ हो गई है, कुछ कठिनाई आ गई है?
1: आनंद आता था. घर की कोई चिंता ही नहीं. घर वालों को कुछ चिंता रहती घर, मैंने कभी कभी हम लोग, उसमें तो टेलीफोन था नहीं, HF और VHF दो होता था हम लोग के पास में.
0: बिल्कुल.
1: हाई फ्रीक्वेंसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो होता था उस पर बात हम लोग करते थे।

0: अच्छा डायरिया हो गया।
1: ओके।
0: तो कमांडेंट ने हमको कहा कि डॉक्टर जाकर के आप थोड़ा उनको देखो। तो मैं एम्बुलेंस लेकर के गया।
1: ओके।
0: एम्बुलेंस लेकर के गया। एम्बुलेंस लेकर के जब मैं गया वहां पर, तो अभी यूनिट में वहां पर जवानों के पास जो बंकर में थे वो पहुंचने के पहले पाकिस्तान के तरफ से ब्रस्ट फायर आना शुरू हो गया।
1: अच्छा,
0: ब्रस्ट फायर कहते हैं एमएमजी का, मीडियम मशीन गन का ब्रस्ट फायर हमारे एम्बुलेंस पर आना शुरू।
1: ओके, ओके।
0: तो हमारा ड्राइवर जो था, एक सरदार जी था, उसने कहा कि सर गेट डाउन।
1: ओके।
0: दरवाजा मैंने खोला, हम लुढ़क गए नीचे।
1: ओके।
0: गाड़ी से नीचे चले आए। नीचे आने के बाद में रोड से नीचे जो गड्ढा जो था उसमें हम लोग लुढ़क गए। लुढ़क गए।
1: अच्छा।
0: गाड़ी को जो है उसने उन्होंने एकदम छलनी बना दिया, खत्म कर दिया।
1: अच्छा।
0: उसके बाद तब तक तो क्या हुआ कि अब हमारे यूनिट को पता लग गया, इधर से क्रॉस फायर शुरू हो गया। अच्छा। उन लोगों के ऊपर, उन लोगों का क्रॉस फायर बीच में हम लोग हैं, बीच में है। बाद में दोनों तरफ से बंद हो गया, तो मैं जाकर जवान लोगों को देखा। कमांडेंट घबरा गए थे कि भाई क्या हुआ, एम्बुलेंस तो खत्म हो गई थी, फिर दूसरी गाड़ी आई हम लोगों को लेकर के गई। नहीं कुछ हुआ नहीं,
1: ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ।
0: नहीं, ड्राइवर को भी, ड्राइवर भी नीचे
1: ड्राइवर भी लुढ़क गया।
0: तो ट्रेनिंग होती है ना।
1: अच्छा, अच्छा।
0: कैसे रोल कर जाना है नीचे, कैसे ही कर जाना है। जो होता है, मैंने रोड ऊंचा रहता है, रोड के नीचे जो होता है नाले टाइप का जो होता है, उसमें रोल कर गए।
1: तो चलिए, बहुत अच्छा अनुभव था। एक जंग आपके भारत के अगेंस्ट जो थी वो जंग आपने जीती, और दूसरी जंग जो है आपके शरीर के अगेंस्ट जो थी वो भी आपने जीती। तो आप तो जंग बहादुर हो गए।
0: लड़ाई में होता क्या है ना कि घर वाले अधिक घबरा जाते हैं, इष्ट मित्र जो है घबरा जाते हैं कि क्या होगा। लेकिन जो फौज का जवान चाहे अफसर जो लड़ाई में है, उसको पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है।
1: अच्छा।
0: उसको तो वो धुन लगी रहती है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो यही मतलब एक्सपीरियंस जो है।
1: अच्छा।
0: कहीं पर भी आपका विश्वास जो है, मेरे समझ से सबसे बड़ी चीज है, उसको लेकर के चलना होगा।
1: तो ये विश्वास,
0: धूलमूल नीति नहीं होनी चाहिए।
1: विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और ये विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ
0: और कैंसर थेरापी में, थेरापी के बाद फुली रिकवरी का 100% चांस उसी को है जो पूरा दृढ़ संकल्प में है कि हम इससे रिकवर हो जाएंगे।
1: तो दोस्तों, ये जीती जागती मिसाल है कि हमारे डॉक्टर सिंह जो है, टीएन सिंह, उन्होंने दो बार कैंसर झेला है। एक बार प्रोस्टेट कैंसर हो गया, उसके बाद ब्लड कैंसर हो गया, कीमो हो गई। इतनी उम्र होने के बाद, 80 साल की उम्र के बाद भी वो अभी भी इतने एक्टिव है, अभी भी वो कंसल्टेशन देते हैं एवर एलडी हॉस्पिटल में। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ वो बातचीत करते हैं, उनको इलाज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, एक तो आपका मनोबल, और जैसे डॉक्टर सिंह साहब ने कहा कि मनोबल बढ़ाने का आसान तरीका जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हर एक की धारणा अलग होगी, हर एक की श्रद्धा अलग होगी, हर एक का विश्वास अलग होगा, लेकिन उनका जो अनुभव है वो राजयोग मेडिटेशन का है। और वे अनुभव के द्वारा उन्होंने अपने अनुभव बताए कि कैसा हौसला बढ़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन जो है, विशेष मुलाकात, आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसे भी कोई मेरे दोस्त है जो इस दौर से गुजर रहे हैं, कैंसर से गुजर रहे हैं, या और कोई बीमारी जो है उससे गुजर रहे हैं, तो उसमें एक ही संदेश मैं डॉक्टर सिंह साहब के जरिए आपको देना चाहता हूँ। और सिंह साहब को पूछता हूँ कि हमारे श्रोताओं को, जो मरीज नहीं है उनको भी और जो मरीज है उनको भी, वो क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: पहला संदेश कि अच्छे डॉक्टर के इलाज में आप हैं, चाहे कैंसर के इलाज में हैं, ऑन्को सर्जन है, फिजिशियन है, उन पर आप भरोसा रखो और ये कॉन्फिडेंस रखो कि मेरी रिकवरी होनी है, मैं प्रतिदिन रिकवर हो रहा हूँ, ये भावना अपने मन में रहनी चाहिए।
1: चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहे, और ये सोचते रहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत भगवान के लिए आप थैंक्स देना है, आभार प्रदर्शन करना है।
0: अगर बस विश्वास करते हैं भगवान पर, उन पर पूरा विश्वास कीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उनका समझिए कि उनका बरदानी हाथ हमारे सर पर है, तो हम रिकवर होंगे ही।
1: बहुत अच्छा रहा डॉक्टर सिंह साहब, आप रेडियो मधुबन पे आए, हमारे साथ बातचीत किए, आपके अनुभव शेयर किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, फिर से ऐसे ही कोई नया अतिथि के साथ आपके साथ मुलाकात

करने के लिए आएंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए फिर से मिलेंगे अगले कार्यक्रम में धन्यवाद रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो

0: नमस्ते दोस्तों। भाई आज मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है। वो हुआ यूं कि अभी रास्ते में मुझे कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखे स्कूल जाते हुए। मुस्कुराते चेहरे, रंग बिरंगे बस्ते, एकदम साफ सुथरी जगमगाती वर्दियां। उन्हें देखकर मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए। चलो अब चलते हैं मीना से मिलने। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही मीना, स्कूल की छुट्टी के बाद कृष्णा, रोशनी और गोलियों के साथ घर वापस लौट रही है।
1: मीना याद है ना, आज हम सब घूमने जाएंगे पुराने किले में।
2: हाँ कृष्णा, ये भी कोई भूलने की बात है, वहाँ चल के हम खूब खेलेंगे और खाना भी खाएंगे।
3: खाना भी खाएंगे, गाना भी गाएंगे।
2: कृष्णा, रोशनी, गोलू, हम सब ठीक आधे घंटे बाद बड़े मैदान के पास मिलेंगे और वहाँ से चलेंगे
4: घूमने।
5: आधे घंटे बाद क्यों मीना, अभी चलते हैं ना।
2: गोलू, घर जाके मुंह हाथ धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, खाना लेंगे।
5: कपड़े क्यों बदलेंगे, स्कूल की वर्दी पहनी तो हुई है।
6: गोलू, अगर हम घर जाके अपनी वर्दी उतार के घर के कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर माँ हमारी वर्दी कैसे धोएंगे। बहन जी कहती है कि हमें स्कूल में हमेशा साफ सुथरी और इस्त्री की हुई वर्दी ही पहननी चाहिए। भूल गए
5: हैं? मैं तो 3-4 दिन तक पहनता हूँ अपनी वर्दी। देखो क्या मेरी वर्दी गंदी है।
3: गंदी है, बहुत गंदी है।
2: भूल गए गोलू, कल स्कूल में शिक्षा अधिकारी जी ने भी आना है। बहन जी ने कहा था कि हर बच्चे की वर्दी साफ होनी चाहिए और
5: पता है। और तुम मेरी वर्दी की चिंता मत करो, मेरी वर्दी साफ है, कुछ दिन पहले ही तो धुलवाई थी।
6: अच्छा भाई अब चलो, सर्दियों में वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है, समय से घूमने जाएंगे तो जल्दी लौटेंगे भी।
0: और थोड़ी देर बाद मीना और उसके दोस्त पुराने किले की तरफ चले। गोलू अभी भी स्कूल की वर्दी पहने हुए था जबकि मीना, रोशनी और कृष्णा कपड़े बदल के आए थे। किले में पहुंच के उन्होंने खूब मजे किए और फिर पकड़न पकड़ाई खेलते हुए।
1: गोलू और तेज,
7: तेज भागो गोलू, वरना मीना तुम्हें आउट कर देगी।
8: अरे गोलू तो गिर गया।
2: गोलू तुम ठीक तो हो ना?
5: हाँ मीना मैं ठीक हूँ।
7: अरे गोलू तुम्हारी वर्दी तो,
5: ओहो मेरी वर्दी पर तो कीचड़ लग गया, अब मैं कल स्कूल में क्या पहन के जाऊंगा।
6: तुम घर जाके ये वर्दी धुलवा लेना।
5: रोशनी, अंधेरा होने वाला है, अगर माँ ने अब मेरी वर्दी धोए भी तो ये कल तक सूखेगी नहीं।
2: तुम उदास मत हो गोलू, कुछ सोचते हैं। कृष्णा, क्या तुम्हारे पास स्कूल की एक और कमीज?
1: मेरे पास तो एक ही वर्दी है मीना, जो मैं रोज स्कूल से लौटने के बाद धुलवा लेता हूँ।
5: अब मैं क्या करूँ मीना।
2: चलो जल्दी से घर वापस चलते हैं।
0: मीना और उसके दोस्त जल्दी से वापस लौटे और जब गोलू अपने घर पहुंचा तो,
9: तुम्हें रोज कहती हूँ गोलू बेटा कि स्कूल में साफ वर्दी पहन के जाया करो, लेकिन नहीं, तुम तो स्कूल से लौटने के बाद अपनी वर्दी उतारते ही नहीं। अपने दोस्तों से कुछ सीखो, वो सभी रोज साफ वर्दी पहन के स्कूल जाते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर मैं ये गंदी वर्दी अभी धोऊं भी तो ये सुबह तक सूखेगी कैसे।
5: अब मैं क्या करूं माँ, कल स्कूल में शिक्षा अधिकारी जी ने भी आना है।
9: सबसे पहले तो हाथ मुंह धो के कुछ खा लो, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या करना है।
0: गोलू ने हाथ मुंह धो के कपड़े बदले, खाना खाया और अगले दिन के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब गोलू उठा तो,
5: माँ, माँ, अरे माँ कहाँ गई? पिताजी, पिताजी, माँ कहाँ है?
10: बेटा हो सकता है तेरी माँ गीता के घर गई हो, सुबह कह रही थी कि उसे कुछ मसाले देने हैं तो।
5: पिताजी यहाँ मेरी स्कूल की वर्दी पड़ी थी, क्या आपने देखी थी?
10: नहीं तो क्यों, क्या हुआ?
5: जी वो मैं अभी आता हूँ।
10: अरे कहाँ चला?
5: गीता दीदी के घर।
0: गोलू भागा भागा गीता दीदी के घर पहुँचा, लेकिन उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी। गोलू मुँह लटकाए वापस अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उसे मीना मिली।
2: गोलू उदास क्यों लग रहे हो?
5: मीना मेरी वर्दी पता नहीं कहाँ गई, माँ भी घर पे नहीं है। काश मैंने तुम सब की बात मानी होती, अगर मैंने दोपहर को ही घर के कपड़े पहन लिए होते तो मेरी स्कूल की वर्दी धुल गई होती।
2: तुम चिंता मत करो गोलू, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मीना तुम कहाँ से आ रही हो,
5: और तुम्हारे हाथ में ये लकड़ियाँ
2: एक दोस्त की मदद करनी है, इसलिए
5: दोस्त की मदद करनी है लकड़ियों से। मैं कुछ समझा नहीं।
2: सब समझ जाओगी गोलू, अभी मैं चलती हूँ।
0: मीना तो मुस्कुराती हुई वहाँ से चल दी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, भला लकड़ियों से वो किस दोस्त की मदद करने वाली है? आओ जरा देखे तो।
5: माँ ये लो लकड़ियाँ।
4: शाबाश मीना, ये लो गोलू की माँ लकड़ियाँ भी आ गईं। अब हम जल्दी से इन्हें जला के गोलू की धुली हुई वर्दी सुखा देंगे।
3: वर्दी सुखा देंगे, साफ सुथरा बना देंगे।
9: मीना बेटी, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारे आग जला के वर्दी सुखाने के सुझाव से अब मेरे गोलू की वर्दी जल्द ही सूख जाएगी।
3: जल्दी ही सूख जाएगी, स्त्रियों के जगमगाएगी।
0: और अगली सुबह जब गोलू सो के उठा,
5: अरे माँ मेरी वर्दी तो जगमग चमक रही है।
9: हाँ गोलू बेटा,
5: लेकिन ये सब
9: मीना की समझदारी से। कल उसी ने मुझे लकड़ियाँ जला के तेरी वर्दी सुखाने का सुझाव दिया था।
5: अब समझा, कल मीना मेरी मदद करने के लिए ही वो लकड़ियाँ लाई थी।
3: लकड़ियाँ लाई थी, वर्दी सुखाई थी।
5: मीना तुम?
2: हाँ गोलू, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ।
3: तैयार हो जाओ, स्कूल जाओ।
0: और उस दिन गोलू की जगमगाती वर्दी देखकर बहन जी और शिक्षा अधिकारी बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से गोलू ने रोज स्कूल से लौटने के बाद वर्दी उतार के घर के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, और अब वो रोज धुली हुई और बढ़िया सी स्त्री की हुई वर्दी पहन के ही स्कूल जाता है। देखा, बातों बातों में फिर सिखा गई ना नई बात अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
2: चाहे धूप हो या हो बारिश, गर्मी हो या सर्दी,
3: जगमग करते स्कूल में जाना साफ पहन के वर्दी।
0: वाह वाह वाह, क्या बात कही है मीना और मिट्ठू ने। आप सब भी साफ सुथरी वर्दी पहन के ही जाते हो ना स्कूल। शाबाश, चलो इसी बात पे हो जाए एक साफ सुथरा, मेरा मतलब है एक मजेदार गाना।

0: साहब वही सिकंदर।
1: भाई वाह, मजा आ गया। और अब वक्त है खेलने का।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
3: तोड़।
2: हाँ, मैं तुम सबको तीन कड़ियां बताकर एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
3: जी बहन जी।
2: ठीक है, तो सुनो पहली कड़ी। कभी मैं चलती धीरे धीरे, कभी मैं चलती तेज, छूती सबको नजर न आती, हूँ हैरत अंगेज।
4: हैरत अंगेज का मतलब क्या होता है बहन जी?
2: मिली, हैरत अंगेज का मतलब होता है हैरान कर देने वाली कोई चीज। बच्चों फिर से बोलती हूँ पहली कड़ी। कभी मैं चलती धीरे धीरे, कभी मैं चलती तेज, छूती सबको नजर न आती, हूँ हैरत अंगेज।
5: मैं समझ गया, सही जवाब है भोलू भैया की बकरी भूरी।
2: वो कैसे दीपू?
5: बहन जी वो इसलिए क्योंकि भूरी कभी धीरे धीरे चलती है और कभी बहुत तेज।
2: अच्छा, और भूरी हमें नजर भी नहीं आती। भूल गए, छूती सबको नजर ना आती।
5: ओ हाँ बहन जी, ये तो मैं भूल ही गया था।
6: बहन जी दूसरी कड़ी बताइए ना।
2: ठीक है सोमा। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। मेरा कोई रूप नहीं है, ना ही कोई रंग, अगर मैं चलना बंद करूं तो रुक जाए जीवन।
7: क्या हो सकता है?
8: क्या हो सकता है?
7: जीवन समझ नहीं आ रहा।
9: तीसरी कड़ी भी बताइए ना बहन जी।
2: ठीक है कृष्णा। लो बच्चों सुनो तीसरी कड़ी। अपनी इस पूरी धरती पर हर एक जगह मैं रहती, नदी नहीं हूँ फिर भी सब कहते के मैं हूँ बहती।
4: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है हवा।
2: बिल्कुल सही जवाब मीना। तो मजा आया ना बच्चों?
3: बहुत मजा आया बहन जी।
1: भाई मजा तो हमें भी खूब आया। तो जल्दी मुलाकात होती है एक नई कहानी, नए गाने और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
10: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: गोपी चंद, पात्र परिचय आकाश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य यश।
2: क्या तुम भूतों को मानते हो?
3: भूत सर, सर सर क्या
2: भूत खेड़ी में? चलो हमें आज ही निकलना होगा।
1: रूपचंद और गोपी चंद भूत खेड़ी पहुंच जाते हैं। सरपंच और गांव वालों से पूछते हैं,
2: सरपंच जी आखिर बात क्या है? मामला कुछ गड़बड़ा सा रगला है।
4: क्या कहें बाबूजी, जब से तांत्रिक दमदम बाबा को खोपड़ी मिली है तब से कभी कुएं का पानी लाल हो जाता है तो कभी गांव के तालाब में बाबा कुछ पत्थर फेंक देते हैं तो आग निकलती है। बाबूजी जरूर गांव पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए दमदम बाबा साधना करेंगे गांव की खुशहाली के लिए।
5: सर मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, यह सब तो कोरी बकवास है।
4: हुजूर ऐसा न कहिए, दमदम बाबा अभी आपको तालाब में आग निकलते हुए दिखा सकते हैं और कुएं का लाल पानी तो आप देख ही सकते हैं।
2: तो चलो फिर बाबा के पास चलते हैं।
1: गांव के तालाब पर तांत्रिक दमदम बैठा था। पास ही एक बर्तन में मिट्टी के तेल में कुछ ठोस टुकड़े पत्थर रखे हुए थे। बाबा ने कुछ टुकड़े उस बर्तन में से उठाए और पानी में फेंके, सचमुच आग की चिंगारियां निकल रही थी।
3: गोपी जी वाकई यहाँ भूत परेत है, चलिए मैंने तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है, भाग चले।
2: रूपचंद ये क्या बचपना है, तुम्हारी एक नादानी से गोपीचंद का नाम बदनाम हो जाएगा।
3: सर मैंने कातिलों को पकड़ा, चोरों व आतंकवादियों को जकड़ा, लेकिन भूत का यह नया कैसा है, इसीलिए डर लग रहा है। भूत क्या?
2: जैसे मेरे कहने से तुम एकदम डर गए, यही डर इन गांव वालों के दिमाग में घर कर गया है।
1: गोपी चंद और रूप चंद बाबा की अंधेरी डरावनी कुटिया के अंदर जाते हैं। बाबा अपनी साधना में लीन थे।
6: सर देखिए बाबा कितने ज्ञानी हैं, आज भी केमिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं।
2: ओह तो ये केमिस्ट्री सारी भूत प्रेतों की हिस्ट्री है।
1: गोपीचंद सरपंच और गांव वालों को बुलाते हैं।
2: सरपंच जी डरने की कोई बात नहीं है, आपके गांव का भूत मिल गया है, ये रहा दमदम बाबा, यही आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं।
3: जी कैसे?
2: भाइयों रसायन शास्त्र से पानी में आग लग जाती है, ये रहे सोडियम के टुकड़े जिन्हें पानी में डालने पर आग लग जाती है, और कुएं का पानी भी इसने किसी रसायन से लाल किया है।
7: गोपी जी मुझे माफ कर लीजिए, पैसों के लालच में मैंने गांव वालों को मूर्ख बनाया।
2: साथियों विज्ञान से आदमी असमान में उंड सकता है और पानी में कुछ रसायनों से आग लगा सकता है, तो ये भूत प्रेत नहीं विज्ञान है।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर लेसन व्हिच इज लेसन नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द लेडी और द टाइगर एंड द राइटर of this lesson is Frank R. Stockton and मैं संदीप त्रिवेदी आज एक बार फिर क्लास 10th की गोल्डन रेज जो बुक है उसका 7th लेसन लेकर के आया हूँ। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट। फर्स्ट अबाउट द ऑथर Frank Richard Stockton, April 18 to April 20, 1902, यानी इनका पूरा नाम था Frank Richard Stockton और इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1834 और इनकी जो मृत्यु हुई, जो डेथ हुई वो हुई April 20, 1902। वॉज एन अमेरिकन राइटर, ये अमरीकी लेखक थे एंड ह्यूमरिस्ट और एक हास्य कलाकार भी थे। बेस्ट नोन टूडे फॉर अ सीरीज ऑफ इनोवेटिव चिल्ड्रंस फेरी टेल्स और ख़ासकर इन्हें आज बहुत ही इन्होंने जो नायाब बाल परिकथाएँ पति परिकथाओं की जो रचना की उसके लिए इन्हें जाना जाता है। दैट वर वाइडली पॉपुलर ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड, जो कि पिछले दशकों में बहुत ही प्रसिद्ध रही। डेकेड्स मतलब दशक, 10 वर्ष का एक समय ऑफ द 19th century, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत ही फेमस रहा। अब अबाउट द टेक्स्ट, द लेडी और द टाइगर वॉज पब्लिश्ड इन 1882, ये 1882 में प्रकाशित हुआ। While the first half of the story provides a glimpse of a semi-barbaric king, जो इस कहानी का पहला भाग है वो बताता है कि ये राजा किस प्रकार अर्ध असभ्य के रूप में दर्द दिखाई देता है, whose method of giving just judgments, जो कि उसका न्याय देने का, किसी के भी अपराधी के साथ जो न्याय करने का उसका एक तरीका है, was fanciful, जो पूरी तरह से कल्पना से भरा हुआ है, वो यानी अपने आप में अपने उसको जो अच्छा लगता है वो वैसा ही करता है। द रिमेनिंग हाफ टचेस अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और जो इसका पार्ट टू है उसमें राइटर ये बताते हैं और ख़ासकर जो मानवीय मनोविज्ञान है उसको छूने की कोशिश करते हैं। एज स्टॉकटन हिमसेल्फ हैज रिटन, जैसा कि स्टॉकटन ने भी लिखा कि दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स स्टोरी ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये मानवीय हृदय की एक कहानी है, विच लीड्स टू मेजेस ऑफ, जो कि हमें पैशन लव हेट, इसमें प्रेम भी है, इसमें जुनून भी है, इसमें नफरत भी है एंड एक्साइटमेंट और इसमें उत्सुकता भी है। द चार्म ऑफ द स्टोरी लाइज इन द सस्पेंस लेफ्ट एट द एंड, खासकर इस कहानी की जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि जो सबसे अंत में जो एक सस्पेंस छोड़ दिया जाता है इस कहानी में, हमें सोचने के लिए कहानी मजबूर कर देती है, विच इज लाइकली टू अराउज अ चेन ऑफ क्यूरियोसिटीज इन रीडर, और उससे जो पाठक हैं उनके दिमाग में अत्यधिक उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है इस कहानी के प्रति। सो नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 7 विद द टेक्स्ट द लेडी और द टाइगर। ओके, पार्ट 1। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग हु वाज क्रूड एंड वेरी मच लाइक अ सेवेज, बहुत समय पहले एक राजा रहता था जो कि बहुत ही क्रूर और मानिए कि लगभग बहुत ही खतरनाक वो राजा था। He had learned some manners from his Latin neighbors. उन्होंने अपने जो लैटिन पड़ोसी थे उनसे कुछ ऐसे तरीके सीख लिए थे, बट मोस्टली ही वॉज बारबरिक। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, वो असभ्य था, लाउड बहुत जोर से बोलने वाला, एंड ग्रफ और बहुत ही कठोर था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर। उन इस राजा का अपने पड़ोसियों के प्रति या किसी के भी प्रति कोई इसके मन में दया नहीं थी। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट फैंसी, वो बस कल्पनाओं में जीने वाला व्यक्ति था। एंड इवन ग्रेटर एंथुजियाज्म, और हमेशा उत्साही, बहुत उत्साहित रहता था वो, बिकॉज क्योंकि ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग। भाई राजा था, उसके पास पावर था, ताकत थी, राजा कुछ भी कर सकता है। ही हैड सो मच अथॉरिटी, यानी अधिकार कुछ भी करने का। ही वॉज एबल टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंसीज इनटू रियलिटी। इसी वजह से उसकी जो कल्पनाएं होती थी, उसके मन में जो विचार होते थे, उनको वो हकीकत में भी उतार देता था। भाई राजा है तो कौन रोकने वाला है। और एटलीस्ट ही ट्राइड टू, और नहीं भी अगर वो कर पाता था तो कम से कम वो कोशिश जरूर करता था। हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉर्मली काम व्हेन एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। जब चीजें सब कुछ ठीक रहती थी तो उसका व्यक्तित्व बहुत शांत रहता था। यानी जब चीजें ठीक रहती थी तो वो आमतौर पर कोई ऐसी हरकत नहीं करता था या किसी को परेशान नहीं करता था। काम, calm, शांत। When there was a little hitch, लेकिन किसी काम में जरा सी हिच, अड़चन अगर आ जाती थी, however he was exultant and happy, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा आनंद से भर जाता था, खुश हो जाता था वो। अब बस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होनी चाहिए एक बार। He loved it, उसको ये सब बहुत पसंद था। Past simple, loved, love की second form. When Things went wrong, ये भी second form, जब चीजें गलत हो जाती थी, because क्योंकि that means, इसका मतलब ये था that he could then correct them. तो फिर राजा का यही मानना था कि जब भी कुछ गड़बड़ होगी उसको केवल वो ही ठीक करेगा और कोई नहीं कर सकता। He loved to make the crooked straight. वो तुरंत चीजों को अपने तरीके से ठीक करने में विश्वास रखता था। टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेसेस इन लाइफ, वो जो चाहता था वो करता था। वो कैसे भी किसी को भी सजा दे सकता था, किसी को भी वो इनाम दे सकता था, जो उसके मन में आए वो कर सकता था। ही डिसाइडेड दैट देयर शुड बी अ वे टू एड कल्चर टू द लाइव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट। उसने एक बार ये निश्चय किया कि जो उसका तरीका है उसमें वो कुछ और चीज़ों को जोड़ेगा, कुछ और तरीकों को शामिल करेगा, खासकर न्याय देने के तरीके में कुछ परिवर्तन करेगा। His method was the public arena, और उसका जो एक सबसे प्रमुख तरीका था वो क्या था, एक अखाड़ा। There, वहाँ humans and beasts performed before audiences, और उस अखाड़े में इंसान और जानवर एक साथ सामने आते थे और अपना अपना काम करते थे। बट हिज फैंसीज असर्टेड देमसेल्व्स हियर, लेकिन यहां पर भी उसकी कल्पना शक्ति इसमें शामिल हो गई। अखाड़ा तो बनाया उसने, लेकिन उसमें भी उसने अपनी कल्पना को जोड़ दिया। क्या, द अरीना दैट ही बिल्ट, जो अखाड़ा उसने बनाया, अरीना मतलब ARENA, जो अखाड़ा उसने बनवाया वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लेडिएटर, वो तलवारबाजों को सम्मानित करने का कोई अखाड़ा नहीं था। जो युद्ध करते थे, जो तलवार चलाते थे, ग्लेडिएटर्स पुराने जमाने में उन लोगों को बोला जाता था जो तलवारबाज हुआ करते थे, तलवार चलाने वाले, उन्हें सम्मानित करने का वो अखाड़ा नहीं था। इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट्स टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश, ये अखाड़ा जानवरों के आपस में लड़ने के लिए भी नहीं था, जब तक कि वो एक दूसरे को मारना दे, इसके लिए भी नहीं था ये। इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग religious heretics to the loyals. ये जो विधर्मी लोग होते थे, जो धर्म का पालन नहीं करते थे, उन्हें बाघों के सामने, उन्हें शेरों के सामने धकेल देने के लिए भी नहीं था यह अखाड़ा. इट वॉज यह अखाड़ा ही बिलीव्ड, वो मानता था फॉर द पर्पज ऑफ वाइडनिंग एंड डेवलपिंग द मेंटल एनर्जीज ऑफ हिज पीपल. वो ये मानता था कि ये अखाड़ा तो उसके लोगों की मानसिक जो ऊर्जा है, ताकत है, उसको बढ़ाने के लिए है. इट वॉज अ वास्ट एम्फी थिएटर. ये बहुत ही बड़ा एम्फी थिएटर. एम्फी थिएटर वो होता है स्टूडेंट्स जो कि उसमें सीढ़ियां होती हैं वन बाय वन, जैसे थिएटर में होती हैं वैसी, लेकिन ये चारों तरफ से बंद रहता है, बस ऊपर से खुला रहता है. चारों तरफ से ये बंद रहता है लेकिन ओपन रहता है. तो इट वॉज अ वास्ट एम्फी थिएटर, बहुत बड़ा एम्फी थिएटर विद एन सर्कलिंग गैलरीज. इसमें बहुत सारी गैलरियां थी, मिस्टीरियस वॉल्ट्स, इसमें रहस्यमय दरवाजे थे एंड अनसीन पैसेजेस, और कभी न देखे गए गलियारे हुआ करते थे. इट वॉज टू बी अ मीन्स फॉर पोएटिक जस्टिस. पुराने जमाने में अरस्तु के समय में जो पोएटिक जस्टिस की एक कल्पना थी, उसको साकार करने का एक तरीका था, काल्पनिक न्याय देने का एक उसका तरीका था. इट वॉज टू बी अ प्लेस वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड और वर्च्यू रिवॉर्डेड ऑल बाई चांस. ये एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहां पर अपराधी को सजा या अपराधी को पुरस्कार दोनों ही एक साथ मिल जाया करते थे तुरंत. व्हेन द किंग वॉज इंटरेस्टेड इन पीपल एंड देयर क्राइम, जब राजा को लोगों में और लोगों के अपराध में रुचि होती थी, कि वो ही वुड डिक्टेट दैट, तो फिर वो ये आदेश देता था कि देयर फेट शुड बी डिसाइडेड इन द अरीना, इनके भाग्य का निर्णय अखाड़े में होगा. दिस किंग न्यू नो ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर किंगडम्स. दूसरे राज्यों की जो परंपराएं थी या वहां पर जो तरीके अपनाए जाते थे, उससे इस राजा को कोई मतलब नहीं था. किंगडम, राज्य, इस राजा को इससे कोई मतलब नहीं. हिज ओनली एलिगेंस वॉज टू हिमसेल्फ एंड हिज ओन फैंसीज. उसकी वफादारी केवल और केवल अपनी कल्पना शक्ति के प्रति ही थी, केवल उसके और उसकी कल्पनाओं के बीच. जो कुछ वो सोचता था उसी के लिए वो चाहता था, मैं जो सोचता हूं वही मैं करूंगा. इस फैंसी, ये कल्पनाएं, द चांस, फेट, डिसीजन इन द अरीना, ये अखाड़े में ही भाग्य का निर्णय होगा, केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बरिक आइडियलिज्म. और ये सब क्यों आया उसके दिमाग में, उसकी जो रोमानी एक असभ्य, उसका जो आदर्शवाद था, उसकी वजह से उसको ये सब बातें दिमाग में. When all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on one side of the arena, अखाड़े में जब सब लोग अपनी अपनी दर्शक दीर्घाओं में, गैलरीज, आ जाया करते थे, बैठ जाया करते थे, और राजा स्वयं बहुत ऊंचे थ्रोन, सिंहासन पर, इस अखाड़े के एक साइड में एक तरफ बैठ जाता था, he would give a signal, तब वो एक इशारा करता था. क्या इशारा होता था? A door beneath him would open. राजा के सिंहासन के नीचे की तरफ एक दरवाजा होता था, वो खुलता था, एंड द accused पर्सन वुड स्टेप आउट into द empty थिएटर, और जो अपराधी होता था वो इस अखाड़े के अंदर प्रवेश करता था. डायरेक्टली अपोजिट द accused, इस अपराधी के ठीक सामने, देर वर टू डोर्स, दो दरवाजे होते थे, एग्जैक्टली अलाइक, दोनों के दोनों एक जैसे, एंड साइड बाई साइड, और दोनों एक साथ, एक के बाद एक के पास में एक दूसरा. द पर्सन ऑन ट्रायल, जो अपराधी होता था, जिसका जिसकी जिसके मामले की सुनवाई हो रही है, हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स, उसको इन दरवाजों तक जाना पड़ता था, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उनमें से एक दरवाजे को खोलना होता था। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वांटेड, जो चाहता वो दरवाजा खोल सकता था, उसको कोई प्रेशर नहीं था। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर फ्रॉम द किंग, राजा की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, और हिज कोर्ट या फिर उसके जो कर्मचारी थे उनकी तरफ से भी कोई दबाव नहीं था। द ओनली इन्फ्लुएंस वॉज दैट ऑफ फेट और लक, केवल प्रभाव था तो किसका था, उसके भाग्य का। अपराधी का जो भाग्य होगा वैसा ही परिणाम होगा, वही रिजल्ट होगा। कैसे, आगे देखते हैं। इफ द अक्यूज्ड ओपन्ड वन डोर, अगर अपराधी एक दरवाजा खोलता था, अ हंग्री, एक भूखा टाइगर बाघ केम आउट, बाहर आता था। इट वॉज द फियर्सेस्ट एंड मोस्ट क्रूएल दैट कुड बी फाउंड, और ये जो बाघ है वो बहुत ही खतरनाक, और जितना खतरनाक जितना भयंकर ये बाघ हो सकता था उतना बाघ ढूंढ करके लाया जाता था। एंड इट वॉज इमीडिएटली जम्प्ड ऑन हिम, और ये बाघ तुरंत उसके ऊपर कूदता एंड टोर हिम, और इस अपराधी को टुकड़े टुकड़े कर देता था एज अ पनिशमेंट, सजा के रूप में, यही सजा होती थी अपराधी की फॉर हिज गिल्ट, उसकी जो भी अपराध है, वो अपराध उसने किया नहीं किया भगवान जाने, अगर अंदर से बाघ निकला है तो यही उसकी सजा है, कोई फांसी नहीं, कोई उम्र कैद नहीं। When the fate of the criminal was thus decided, अगर किसी अपराधी का भाग्य का निर्णय जब इस प्रकार होता था, sad iron bells were rung, तो दुख भरी घंटियां बजाई जाती थी, and great wail went up from the hired mourners who were posted outside the arena, और कुछ लोगों को इसी काम के लिए नियुक्त किया जाता था, उनका काम रोने धोने का, विलाप करने का होता था, और वो जो कि अखाड़े के बाहर होते थे वो जैसे ही ये घंटियां बजती थी रोना शुरू कर देते थे। द ऑडियंस वेंट होम विद द बोर्ड हेड्स, झुके हुए सिर लेकर के, निराश होकर के जो जो जनता होती थी वो चली जाती थी, और एंड डोलफुल हार्ट्स, दुखी मन, सैड दुखी, एंड वन सो यंग एंड फेयर और सो ओल्ड एंड रेस्पेक्टेड, एक इतना युवा बहुत ही सुंदर या फिर इतना बुजुर्ग बहुत आदरणीय, शुड हैव मेरिटेड सच अ फेट, उसके भाग्य में इस प्रकार मरना लिखा था, इस प्रकार उसको सजा मिलना लिखा था। इफ ही ओपन्ड द अदर डोर, अगर वो दूसरा दरवाजा खोलता था, अ लेडी केम आउट, तो उसमें से कौन आता था बाहर, एक महिला बाहर आती थी। द किंग ऑलवेज चूज द लेडीज हिमसेल्फ, और हमेशा महिलाओं का चयन राजा खुद करता था। ही मेड श्योर दैट, वो ये पक्का करता था कि ईच वाज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन एज द अक्यूज्ड एंड दैट शी वाज ब्यूटीफुल, कि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि लड़की जितना व्यक्ति बड़ा है उतनी बड़ी हो और उतनी सुंदर हो, उसी के आसपास की हो। द रूल वॉज दैट, और नियम ये था, द अक्यूज्ड वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली, जैसे ही वो लड़की अगर अंदर से बाहर आती थी तो तुरंत अपराधी को उसके साथ विवाह कर दिया जाता था। इट डिड नॉट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड, इस बात का कोई मतलब नहीं था कि वो बंदा पहले से शादीशुदा है या नहीं है, एंड हैड अ फैमिली, उसका कोई परिवार है कि नहीं है। द लेडी वॉज अ साइन ऑफ हिज इनोसेंस, और महिला का बाहर आना का मतलब था अपराधी निर्दोष है, चाहे उसने अपराध किया हो या ना किया हो। सो इफ द अक्यूज्ड ऑलरेडी लव्ड अनदर, अगर अपराधी किसी को प्रेम भी करता था, दैट अदर वॉज to be forgotten, तो दूसरी महिला को उसको भूलना होता था। It was the king's way, यही राजा का तरीका था। He allowed nothing to interfere with his design, उसका जो तरीका था उसमें वो किसी को भी बीच में बोलने की अनुमति नहीं देता था। Indeed, वास्तव में immediately आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, जैसे ही महिला आती, अनदर डोर बीनीथ द किंग ओपन, राजा के नीचे एक और दरवाजा होता था वो खुलता था, एंड आउट केम अ प्रीस्ट, और उस दरवाजे में से एक पुजारी बाहर निकलता, म्यूजिशियंस संगीतकार बाहर निकलते, सिंगर गाना गाने वाले बाहर निकलते, एंड अ ट्रूप ऑफ डांसर्स और नाचने वालों का एक समूह भी बाहर आता था। इन प्रोसेशन दे ऑल चेयरफुली मार्च एंड सैंग फॉर द छपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द अरीना, और अखाड़े के बीचों बीच खड़े होकर के वो इस राजा, इस जो नव दंपत्ति है, नया जो ये जोड़ा है जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए गाते थे, बजाते थे, नाचते थे और धूम मचाते थे, खुश हो जाते थे। द बेल्स रैंग, घंटियां बजती थी, द ऑडियंस शाउटेड, जो जनता

यही राजा का अर्ध असभ्य तरीका था ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, न्याय करने का, एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस। और इसके इसकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता था, क्योंकि राजा ने जो निर्णय कर दिया वो कर दिया। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वाज बिहाइंड, लेकिन अपराधी को यह पता नहीं होता था कि किस दरवाजे के पीछे महिला है और किस दरवाजे के पीछे बाघ। He opened whichever door he wanted, जो दरवाजा वो चाहता था उसको वो खोल सकता था। He opened whichever door he wanted, जो दरवाजा वो चाहता था उसी को वो खोल देता था। To without knowing whether in the next instant, उसको पता नहीं होता था कि अगले ही क्षण He was to be eaten, या उसको खा लिया जाएगा और मैरिड या उसका विवाह हो जाएगा। On some occasions, कभी कभी the tiger came out of one door, कभी बाघ इस दरवाजे से आता कभी उस दरवाजे से, and the children, and on other occasions it came out of the other door. In this system, इस व्यवस्था में there was instant punishment, तुरंत यहां पर सजा थी for guilt, अपराध के लिए, दोष के लिए, and instant reward, और तुरंत ही पुरस्कार भी था, for innocence, अपनी निर्दोष होने के लिए। Whether the accused wanted the reward, चाहे अपराधी को ये पुरस्कार चाहिए होता या नहीं चाहिए होता, उसको तो बस लेना ही पड़ता था। There was no escape from the judgment of the किंग्स एरिना, राजा के इस अखाड़े से बचने का कोई तरीका नहीं था। द इंस्टीट्यूशन वॉज अ पॉपुलर वन, ये जो तरीका है वो बहुत ही प्रसिद्ध था। वेन द पीपल गैदर्ड टूगेदर, जब लोग इकट्ठे होते थे ऑन वन ऑफ द ट्रायल डेज, किसी ऐसे ही सुनवाई के दिन, दे नेवर न्यू, वो नहीं जानते थे वेदर कि आज देवर टू विटनेस अ ब्लडी स्लॉटर, की आज उन्हें कोई बहुत ही खूनी हत्याकांड देखना पड़ेगा, और फेस्टिव वेडिंग या फिर एक उत्साह, एक उत्सव के साथ विवाह को देखना है, उनको कुछ नहीं पता होता था। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यही अनिश्चितता का तत्व यूजुअली मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग, इसी से ही ये अवसर बहुत ही रुचिकर हो जाता था, देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज, नहीं तो दूसरा इसका अर्थ हो सकता था। द पीपल वर एंटरटेन्ड, लोगों का मनोरंजन किया जाए, लोग मनोरंजित हो सकें, एंड नो वन डाउटेड दैट जस्टिस वॉज बीइंग सर्व्ड, और जो न्याय होता था उसमें कोई भी शक नहीं कर सकता था। ऑल बिलीव दैट, हर कोई ये मानता था कि द अक्यूज्ड हैज His fate in his own hand, कि जो अपराधी है उसी के हाथ में उसका भाग्य है, इसके पीछे की भावना ये थी। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल कम विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन, टिल देन गुड बाय।

0: मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रूहानी और शिवांशी, तुम्हें पता है मैं पहले किसी से बात नहीं करती थी, अब तुम दोनों से बात करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ, पहले पहले तो कोई इतना बात नहीं करता है, पहले पहले तो सब शाय ही होते, फिर धीरे धीरे जब उनके साथ रहते हैं तब बातें करने लग जाते।
3: जब मैं भी रूहानी से पहली बार रेडियो में मिली थी ना, तब मैं भी इतना बातें नहीं करती थी कि हाँ क्या सोचती होगी मेरे बारे में। फिर बाद में जब हाँ अच्छे दोस्त बन गए, फिर हमने भी बातें करनी शुरू कर दी।
4: क्या बातें हो रही हैं भाई, बातों के बारे में ही बातें कर रहे हो तुम लोग तो आज।
2: हाँ।
4: अच्छा, मतलब ये भी पॉसिबल है कि बातों के बारे में भी कोई बात करे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
2: दीदी, हम तो पहले से ही करते हैं।
4: दीदी,
2: हाँ, दीदी।
4: ओके, तो चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज करते हैं बातों के बारे में बातें, और देखते हैं कि बच्चों की दुनिया आखिर है कैसी और क्या क्या होता है इसमें। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और कौन कौन है आज हमारे साथ?
3: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
1: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
5: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6th में हूँ।
6: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
4: तो क्या बातें हो रही थी भाई? अच्छा, कौन कौन यहाँ पे, सबको लगता है कि मैं तो बहुत बातें करती हूँ या करता हूँ, और किसको लगता है मैं मुझे इतना बातें करना नहीं आता?
3: दीदी, हम सबको ही बातें करनी आती, कभी चुप ही नहीं होते हम तो।
2: हाँ,
5: मैं क्लास में इतनी बातें नहीं करता हूँ, मतलब जब मेरे को किसी काम की जरूरत होती है मैं तभी मांगने जाता हूँ, ऐसे मैं बातें नहीं करता ज्यादा।
4: अच्छा, और शिक्षा?
1: मैं भी क्लास में किसी से बात नहीं करती, बस घर पे या अपने है ना रूहानी शिवांशी इन्हीं लोगों से ज्यादा बात करती हूँ, बाकी मैं भी शांत रहती हूँ।
4: अच्छा,
1: हाँ।
4: तो क्लास में आप लोग बातें कम करते हो, ऐसा क्यों? मतलब फ्रेंड्स तो होंगे आप लोगों के?
5: हाँ, पर जब क्लास चल रही होती हम तब नहीं करते।
4: हाँ, क्लास चल रही होती तब तो बातें नहीं करनी होती है,
5: और बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं और हंसते रहते हैं तो उन बच्चों को तो पनिशमेंट मिलती है।
4: अच्छा, हाँ वो तो बात ठीक है, जब क्लास चल रही होती है उसके बीच में बातें तो बिल्कुल नहीं करना होता है। और बाद में बातें करते हो लंच टाइम में?
5: हाँ, लंच टाइम में करते हैं।
4: शिक्षा?
1: हाँ, लंच टाइम में बात करते तो है पर तब भी इतना नहीं करते क्योंकि टीचर क्लास में होते हैं।
4: ओके, हाँ तो मतलब आप बातें करते हो, बस टीचर पढ़ा रहे हैं इसलिए आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ध्यान रखते हो।
1: हाँ।
4: ओके, हाँ रूहानी?
6: दीदी, हम तो क्लास में भी बातें करते हैं लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं करते कि टीचर डांटती है, जब टीचर पढ़ाती है तब हम ध्यान देते हैं और जब टीचर कुछ फ्री बैठ जाती है तब हम बातें करते हैं।
4: ओके, शिवांशी?
3: दीदी, मैं तो पूरे दिन ही चुप नहीं होती, बस मम्मी को ये बोलना पड़ता है कब चुप होएगी, तू कब सोएगी।
4: और स्कूल में?
3: स्कूल में भी कई कई बार तो मैंने टीचर्स के सामने ही बातें करी है।
4: तो फिर डांटनी पड़ी?
3: नहीं, डांटनी पड़ी, फ्रेंडली टीचर्स कह के करी है ना। एग्जाम्स में भी उनके साथ बहुत बातें करी है, कभी एग्जाम हो गया टाइम पास नहीं हो रहा तो हाँ टीचर से ही बातें करनी शुरू कर देते हैं फिर
4: एग्जाम होने के बाद।
3: हाँ जी,
4: हमारे लेकिन दोस्त तो होते हैं, हम दोस्तों से तो बातें करते ही हैं, है ना?
6: हाँ।
4: कि जो हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं और बड़ों से बातें करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या बातों में अंतर आ जाता है, बताओ?
6: दीदी, जब हम दोस्तों से बातें करते हैं तो हर सीक्रेट शेयर करते हैं, जो हमने शैतानी करी है वगैरह वगैरह, और जब बड़ों से करते हैं मम्मी पापा से तो शैतानी नहीं बताते ना क्योंकि वो डांट लगाएंगे फिर।
4: राघव?
5: दीदी, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे सब सीक्रेट बताए थे अपने, पर उसने स्कूल ही छोड़ दिया।
4: होता है, स्कूल छोड़ना पड़ता है कभी कभी ना।
1: जब बड़ों से बातें करते हैं हम तब है ना डर लगता है कि उनको ये बात बताएंगे तो वो गुस्सा तो नहीं करेंगे, और अगर अपने दोस्तों को बताते हैं तो उनको पूरा खुल के बताते हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता है, वो हमें बताते भी हैं कि हाँ हमको ऐसा करते तो सही रहता, और मम्मी को बताते हैं तो वो गुस्सा भी करते हैं। तो डर लगता है, इसीलिए दोस्तों को बताने में अच्छा लगता है कि हाँ उनको बता दिया, पर मम्मी पापा को बताते हैं तो डर लगता है।
4: मम्मी पापा को बताते तो कभी कभी डर लगता है क्योंकि हमने मस्ती की होती है ना। और आपको क्या लगता है शिवांशी?
3: दीदी, दोस्तों के सामने कुछ भी बोल दो बुरा नहीं मानते, पर अगर पेरेंट्स के सामने कोई ऐसी शैतानी पता लगी जो मतलब स्कूल में लड़ाई होगी तो फिर घर पे डांट पड़ती है, इसलिए पेरेंट्स के सामने थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है।
4: हाँ, बस इतना अंतर होता है ना बातों में। ओके, तो फ्रेंड्स के साथ जब बातें करते हो तो किस बारे में बातें करते हो? सीक्रेट्स तो बताते हैं, शैतानियां बताते हैं, और किस बारे में बात करते हो?
3: पूरे दिन क्या क्या हमने करा, क्या खाया, क्या किया,
4: ये बातें करते हो?
1: हम स्कूल से जब आते हैं तो मम्मी पूछती है आज स्कूल में क्या हुआ, जैसे कि टेस्ट था आज, पूछेंगी मम्मी क्या आज तुम्हारा टेस्ट था, कितने मार्क्स आए और स्कूल में क्या हुआ, तुम्हें पनिशमेंट मिली, ऐसे मम्मी को पूरा बताते हैं स्कूल से आने के बाद। फिर वो खाना लेके आती है, हम खाते हैं और उनको बताते जाते हैं, देखो मम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ था स्कूल में। फिर वो हंसती भी है, अगर हमारी लड़ाई हुई होती है ना तो गुस्सा हो जाती है, बोलती है ऐसा नहीं करना, शांत रहना चाहिए, कुछ समझाती है फिर हमें।
4: मतलब दिन भर की पूरी सब बातें बता रहे हैं। ओके, और रूहानी?
6: दीदी मैं तो अपने पापा को ना कुछ अच्छी चीज हुई वही बताती हूँ, क्योंकि जो शैतानी होती है वो तो मैं ही हैंडल कर लेती हूँ, इसलिए पापा को नहीं बताती, ताकि सिर्फ शाबाशी ही मिलती है, वाह 10 में से 10 मार्क्स लाई आज, ये शाबाशी मिली।
4: अरे वाह, मार्क्स अच्छे आते तो बताते हैं ना।
5: दीदी हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो ना, जैसे उनके कम मार्क्स आते या फिर 0 मार्क्स आते तो वो बोलते हैं, वो पेज ही फाड़ देते हैं वो वाला, और घर जाके मम्मी को बोलते हैं आज तो कोई टेस्ट ही नहीं हुआ था मैम, भूल गए थे।
4: अच्छा, तो बाद में तो पता चलता होगा घर वालों को कि टेस्ट तो हुआ था।
5: नहीं, वो पेज ही फाड़ देते हैं ना,
4: पेज ही फाड़ देते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल पता चल जाता है ऐसे में, और जब पता चलता है फिर तो क्या हो सकता है।
3: दीदी मैं तो मम्मी को ना जब वो कुछ ज्यादा, जैसे कभी अवार्ड मिला या कोई टीचर से कोई शाबाशी मिली, मैं तो गली में से मम्मी मम्मी चीखती घर पे आके मम्मी को बताती हूँ, फिर तो
4: इतनी खुशी होती है ना शेयर करने में।
3: जिस टाइम मतलब ऐसे लड़ाई हो जाती है उस टाइम जैसे शांति से आती हो कि हाँ मेरे से तो कोई शांत कोई और है ही नहीं, जब खुशी होती है तो गली में से चीखती चीखती आती हूँ मम्मी मम्मी,
4: पहले से
3: मम्मी कहते घर पे आके बता लिया कर,
4: इतनी खुशी होती है ना फिर हैंडल करनी मुश्किल होती है, पहले से ही बोलते हुए आते हैं,
3: ज्यादा ही खुशी बाहर निकल जाती है।
4: अच्छा, आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम बात करते हैं, मतलब किसी से बोलते ही नहीं है, एकदम बात नहीं करते हैं?
6: हाँ दीदी, मेरी स्कूल में है।
4: है ना, सबके क्लास में होंगे?
3: मेरी क्लास में भी है।
4: तो क्या लगता है आपको, कुछ बच्चे बातें इतनी करते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं करते, ऐसा क्यों?
6: पता नहीं, उनके मुंह से ही ऐसा लगता है, बहुत सीधे है, बैठे रहते हैं, ना पढ़ाई में ऐसे ना कुछ बोलते हैं। वो बच्चे ऐसे होते कि ना उनको देख के ही मुंह से लगता है कि कुछ नहीं बोलते, कुछ पढ़ते भी नहीं है, कुछ नहीं करते, सारे टीचर्स से भी मार खाते तब भी कुछ नहीं बोलते, उनको बोलते हुए देखना ही बहुत रेयर होता है।
4: अच्छा, मतलब वो सीरियस बैठे रहते हैं बस।
6: हाँ।
4: ओके, हाँ राघव।
5: दीदी वो है ना, जब 1 साल उनको हो जाते हैं ना तो वो सबसे ज्यादा क्लास में वही मस्ती करते हैं।
4: अच्छा, मतलब शुरू शुरू में जब नए आए होते हैं तब चुप होते हैं।
5: हाँ।
4: उसके बाद मस्ती करने लगते हैं ना।
5: हाँ।
4: ओके,
1: है? मेरी क्लास में तो दीदी है ना बहुत बच्चे ऐसे हैं, पर अभी वो है ना प्रिंसिपल से भी शिकायत कर देते हैं, इस क्लास में ना बहुत ऊधम होता है, ये बच्चे ऊधम करते हैं, और वो शांति से रहते हैं तो मुझे लगता है कि उनको है ना उदम नहीं पसंद होगा, इसीलिए शांत रहते हैं वो।
4: अच्छा, तो मतलब खुद भी नहीं करते और
1: दूसरों को भी नहीं करने देते।
4: हाँ, शिकायत भी कर देते हैं।
1: हाँ।
3: दीदी हमारी क्लास में थी, बट वो जब अकेली बैठती थी ना मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि हाँ अकेली बैठती, किसी से भी नहीं बोलती, टीचर से भी नहीं, तो मैं उसके पास जाती थी ना तो मतलब मेरे को कहती थी तो जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। फिर मैंने ऐसे उसके साथ रहना शुरू करा तो मतलब वो थोड़ी फ्रेंडशिप करी, अब वो हमारे साथ ही है, अब हमारी क्लास में ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता कोई इतना शांति से बैठे अकेला अकेला, उसके कोई फ्रेंड ही नहीं है।
5: हाँ,
3: अब उसको फ्रेंड बना लिया।
5: हाँ दीदी, मैं भी ऐसे दोस्ती कर लेता हूँ जैसे जो अकेला बैठा होता है
4: उसे दोस्ती कर लेते हो आप भी जाके।
5: हाँ।
4: ओके, अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी देखो कुछ बच्चे होते हैं जो शांत रहना पसंद होता है जिनको, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बातें करना पसंद होता है, लेकिन दोस्त तो सबको चाहिए, चाहे बातें ज्यादा करने वाले हों चाहे कम करने वाले हैं। तो फ्रेंडशिप तो हम कर ही सकते हैं, है ना, सबसे कोई अकेला क्यों रहे। और कभी कभी क्लास में नए बच्चे आते हैं तो उनको तो कैसा लगता होगा ना, किसी को भी नहीं जानते, अपने पुराने दोस्त भी छूट गए।
5: हाँ
4: जी, है ना। तो उनसे तो बातें करनी चाहिए।
3: मैं जब अपने मतलब फर्स्ट स्कूल गई थी ना, अभी 8th में स्कूल चेंज हुआ था, तब मतलब मैं फर्स्ट सीट पर बैठी थी और सारे बच्चे ऐसे मेरे को देख रहे थे, फर्स्ट सीट पर बैठी थी और पीछे से सारे देख रहे थे, ऐसे इतना अलग फील हो रहा था कि वैसे तो एक्सट्रोवर्ट हूँ बट इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग आ रही थी उस टाइम।
4: उस टाइम अलग ही फीलिंग होती है ना।
3: हाँ जी,
4: बुरा तो लगता है क्योंकि पुराने दोस्त भी नहीं मिलते, और
3: स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि कोई दोस्त भी नहीं है, किसी साथ बात करूं अकेली बैठी हूं। पिछले वाले स्कूल में तो पूरे दिन चुप ही नहीं होती थी, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो हुआ था कि हाँ वापिस उधर चल जाती हूँ, फिर बाद में सेट सब सेट हो गया,
4: बाद में हो गया।
1: हाँ जब नए स्कूल में जाते हैं तो वह ना डर लगता है कि पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सा लगता है कि कोई बोल नहीं रहा, सबके अलग अलग दोस्त होते हैं अपने ग्रुप में बैठ के वो, और हम अलग घूम रहे होते हैं तो अजीब लगता है। फिर कोई ना कोई वैसे मिल ही जाता है, दोस्त बनते हैं, फिर उदम शुरू हो जाता है क्लास में, वही खेल कूद, टीचर्स के सामने बात नहीं करते, बाकी हम भी बात करते हैं फ्रेंड्स में।
4: फ्रेंड्स में तो बातें करते हैं, है ना?
5: दीदी जो बच्चे ना वो ज़्यादा बातें नहीं करते, वो मतलब वो ना जब फ्री पीरियड होता है तो वो सबसे आके पूछते हैं तुम मेरे साथ खेलोगे,
4: फिर
5: मतलब उनको बातें करना अच्छा नहीं लगता, उनको सिर्फ खेलना अच्छा लगता है।
4: हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको खेलना ज़्यादा पसंद होता है, बातें क्या करें समझ में ही नहीं आता, तो उनके साथ खेलते हैं फिर बच्चे?
5: हाँ खेलते हैं फ्री पीरियड होता है तो,
4: जब टाइम मिलता है तो। ओके तो मतलब हमने देखा कि बातें कुछ लोग करते नहीं है, कुछ लोग को खेलना पसंद है, और कुछ लोग नए होते हैं इसलिए बातें नहीं करते हैं, और कुछ लोगों का तो नेचर ही होता है कम बात करना, है ना?
1: हाँ।
4: लेकिन दोस्त तो सबको चाहिए लाइफ में, है ना?
1: हाँ।
4: फ्रेंड्स तो सबको अच्छे चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स से और क्या शेयर करते हो, अपने ड्रीम्स के बारे में या कुछ
5: दीदी
4: कुछ गलत हुआ कभी तो शेयर करते हो दोस्तों से सब कुछ?
5: दीदी मेरा ना मतलब पहले जब मैं फोर्थ क्लास में था तो ना एक बच्चा था जो हमारे दूसरे सेक्शन में था, तो फिर वो हमारे सेक्शन में आया था, जब नीचे फंक्शन होता था तो उसके क्लास के बच्चे उनसे कोई भी बात नहीं करता था और सब उसको चिढ़ाते रहते, तो जब वो हमारे सेक्शन में आया ना तो मैंने उसको सबसे पहले दोस्त बना लिया।
4: ओके बहुत अच्छा काम किया राघव ये तो आपने, क्योंकि नए जब आते हैं ना तो उनको दोस्तों की जरूरत होती है, उनको कोई हेल्प करे इसकी जरूरत होती है।
5: दीदी वो जो दूसरे सेक्शन थे ना उसके बच्चे ना उसको चिढ़ाते थे, कुछ मदद भी नहीं करते, वो कॉपी मांगने जाते तो वो देते भी नहीं थे, फिर वो मैम को बोलता तो बोलते थे कि हमसे मांगने ही नहीं आया था,
4: झूठ बोल देते थे।
5: हाँ।
4: गलत बात है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? इस बारे में भी हम बातें आप लोगों से करेंगे। अच्छा और किस किस बारे में बातें करते हो आप लोग, स्कूल के बारे में बात करते हो, पढ़ाई के बारे में बात करते हो, क्या हुआ सीक्रेट शेयर करते हो, मस्ती शेयर करते हो, और कुछ शेयर करते हो, कोई चीज़ जो अच्छी नहीं लगी कभी, कोई हर्ट हुई या बुरा लगा वो बातें करते हो या नहीं करते हो, वो किसी से नहीं बताते हो?
3: वो कई कई बार जब ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है तब करते हैं।
4: तब करते हो?
3: हाँ जी, जैसे कभी कोई ऐसा टीचर जो बहुत फ्रेंडली है आपसे और आपको डांट दे उस टाइम बहुत बुरा लगता है, फिर वो बात बताते हैं थोड़ा दिल हल्का हो जाता है।
4: दोस्तों को बताते हैं?
3: हाँ जी।
4: ओके शिक्षा?
1: हाँ ऐसा होता है कि कोई टीचर आपको पसंद है, वो टीचर अच्छा है, आपके साथ हमेशा अच्छे से बात करता है, लेकिन किसी दिन उसने आपको डांट दिया तो बुरा लगता है, फिर अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो बोलते हैं अरे अगर गलती होगा तो डांटेंगे ही सर, कब तक अच्छे से ऐसे बोलेंगे, गलती पे सबको डांटना चाहिए, अब गलती करेंगे तो डांटेंगे, तो वो दोस्तों को बताते हैं तो अच्छा लगता है, फिर वो बताते हैं कि हाँ तुमने ये गलती की थी तो सर ने इसीलिए डांट दिया होगा, तो उनको बताने के बाद अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मेरी गलती थी इसलिए सर ने डांटा, बाकी सर नहीं डांटते, तो अच्छा लगता है ऐसा बताने में।
4: सही बात है, दोस्तों को बताते तो वो समझा भी देते हैं फिर। राघव आप शेयर करते हो कभी बुरा लगा होता है कुछ तो दोस्तों को बातें करते हो, बड़ों को बातें करते हो?
5: मेरे को तो कोई टीचर ही नहीं रहता।
4: और किसी बात का बुरा लगता है कभी आपको?
5: हाँ लगता है।
4: तो वो किससे बताते हो फिर?
5: किसी से नहीं बताता।
4: किसी को नहीं बताते?
5: मैं थोड़ी देर बाद खुद ही भूल जाता हूँ।
4: ओके हाँ ये तो अच्छी बात है कि आप भूल जाते हो, ऐसे बातें भूल भी जानी चाहिए, है ना? वो गाना है ना छोड़ो कल की बातें, सुने? तो आप तो आज की बातें भी छोड़ देते हो।
3: दीदी हमने तो बता दिया हम कैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप बताओ अब।
4: देखो हम दोस्तों से तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं अब तो दूर, क्योंकि भाई स्कूल कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो ना डेली मिलना तो होता नहीं है, फिर तो कभी फ़ोन पे बात होती है तब तो फिर सब कुछ बताते हैं, अच्छा मेरे साथ ये हुआ था ये हुआ था, कुछ बुरा लगता है तो भी शेयर करते हैं, कुछ खाने में नया बनाया होता है तो वो भी शेयर करते हैं, है ना? और कुछ प्लान कर रहे होते हैं कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ जॉब करूँ या ऐसा करूँ, वो भी शेयर करते हैं, तो एक दूसरे को फिर हम सजेस्ट भी करते हैं अच्छा ये आप कर सकते हो ये कर सकते हो, तो फ़ोन पे तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि डेली मिलने पे क्या होता है, आपको उनका पूरा दिन दिख रहा होता है ना, लेकिन फिर स्कूल ख़त्म भी तो हो जाता है ना, डेली नहीं मिल पाते हैं फ्रेंड्स, तो फिर तो ढेर सारी बातें होती करने के लिए, लेकिन रोज़ नहीं हो पाती हैं.
5: दीदी शिवांशी है ना, वो अभी मतलब 9th और 8th से टेंशन ले रही है, जब मेरा फेयरवेल होएगा तो मैं बहुत रोऊंगी, तो ये सोचते सोचते रोने लग जाती है कि मेरे दोस्त छूट जाएंगे.
4: लगता तो है
3: दीदी, बुरा लगता है कि इतने साल अपने फ्रेंड्स के साथ रहे फिर एकदम ऐसे छोड़ दिया. तो
5: दीदी फिर ये मेरे से पूछती है कि तुझे बुरा नहीं लगता, मैंने बोला अभी तो मैं 6th में हूँ, तो अभी क्या करूँ मैं,
4: अभी तुम्हें पास बहुत टाइम है, है ना.
5: हाँ, इसके पास भी बहुत टाइम है, पर ये सोचती नहीं है.
4: नहीं, आपसे कम टाइम है, है ना. हाँ शिक्षा,
1: मेरे दोस्त तो पास में रहते हैं हमारे, मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह, हम जैसे कि स्कूल की छुट्टी हुई तो एक दिन, एक कोई दिन हम है ना अपना सब लोग मिलने का है ना प्लान बनाते हैं, फिर जो सबसे पास में होता है उसके घर पे हम सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे को चॉकलेट्स वगैरह कार्ड वगैरह देते हैं, उसके घर पे जाते हैं, ऐसे पास में हमारे तो दोस्त बस एक ही है जो दूर रहती है, बाकी हम सब लोग पास में है, तो डेली है ना आना जाना होता है घर पे, क्योंकि इतना पास है घर, तो हम तो हमें तो कोई डर ही नहीं है दोस्त खोने का, क्योंकि दोस्त हमारे पास में है
4: एकदम नजदीक है.
1: हाँ
4: नहीं भाई, लगता तो है.

0: आप लोग शुरू से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, सेम स्कूल में?
1: नहीं,
0: अलग चेंज हुआ है?
2: नहीं दीदी, अलग चार पांच बार चेंज हो गया,
0: चेंज हो जाता है. हाँ तो फिर आप लोग समझ सकते हो, है ना, फ्रेंड्स छूट जाते हैं तो फिर हर्ट होता है, लेकिन नए फ्रेंड्स बन भी तो जाते हैं.
1: हाँ.
0: है ना,
2: पर दीदी जल्दी नहीं बनते, हर एक का नेचर बहुत अलग होता है,
1: थोड़ा टाइम लगता है. मुझे तो बहुत बुरा लगता है स्कूल छोड़ने के बाद, क्योंकि ना शिवांशी है ना, वो सबका नंबर ले आती थी, मेरे को तो उस टाइम पता ही नहीं था फोन कैसे करते हैं, नंबर क्या होता है, तो इसलिए मैं किसी का नंबर ही नहीं ले पाया.
0: कोई बात नहीं, अभी आप धीरे धीरे बड़े हो गए तो और अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, फिर उनके नंबर ले लेना, ठीक है
3: दीदी? फ्रेंड्स तो बन जाते हैं, पर है ना बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन पाते जो हम पहले बनाते हैं. अभी जैसे कि स्कूल चेंज किया तो नए दोस्त बनते हैं, पर वो नहीं बन पाते जो हमारे पुराने बेस्ट होते हैं.
0: ये तो है, बेस्ट फ्रेंड्स तो कम ही होते हैं ना.
3: हाँ.
0: वो लेकिन फिर आपकी लाइफ के लिए होते हैं, वो आपके अभी साथ में नहीं भी हो ना तो भी आप देखना, ऐसे जो दोस्त हैं उनसे आप लाइफ भर कनेक्टेड रहते हो, फिर चाहे फ़ोन से हो, चाहे कभी मिल पाओ, कभी कभी मिल पाओ, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है. तो कोई बात नहीं, अगर वो स्कूल में आपके साथ नहीं भी हैं, वो लाइफ में आपके साथ ज़रूर रहेंगे, है ना. जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो रहते हैं, और कभी कभी कुछ बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो छूट भी जाते हैं, लेकिन जब आप आगे जाओगे लाइफ में तो आपको और अच्छे दोस्त मिलेंगे, है ना. दोस्त तो मिलते रहेंगे. अभी देखो शिवांशी स्कूल में है, आप शिक्षा स्कूल में है, आप लोग बड़े हो गए, जैसा आप बोल रहे था राघव फेयरवेल होगा, तो फिर तो आप लोग कॉलेज में जाओगे और कॉलेज में भी और फ्रेंड्स मिलेंगे, है ना. तो बुरा तो लगता है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से जैसा हमने बोला थोड़ा हल्का भी हो जाता है मन, है ना.
3: हाँ.
0: तो इस बारे में बातें करते हो आप लोग को, मतलब जो अच्छा नहीं लगा या फिर कोई बात है जो आपको ठीक नहीं लगी, कोई सीरियस बातें भी शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ या मस्ती मजाक ही करते हो हमेशा?
3: सीरियस बातें भी शेयर करते हैं, जैसे कि किसी मेरी दोस्त ने कोई मजाक किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं बता देती हूँ उसको, तो बोलती है ठीक है अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी गलती थी. हाँ, तो इसीलिए मुझे ना अच्छा लगता है कि उनको सीरियस भी अगर होके कुछ बोलूं तो मान लेते हैं. हाँ.
0: शिवांशी
2: दीदी, मैं तो कभी सीरियस बात करती ही नहीं, मेरी सारी बात ही मजाकिया होती है.
0: और कभी आपके फ्रेंड्स कोई सीरियस बात करते हैं?
2: कभी करियो तो मैं तो उसको भी मजाकिया मूड में लेके जाती हूँ. इतने सीरियस वर्ड लेके टेंशन, मैं ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ फिर. हाँ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, तो इसलिए मैं सब बात ही मजाक में लेती हूँ.
0: लाइटली लेते हो आप हर बात?
2: हाँ. मतलब कुछ ज्यादा मतलब एकदम से पूरी हाई वाली सीरियस होगी फिर तो सीरियस लेना पड़ता है.
0: हाँ भाई, किसी तबीयत खराब है या कोई और बात है तब तो सीरियसली बात करनी. हाँ. पड़ेगी.
2: नहीं, वैसे मैं पूरी मजाक मूड में होती हूँ पूरे दिन.
0: और उनको भी लाइट कर देते होगे फिर?
2: हाँ, पूरा हंसाती हूँ उनको पूरे दिन.
0: ओके.
2: वो कहते हैं तू ही हमारा सारा खून बढ़ाती है, हमें कभी खून की कमी नहीं होगी.
0: हाँ, मतलब हमें जो बातें हम करते हैं ना, हर तरह की बातें करनी जरूरी है. कभी कभी क्या होता है, हम जो अच्छी बातें हैं वो तो कर लेते हैं, मस्ती वाली बातें तो कर लेते हैं, मगर कोई सीरियस बात है, कोई किसी फ्रेंड को मान लो हमारे कोई हर्ट हो रहा है, कोई बात है जो वो किसी से नहीं बोल पा रहे, या कोई भी उनके मन की बात है, है ना, तो वो भी शेयर करना आना जरूरी है, है ना. अपने अंदर अंदर कोई बातें रखते हैं ना तो फिर वो बहुत फिर परेशानी होती है, इसलिए बातें शेयर करना चाहिए. और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी एंकरेज करना चाहिए कि वो अपने दिल की बात शेयर ज़रूर करें, है ना, ताकि वो अंदर अंदर नहीं रखें कोई भी प्रॉब्लम हो तो. प्रॉब्लम हो तो शेयर करनी है, ये रूल बना लेना है हमको, है ना. और अपने दोस्तों से भी प्रॉमिस कराना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप शेयर ज़रूर करोगे, अपने अंदर अंदर नहीं रखोगे, चाहे आपको अच्छा लगे बोलना या नहीं लगे, फिर भी आपको बोलना ज़रूर है, है ना.
3: हाँ.
0: कभी कभी हम अच्छी बातें तो करते हैं बट कोई बुरी बात लगी तो शेयर नहीं करते, है ना.
1: दीदी शिवांशी है ना, मतलब मैं कोई उसको सीरियस बात बोलता तो भी है ना वो ऐसे बोलती है चल चल छोड़ इसको, चल अपन मजा करते हैं, चल खेलने चलते हैं.
0: क्या सीरियस बात करते हो आप?
1: मतलब जैसे मैं बोलता हूँ चल के बुला रहा है तुझे, तो बोलती है छोड़ ना कोई, ऐसे मैं अनजान नहीं मिलती, ऐसे बोलती है. मतलब अब नहीं बोलती, पहले बोलती थी वो,
0: अब नहीं बोलती. तो शिवांशी जानती नहीं होगी ना जो बुला रहे हैं, इसलिए नहीं जा रही.
2: दीदी अनजान बुलाएगा तो मैं क्यों जाऊंगी, जान पहचान वाले के पास जाऊंगी.
0: अनजान लोगों से तो बात नहीं करनी चाहिए ना राघव.
1: नहीं, मैं अगर मैं बोलता हूँ तेरे को कोई बुला रहे है तो भी. हाँ. नहीं बोलती है, नहीं मैं नहीं जाती.
0: अनजान लोगों से बात नहीं करती है, जिनको जानती है उनसे तो करती है ना?
1: नहीं मतलब अगर किसी को जानती होगी तो मैं बोलता तेरे को कोई बुला रहा, वो मना कर देती है। फिर
2: शिवांशी को भी एक बायोग्राफी बना लेंगे, कोई बात नहीं, शिवांशी की बातें बाद में कर लिया,
1: शिवांशी की बातें।
0: चलो ठीक है, बहुत सारी बातें हैं भाई बहनों के बीच, फ्रेंड्स के बीच, मम्मी पापा से, छोटों से, जो हम करते ही रहते हैं। बस बच्चों ये ज़रूर ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई हर्ट हो, कोई आपको ऐसे डराए भी कभी कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, या फिर कोई आपको डर लगे बात बताने से, या आपको ऐसा लगे कि मुझे तो मैं बुरी दिखूंगी अगर ये बात पता चल जाएगी लोगों को, तभी भी आप दिल खोल के अपनी बात को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करना हमेशा अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी और हर आपके फ्यूचर के लिए भी, आपके प्रेजेंट के लिए भी। तो बातों को शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल देते हैं इजाज़त और अपने फ्रेंड्स को कहते हैं बाय बाय
4: बाय बाय।

0: to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विस्मयजनक लगता है कि स्वामी विवेकानंद एक पत्रकार भी थे। उन्होंने कई पत्रिकाएं आरंभ की थी, उनमें से कई अपनी शताब्दी मनाने के बाद आज भी अबाध गति से चल रही है।
1: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा तथा विराट व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों ने चर्चा की है। किसी ने महान संत के रूप में, किसी ने महान देशभक्त के रूप में, तो किसी ने समाज सुधारक के रूप में। किंतु उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का पत्रकारिता का पक्ष प्रायः अज्ञात ही है। कई लोगों को शायद स्वामी जी को एक पत्रकार के रूप में चिन्हित करना हास्यास्पद भी लगे, परंतु ये एक सच्चाई है कि स्वामी जी ने अपने जीवन काल में ही कम से कम 6 पत्रिकाएं आरंभ की थी तथा कई अन्य पत्रिकाओं के भी प्रकाशन में सहायता एवं प्रेरणा प्रदान की थी।
0: तरुणावस्था से ही स्वामी जी की पत्रकारिता में रुचि थी। नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में उन्होंने श्री राम कृष्ण के गृही शिष्य उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय को एक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अमेरिका जाने के बाद उनमें पत्रिकाओं के प्रवर्तन का विचार और भी प्रबल हुआ था। अमेरिका में उनकी प्रसिद्धि के बाद पूरे भारत वर्ष में जो उत्साह की विशाल तरंग उठी थी, स्वामी जी उसका उपयोग श्री राम कृष्ण द्वारा प्रतिपादित वेदांत के प्रचार में करना चाहते थे, बिना किसी समझौते के सत्य का प्रचार, उनके अपने बारे में कुछ संस्थाओं द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार का विरोध, अपने आदर्शों के प्रचार तथा अन्य कई कारणों से उनका मन इस ओर विशेष उन्मुख हुआ था।
1: उन दिनों स्वामी जी का मन पत्र कितना ओतप्रोत था, इसका कुछ अनुमान उनके पत्रों से हो जाता है। वे केवल अंग्रेजी में ही नहीं, बंगला, हिंदी तथा अन्य देशी भाषाओं में भी पत्रिकाएं निकालना चाहते थे। 29 सितंबर 1894 को उन्होंने अपने शिष्य आला सिंगा पेरुमल को लिखा था,
2: यदि हो सके तो समाचार पत्र और मासिक पत्रिका दोनों ही निकालो। मेरे जो भाई चारों तरफ घूम फिर रहे हैं वे ग्राहक बनाएंगे, मैं भी बहुत ग्राहक बनाऊंगा और बीच बीच में कुछ रुपए भेजूंगा। पल भर के लिए भी विचलित ना होना, सब ठीक हो जाएगा।
0: यद्यपि समाचार पत्र प्रकाशित करने की स्वामी जी की इच्छा कभी फलीभूत न हो पाई, तथापि उनके जीवन काल में तथा बाद में भी उनकी प्रेरणा से देश विदेश में विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं तथा हो रही।
1: स्वामी जी ने 25 सितंबर 1894 के दिन अपने एक गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम अत्यंत प्रेरक पत्र में लिखा था,
2: तुम लोगों को एक मासिक पत्रिका का संपादन करना होगा, उसमें आधी बंगला रहेगी और आधी हिंदी, हो सके तो एक अंग्रेजी भी।
0: एक अन्य गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी को उन्होंने 1895 में एक पत्र में लिखा था,
2: यज्ञेश्वर बाबू ने मेरठ में कोई सभा स्थापित की है, वे हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सुना है उनकी कोई पत्रिका भी है, काली को वहां भेज दो, अभेदानंद को, वो वहां जाकर यदि हो सके तो एक केंद्र स्थापित करे और जिससे हिंदी में उस पत्रिका का प्रकाशन हो ऐसा प्रयत्न करे, बीच बीच में मैं कुछ रुपए भेजता रहूंगा।
0: 23 वर्ष हुए पूर्वोक्त लेख, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने श्री राम कृष्ण संघ के बंगला मुखपत्र उद्बोधन की प्रस्तावना में लिखा था। समन्वय का भी यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समन्वय चेष्टा भी करेगा।
1: समन्वय के पुराने अंकों के पर्यवेक्षण से पता चलता है कि इसमें दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा हिंदी भाषा से संबंधित प्रसिद्ध साहित्यकारों के लेख रहा करते थे। समाचारों के लिए अलग स्तंभ था तथा विभिन्न प्रकार की अन्य रोचक सामग्री रहा करती थी, जिससे पत्रिका ने अपने उद्देश्य को पूरा करने में यथार्थ सफलता प्राप्त की थी। किंतु खेद किन्हीं कारणों से 8 वर्षों बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया।
0: इसके बाद हिंदी के रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा जगत में कई वर्षों तक अंधकार ही बना रहा। जब तक कि विवेक ज्योति प्रकाशित होकर उसे दूर नहीं कर पाई। सन 1963 ईस्वी में स्वामी आत्मानंद के प्रयत्न से विवेकानंद आश्रम रायपुर द्वारा ये हिंदी त्रैमासिक पत्रिका शुरू हुई। उत्तरोत्तर लोकप्रियता प्राप्त करते हुए ये पत्रिका रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सन 1999 ईस्वी से ये मासिक के रूप में निकलने लगी है। आज विवेक ज्योति पत्रिका के करीब 3000 आजीवन ग्राहक, कुल प्रसार संख्या लगभग 11,250 है और यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।
1: हिंदी जगत के इस अंधकार को दूर करने के लिए एक विवेक दीप का भी प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी जी से ही प्रेरणा पाकर 1982 ईस्वी से छपरा बिहार से डॉक्टर केदारनाथ लाभ विवेक शिखा नामक हिंदी मासिक निकाल रहे हैं। फिलहाल इसके सदस्यों की संख्या कम होने के बावजूद ये उच्च स्तरीय पत्रिका उत्तरोत्तर लोकप्रियता को प्राप्त हो रही है और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रचार में महत्वपूर्ण योग दे रही है। स्वामी जी की पत्रिका प्रकाशन की इच्छा को पूरा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे उनके शिष्य आला सिंगा पेरूमल। धन्य हो आला सिंगा, धन्य हो।

0: इतिहास में आपका नाम अमर रहेगा। स्वामी जी के अग्नि मंत्र युक्त प्रेरणादायी अधिकांश पत्र इन्हीं को संबोधित कर लिखे गए थे। 11 जुलाई 1894 के पत्र में स्वामी जी ने आला सिंगा को चेन्नई से अंग्रेजी में एक पत्रिका प्रकाशित करने की उनकी इच्छा का अनुमोदन करते हुए लिखा,
1: ऐसी व्यवस्था करो कि पत्रिका शीघ्र प्रकाशित हो सके। मैं बीच बीच में लेख भेजता रहूंगा। एक छोटी सी समिति स्थापित करो और उसके मुखपत्र स्वरूप एक नियतकालिक पत्रिका निकालो। तुम उसके संपादक बनो। पत्रिका प्रकाशन तथा प्रारंभिक कार्य के लिए कम से कम कितना व्यय होगा, इसका विवरण मुझे भेजना तथा समिति का नाम एवं पता भी लिखना। इस कार्य के लिए न केवल मैं स्वयं सहायता करूंगा, अपितु यहां के और लोगों से अधिक वार्षिक चंदा भिजवाने की व्यवस्था करूंगा।
2: 6 मई 1895 के पत्र में उन्होंने पत्रिका की आर्थिक सहायता का आश्वासन और अन्य उपयोगी सुझाव भी दिए।
1: वत्स, अब एक काम करो, 1 माह के भीतर ही मैं पत्रिका के लिए कुछ धन भेज सकूंगा। किसी से भिक्षा मत मांगो, मैं अपने मस्तिष्क और बाहुबल से ही सब करूंगा। पत्रिका को बकवादी नहीं बल्कि शांत, स्थिर तथा उच्च आदर्श युक्त होना चाहिए। उत्तम और नियमित रूप से लिखने वाले लेखकों का दल ढूंढ लो।
0: 1 माह के भीतर ही स्वामी जी ने पत्रिका हेतु धन भिजवाया। 28 मई 1895 को उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
1: इस पत्र के साथ मैं $100 भेज रहा हूँ। आशा है इसके द्वारा पत्र प्रकाशन में तुम्हें कुछ सहायता मिलेगी, फिर क्रमशः कुछ और भी सहायता कर सकूंगा।
2: इतने पर भी जब आला सिंगा पत्रिका प्रकाशित करने में विलंब करने लगे, तब स्वामी जी ने 1 जुलाई 1895 को पुनः लिखा,
1: तुम जल्दी पत्रिका प्रकाशित कर डालो, जैसे भी हो मैं बहुत शीघ्र तुम लोगों को और रुपए भेज रहा हूँ तथा बीच बीच में भेजता रहूंगा। कार्य करते चलो, अपने देश के लिए कुछ करो, इससे वे लोग तुम्हारी सहायता करेंगे।
0: आला सिंगा ने चेन्नई के अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस पत्रिका का नाम ब्रह्मवादिन तथा ध्येय वाक्य एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती रखा। स्वामी जी ने इसका अनुमोदन करते हुए तथा उत्साह देते हुए 30 जुलाई 1895 के पत्र में आला सिंगा को लिखा,
1: तुमने ठीक किया है, नाम तथा ध्येय वाक्य दोनों ही ठीक हैं। तुम्हारे पत्र के लिए सन्यासी का गीत ही मेरा पहला लेख है। निरुत्साहित न होना और अपने गुरु तथा ईश्वर में विश्वास न खोना। हे साहसी बालकों, कार्य करते रहो।
2: पर इतना सब होने पर भी जब पत्रिका नहीं निकली तो स्वामी जी अधीर हो उठे। 4 अक्टूबर 1895 को ब्रह्मानंद जी के नाम एक पत्र में उन्होंने लिखा,
1: जान पड़ता है चेन्नई वाले पत्रिका नहीं निकाल सके, उनमें व्यवहार कुशलता जरा भी नहीं है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है।
0: स्वामी जी को क्या मालूम कि इस बीच 14 सितंबर को पाक्षिक ब्रह्मवादिन का पहला अंक प्रकाशित हो चुका था और उस समय वो पत्रिका जहाज में यात्रा कर स्वामी जी को प्राप्त हुई। 24 अक्टूबर को उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
1: ब्रह्मवादिन के 2 अंक मिले, बहुत अच्छा, इसी प्रकार किए जाओ। पत्रिका के मुख पृष्ठ को कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करो और संक्षिप्त संपादकीय मंतव्यों की भाषा को कुछ सरल किंतु भावों को उज्जवल करने का प्रयत्न करो। क्लिष्ट भाषा और छंदों को केवल मुख्य लेखों के लिए रख छोड़ो।
2: स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि सदा ब्रह्मवादिन की ओर थी। अनेक पत्रों के द्वारा उन्होंने पत्रिका के बारे में व्यवहारिक सुझाव दिए, आर्थिक सहायता भेजी और अपने मित्रों को इसकी सदस्यता के लिए अनुरोध भी किया। 6 अगस्त 1896 को स्वामी जी ने आला सिंगा को उत्साहित करते हुए स्विट्जरलैंड से लिखा,
1: तुम्हारे पत्र ब्रह्मवादिन की आर्थिक दुर्दशा का समाचार मिला, लंदन लौटने पर तुम्हें सहायता भेजने की चेष्टा करूंगा। अपनी गति धीमी ना करना, पत्र का प्रकाशन जारी रखना। डरने की कोई बात नहीं, महान कार्य संपन्न होंगे। वत्स, साहस का अवलंबन करो। ब्रह्मवादिन एक रत्न है, इसे कभी भी नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। ये ठीक है कि ऐसी पत्रिकाओं को सदा निजी दान से ही जीवित रखना पड़ता है, हम भी वैसा ही करेंगे। कार्य करते रहो, तुम्हारी सहायता के लिए प्रभु तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। ये जानकर कि ब्रह्मवादिन की सफलता से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इस पत्रिका को अपना इष्ट देव बना लो और तब देखोगे कि तुम्हें सफलता कैसे मिल रही है।
0: एक वर्ष तक ब्रह्मवादिन को पाक्षिक रूप में प्रकाशित करने के बाद आला सिंगा ने उसे मासिक पत्रिका में बदलना चाहा, पर स्वामी जी ने इसका अनुमोदन नहीं किया। 22 सितंबर 1896 के पत्र में उन्होंने आला सिंगा को लिखा,
1: प्रचुर लेखों द्वारा पत्रिका का आकार बड़ा कर सकोगे। ऐसा भरोसा यदि ना हो तो उसे अभी मासिक पत्रिका के रूप में रूपांतरित करना मुझे उचित नहीं लगता। अब तक तो पत्रिका का आकार या लेख आशा अनुरूप नहीं है, अभी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है जो छुआ तक नहीं गया है, और वो है तुलसीदास, कबीर, नानक तथा दक्षिण भारत के संतों के जीवन चरित्र। और ये जीवन चरित्र विद्वतापूर्ण तथा अच्छे ढंग से लिखे जाने चाहिए, न कि ऐसे ही मामूली तौर से अव्यवस्थित से।
2: किंतु कुछ काल बाद ये पत्रिका मासिक में परिणत हो गई और आला सिंगा की मृत्यु के बाद सन 1914 में बंद भी हो गई।
0: ये है ब्रह्मवादिन की जीवन कथा। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भी इसकी प्रशंसा की थी। 20 फरवरी 1896 के मद्रास टाइम्स नामक संवाद पत्र ने मत दिया था,
3: दार्शनिक हिंदू धर्म का विद्वतापूर्ण भाष्य करने वाली है और साहित्यिक गरिमा से युक्त है। हाल ही में कई विद्वानों से इसे प्रशंसा मिली है, जिनमें प्रोफेसर मैक्स मूलर का नाम उल्लेखनीय है।
2: मद्रास मेल 7 जुलाई 1902 इसे भारत की अग्रणी पत्रिका के रूप में मान्य करते हुए लिखा था,
3: मद्रास की ब्रह्मवादिन पत्रिका के पीछे स्वामी विवेकानंद का हाथ था। ये वेदांत की प्रबुद्ध व्याख्या करने वाली भारत की अग्रणी पत्रिका है।
2: ब्रह्मवादिन पत्रिका का स्तर इतना ऊंचा था कि भारत या विदेश की आम जनता में इसका लोकप्रिय होना कठिन था। अत्यंत पांडित्यपूर्ण लेख, क्लिष्ट भाषा, संस्कृत का अत्यधिक प्रयोग आदि के बारे में आला सिंगा को सतर्क करते हुए स्वामी जी ने 23 मार्च 1896 को लिखा,
1: मेरी सफलता का कारण मेरी लोकप्रिय शैली है। एक आचार्य की महानता उसकी सरल भाषा में होती है। मैं तुम लोगों को पुनः बता देना चाहता हूं कि ब्रह्मवादिन इतना अधिक विशेषज्ञ प्रिय बन चुका है कि यहां पर उसकी ग्राहक संख्या बढ़ाने की आशा नहीं है। किसी मत विशेष का समर्थन भी किया जा रहा हो, ऐसी एक भी बात उसके संपादकीय में नहीं होनी चाहिए।
0: अतः आला सिंगा तथा उनके मित्र नजुंदा राव एवं अन्य मद्रासी मित्रों ने मिलकर जनसाधारण, विशेषकर युवा वर्ग के लिए अन्य अंग्रेजी पत्रिका निकालने का विचार किया। स्वामी जी ने 14 अप्रैल 1896 को डॉक्टर नजुंदा राव को एक अत्यंत प्रेरणादायी पत्र में लिखा था,
1: लड़कों के लिए पत्रिका प्रकाशित करने का जो तुम विचार कर रहे हो उससे मुझे पूर्ण सहानुभूति है और मैं उसकी सहायता करने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। इसमें स्वाधीनता होनी चाहिए। ब्रह्मवादिन पत्रिका पद्धति का अनुसरण करो। केवल तुम्हारी पत्रिका की लेखन शैली तथा विषय उससे अधिक लोकप्रिय होने चाहिए। उदाहरणार्थ संस्कृत साहित्य की बिखरी हुई अद्भुत कहानियों को ले लो, उन्हें फिर से लोकप्रिय ढंग से लिखने का ये इतना बड़ा सुअवसर है कि जिसके महत्व को तुम सपने में भी नहीं समझ सकते।
2: ब्रह्मवादिन शुरू होने के 10 माह बाद ही प्रबुद्ध भारत नाम से उक्त पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हो गया। ये नाम संभवतः स्वामी जी का ही दिया हुआ था। स्वामी जी कई पत्रों द्वारा इस पत्रिका के लिए व्यावहारिक सुझाव तथा प्रेरणा देते रहे। 26 अगस्त 1896 को उन्होंने डॉक्टर नंजुदा राव को लिखा,
1: जो कुछ तुम करते हो उस समय के लिए उसे अपनी पूजा समझो। इस समय इस पत्रिका को अपना ईश्वर बना लो और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी।
0: विद्वान युवक राजम अय्यर के संपादन में ये पत्रिका एक वर्ष में भारत की सर्वाधिक प्रचारित मासिक पत्रिका हो गई। प्रथम वर्ष के अंत में इसके 3,500 ग्राहक थे। चारों ओर से काफी प्रशंसा प्राप्त करने के बावजूद प्रारंभ होने के ठीक 2 वर्ष बाद ही यानी जून 1898 ईस्वी में इसके संपादकीय में लिखा गया, विदाई। कारण, विद्वान संपादक श्री राजम अय्यर का आकस्मिक निधन। किंतु 2 माह के भीतर ही इसे नवीन उत्साह से पुनः प्रकाशित किया गया, इस बार रामकृष्ण मिशन के मुखपत्र के रूप में, क्योंकि इस बीच स्वामी विवेकानंद ने विदेश से भारत लौटकर सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी। स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित ये पत्रिका आज 100 वर्ष बाद भी देश भर में धर्म तथा दर्शन संबंधी श्रेष्ठ अंग्रेजी पत्रिका मानी जाती है। फिलहाल इसके लगभग 7,000 वार्षिक तथा 800 आजीवन सदस्य हैं।
2: ब्रह्मवादिन तथा प्रबुद्ध भारत के अलावा भी कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रवर्तन स्वामी जी के द्वारा इंग्लैंड तथा अमेरिका से हुआ था।
0: इंग्लैंड में वेदांत पर यह पत्रिका कब, किस नाम से, कितने समय तक प्रकाशित हुई थी, इसकी ठीक जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, परंतु प्रकाशित अवश्य हुई थी।
2: अमेरिका में भी स्वामी जी गुडविन की सहायता से एक मासिक पत्र निकालना चाहते थे। 5 जून 1896 को उन्होंने श्रीमती ओली बुल को लंदन से लिखा था,
1: गुडविन अमेरिका से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने के संबंध में तुम्हें इस डाक से एक पत्र भेज रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्य को जारी रखने के लिए इस प्रकार का आयोजन करना आवश्यक है। जिस रूप से वो कार्य करना चाहता है, मैं भी उसी रूप से उसमें सहायता प्रदान करने की यथासाध्य चेष्टा करूंगा।
0: रामकृष्ण मठ के लंदन केंद्र द्वारा इंग्लैंड से भी सन 1952 में एक अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिका वेदांत फॉर ईस्ट एंड वेस्ट प्रकाशित हो रही है, जो आज भी काफी लोकप्रिय है। अमेरिका के सिएटल नगर में स्थित वेदांत समिति द्वारा 1996 ईस्वी में ग्लोबल वेदांत नाम से एक नई त्रैमासिक पत्रिका आरंभ की गई है।
2: रामकृष्ण मठ के फ्रांस स्थित केंद्र ग्रेड्स पेरिस से सन 1962 से वेदांत नामक त्रैमासिक पत्रिका फ्रेंच में प्रकाशित हो रही है। उसी प्रकार रामकृष्ण मठ के जापान स्थित केंद्र द्वारा जापानी भाषा में एक द्विमासिक फुमेत्सु नो कोताबा अर्थात सार्वभौमिक संदेश निकाली जा रही है। जर्मन भाषा में भी वेदांत नामक त्रैमासिक पत्रिका सन 1978 से प्रकाशित हो रही है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि कई देशों से विभिन्न भाषाओं में वेदांत संबंधी पत्रिकाएं रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित होकर निकल रही हैं।
0: श्री हरमोहन मित्र, कई पुस्तकों के प्रकाशक, मास्टर महाशय श्री महेंद्र नाथ गुप्त, श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक, श्री जी सी घोष, बंगाल के प्रख्यात कवि तथा नाटककार, श्री रामकृष्ण के ये सभी अंतरंग्रही शिष्यगण एक पत्रिका निकालने में सक्षम थे। वैसे ही स्वामी जी के गुरु भाई काली महाराज स्वामी अभेदानंद, हरि महाराज स्वामी तुरियानंद तथा शरद महाराज स्वामी सारदानंद भी इस कार्य के लिए समर्थ थे। ये तीनों वेदांत प्रचार के लिए विदेश भी गए। इन सभी से निराश हो जाने पर स्वामी जी ने अपना ध्यान अंग्रेजी पत्रिकाओं पर केंद्रित किया।
2: इस बीच अप्रत्याशित रूप से एक युवक पर पत्रिका का भूत सवार हुआ। वे थे स्वामी जी के गुरु भाई शारदा प्रसन्न, स्वामी त्रिगुणातीतांत। अपनी कम उम्र के कारण इस प्रकार के कार्य के लिए वे गणना में ही नहीं थे। अतः जब उन्होंने अपने गुरु भाइयों के समीप पत्रिका निकालने का अपना निश्चय व्यक्त किया, तब उन लोगों ने इसे हंसकर उड़ा दिया। तथापि हिम्मत न हार उन्होंने स्वामी जी की प्रसन्नता का अनुमान हम सहज ही कर सकते। उन्होंने तत्काल स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा,
1: शारदा बंगाल में पत्रिका निकालने की बात कर रहा है, अपनी पूरी शक्ति के साथ इसमें मदद देना यह कोई बुरा विचार नहीं है। किसी को उसकी योजनाओं में निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। पत्रिका के बारे में तुम्हारा विचार अति उत्तम है, पूरी शक्ति के साथ जुट जाओ, कोई चिंता मत करो। तुम्हारा पत्र मिलने पर मैं 500 रुपए तत्काल भेज दूंगा। ईसाई तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाले बहुत से लोग हैं, अब तुम्हें भी अपने ग्राहकों की समस्या है। इसका एकमात्र उपाय है कि तुम विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते रहो। जहां कभी भी बंगला भाषा का प्रचलन हो, वहां पर लोगों के माथे पत्रिका मढ़ देना। पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए, आगे बढ़े चलो। शशि, शरद, काली आदि अब सब कोई अध्ययन कर लिखने में जुट जाएं। बैठे बैठे क्या हो सकता है, तुमने बहुत बहादुरी की है, शाबाश। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम कूद कर सबसे आगे पहुंच जाओगे। ऐसा शोरगुल मचाओ कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। तूफान मचा दो तूफान, किसी को चीन भेज दो, किसी को जापान। यह कार्य गृहस्थी द्वारा नहीं हो सकता। सन्यासियों को हुंकार के साथ गरजना होगा, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो।
2: इसके बाद स्वामी जी कई पत्रों द्वारा पत्रिका के प्रकाशन के लिए जोर देते रहे, पर पत्र पत्रिका का प्रकाशन पिछड़ता ही रहा। मूल कारण था अर्थाभाव। तब स्वामी जी ने मिस मैकलाउड से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखा,
1: कोलकाता से मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूंगा, यदि तुम पत्रिका चालू करने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा विशेष कृतज्ञ रहूंगा।
0: ऐसा लगता है कि मिस मैकलाउड इसके लिए सहर्ष राजी हुई थी, क्योंकि 20 मई 1898 को स्वामी जी ने कुछ रुपए भेजकर स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा,
1: पत्रिका के लिए अर्थ संग्रह की चेष्टा हो रही है। 1200 रुपए पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं उनको उसी कार्य के लिए रख देना।
2: इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 17 जुलाई 1898 को स्वामी जी ने ब्रह्मानंद जी को पुनः लिखा,
1: तुमने जो लिखा है उसमें मेरा वक्तव्य इतना ही है कि बंगला भाषा में पत्रिका को आत्मनिर्भर बनाना कठिन है, किंतु यदि सब मिलकर घर घर जाकर ग्राहक बनाए तो ऐसा करना संभव है। इस विषय में तुम्हें जो उचित प्रतीत हो करना। बेचारा शारदा एक बार निराश हो चुका है। जो व्यक्ति इतना कर्मठ और निस्वार्थ हो, उसके लिए यदि 1000 रुपए पर पानी भी फिर जाए तो क्या नुकसान है।
0: अंततः उद्बोधन के नाम से जनवरी 1899 के बंगाब्द 1305 के 1 माघ को पत्रिका प्रकाशित हुई। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त 1000 रुपए के अतिरिक्त 1000 रुपए श्री हरमोहन मित्र से ऋण के रूप में लिए गए थे और पत्रिका दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुई। प्रारंभ होने के 10 वर्ष के बाद से आज तक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हो रही है।
2: इस पत्रिका का नाम स्वामी जी ने ही दिया था और उसकी उन्नति के लिए अनेकानेक आशीर्वाद दिए थे। इसकी प्रस्तावना भी स्वामी जी ने ही लिखी थी तथा समय समय पर इसमें कई लेख भी लिखे थे। स्वामी जी इस पत्रिका से कितना प्रेम करते थे इसका कुछ अनुमान श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती से हुए उनके वार्तालाप को पढ़कर होता है। इस वार्तालाप से ये भी पता चलता है कि स्वामी जी के इस पत्रिका की सफलता, उसकी भाषा तथा उद्देश्य के बारे में क्या विचार थे। अतः इसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना उचित होगा।
1: उद्बंधन देखा है
3: कैसे?
1: अरे, इस पत्र के भाव भाषा सभी कुछ नए ढांचे में गढ़ने होंगे।
3: कैसे?
1: श्री रामकृष्ण का भाव तो सबको देना ही हो।

0: तो कुछ समय पश्चात इसे दैनिक भी किया जा सकता है और प्रतिदिन इसकी लाखों प्रतियां छापकर कोलकाता की गली गली में बिना मूल्य बांटी जा सकती हैं।
1: स्वामी विवेकानंद जी की पत्रकारिता के बारे में हम अगली कड़ी में कुछ और बातें करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आइए बात करते हैं आज विशेष, 3 जून है, 3 जून की बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। और अश्विन नक्षत्र है, बालकृष्ण भट्ट, हरविलास शारदा, एम करुणानिधि, के एम पनेकर और रोमा पाल, जॉर्ज फर्नांडिस, चिमन भाई पटेल, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही त्रिभुवन दास, कृषि भाई पटेल, कृष्णा वल्लभ, साया भजनलाल, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आप सभी आज के इस खूबसूरत दिन को यादगार बना सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में एक सुंदर विचार आपको देते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तो इसीलिए अपनी आंखों से हाथ हटाइए और प्रकाश की दुनिया में जिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत से। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बात करते हैं अब हर विलास शारदा के बारे में। जी हाँ, भारत के बहुत ही पॉपुलर शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक थे। वो बाल विवाह प्रथा और अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को लेकर बहुत चर्चा में रहे और शारदा एक्ट के प्रकल्पक थे। हरिविलास की समाज सेवा के क्षेत्र में शुरुआत में ही बड़ी अच्छी भूमिका रही। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू सुपर पॉपुलैरिटी, सुपर प्योरिटी, ये जो है विशेष ग्रंथ था। इस ग्रंथ ने उन्होंने उसमें संप्रम सिद्ध किया था कि इतिहास काल में सभी क्षेत्रों में हिंदू सभ्यता अन्य देशों से बहुत ही आगे थी। तो ये उनकी खास पहचान थी। और आइए ऐसे हरिलाल शारदा के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1867 को अजमेर राजस्थान में हुआ। अपने पिता से महाभारत और रामायण की कहानियां सुनकर उनके अंदर हिंदुत्व के प्रति बहुत ही अच्छा भाव प्रकट हुआ और संस्कारित हुए। उन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती के भाषण सुनने और उनके संपर्क में आने का भी अवसर मिला और आगरा कॉलेज से डिग्री पूरी करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने आजीवन इस हिंदू समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का निर्णय लिया। उनका व्यावसायिक जीवन की बात करें तो अपनी शिक्षा पूरा करने के पश्चात हरिविलास शारदा जी जज की अदालत में अनुवादक बन गए और राजस्थान में जैसलमेर के राजा के अभिभावक रहे और 1902 में अजमेर के कमिश्नर के कार्यालय में वर्नाकुलर सुपरिटेंडेंट भी बने। रजिस्ट्रार जब जज और अजमेर मेवाड़ के स्थानपत्र जज के रूप में काम करने के बाद 1924 में वे इस सेवा से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सेवा में लग गए और फिर हरिविलास शारदा आरंभ से ही बहुत ही अच्छी तरह से समाज के साथ जुड़ना चाहते थे और फिर दयानंद सरस्वती का सानिध्य उनको मिला और फिर उनके ये परोपकारिणी सभा के सचिव भी बन गए और फिर इस तरह से अपना काम शुरू किया। लाहौर होते हुए इंडियन नेशनल सोशल सम्मेलन की अध्यक्षता की और 24 में बरेली के अखिल भारतीय वैश्विक सम्मेलन के अध्यक्ष भी वही थे। फिर बाद में शारदा बिल भी एक जो है इतिहास में इनका नाम आता है और 1924 में अजमेर मारवाड़ के केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए और 1924 से 1930 तक पुनः निर्वाचित हो गए और इस सदस्यता की अवधि में उन्होंने समाज सुधार का एक ऐसा कार्य किया जिसके लिए उनका नाम इतिहास में स्थायी हो गया। भारत में लड़कियों के बाल विवाह की बड़ी चिंताजनक प्रथा थी। इन्होंने केंद्रीय असेंबली से इसे रोकने के लिए 1925 में एक बिल पेश किया, शारदा बिल। इसके नाम से प्रसिद्ध यह बिल सितंबर 1929 में पास हुआ और 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू किया गया। समाज सेवा के कार्य के लिए सरकार ने उन्हें राय बहादुर और दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये थी कुछ खास बातें हरिविलास शारदा जी के बारे में। 1952 में इनका देहांत हो गया 20 जनवरी को। तो चलिए, कुछ लोग जाते जाते संसार में इतिहास रच के जाते हैं और उनका कार्य जो है उनको अमर बना देता है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए सुनते रहो। मस्कराते रहो।

0: मैं हूँ जय प्रताप और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। विशेष एम करुणा निधि के बारे में आप बात करते हैं। ये एक फेमस व्यक्ति है जिन्हें आप सभी कभी ना कभी विवादों में देखा होगा, और भारतीय राजनेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु के द्रविड़ राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्रम कड़गम डीएमके के मुख्य थे, और 1969 में डीएमके के संस्थापक सीएन अन्ना दुराई की मौत के बाद तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य इन्हें मिला, और वे 5 बार मुख्यमंत्री रहे। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का 5 बार इनको जो है मौका मिला, और अपने 60 साल के राजनीतिक करियर में अपनी भागीदारी वाले हर किसी चुनाव में अपनी सीट जिताने का रिकॉर्ड इनके पास है। और 2000 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तमिलनाडु और पुदुचेरी के डीएमके के नेतृत्व वाले डीपीए के नेतृत्व किया और लोकसभा की 40 सीटों को जीत लिया था। इसके बाद उन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव में डीएमके के जरिए जीती गई सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 18 कर दी, और तमिलनाडु और पांडिचेरी में यूपीए का नेतृत्व कर बहुत छोटे से गठबंधन के बावजूद उन्होंने वहां पर 28 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। तो इस तरह से तमिल सिनेमा जगत के एक नाटककार और पटकथा लेखक भी थे, और उनके समर्थक उन्हें कलाइनर कहकर बुलाते थे। तो ये थी कुछ खास बातें करुणानिधि के बारे में आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को, और हमेशा काले चश्मे पहनकर ही ये दिखते थे। इनको लोग काले चश्मे से पहचान लेते थे कि करुणानिधि जी आ गए। साहित्य के साथ भी बड़ा इनका रुचि था, और कुछ पुस्तकें भी इन्होंने जो है लोगों के बीच में रखी हैं। रोमपुरी पंडियन, तेन पंडिन सिंगम, इस तरह के अलग अलग जो है तमिल भाषा के इनकी पुस्तकें हैं, और मंच कला में भी माहिर थे, कहानियाँ लिखते थे। तो बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं, और शाम के समय में आप सभी के लिए कहना चाहूँगा अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करें इस गीत के साथ, और किसी अपनों को याद करते हुए परमात्मा को भी याद कीजिए, उनसे शक्ति भरकर अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक गीत सुनाते हैं। अभी आप सुन रहे हैं सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। भारत के जाने माने इतिहासकार, राजनीतिक, राजनायक, पत्रकार और विद्वान, ये है विशेष के एम पनीकर। जी हाँ, के एम पनीकर के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। और पनीकर के अनुसार राजन यज्ञ एक देश का दूसरे देश में स्थित आँख और कान है। तो आइए ऐसे इतिहासकार के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और लंदन के मिडिल टेम्पल से बार के लिए अध्ययन किया और भारत लौटकर अलीगढ़ तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्ययन बाकी का इन्होंने किया। और 1925 में पत्रकारिता की ओर मुड़े और द हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने और नरेंद्र मंडल के चांसलर के सचिव के रूप में काम करते हुए राजवाड़ों की सेवा के दौरान उन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। और इस तरह से फिर पत्रकारिता के बाद सीधे उनका जुड़ा हुआ समाज के साथ और विशेष राजनीति में इनका संपर्क हो गया। यहाँ से राजनीतिक सफर शुरू हो गया। पटियाला रियासत के विदेश मंत्री तथा बीकानेर रियासत के विदेश मंत्री और बाद में मुख्यमंत्री 1944 और 47 के बीच में इन्होंने काम किया। भारत के आज़ाद होने के बाद उन्हें चीन, मिश्र, फ्रांस का राजदूत बनाया गया। जीवन के उत्तरार्ध में वह पुनः शिक्षण की ओर वापस लौटे, यानी पत्रकारिता से राजनीतिक, फिर उसके बाद विदेश यात्राएं और फिर वापस वो अपने शिक्षण की ओर वापस लौटे और जीवन पर्यंत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आसीन रहकर अपना कार्य पूरा किया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। राजन यज्ञ की बात क्या है वो जानते हैं। भारत के आधुनिक राजन यज्ञों में सरदार के एम पनीकर के नाम का उल्लेख अवश्य मिलता है। पनीकर चीन में लंबे समय तक भारत के राजदूत रहे और उनका मानना था कि राजनय का जन्म यूरोप में आधुनिक राज्यों के जन्म से संबंधित है। राजनय की परिभाषा देते हुए पनीकर ये कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनय अपने हितों को दूसरे देश में अग्रिम रखने की एक कला है। पनीकर के अनुसार एक देश का दूसरे देश में स्थित आँख और कान है। कोई भी देश अपने राजन यज्ञों के माध्यम से दूसरे देश की घटनाओं, नीतियों और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी विदेश नीति को आवश्यक मोड़ देता रहता है। बहुत से विचारकों ने चतुरता से, कुशलता से, कपट आदि को राजनायिक गुण माना है, जबकि पनीकर के अनुसार धूर्तता, कपट आदि से पूर्ण राजनय अपने देश के प्रति दूसरे देशों की शुभकामना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रेरित होता है और कपट आदि इस उद्देश्य के मार्ग में खतरनाक साधन है। दूसरे देश की शुभकामना प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति चार प्रकार से अधिक अच्छी तरह हो सकती है और दूसरे देश उस देश की नीतियों को ठीक प्रकार से समझ सके और उसके प्रति सम्मान की भावना रखे, वह देश दूसरे देशों की जनता को न्याय उचित हितों को समझे और सर्वोपरि माने तथा ईमानदारी से व्यवहार करे। तो ये थी कुछ खास बातें राजन यज्ञ के बारे में पनीकर के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक और गीत अभी सुनते रहो मस्कुराते।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है. ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं रूमा पाल के बारे में. और रूमा पाल एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, और बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुना. अब बात कर रहे हैं एक न्यायाधीश के बारे में. जी हाँ, रूमा पाल जो है भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही हैं, और उच्चतम न्यायालय के पूरे इतिहास में न्यायाधीश बनने वाली वे तीसरी महिला रहीं. और 3 जून 2006 को सेवानिवृत्त होकर न्यायमूर्ति रूमा पाल उच्च न्यायपालिका में बहुत ईमानदार, विनम्र और विवेकशील मानी गई हैं. और अपने कार्यकाल के दौरान वे किसी भी सामाजिक व व्यक्तिगत समारोह आदि में शामिल होने से हमेशा बचती रही. यहाँ तक कि अमेरिकी विश्वविद्यालय के बुलावे पर एक सम्मोहन में भाग लेने के लिए, सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया था. और एक न्यायाधीश के रूप में उन्हें किसी अन्य संस्था से अपनी यात्रा का टिकट लेना भी स्वीकार नहीं था. आज के दौर में सर्वोच्च न्यायपालिका में न सिर्फ न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया, बल्कि चयनित व्यक्तियों की ईमानदारी, सच्चाई और योग्यता भी बहस के घेरे में है. वहीं रूमा पाल व्यक्तिगत रूप से न्यायपालिका में इनके उलट एक दुर्बल व्यक्तित्व रही है. केवल इसलिए नहीं कि वे एक महिला जज थी, बल्कि इसलिए भी कि उनकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा ने इस संस्थान को बहुत समृद्ध किया. तो एक अलग पहचान अपनी क्षेत्र में रखती है रूमा पाल. तो आइए उनके बारे में बात करते हैं. 3 जून को इनका जन्म हुआ, और विश्व भारती विश्वविद्यालय से अपनी पूरी पढ़ाई की, और फिर नागपुर विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री, उसके बाद ऑक्सफर्ड से बैचलर ऑफ सिविल की उपाधि इनको मिल गई. इसके बाद 1948 में कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ इन्होंने किया. और एज ए करियर न्यायमूर्ति के रूप में 1990 में कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी, और फिर इस तरह से जनवरी 2000 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति हो गई इनकी. और फिर सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के बीच कुछ विवाद भी रहा. फिर उसके बाद न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन का नाम भी जोड़ना चाहते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं था. और गतिरोध के चलते न्यायमूर्ति रूमा पाल, स्वामी राजू और योगेश कुमार की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में 1-2 महीना विलंब हुआ. सुप्रीम कोर्ट की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2000 को उन्हें नियुक्त किया गया, और 3 जून 2006 को रूमा पाल रिटायर हुई. तो ये थी कुछ खास बातें इनके करियर से रिलेटेड. और इनकी ईमानदारी की छवि तो हमेशा बनी रही, और उच्चतम न्यायालय में अपने कार्य को लेकर रूमा पाल ने भारत सरकार द्वारा मोबाइल फ़ोन की खरीद और सुविधा पर बेकरी पर लगाने के आदेश को निरस्त कर दिया था. उन्होंने अपने एक निर्णय में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध के न रहने की स्थिति में पत्नी द्वारा तलाक मांगने को उचित ठहराया था, जो एक बहुत ही प्रगतिशील निर्णय था. तो इस तरह के कई मुद्दे पर उन्होंने कुछ विशेष काम किया, और अपनी ईमानदारी के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है. तो ये थी कुछ खास बातें रूमा पाल के बारे में. आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनाए हैं. तो चलिए, व्यक्ति के अंदर अगर कुछ गुण होते हैं और उसके लिए वो अटल रहते हैं, तो उनका बात जो है सभी को मानना ही पड़ता है, और वो उस काम को करके एक नई मिसाल कायम करते हैं. तो ऐसे ही रूमा पाल थे. आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो.

0: मैं हूँ चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा कि आप सभी को कार्यक्रम बड़ा अच्छा लग रहा है और अलग अलग लोगों की जीवन कहानी से रूबरू होने का मौका मिलता है सफ़र कार्यक्रम में। और निश्चित तौर पे आपको अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में जब पहचान मिल जाती है तो आपको समझ में आता है कि इस तरह की चीज़ें भी है है ना। तो आइए, एक पूर्व ट्रेड यूनियन नेता, राजनेता, पत्रकार और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने वाले एक और नए व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। व्यापारिक संघ के नेता बनकर पत्रकारिता, राजनेता और एक मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई। आजीवन उन्होंने मजदूरों के अधिकार के लिए संघर्ष किया और फिर बाद में समता पार्टी का गठन किया और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेवारी संभाली और संचार, उद्योग, रेलवे और रक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अकेले ईसाई मंत्री थे और भारत सरकार ने उन्हें 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बात करें तो इनका जन्म आज के दिन 1930 को हुआ था। उनकी मां किंग जॉर्ज पंचम की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, जिनका भी जन्म 3 जून को ही हुआ था। इस कारण उन्होंने इनका नाम जॉर्ज रखा और उन्होंने अपना सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंगलोर के एलोयसिस से पूरा किया था। स्कूल की पढ़ाई के बाद परिवार की रूढ़वादी परंपरा के चलते बड़े पुत्र होने के नाते जॉर्ज फर्नांडिस को धर्म की शिक्षा के लिए बेंगलुरु में सेंट पीटर सेनिमेट्री भेजा गया और 16 वर्ष की उम्र में उन्हें 1946 और 48 तक रोमन कैथोलिक पादरी का ट्रेनिंग भी मिल गया और 19 वर्ष की आयु में उन्होंने हताश के कारण धार्मिक विद्यालय छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल में फादर्स ऊंची टेबल पर बैठकर अच्छा भोजन करते थे जबकि ट्रेनर्स को ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी। उन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और 19 वर्ष की आयु में ही काम शुरू कर दिया और मैंगलोर के सड़क परिवार, उद्योग, रेस्टोरेंट और होटल में कार्यरत श्रमिकों को एकजुट करने का काम करते हुए सबको समान अधिकार मिले इसके लिए वो काम करना शुरू कर दिया और फिर कुछ अनंतक विद्रोह भी इनके सामने आया। अनंतक विद्रोही मतलब रिबेल विदाउट अ पॉज, ये इसका मतलब था। और फिर इस दौर के चपेट की बेंच पर सोया करते थे और लगातार सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन आंदोलन के कार्यकर्ताओं में हिस्सा लेकर काम करते थे। शुरुआती छवि एक जबरदस्त विद्रोह की थी। उस वक्त मुखर वक्ता राम मनोहर लोहिया फर्नांडिस की प्रेरणा थे और 50 में आते आते 1950 में वे टैक्सी ड्राइवर यूनियन के बेताज बादशाह बन गए। बिक्रे बार और पतले चेहरे वाले फर्नांडिस टूडे मेड़े खादी के कुर्ते पहने, घिसी हुई चप्पलों और चश्मों में कंटी एक्टिविस्ट लगा करते थे। कुछ लोग तभी से ने अंतक विद्रोह रिबेल विदाउट अ पॉज कहने लगे थे। तो इस तरह से ये उनकी विशेषता रही और फिर कई हड़ताल, राजनीति के कार्य में प्रवेश करते हुए कई पदों को संभाला और फिर इस तरह से उनका विशेष योगदान के लिए उन्हें खास मजदूरों को संगठित करना और उनके हक के लिए लड़ने के लिए इन्हें याद किया जाता है। तो ये थे कुछ खास बातें जॉर्ज जी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा अब इजाज़त। जाते जाते एक और छोटा सा सुंदर विचार आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दूसरा विचार है, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ फिर मिलेंगे कल यानी दूसरे एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: Ik maar uit.
1: Tilke omange hai jawa. Rang mein tuba hai sama.

मां रोज की तरह आज भी सुबह गुनगुनी धूप में चिड़ियों से बातें करती हुई बगीचे में रखे पुराने लोटे को चमका रही थी। पता नहीं उस पुराने लोटे में ऐसा क्या था कि उसे चमकते ही मां के चेहरे की भी चमक लौट आती थी। लोटे की चमक को देख गुनगुनाने लगती थी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मां की आंखों की चमक को देखकर आज सुमित से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मां आप रोज इस पुराने लोटे को चमकाती और खुश होती हो, इसे चमकाने से क्या फायदा? अब ये तो कोई काम का भी नहीं रहा है, बस बगीचे में पानी डालने के तो काम आता है, रोज रोज नहीं भी घिसोगी तो भी चल जाएगा। बेटा तू नहीं समझेगा, रहने दे क्या करेगा जानकर, छोड़ मैं और मेरा लोटा ही भला, तुम अपना काम करो। अरे तुम्हें पुराने लोटे से क्या लेना, बस समझ ले मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे खुशी मिलती है, मां ने कहा। नहीं मां आज तो तुझे बताना ही होगा कि इस लोटे के पीछे क्या राज है जो तुम्हें इतनी खुशी देता है, सुमित ने बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा इतनी जिद कर रहा है तो सुन, बहू ने जरूर इस लोटे को घर में रखने लायक नहीं समझा, लेकिन पता है मेरी शादी में देने के लिए मेरे मां पिताजी जो पहला बर्तन खरीद कर लाए थे ना वह यही लोटा था, तो इस लोटे में मेरी शादी की सारी खुशियां समाई हुई हैं। शादी के बाद जब ससुराल आई तो तेरे परदादा परदादी दादा दादी इसी लोटे में जल भर के घंटों भगवान की पूजा करते थे। इस लोटे से जुड़ी कई यादें हैं और वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। मैं इस लोटे को केवल मांझती नहीं हूं बल्कि अपनी पुरानी यादों को भी चमकाती हूं, और जब इससे पेड़ पौधों को पानी देती हूं तो लगता है कि इन पेड़ों के रूप में मेरे अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रही हूं। इसमें मेरी मां की ममता, मेरे पिता की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ससुराल की शान छुपी हुई है। इतना कह के मां फिर लोटे को निहारने लगी। मां की बात सुन सुमित सोचने लगा, हमारी पीढ़ी के लोगों में पूर्वजों के प्रति प्रेम और निष्ठा कहां चली गई? हमने केवल एक लोटे को ही घर से बाहर नहीं किया, अपितु पूर्वजों की यादों संस्कारों और संस्कृति को पुराना समझ बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों आप सुन रहे थे देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की लिखी लघु कथा पुराना लोटा। हां कई बार ये पुरानी चीजें हमें अखरती हैं जो कि सहेज कर रखी गई होती हैं हमारे मां पापा दादा दादिया और बड़ों के द्वारा। हमें लगता है कि हम कब तक संभाल करके रखेंगे, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें नहीं है, चीजों से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें हैं। बस चूंकि यादें चीजों से जुड़ी हैं इसीलिए ये चीजें आज भी पुराने ट्रंक संदूक और अटैचियों में रखी हुई हैं। खैर पुरानी चीजों से ही संस्कृति संस्कार यादें प्रेम निष्ठा ये सब जुड़ा हुआ भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद हम उनके माइंडसेट में पहुंच नहीं पाते और डिटैच होकर के कई बार कह देते हैं, अरे बेचो ना इन चीजों को, बस एक अनजानापन है वो। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं करते, हमें केवल चीजें दिख रही होती हैं लेकिन चीजों के पीछे जो जुड़ी हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए इस लघु कथा ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम किया है मैं समझता हूं। ये कहानी आपको पसंद आई हो सभी तक पहुंचाएं ताकि ये पुल बना रहे, समझ बनी रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: डिटेक्टिव गोपीचंद।
2: क्या बात है वर्मा, बड़े परेशान लग रहे हो।
3: क्या बताऊं गोपीचंद, मेरे साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटी है। मैं और मेरी पत्नी 3 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गए हुए थे। हमने अपनी चाबियां पड़ोसी के पास छोड़ रखी थी। लौटकर देखा तो घर में कई कीमती चीजें गायब थी।
2: आपके पड़ोसी का इस बारे में क्या कहना है।
3: उन्होंने कहा कि हमारे जाने के एक दिन बाद हमारे घर एक डिलीवरी वैन आई थी। ड्राइवर ने पड़ोसी को बुलाकर कहा कि वह मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया अलमारी छोड़ने आए, इसलिए पड़ोसी ने मेरे घर का दरवाजा खोलकर हमारी अलमारी हॉल में रखवा दी।
2: क्या आपके पड़ोसी भी अलमारी रखवाने अंदर गए थे।
3: जी नहीं, वे दरवाजे पर खड़े होकर ही नजर रख रहे थे। जैसे ही डिलीवरी वालों ने सामान अंदर रखा, मेरे पड़ोसी ने दरवाजा लॉक कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद वह डिलीवरी वैन दोबारा लौटी और उसके ड्राइवर ने कहा कि गलती से किसी और की अलमारी उन्होंने हमारे घर रखवा दी है। हमारे पड़ोसी ने दोबारा ताला खोला और उनके जाने के बाद फिर से लॉक लगा दिया। ये रहे हमारे पड़ोसी मिस्टर पंकज। पंकज, ये है डिटेक्टिव गोपीचंद। मैं अभी अभी इन्हें अलमारी चोरी होने की बात बता रहा था।
4: मुझे बेहद अफसोस है कि मैं अपने दोस्त के घर की निगरानी ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन आप यकीन मानिए, मैंने एक पल के लिए भी उन लोगों को अपनी नज़र से अलग नहीं होने दिया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया।
2: पुलिस क्या कहती है इस बारे में।
3: उन्हें अभी तक कोई भी सुराग हासिल नहीं हुआ।
4: कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
3: आपका क्या कहना है गोपीचंद।
2: मेरा शक तो डिलीवरी वालों पर ही जाता है।
3: लेकिन कैसे।
2: इट्स वेरी सिंपल, उन्होंने अलमारी में किसी को पहले से ही बंद कर रखा था, ताकि जैसे ही आप घर लॉक करके चले जाएं, वह आदमी अलमारी से बाहर निकलकर सारी कीमती चीजें चुरा कर दोबारा अलमारी में बंद हो जाए। अब आप समझ गए ना।
5: और इस तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्टिव गोपीचंद ने एक और केस सॉल्व किया।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे, सफलता बनाएंगे। पूरा करेंगे जो हुआ शुरू, कुछ करने का वक्त आ गया। चल रहा सिलसिला साथ का।

0: हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये युवाओं का मंच है, लेकिन युवाओं से संबंधित जब बातचीत होती है तो वो असर तो पूरे समाज पर डालती है, और युवा क्या सोचते हैं ये जानना भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर भारत है युवाओं का देश। और दोस्तों, आप सभी भी युवाओं की तरह पूरे एनर्जेटिक हैं, हमें मालूम है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और दोस्तों, अगर आप PhD जैसे डिग्री के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर साइकोलॉजी या साइंसेज, या आप ये भी जानना चाहते हैं कि आगे विदेश में पढ़ाई कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज के खजाने में मिलेंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं अभिषेक त्रिपाठी जी, जो कि सेपियंसा यूनिवर्सिटी रोम इटली में PhD कर रहे हैं साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंसेज में, और इस वक्त वो राजयोगा पे एक रिसर्च भी कर रहे हैं। उन्होंने मास्टर्स किया है फिलोसफी में नालंदा यूनिवर्सिटी से, और भी बहुत कुछ किया है, जानेंगे इस सफर में। चलिए पहले वेलकम करते हैं अभिषेक जी का। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति
2: जी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में तो बताया हमारे श्रोताओं को, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी अपने सफर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं।
3: तो ये सफर बहुत क्षेत्रों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है।
2: Okay.
3: मतलब जिनको हम डिसिप्लिन्स कहते हैं
2: जी,
3: या विषय कहते हैं या सब्जेक्ट्स कहते हैं
2: जी।
3: तो मैंने भी एक युवा की तरह, जैसे सभी युवा 10+2 करने के बाद या स्कूल फिनिश करने के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल इस तरह के प्रोफेशंस की तरफ उन्मुख होते हैं, तो मेरा भी वैसा ही कुछ प्रभाव था और मैंने भी वही किया और इंजीनियरिंग की। और उसके पश्चात मैंने फिर कुछ समय तक मतलब कि कॉर्पोरेट कंपनीज में काम किया। उस दौरान मैंने मास्टर्स इन मैनेजमेंट, जिसको MBA भी बोलते हैं, उसको भी किया और कंपनियों में काम करता रहा। पर मेरा एक विचार था कि शायद शिक्षा या शोध की तरफ। और उस दौरान मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट दर्शन की तरफ भी आ गया था, भारतीय दर्शन, योग, सांख्य, वेदांत
2: जी।
3: तो फिर मैंने MA किया फिलोसफी से नालंदा यूनिवर्सिटी से।
2: Okay.
3: और फिर वहां से आगे की यात्रा शुरू हुई राजयोग और रिसर्च और कॉग्निटिव साइंस की।
2: क्या बात है। तो जैसा आपने ये निर्णय लिया कि मतलब क्योंकि आप सेटल्ड है एक क्षेत्र में और फिर आप पढ़ाई का निर्णय लेते हैं, तो यूजुअली हम सुनते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, एक बार पढ़ाई छूट गई तो दोबारा नहीं होती। और तो आपको इसको प्रैक्टिकल में लाने में, इस ख्याल को, क्या समय लगा, एफर्ट लगे?
3: तो ऐसा तो मतलब सिर्फ पढ़ाई में ही मैं नहीं कहूंगा, शायद ऐसा हर डिसिप्लिन में या किसी भी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक ही क्षेत्र में काफी लंबे समय से हैं
2: जी,
3: तो शायद उसको चेंज करना या लग जाना थोड़ा, तो हल्का सा एक टीथिंग ट्रबल जिसको कहते हैं, या एक हल्की सी एक संभावना बनती कि क्या हम कर सकते हैं
2: जी।
3: परंतु अगर वो आपके बिल्कुल चिंतन से आ रहा है और आपने उस पे कोई इस तरह से निर्णय नहीं लिया है कि नहीं बस करना है, परंतु अगर सोच समझ के, लोगों से विचार करके या टीचर्स के साथ बात करके, या जो लोग उस विषय में काम कर रहे हैं किताबों के माध्यम से या लोग कर रहे हैं, अगर उनके साथ बात करके और अपना एक पहला प्री रिसर्च करके
2: Okay.
3: उसको करने से पहले, फिर अगर आप ऐसा कोई भी निर्णय लेते हैं विषय को चेंज करने का या फील्ड को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई समस्या होती है। Okay. क्योंकि आप वो कर रहे होते हैं, क्योंकि आप वो करना चाहते हैं, आप बहुत सहज होते हैं उसको करने के,
2: मतलब आपके अंदर से आता है, और प्लस आपने फैक्ट्स भी कलेक्ट किया, आपने रिसर्च किया
3: जी,
2: उसके
3: जी,
2: लिए।
3: जी,
2: जी। तो कोई भी निर्णय लेना है तो दिल से भी और सोच समझ के
3: भी लेना है।
2: ओके।
3: अपने इंट्यूशन को, जो आपके अंदर से भाव आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं किताबों से या गुरुओं से या टीचर से या जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करके आप एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं, और फिर शायद यात्रा काफी अच्छी रह सकती है।
2: और अच्छी है। अभिषेक जी, जैसे आपने जब फिलोसफी की पढ़ाई की, तो क्या कोई ऐसी चीज थी वहां पे जिसने आपके जीवन पर असर डाला?
3: तो ऐसा था कि काफी कम उम्र से मुझे दर्शन, भारतीय दर्शन और दर्शन शास्त्र, उपनिषद, गीता, इस तरह के विषयों में बहुत ही ज्यादा रुचि थी
2: जी।
3: लेकिन कभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंजीनियरिंग करने चले गए और बाकी नौकरी करते रहे, तो उस वक्त भी हम साथ में इन सब चीजों को थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही रहते थे। पर एक समय आया जब आपको लगता है, जैसे मैंने बताया, कि नहीं अब इसको शायद वापस जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। तो जब वो निर्णय लिया और फिर हम पढ़ने गए, तो वहां पे एक अच्छी चीज ये हुई नालंदा यूनिवर्सिटी में, जहां से मैंने एमए किया, कि मुझे लाइब्रेरी बहुत अच्छी मिली
2: जी।
3: जो कि किसी भी शोध करने के लिए या ज्ञान के लिए पाने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है, एक अच्छा टीचर और लाइब्रेरी। तो वहां पे किताबें मुझे बहुत अच्छी मिली, जो कुछ लोगों ने डोनेट भी की थी, जो मतलब रिटायर्ड साइंटिस्ट या रिटायर्ड जो फिलोसोफर्स थे
2: जी जी।
3: तो उस किताबों का एक अच्छा सा उसने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला, और वहां पे मैंने काफी किताबें योग की, पतंजलि योग सूत्र हो गया, या सांख्य की कई सारी, सांख्यकारी का, ऐसी कई किताबें मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट संस्कृत से और फिर उसके कुछ टेक्स्ट जो ट्रांसलेटेड थे वो सब पढ़े, उसका फिर प्रभाव पड़ा और ऐसे धीरे धीरे फिर योग में यात्रा शुरू हुई।
2: अभिषेक जी, जब अगला पड़ाव आता है मास्टर्स करने के बाद, तो कई लोग चुनते हैं कि हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं जी। पीएचडी और रिसर्च की जो बात है
3: जी,
2: इसमें क्योंकि बहुत एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ काम करना होता है
3: जी,
2: तो वहां से साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंसेज ये मुड़
3: ये एक मैंने कहा कि जब आप बहुत तैयार अंदर से तैयारी करते रहते हैं बिना ये सोचे हुए कि ये कब होगा, तो शायद ये हो भी जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो शायद कहीं अंदर से अंदर मैं पढ़ाई तो कर ही रहा था और योग के बारे में ऐसे सोच रहा था, पर्टिकुलरली रिसर्च करना है उस तरह से ऐसा विचार भी आ रहा था, लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि शिक्षकों से मिलना और टीचरों से मिलना, तो अभी जैसे जो मेरे टीचर हैं, जो गाइड हैं मेरे सेपियंजा यूनिवर्सिटी रोम में, उनसे मैं एक कॉन्फ्रेंस में मिला, वो मेरी यूनिवर्सिटी नालंदा में आए हुए थे। तो वहां से हमने चर्चा शुरू की कि कैसे कर सकते हैं, तो फिर वहां पे योग और फिर भारतीय परंपरा में योग की को कैसे देखा जाता है, क्योंकि पश्चिम में भी बहुत सारे लोग योग पे शोध कर रहे हैं, लेकिन एक भारतीय हो के हम कैसे योग को देखते हैं, शोध कर सकते हैं। फिर उनसे बात करने की वजह से हमें लगा कि ये एक अच्छा विषय हो सकता है, और वहां से फिर शोध की तरफ मैं उन्मुख हो गया।
2: अब तो अभिषेक जी, बहुत सारे शोध भारत में भी हो रहे हैं और जैसा आपने कहा वेस्ट में भी हो रहे हैं, तो रोम जाना, इटली जाना, अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो उस कार्यक्रम को सुनते हैं, कई बार बहुत फैसिनेशन भी होता है कि हम बाहर जाएं, हम पढ़ाई।
3: बिल्कुल।
2: तो वो कैसा होता है, अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे जा सकते हैं या क्या प्रोसीजर होता है?
3: जी। तो मैं तो बिल्कुल इसका समर्थक हूँ कि आप जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन या किसी भी प्रकार की एकेडमिक शिक्षा ले रहे हैं, तो मैं इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि आप एक ही यूनिवर्सिटी से एक से ज्यादा डिग्री करें ही ना।
2: ओके।
3: और मैंने ऐसा अपने जीवन में किया भी है लगभग
2: जी।
3: तो पहले भारत में ही, अगर आप मान लीजिए उत्तर भारत में हैं, तो मैं इस बात का सजेस्ट करता हूँ कि आप दक्षिण भारत चले जाएं, या पश्चिम भारत की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाएं, या आप पूर्व की किसी, मतलब अपने स्थान को बदल के नई यूनिवर्सिटी में जाएं। जैसे बीए अगर आपने या अंडर ग्रेजुएट एक जगह से किया, एक क्षेत्र से किया, तो आप, मेरा सुझाव रहता है कि आप दूसरे क्षेत्र में जाएं, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके वहां से पीजी करें। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको भारत के बारे में समझ में आता है, जैसे मैंने उत्तर भारत में भी पढ़ाई की और दक्षिण भारत में, तो भारत को समझने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे कल्चर्स, फूड, ये सब चीजें समझ में आती हैं, और इससे आपके अंदर एक, जिसको मैं कहता हूँ, पर्सनैलिटी का विकास होता है, जो किसी भी युवा के लिए शायद बहुत जरूरी होता है।
2: बिल्कुल।
3: तो ऐसा करना चाहिए। इसके पश्चात मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल बाहर जाके पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है
2: जी।
3: इसका प्रोसेस ये रहता है कि जिस दो स्तर पे लोग ज्यादातर जाते हैं, एक जाते हैं पीजी यानी कि मास्टर्स के लेवल पे
2: जी,
3: जैसे
2: जी।
3: आपको एमए करना है, एमएससी, एमबीए करना है, या फिर आप सीधे पीएचडी करने या रिसर्च करने जाते हैं। तो अगर आप पीएचडी करना जाना चाहते हैं, तो उसका ज्यादातर, वैसे तो हर देश में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बट ज्यादातर जगहों पे ये होता है कि पहले आपको एक गाइड को सर्च करना पड़ता है जिस विषय पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसका जो सब टॉपिक है या जो उसका आप कह सकते हैं छोटा स्वरूप है उस विषय का, गूढ़ विषय, उसको आप सर्च करें गूगल पे या टीचर्स के माध्यम से, और उस विषय पे कौन कौन से प्रोफेसर्स या टीचर्स या साइंटिस्ट, अगर आप साइंस में काम कर रहे हैं तो साइंस और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज या साइकोलॉजी या सोशल साइंस है, जिस भी विषय में, उनके प्रोफेसर्स को सर्च करें,
2: ठीक है।
3: उसके पश्चात आपको फिर ये देखना चाहिए कि जिन विषय पे आप काम करना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, उन प्रोफेसर्स की, उन टीचर्स की, उनका ईमेल भी मिल जाता है वेबसाइट से या यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, और फिर उसको उस लिस्ट को बनाकर रख लें
2: जी।
3: और उसके पश्चात दो या तीन पेज में एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल, कि आप क्या सोचते हैं अपने रिसर्च के बारे में, उसको एक ड्राफ्ट कर लें, और संभव हो सके तो उसे किसी अपने सीनियर से यहाँ पे
2: जी।
3: या किसी टीचर से उसको मिल के तैयार करें, और ऐसा करने के पश्चात फिर आप पहला मेल या पहला ईमेल आप उस टीचर को कर सकते हैं जिसको आप देखते हैं संभावित रूप से कि जिनके अंडर में आप पीएचडी करेंगे। तो ऐसे शुरुआत आप कर सकते हैं।
2: ओके तो हमने गाइड फाइंड आउट किए, हमने थोड़ा रिसर्च किया, एक रिसर्च प्रपोजल तैयार किया, उससे पहले हमें श्योर होना है कि हम क्या करना
3: चाहते हैं। हाँ।
2: तो उसमें गाइडेंस भी चाहिए टीचर्स की
3: जी।
2: और प्रपोजल कैसा होना चाहिए
3: हाँ।
2: वो भी हमें ठीक से पता होना चाहिए
3: जी।
2: तो हमने भेज दिया हाँ। फिर क्या ईमेल के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं?
3: हाँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको रिसर्च का एक बहुत ही मतलब सिद्धांत है कि आप रिसर्च करने से पहले उस विषय में हुए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स या थीसिस जो कि फ्रीली अवेलेबल है, अब तो गूगल पे या शोध गंगा पे जो यूजीसी का साइट है वहां पे बहुत सारे शोध और इवन विदेशों के भी जो शोध हो चुके हैं
2: जी।
3: उनके जो रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स के काफी फ्री भी मिल जाते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं लेकिन काफी आपके काम की जितनी आवश्यकता है वो आपको फ्री मिल जाते हैं। उन पेपर्स को पढ़ना, गहराई से पढ़ना
2: जी।
3: और फिर उसके आधार पे क्योंकि रिसर्च क्या हो चुकी है आपके विषय में और आप क्या करेंगे, ये एक कॉन्टिन्यूम है, एक कंसिस्टेंसी बनाती है कि क्या हो चुका है उस विषय पे और क्या आप करना चाहते हैं
2: जी।
3: और क्या गैप आपने पाया जो हो चुका है और जो आप करना चाहते हैं
2: जी।
3: इसके समन्वय से फिर आप एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, और उस रिसर्च प्रपोजल की बहुत ज्यादा वैल्यू है, भारत से बहुत ज्यादा वैल्यू विदेशों में होती है उसकी, क्योंकि भारत में कई बार रिसर्च प्रपोजल्स एडमिशंस के बाद बनाए जाते हैं, जैसे आप नेट या जेआरएफ कर लेते हैं फिर आप जाते हैं और वहां बनाते हैं
2: जी जी बिल्कुल,
3: जबकि वहां पे ऐसा होता है कि सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग आपका गाइड करता है
2: जी।
3: जो रिसर्च प्रपोजल पे होता है, तो रिसर्च प्रपोजल जो शोध का आप प्रपोजल देना चाहते हैं उस पर बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से काम करने की आवश्यकता होती है।
2: ओके तो जब रिसर्च प्रपोजल आपको लगता है कि आपने पूरी तरह से तैयार कर लिया, इसका कोई टाइम होता है कि मतलब साल में कब आपको भेजना चाहिए या फिर?
3: हाँ, तो हर यूनिवर्सिटी का वैसे अलग अलग और देश वाइज देश एक देश में अलग है, बट ज्यादातर में यूरोप में जैसे मैं बताऊँ जैसे जहाँ मैं हूँ तो ज्यादातर जगह सितंबर या अक्टूबर में एडमिशन्स होते हैं, लेकिन आप अगर पीजी के प्रथम फर्स्ट ईयर में हैं
2: जी
3: वहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं।
2: अच्छा।
3: सेकेंड ईयर खत्म होने से पहले ही
2: जी।
3: आप टीचर्स को आइडेंटिफाई करना, प्रपोजल बनाना, फिर उसको रिफाइन करना, इसमें समय लगता है, कई बार 6 महीने तो मिनिमम है मेरे हिसाब से, 1 साल भी लग जाता है एक अच्छा प्रपोजल बनाने में। फिर आप वो गाइड को भेजते हैं, 10 लोगों को या 20 लोगों को आप भेजते हैं तो उनमें से शायद 2 या 4 लोग क्योंकि उस विषय में वो उनके पास उस वक्त उस विषय पे स्थान अवेलेबल है या नहीं है, कहीं ऑलरेडी उनके पास नहीं है, ऐसी कई चीजें होती हैं
2: जी, कई फैक्टर्स
3: हैं। हाँ, तो इसलिए जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं, अगर आप पीजी के प्रथम ईयर से ही, प्रथम साल से ही शुरू कर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है।
2: ओके तो फिर आपने जब ईमेल भेज दिए उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है?
3: तो ईमेल क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जितनी तैयारी के साथ आप ईमेल भेजते हैं उसमें जो लिखते हैं आप
2: जी,
3: वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि वो आपको आपकी सीरियसनेस
2: जी,
3: कितनी मेहनत आपने की है वो उस मेल से काफी हद तक टीचर को या प्रोफेसर को पता चल जाती है। क्योंकि जो प्रपोजल आपने बनाया है उसके लिए आपने 6 महीने कम से कम मेहनत की है, तो उससे उनको एक प्रिलिमिनरी, एक मतलब जिसको कहते हैं कि शुरुआती एक वो मिल जाता है कि आप उस विषय के क्या कितने जानकारी आपने अभी कर ली है, कितने पेपर्स आपने पढ़ लिए हैं, उसको फिर वो पढ़ते हैं। ये ऐसा होता है, उसको पढ़ने के बाद फिर वो आपको रिप्लाई करते हैं।
2: अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स मिलता है?
3: बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आप पीजी कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, उस समय आप कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, जैसे हमारे यहाँ स्पार्क में कॉन्फ्रेंस होती है, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्यत्र जगहों पे कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे भी कई बार भारत के भी और बाहर से भी बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोफेसर आते रहते हैं। तो अगर वहां भी आप जाएंगे

0: तो वहाँ भी उनसे मुलाकात हो सकती है और उस दौरान आप उनसे अपने विषय की चर्चा कर सकते हैं।
1: उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए।
0: हाँ, तो पहली चर्चा आप वहाँ कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस में, और फिर वो उनसे आप ईमेल ले लीजिए और फिर उनको जब बाद में आप उसी प्रपोजल को जो आपने तैयार किया वो आप उनको ईमेल में भेज सकते हैं।
1: ओके।
0: तो ये एक दूसरा तरीका भी होता है जैसा मेरे साथ हुआ था।
1: जी। तो फिर आपने जब प्रपोजल भेजा तो फिर उनका क्या रिस्पॉन्स आया?
0: हाँ, तो चूंकि मुझे वो पहले कॉन्फ्रेंस में मिले थे तो हमने काफी बातें पहले ही अपने विषयों में कर ली थी। उसके पश्चात मैंने उनको एक प्रपोजल भेजा जो मैंने कहीं कहीं क्या होता है कि पीजी में ही या मास्टर्स में भी थीसिस होती है
1: जी।
0: अभी अब काफी जगह होने लगी है
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्होंने मुझे भेजा कि तुमने जो मास्टर्स में थीसिस की है उसका एक कॉपी भेजो मुझे।
1: ओके।
0: तो फिर मैंने वो भी उनको भेजा
1: जी।
0: उसको उन्होंने पढ़ा और उसके आधार पे फिर मैंने एक प्रपोजल बनाया और फिर उसमें जो उनको लगा कि कमियां हैं या इसको चेंज करना चाहिए वो सब 3-4-5 बार में हमने उसको रिफाइन किया।
1: ओके।
0: और फिर फाइनली वो प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होता, पहले जो प्रोफेसर है वो एक्सेप्ट कर लेता है,
1: पहले वो एक्सेप्ट।
0: हाँ, उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए।
1: Okay.
0: जी, तो उसमें संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है कि अगर प्रोफेसर ने आपकी
1: एक्सेप्ट
0: कर लिया है अपने लेवल पे
1: जी,
0: तो फिर वो संभावना काफी हो जाती है कि फिर आपको एडमिशन्स
1: मिल
0: जाते हैं।
1: तो जैसे उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया तो जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कैसा होता है?
0: तो वो जैसे वो तो वैसे ही है जैसे भारत में ही है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है
1: जी।
0: तो आप फिर वो जहाँ भी वो जिस यूनिवर्सिटी में है वो प्रोफेसर या वो टीचर वो आपको बता भी देंगे और वो वेबसाइट से भी आपको पता चल जाएगा कि उनके यहाँ पीएचडी का जो एप्लीकेशन है या पीजी अगर आप करने जा रहे हैं तो उसका कब शुरू होता है और उसकी क्या डेडलाइन है।
1: Okay.
0: वो वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा
1: जी।
0: और ज्यादातर अब तो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं और उस फॉर्म को भरना होता है और उसके साथ वो जो प्रपोजल आपने बनाया है उसको भी अटैच करना पड़ता है।
1: Okay.
0: और उसके साथ साथ कई बार ज्यादातर विश्वविद्यालयों में बाहर ये देखा जाता है कि वो लेटर मांगते हैं जिसको हम लेटर ऑफ रेफरेंस कहते हैं।
1: ओके।
0: तो कई बार उसका या तो वो उस प्रोफेसर जो आपके यहाँ पे हो भारत में हो या जो आपको पहले से जानते हो उनका रेफरेंस मांगते हैं और उनका लिखा हुआ एक लेटर भी मांगते हैं जो अब तक आपने पढ़ाई की है, आप कैसे साथ रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा रहा है, ये सब चीजें बहुत प्रमुख हो जाती हैं बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए।
1: ओके।
0: तो ये दो चीजें ज्यादातर लगती हैं उस एप्लीकेशन में, एक आपका प्रपोजल जो आपने बनाया है अपने प्रोफेसर के साथ वेट किया है जो उसको वेरीफाई किया और रेफरेंस लेटर जिनको भेजते हैं जो आपके यहाँ के भी टीचर्स लिखते हैं आपके बारे में।
1: ओके। तो यहाँ पे जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म मतलब हम ऑनलाइन भर सकते हैं
0: जी,
1: डिटेल्स वहाँ पता चल जाती हैं। हाँ, तो वो सबमिट हो जाता है।
0: सबमिट हो जाता है।
1: तो उसके अतिरिक्त जैसे हम आईलेट्स है। हाँ, या फिर क्योंकि हम
0: जीमैट है, जीआरई है
1: जी, तो ये क्या अपने स्तर पर करना होता है, पहले से इसकी तैयारी होती है या आफ्टर एप्लीकेशन होती है?
0: नहीं, देखिए मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ विषयों में जैसे जीआरई नहीं भी लगता है।
1: Okay.
0: लेकिन अगर आप जैसे यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ तो जीआरई ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। पर यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों में जैसे जीआरई नहीं भी लगता है।
1: Okay.
0: लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप अपने विषय में कर रहे हैं और आप जीआरई की तैयारी कर लें, अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं मैनेजमेंट रिसर्च में, तो जीमैट देना पड़ेगा।
1: Okay.
0: और बाकी इंजीनियरिंग या साइंस या ह्यूमैनिटीज में जीआरई देना पड़ता है। बट कई बार जैसे हमारा विषय है इसमें कई बार जीआरई वो नहीं भी मांगते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको जो प्रपोजल है वही बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है।
1: ओके। कि आपको भाषा के ऊपर जानकारी है आपकी।
0: हाँ, और यूरोप में अगर मान लीजिए ये अच्छा, वैसे तो यूरोप में कई भाषाएं बोली जाती हैं अन्य देशों में, अगर आपने अपने 10+2 में या पी अंडर ग्रेजुएट में कोई विदेशी भाषा सीखी है जैसे जर्मन या स्पेनिश या फ्रेंच या इटालियन, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है, काफी सहयोग का काम करता है। जैसे मैंने नहीं सीखी थी तो वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई।
1: Okay.
0: तो मैं अब ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जब आप यूजी कर रहे हैं या पीजी से पहले, एक विदेशी भाषा सीखना बहुत ही लाभकारी है आज के युग के हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है।
1: ओके।
0: जी
1: जी। और हम जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं डेफिनेटली बहुत मोटिवेटेड होते हैं एंड देयर इज अ लॉट वी वांट टू लर्न। आप सीखें विदेशी भाषा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। Okay. उससे एक फायदा ये भी होता है, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जब आप एक छात्र के रूप में बाहर जाते हैं
1: जी,
0: तो आपको मान लीजिए यूरोप में है जहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती, ज्यादातर देशों में नहीं बोली जाती सामान्य रूप से, एकेडमिक में तो थोड़ी बहुत बोली जाती है लेकिन समाज में
1: जी,
0: तो वहाँ पे अगर आपको उनकी भाषा आती है, आपने पहले से जैसे मान लीजिए इटालियन या फ्रेंच या स्पेनिश सीखी हुई है और आप स्पेन में है, तो आपको पार्ट टाइम जॉब की भी सुविधा मिल जाती है। उसके लिए वो भाषा बहुत हेल्प करती है और एक छात्र के रूप में आपको कुछ स्कॉलरशिप या फिर कुछ इनकम हो जाती है।
1: Okay.
0: क्योंकि जैसा आप जानते हैं थोड़ा रहना और खाना वहाँ पे महंगा है
1: जी।
0: तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। आप लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, किसी शॉप में काम कर सकते हैं
1: जी।
0: जी
1: तो जैसा आपने कहा कि मैं आपसे एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने भी वाली थी कि वहाँ पे सस्टेन करने के लिए, क्योंकि हम सभी जब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या फिर कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो स्कॉलरशिप के बारे में पता करना या फिर हम पीएचडी करते हुए क्या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ये जानकारियां क्या वेबसाइट पे मिलती हैं?
0: हाँ, कहीं कहीं वेबसाइट पे मिलती ही हैं और लगभग यूरोप में और इवन अमेरिका में भी लगभग हर जगह हफ्ते में कहीं 40 घंटे कहीं 30 घंटे हफ्ते में वो आपको काम करने के लिए अलाउ होता है।
1: अच्छा,
0: तो आप कोई ना कोई पार्ट टाइम कर सकते हैं। वो काम विभिन्न तरह के हो सकते हैं। वो काम आप लाइब्रेरी में एज ए असिस्टेंट कर सकते हैं, या आपका गाइड जो है वो अगर कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप भी होती हैं जो आप एप्लीकेशन के समय ही अप्लाई कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उसकी भी संभावना होती है।
1: तो स्कॉलरशिप की जानकारी वेबसाइट
0: पे रहती है। वो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि जहां आप जाना चाहते हैं जिस टीचर के साथ और जिस यूनिवर्सिटी में, उसको कम से कम साल 6 महीने पहले से ही ऐसी 3-4 यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई कर लीजिए। 3-4 ऐसे प्रोफेसर या टीचर्स, 3 या तो 2 तो 3 तो कर ही लीजिए, क्योंकि कहीं पे कुछ थोड़ी नहीं उस वक्त हुआ तो दूसरी जगह 2 या 3 उसको स्टडी करते रहिए
1: प्रॉपरली।
0: हाँ, कब क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, कब क्या स्कॉलरशिप आ रही है। और इसके अलावा फिर जैसा मैंने बताया कि इस तरह की पार्ट टाइम आप जॉब्स कर सकते हैं, कभी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, सुपरमार्केट में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे काम होते हैं।
1: अच्छा।
0: उसके लिए भी कुछ ना कुछ पैसा आपको आपके खान पान रहन के लिए वो सफिशियंट हो जाता है।
1: ओके।
0: तो और ज्यादातर छात्र करते ही हैं।
1: करते हैं।
0: हाँ, वहाँ के लोकल छात्र भी करते हैं।
1: ओके।
0: जी,
1: जैसे अगर हम अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी
0: जी,
1: तो उसके बाद क्या इंटरव्यू होता है या क्या नेक्स्ट स्टेप होता है?
0: जी जी, बहुत सुंदर है ये। इसके पश्चात जैसे आपने एप्लीकेशन दे दिया
1: जी,
0: तो उसका एक प्रिलिमिनरी वो एक उनका एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो फिर उसको एक तरह से स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद आपको 2 तरह की स्थितियां हो सकती हैं। अगर कोई रिटन टेस्ट है, जो कि कहीं कहीं होता है, तो वो रिटन टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जगह पे इंटरव्यू होता है।
1: तो वो कैसे, ऑनलाइन ही?
0: हाँ, तो अभी तो चूंकि इंटरनेट का प्रचार प्रसार हो गया है, पहले ये दिक्कतें थोड़ा ज्यादा होती थी, बट अब तो आप ज्यादातर जगह सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। और अगर आपने जैसे कहीं स्कोर मांगा है जीआरई या जीमेट का, तो वो तो आप सबमिट करेंगे ही एप्लीकेशन के साथ
1: जी,
0: तो वो तो उसमें चला ही जाएगा आपके एप्लीकेशन में। तो मुख्यतः इंटरव्यू होता है, स्पेशली पीएचडी में
1: जी।
0: जो भी पैनल वो बनाती है यूनिवर्सिटी, वो आपको एक टाइम दे देंगे, एक स्लॉट दे देंगे, उस समय आपको ऑनलाइन उपस्थित होना पड़ता है और फिर आप वो इंटरव्यू तो फेस करना पड़ता है, जो कि मुख्यतः आपके बारे में और आपके प्रपोजल के बारे में होता है।
1: उसके लिए क्या तैयारी कर दी होती है?
0: तो जैसा कि नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि लिख तो कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छा, बट इंटरव्यू की वजह से वो हो जाते हैं। मेरा ये कहना रहता है कि जैसे मैंने वो इंटरव्यू दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा मत सोचिए। आप अपने विषय जो आपने तैयार किया है, सिर्फ उतना ही आपको मुख्य रूप से जानना है। और दूसरा, उसके पहले जो भी आपने पढ़ाई की है या कोई आपने मास्टर्स में थीसिस की है, जो भी आपने रिसर्च का काम कुछ भी किया है, अगर पहले मान लीजिए आपने मास्टर्स में करते समय कोई पेपर पब्लिश किया है या कोई आर्टिकल लिखा है किसी मैगजीन में, तो ये सब चीजें बहुत प्रभावशाली बन जाती हैं आपके एडमिशन होने में। तो आपने जो भी छोटा या बड़ा रिसर्च वर्क उस वक्त तक किया हुआ है, मास्टर थीसिस, रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग अगर आपने लिखे हुए हैं, तो वो काफी सहयोगी हो जाता है। मुख्यतः जो प्रश्न होते हैं वो रिसर्च प्रपोजल के इर्द गिर्द होते हैं और आपके व्यक्तित्व के बारे में होते हैं।
1: अच्छा, आपके बारे में भी होते हैं?
0: हो सकते हैं
1: जी,
0: वो डिपेंड करता है, बट वो हो सकते हैं कि जैसे आपकी हॉबी भी पूछ सकते हैं या आपने पीजी में क्या किया है
1: जी,
0: इस तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं। और आत्मविश्वास के साथ जाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही आत्मीय माहौल होता है वहाँ। कोई आपको इस तरह से जज नहीं करता कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बस आपको जानने का प्रयास करते हैं कि आप जो करना चाहते हैं और जो उनकी सुविधाएं हैं उसमें वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।
1: जब नर्वस होने की,
0: बिल्कुल नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए अगर थोड़ा बहुत आपके मन में है तो जिसको हम लोग बोलते हैं मॉक इंटरव्यू, मतलब आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सीनियर के साथ, अपने टीचर के साथ, यहाँ पे
1: जी
0: आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमेशा व्यक्ति को बेहतर ही बनाता है।
1: मेरा एक और प्रश्न था आपसे, क्योंकि कई बार हम दो चीजें सुनते हैं, एक हमें बहुत ये बताया जाता है कि आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आप ऐसे आंसर नहीं करो, सही तरीका ये है आंसर करने का, आप उनको ये नहीं बोलो कि मैंने इसलिए छोड़ा ये या मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप ये बोलो क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज है, मतलब एक ऐसा आंसर जो कि बहुत स्क्रिप्टेड है। तो हमें जो हम हैं व्यक्तिगत रूप से वो समक्ष रखना चाहिए, या हमें ये यूट्यूब पे क्योंकि बहुत से वीडियोज हैं कि इंटरव्यूज में ऐसे बोलिए, तो क्या सही तरीका है?
0: तो देखिए, एक तो वही है कि ऐसा कोई भी सही तरीका जैसी तो कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो आपका व्यक्तित्व है अगर आप उसे ही रखें तो सबसे सुंदर होता है, ऐसा मुझे लगता है, जो आप हैं
1: जी।
0: क्योंकि वही तो आप जब करने जाएंगे तो आप वही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप इंटरव्यू में आज कुछ बदल गए तो कल कुछ और हो जाएंगे, ऐसा तो आप संभव है नहीं
1: जी।
0: तो मुझे लगता है सहज रहना अपने व्यक्तित्व पे, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना कि आप जो हैं वो रहना, और उसके पश्चात सबसे जो मुख्य बात है ऑनेस्ट होना अपने उत्तर में
1: जी।
0: वो बहुत बड़ी चीज बन जाती है, स्पेशली जब हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि कई बार हमारी परिस्थितियां भारत में ऐसी हो जाती हैं कि जब हमें ना करना हमें अच्छा नहीं माना जाता
1: जी।
0: जबकि मुझे लगता है कि इस तरह की ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, कि किसी प्रश्न का आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पोलाइटली शांत स्वभाव से कहिए कि इस विषय को मैंने नहीं पढ़ा है, या ये विषय मैंने मेरे अभिस्मृति में नहीं आ रहा है, या मुझे नहीं पता है। इसको बिल्कुल जितनी ऑनेस्टी से आप रख सकते हैं उतनी ऑनेस्टी से रखिए, और बातों को स्पष्टता के साथ रखिए, ये मत कहिए कि नहीं आता है तो देने का प्रयास बिल्कुल मत करिए।
1: मतलब हम बातों को घुमाने का प्रयास करते हैं तो वो ना करें,
0: नहीं, वो बिल्कुल ना करें, फॉरबिडन है
1: जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों को ऑनेस्ट रहना है आपको बिल्कुल। अभिषेक जी, जैसे आपने आपका इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद कितने समय में आपको ये आंसर मिला कि हाँ?
0: तो वैसे तो हर जगह का अलग अलग होता है, पर जैसे इंटरव्यू होने के बाद मुझे लगता है कि जैसे 1 से 2 महीने, एक महीने से कभी कहीं 30 दिन लगते हैं, कहीं 40 दिन लगते हैं, इस तरह का नॉर्मल रहता है। बट कहीं कहीं विश्वविद्यालयों में काफी पहले भी कर देते हैं तो वो आपको विश्वविद्यालय के मतलब बारे में पता, बट जब भी आपका पीएचडी का होगा और शुरुआत होगी उसमें 1.5 से 2 महीने, 1 महीने ऐसा तो नॉर्मल रहता है
1: जी। आपका एडमिशन हुआ तो उस वक्त आपका रिस्पॉन्स?
0: नहीं, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा
1: जी
0: कि मेरा प्रपोजल और जो मैं करना चाहता था राजयोग पे रिसर्च ब्रह्म कुमारी के साथ, इसको एक विदेशी यूनिवर्सिटी में एक टीचर और एक पैनल ने एक्सेप्ट किया
1: जी।
0: तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव था
1: जी।
0: और बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसको मैंने अपने माता पिता के साथ शेयर किया,
1: बहुत प्राउड हुए होंगे
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी काफी अच्छा लगा
1: जी।
0: और यहाँ से फिर
1: सफर आपका आगे बढ़ा जी। अभिषेक जी, अच्छा जैसे अब एडमिशन हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब एक नए देश जाना है, कम्प्लीटली ऐसी जगह जहाँ आपने सिर्फ हमने पढ़ा है जिसके बारे में,
0: बिल्कुल,
1: तो फिर वहाँ के लिए तैयारी क्या क्या होती है?
0: हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और हम भारतीयों को 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि एक तो मौसम का, तो भारत में तो बहुत सारे मौसम हैं और अलग अलग हैं, अगर आप गुजरात से हैं तो अलग तरह का मौसम है, दक्षिण में हैं, उत्तर भारत में तो लगभग ठंड भी थोड़ी मिल जाती है
1: जी।
0: तो अगर आप जैसे यूरोप में हैं तो आपको पता होगा, हालांकि अभी थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है बट वैसे ठंड एक रहती है, तो किस मौसम में आप वहां जा रहे हैं, क्योंकि कई बार सितंबर अक्टूबर में जाते हैं, तो एक तो अपने आप को मौसम के लिए तैयार करना, थोड़ा सा कपड़ों के साथ कैसे कपड़े ले जाएं, वो सब मुझे लगता है कि जरूर उसकी तैयारी करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आजकल यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन के, और कई बार उस जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ के छात्र भी ऐसे अब तो वीडियो बना के डालने लगे हैं, जो थोड़ा यंग लोग हैं 22-23-24 साल या इवन वैसे भी, तो काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कैसा मौसम रहता है क्या है, तो उसको एक बार जरूर देख लें। और दूसरा खाने को लेकर है, तो है थोड़ी सी दिक्कत कह लीजिए या इसे कह लीजिए आपका चैलेंज एक अच्छा रहता है, कि खान को खान पान को लेके होता है, और वो तो कहीं भी होता है,
1: कहीं भी।
0: अगर आप उत्तर भारत से दक्षिण भी भारत जाते हैं
1: तब भी होगा,
0: उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है
1: जी,
0: भोजन को लेकर
1: जी।
0: तो
1: क्या तैयारी की आपने?
0: तो जैसे कि अगर आप, जैसे आप मेरी तरफ वेजिटेरियन हैं और आप नहीं खाते हैं, तो कुछ चीजें आप लेके जा सकते हैं शुरुआती में, और सूखे चीजें कुछ लेके जा सकते हैं आप साथ में, और बाकी कुछ चीजें वहाँ मिल भी जाती हैं, जैसे दक्षिण भारत के कुछ रेडी टू ईट फूड्स होते हैं MTR के, इस तरह के वो फूड पैकेट्स मिल जाते हैं। बाकी जब कुछ समय के बाद, मेरा तो यही सलाह रहती है कि आप खाना खुद बनाना शुरू करें, और वहाँ मिल जाता है धीरे धीरे,
1: ऐसा अकोमोडेशन होता है वहाँ पे जहाँ
0: जी जी जी, वैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, और आपको भारतीय छात्र भी वहाँ मिल जाएंगे जो आपके सीनियर हैं, तो वो एक कम्युनिटी की फीलिंग भी आपको मिल जाती है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को स्वीकार करेंगे तो फिर लोग भी आपको स्वीकार करेंगे, ऐसा रहता है
1: जी।
0: तो वो फिर धीरे धीरे धीरे वो एक स्वभाव बन जाता है फिर। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर समय ज्यादातर लोग वहाँ पे छात्र
1: जी
0: खाना या तो बनाते ही हैं,
1: बनाते हैं,
0: हाँ, और कभी कभी फिर बाहर भी खा सकते हैं
1: जी,
0: जी।
1: जो फी स्ट्रक्चर होता है
0: जी
1: हॉस्टल का या उसका, वो क्या होता है?
0: हाँ। तो उसमें भी वही है कि जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ तो फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, साल भर में कहीं 5,000 कहीं 6,000-7,000 ऐसे फीस होती है साल भर की, PhD की जैसे है
1: जी।
0: और फिर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है कोई, तब तो कोई दिक्कत है नहीं
1: जी।
0: अगर आपको कम भी मिल रही है तो आप जो है वो पार्ट टाइम जॉब करके कर सकते हैं। रहना थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा कभी कभी जैसे डॉर्मेटरीज होती हैं तो उसमें कई लोग रहते हैं, तो छात्र के रूप में आप, और अगर आप कम उम्र में पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक रहता है, आप 4-5 लोगों के साथ मिलके रह सकते हैं, और फिर वो शेयर्ड हो जाता है।
1: ओके।
0: तो वो आपको थोड़ा सा,
1: तो वो भी ऑनलाइन पता किया जा सकता है?
0: हाँ, वो सारी चीजें की उस शहर में एवरेज कॉस्ट कितनी है रहने की, अगर आप कई लोगों के साथ मिलके रहते हैं तो काफी सस्ता भी पड़ जाता है, तो इस तरह के कई सारे अकोमोडेशंस मिलते हैं। बट ये जरूर है कि उसकी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, वो भारत में की तरह नहीं है कि आप बिल्कुल उतरे, अब तो खैर भारत में भी अब इतना आसानी से नहीं हो पाता है शहरों में, लेकिन वो आप जैसे मैंने कहा कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आपको उस यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा मिल जाएंगे
1: जी,
0: उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं।
1: ओके।
0: तो वो आपको, और जो लोग पहले से वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे भी आप सहयोग ले सकते हैं
1: जी। एक सवाल ये भी होता है अभिषेक जी, जैसे प्लेन टिकट का जो बात होती है कराना है, तो क्या उसमें भी अगर मतलब जैसे हमारा एडमिशन हो जाए तो उसी दौरान करा लेना, या एकदम ऑन स्पॉट जब हमें जाना है, बिकॉज कॉस्ट वेरिएशन होते हैं?
0: हाँ, तो नहीं, टिकट तो आप तब कराइए जब आप वीजा के लिए अप्लाई करने जाते हैं।
1: ओके जी।
0: तो उसी समय वो मांगते भी हैं
1: जी जी,
0: उस वक्त आप कर सकते हैं टिकट
1: जी। और जैसे कल्चरली भी बहुत अलग है भारत, हाँ, और इटली की बात करें, हाँ, रोम में आप हैं,
0: हाँ,
1: तो क्या आपको वहाँ भी कल्चरली मतलब चैलेंजेस आए, या फिर आपको समझने में वहाँ का कल्चर टाइम लगा?
0: हाँ, तो जैसे यूरोप में पहले भी एक बार जा चुका हूँ, तो दिक्कत क्या होती है कि आपको कल्चर तो अलग है ही, अगर आप जैसे कि कहीं भी जाते हैं, आप अपना गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो भी थोड़ा अंतर तो मिलता ही है,
1: मिलता है जी।
0: तो ऑब्वियसली क्योंकि उनका क्लाइमेट अलग है और रहन सहन का थोड़ा प्रभाव दूसरा है
1: जी।
0: पर मैंने वो ये पाया है कि मतलब अगर खान पान को थोड़ा सा मतलब रख दें सेट असाइड, जो कि सब जगह अलग हो सकता है, बाकी चीजों में तो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप उस सोसाइटी में कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, और ये तो मुझे लगता है हर जगह लागू होता है, आप जहां जैसे बिहेव करेंगे वैसा ही लोग सामने से कोशिश करते हैं रिस्पांस करने की, तो उस कल्चर में भी अगर आप, और हाँ ये जरूर है कि अगर आप, जैसे मैं भाषा सीख के नहीं गया हूँ वहां से, क्योंकि मैं थोड़ा कई चीजें पढ़ने के बाद फिर रिसर्च करने गया हूँ, लेकिन आपकी अगर आप अर्ली एज में अगर आप कोई भाषा सीख के वहां जाते हैं जो उनकी है, फिर तो यात्रा बहुत आसान हो जाती है, काफी आसान हो जाती है,
1: भाषा से बहुत फर्क पड़ता है।
0: हाँ बिल्कुल पड़ता है, ये तो मुझे लगता है एक स्वाभाविक सी बात है
1: जी,
0: कि अगर आप, और अगर आप नहीं भी सीखे और वहां रहने लगते हैं तो आप सीखने का प्रयास करिए उनकी भाषा को, फिर काफी आपको मतलब कि जितना एक्सेप्टेंस है उससे ज्यादा हो जाता है। और ये तो जैसे कि अगर आप, फिर मैं वही उदाहरण देता हूँ बार बार, कि अगर आप गुजरात जाएं या आप तमिलनाडु जाएं या कर्नाटक जाएं, और अगर आप वहाँ कन्नड़ बोलें
1: जी,
0: तो लोग जरूर आपको थोड़ा तो
1: कनेक्ट
0: कर पाते हैं
1: जी,
0: तो ऐसा ही वहाँ भी है।
1: ओके, ठीक है जी। अभी आप रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी में जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है?
0: तो यूनिवर्सिटी में अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है, जैसे भारत में भी यूनिवर्सिटीज हैं और वहाँ पे भी ऐसा है कि कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के भी हो रहे हैं, तो आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। आपको ये भी पता चल जाता है अगर आप कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च में बहुत आगे है
1: जी।
0: तो वहाँ पे क्या होता है कि रिसर्च का एक फायदा बाहर ये होता है कि कई बार एडवांस स्टेजेस में रिसर्च चल रही होती है यूरोप में या अमेरिका में, क्योंकि संसाधन है थोड़ा उनके पास, तो आपको वो जानने का मौका मिल जाता है कि दूसरे फील्ड में क्या हो रहा है। कि जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे साइकोलॉजी में हैं या फिर आप हिस्ट्री में आप रिसर्च कर रहे हैं, पर आपको उसी समय ये भी यूनिवर्सिटी कैंपस में पता चल सकता है कि लोग साइकोलॉजी में क्या कर रहे हैं
1: जी।
0: तो जैसे कि आजकल एक जो रिसर्च हो रही है वो इंटरडिसिप्लिनरी ज्यादा हो रही है, एक और दो विषयों को मिला के, या ट्रांसडिसिप्लिनरी जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मेरा विषय है, मैं दर्शन और साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइंस को मिला के रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसे रिसर्च की ही डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब आप एक अन्य डिसिप्लिन को भी वहां रहते रहते समझ जाते हैं, या उसमें कुछ कोर्सेज भी करने का मौका मिल जाता है, तो आपकी समझ दूसरे डिसिप्लिन की या विषय की बढ़ जाती है, और इस तरह से आप एक अपने रिसर्च की तरफ उन्मुख हो जाते हैं
1: जी। आप अभिषेक जी, जैसे आप अभी रिसर्च कर रहे हैं और डेफिनेटली देयर इज लॉट जो आपने किया है, बहुत कुछ करना है, आप अपने भविष्य में आगे क्या देखते हैं, क्या प्लान करते हैं?
0: मतलब मुझे अच्छा लगता है
1: जी
0: कि इन, जैसे मैं राजयोग पे, ब्रह्म कुमारी पे, जो लंबे समय से लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं भाई और बहन, उनके साथ मिलके ये शोध कर रहा हूँ कि उनके जो ध्यान के जो स्तर होते हैं, स्टेजेस होते हैं, उसमें वो कैसे अशरीरी भाव और सूक्ष्म वतन और कैसे परमात्मा को महसूस करते हैं, इस विषय को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह का जब रिसर्च आप करते हैं किसी भी विषय में, जैसे मेरा ये विषय है, आपका कोई और विषय हो सकता है
1: जी,
0: तो एक तो क्या होता है कि आपको उस विषय पे एक पकड़ बन जाती है, आपको समझ में आने लगता है, और उसके पश्चात जब आप वो कर लेंगे, जैसे मैं अगर पीएचडी कर लेता हूँ या मेरे जैसा कोई और व्यक्ति ऐसा करता है, तो बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए खुल जाते हैं। जैसे आप एक तो टीचिंग में जा ही सकते हैं पढ़ाने के लिए, शोध कर सकते हैं, ऐसे और भी लैब्स या जो और भी संस्थान है उनके साथ जुड़ के नए नए रिसर्च कर सकते हैं। आप इसके पश्चात एक या दो और नए डिसिप्लिन में अगर आप अपने से पढ़ के उसे कर सकते हैं, तो आप एक नई इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कर सकते हैं
1: जी।
0: तो यही मैं देखता हूँ कि शायद राजयोग पे और भी नए नए विषयों पे रिसर्च करने का मैं प्रयास करूंगा और यही मैं अपने आप को आने वाले कुछ सालों में देखता हूँ
1: जी। बिल्कुल, शोध एक ऐसी चीज है जो डेवलप होने में किसी भी देश में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता
0: है जी।
1: अभिषेक जी, आपका निमहांस से भी जुड़ना हुआ जो कि एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है
0: जी, जी।
1: उसके बारे में क्या हमारे श्रोताओं का कुछ बता सकते हैं?
0: तो निमहांस एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो बैंगलोर में है। उसका ये एक्रोनिम है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बोलते हैं। यहाँ पे मानसिक जो है विषयों से जुड़ा न्यूरो साइंस, जो कि ब्रेन से जुड़ा, काफी वर्ल्ड क्लास या विश्व स्तरीय शोध और पढ़ाई दोनों होती है, बैंगलोर में स्थित है। और मैं जो ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये एक्चुअली देखा स्पार्क जो ब्रह्म कुमारी का जो रिसर्च विंग है, वो मेरी यूनिवर्सिटी और मैं ऐसे शोध छात्र और निमहांस के भी दो प्रोफेसर हम इस मिल के कर रहे हैं। तो निमहांस एक बहुत ही भारत का एक प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट है ब्रेन और न्यूरो साइंसेस पे
1: जी।
0: वो लोग काफी काम कर रहे हैं मेडिटेशन पे और वेल बीइंग पे
1: जी।
0: और ये जो डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की जो चीजें हैं उसको योग और भारतीय परंपरा में ध्यान से कैसे अच्छा किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है
1: जी।
0: तो ऐसे विषयों के लिए, और वो भी MSc और PhD जैसे कोर्स कराते हैं
1: जी।
0: तो अगर कोई रुचि रखता हो तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं।
1: और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें न्यूज में पता चल जाती हैं, पर इस तरह की चीजें हमें नहीं पता चल पाती हैं। तो फिर अगर हम यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा देखें क्या रिसर्च हो रही है, तो शायद हम और बेहतर जान पाएंगे, भले हम उस विषय में PhD नहीं भी कर रहे हैं,
0: ना भी करें,
1: जानकारी भी बहुत मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एज अ छात्र, आपको एक रेगुलर, अगर आप शोध की तरफ जाना चाहते हैं
1: जी,
0: तो जो भारत की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेबसाइट्स को विजिट करते रहिए, इसमें तो ज्यादा समय भी नहीं लगता है
1: जी। और आजकल फैसिलिटी है हमारे पास
0: बिल्कुल जी, तो उससे आपको नए नए विषय और आप क्या करना चाहते हैं उसके बीच में एक अच्छा समन्वय बन सकता है,
1: बन सकता है। एक और फिर आपसे प्रश्न है मैं लगातार आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कि आपको बिल्कुल आप पढ़ाई कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, पर और क्या पसंद है जीवन में करना, आपकी हॉबी या रुचि क्या है?
0: तो एक रुचि मेरी बहुत है कि मैं मेरा जो रिसर्च का भी फील्ड मैं जैसे तय हुआ तो मुझे पुस्तकें अज्ञान विषय और स्पेशली धार्मिक या जो स्पिरिचुअल और फिलॉसफी की किताबें बहुत ही डेप्थ में पढ़ना वो मेरा एक काफी लंबे समय से एक शौक रहा है
1: जी।
0: और इसके पश्चात मुझे नई जगहों पे जाना भी अच्छा लगता है।
1: एक्सप्लोर करना
0: अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना
1: जी।
0: उनके कल्चर को समझना
1: जी।
0: उनकी भाषा को शायद मैं ना सीख पाऊँ इतनी जल्दी, लेकिन भाषा से ज्यादा जो उनका जो उसके भाव होते हैं
1: जी।
0: उसको समझना
1: जी।
0: ये दो तीन चीजें मैं करता रहता हूँ।
1: क्या बात है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका तो मतलब हम कहें कि अंत ही नहीं है, तो मतलब बहुत सुंदर जर्नी आपने चूज की है जी। अभिषेक जी एक सवाल ये भी था कि जैसे युवा हैं वो आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, कई बार वर्कलोड होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो अगर स्ट्रेस होता है या कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आप उससे डील कैसे करते हैं?
0: तो देखिए मैं इसके तो आप सबके काफी अपने अपने तरीके हो सकते हैं कि आप कैसे किसी समस्या से ऊपर आते हैं, पर मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी भी प्रकार की, चाहे आपके पढ़ाई के दौरान हो या आपकी कोई मानसिक ऐसी स्थिति हो, मुझे लगता है कि अगर आपका परिवार या फैमिली या माता पिता या भाई या कोई मित्र उससे जरूर शेयर करें। मुझे लगता है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है कि अपने मन में ना रखें, जो कि हम एक बार बहुत सारे कारणों से शायद कि कोई क्या सोचेगा या कोई उस पर जजमेंट तो नहीं देगा, इससे हम नहीं कहते हैं। मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए, वो जरूर परिवार में जो भी आपको व्यक्ति या कोई माता पिता, सबसे बेहतरीन मुझे जो लगता है कि अगर माता पिता हुए हैं और उनसे साथ बात करना, क्योंकि वो शायद आपको सबसे बेहतर समझते हैं ज्यादातर केसेस में, मुझे ऐसा लगता है
1: उनको
0: अनुभव भी है जीवन का। आपकी उम्र से कोई बड़ा भाई या बहन है तो उसको शेयर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं भी है तो आजकल जैसे निमहांस है या इवन ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं हैं, आप किसी के माध्यम से उन संस्थाओं को अप्रोच करिए। मुझे लगता है कि अध्यात्म का किसी भी स्वरूप में आपके साथ होना आपको ऐसे किसी भी चैलेंज से लड़ने में या ऊपर आने में बहुत मदद करता है, तो आप प्रयास करेंगे तो जरूर, और ध्यान किसी भी प्रकार का जिसमें भी आप सहज हो
1: जी,
0: ऐसा करेंगे तो जरूर
1: जी। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, मुझे लगता है आपने अपनी जर्नी के साथ साथ हमें गाइड भी कर दिया कि हाँ अगर हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, और थोड़ा इंस्पायर भी किया कि आगे पढ़ाई करें बहुत कुछ तो जो हमें सिखा सकता है, जीवन में कई क्षेत्र हैं ओपन हैं, तो आप आगे बढ़ने बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्तों, देखिए सर्च कीजिए, सीखिए, घूमिए, बात कीजिए जी। जाते जाते क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो युवा है उनको?
0: मैं एक्चुअली संदेश तो नहीं देना चाहता, मतलब संदेश उस तरह से तो नहीं है कोई, बट मैं ये कहता हूँ कि आप स्वयं के बारे में जानें, जो कि आप किसी भी ध्यान की अगर परंपरा में जाएं और ब्रह्म कुमारी में, तो हर जगह यही बताया जाता है कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। तो मुझे लगता है स्वयं को जानो, स्वयं की सुनो। हाँ, अगर आपको कहीं जरूरत महसूस हो रही है तो टीचर से, गुरुजन से आप सपोर्ट गाइडेंस ले सकते हैं, बट निर्णय लेने से पहले थोड़ा समय लें, और निर्णय आपका हो तो ज्यादा अच्छा है।
1: क्या जी, तो बहुत कुछ है भविष्य में, आप दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, एंड हमारी तरफ से, अभिषेक जी की तरफ से आपको
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं रेडियो मधुबन के नंबर 94 14 15 14 15 पर, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते
0: नमस्ते।

मां रोज की तरह आज भी सुबह गुनगुनी धूप में चिड़ियों से बातें करती हुई बगीचे में रखे पुराने लोटे को चमका रही थी। पता नहीं उस पुराने लोटे में ऐसा क्या था कि उसे चमकते ही मां के चेहरे की भी चमक लौट आती थी। लोटे की चमक को देख गुनगुनाने लगती थी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मां की आंखों की चमक को देखकर आज सुमित से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मां आप रोज इस पुराने लोटे को चमकाती और खुश होती हो, इसे चमकाने से क्या फायदा? अब ये तो कोई काम का भी नहीं रहा है, बस बगीचे में पानी डालने के तो काम आता है, रोज रोज नहीं भी घिसोगी तो भी चल जाएगा। बेटा तू नहीं समझेगा, रहने दे क्या करेगा जानकर, छोड़।

के लिए मेरे माँ पिताजी जो पहला बर्तन खरीद कर लाए थे ना, वह यही लोटा था। तो इस लोटे में मेरी शादी की सारी खुशियां समाई हुई हैं। शादी के बाद जब ससुराल आई तो तेरे परदादा, परदादी, दादा दादी इसी लोटे में जल भर के घंटों भगवान की पूजा करते थे। इस लोटे से जुड़ी कई यादें हैं और वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। मैं इस लोटे को केवल मांझती नहीं हूं बल्कि अपनी पुरानी यादों को भी चमकाती हूं, और जब इससे पेड़ पौधों को पानी देती हूं तो लगता है कि इन पेड़ों के रूप में मेरे अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रही हूं। इसमें मेरी माँ की ममता, मेरे पिता की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ससुराल की शान छुपी हुई है। इतना कह के माँ फिर लोटे को निहारने लगी। माँ की बात सुन सुमित सोचने लगा, हमारी पीढ़ी के लोगों में पूर्वजों के प्रति प्रेम और निष्ठा कहाँ चली गई? हमने केवल एक लोटे को ही घर से बाहर नहीं किया, अभी तो पूर्वजों की यादों, संस्कारों और संस्कृति को पुराना समझ बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों, आप सुन रहे थे देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की लिखी लघु कथा पुराना लोटा। हां, कई बार ये पुरानी चीजें हमें अखरती हैं, जो कि सहेज कर रखी गई होती हैं हमारे माँ पापा, दादा दादिया और बड़ों के द्वारा। हमें लगता है कि हम कब तक संभाल करके रखेंगे, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें नहीं है, चीजों से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें हैं। बस चूंकि यादें चीजों से जुड़ी हैं, इसीलिए ये चीजें आज भी पुराने ट्रंक, संदूक और अटैचियों में रखी हुई हैं। खैर, पुरानी चीजों से ही संस्कृति, संस्कार, यादें, प्रेम, निष्ठा, ये सब जुड़ा हुआ भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद हम उनके माइंडसेट में पहुंच नहीं पाते और डिटैच होकर के कई बार कह देते हैं, अरे बेचो ना इन चीजों को। बस एक अनजानापन है वो। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं करते, हमें केवल चीजें दिख रही होती हैं, लेकिन चीजों के पीछे जो जुड़ी हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए इस लघु कथा ने बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम किया है, मैं समझता हूं। ये कहानी आपको पसंद आई हो सभी तक पहुंचाएं, ताकि ये पुल बना रहे, समझ बनी रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

0: किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, हाँ दिल में छुपा कर लाई हूँ। हो हो हो, तकदीर जगा कर आई हूँ,
1: तकदीर जगा कर आई हूँ, आई हूँ। सचमुच परमात्मा के बनने के बाद हमारी तकदीर में फेरा तो लगा ही है, और तकदीर को ऊंच करने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना आवश्यक है। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन के कार्यक्रम उड़ान के साथ आप जुड़ चुके हो। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
2: रूहानी।
1: हम दोनों साथी लेकर कुछ कहानियाँ, कविता और प्यारी बातें लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़कर आपको बड़ा मजा आएगा। हम आपके कॉल का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि आप किसे बातचीत करके हमें हौसला मिलता है, और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कॉल जरूर करिएगा। सुनते रहिएगा,
2: मुस्कुराते रहिएगा।

0: वो क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: रेडियो मधुबन आपको हर चीज के लिए सतर्क करता है, आपसे आशा करता है कि आप इन कार्यक्रमों को सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाकर जरूर रखेंगे। तभी तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। अब साइकिल दिवस से हेल्थ का क्या रिलेशन है? जी हाँ, साइकिल इज अ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, ये तो बात सत्य है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से फिट टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय भी बनाना। हमारी रूहानी को तो बहुत मजा आता है कि नहीं साइकिल चलाने में?
5: हाँ।
4: और मुझे भी आता था, मैं अपने स्कूल लाइफ में बहुत बड़े समय तक रेगुलर साइकिल से ही स्कूल जाया करती थी और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी कभी कभार छुट्टी के दिनों में मिलने हुए उसी साइकिल से ही जाया करती थी। मेरे पास साइकिल का कलर था रेड। तुम्हारे पास कौन से कलर का साइकिल है?
5: येल्लो और ब्लैक।
4: और मेरा साइकिल एक्चुअली गर्ल्स टाइप का साइकिल ही था, लेकिन बहुत सुंदर था, मुझे बहुत प्यारा भी लगता था। लेडी बट का साइकिल था। तुम्हारा साइकिल का नाम क्या?
5: गैंग।
4: मेरा तो लेडी बर्ड था। खैर, 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। साइकिल दिवस मनाए जाने के लिए अमेरिका के मोंटगोमेरी कॉलेज के प्रोफेसर लेक्सिस और उनकी सोशियोलॉजी की कक्षा में याचिका थी। बाद में प्रोफेसर सिल्बक्स की तथा उनकी कक्षा ने सोशल मीडिया के द्वारा इसका काफी प्रचार भी किया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया और 56 देशों में ये अभियान विशेष छेड़ा गया। साइकिल का महत्व क्यों है? ये एक सस्ता परिवहन है, स्वच्छ परिवहन है, साथ ही साथ शरीर को फिट रखने का परिवहन है, किफायती भरपूर है, भरोसेमंद बिल्कुल है। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेने से पहले ये चंद खूबसूरत लाइनें आप तक पहुंचाते। बड़े गजब की एक सवारी, दो पहियों की साइकिल हमारी,
5: ना कभी पेट्रोल ये मांगती, डीजल महंगा नहीं चाहती,
4: थोड़े में ही करे गुजारा, पर्यावरण सुधारे ये सारा,
5: कभी ना थकती कभी ना हारी, दो पहियों की साइकिल हमारे,
4: घंटी करती सदा चौकन्ना, ब्रेक सिखाता हर दम बचना,
5: बोझ कैरियर है रखवाता, कीचड़ से मडगार्ड बचाता,
4: सड़क भले ही भीड़ भाड़ हो या पगडंडी बिल्कुल सूनी हो, अपनी
5: धुन में चलती जाए, मंजिल पर पहुंचा कर ही सुस्काए।
4: जी हाँ, तो चलिए इस खूबसूरत कविता के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ गीत और साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आज की उड़ान की जरूर पहुंचाते हैं। सुनते रहो,
5: मुस्कुराते रहो,
4: रेडियो मधुबन 107.8 FM।
6: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
7: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
6: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये 3 चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैच उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
7: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: साइकिल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं।

0: है माइकल है तो साइकिल है माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं पप पम पम पम पम पम पम तेरे टम टम टडम टडम टिंग टक। वेल दोस्तों, मजेदार ये गीत जरूर सुना। भीड़ भाड़ वाली सड़क हो या सुनसान रास्ता, ये हमेशा साथ निभाती है। पैदल मारो बढ़ती जाए, ठंडी हवा का मजा दिलाए। सेहत अपनी खूब बनाती, मोटापे को झट दूर भगाती।
1: सुख दुख की ये सच्ची साथी, बचपन की यादें ले आती। सबकी प्यारी सबकी न्यारी, दो पहियों की साइकिल हमारी।
0: बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, एक मज़ेदार गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है, और साइकिल में ही ये गीत खास बचता है, तो इसको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ मैं। सुन लेते हैं आप और हम। पुकारता चला हूँ मैं।

0: करता था। उसकी कमजोरी का ज्यादातर गांव वाले उसका मजाक और फायदा उठाते थे। आज झुमरू अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि तभी गांव के दो बिगड़ैल बिल्ला और जग्गू उसकी दुकान पर आकर बोले,
1: क्या हाल है झुमरू भैया, सब कुछ ठीक तो है? आज तो बड़े चमक रहे हो, लगता है भाभी जी ने आज अपने हाथों से तुम्हारे बालों में तेल लगाया है, हैं? बिल्कुल सही कहा बिल्ला भैया, आज झुमरू भैया बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहे हैं। देख नहीं रहा, सिर्फ सलमान खान की तरह ही नहीं लग रहे, बल्कि मुझे तो लगता है कि झुमरू भैया की बॉडी भी बिल्कुल सलमान खान की तरह ही होती जा रही है भैया।
0: इतना कहकर जग्गू और बिल्ला झुमरू का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे।
2: अरे ऐसा मत बोलो बिल्ला भैया, अगर झुमरू भैया को कहीं गुस्सा आ गया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
1: सही कहा यार जग्गू, कहीं गलती से झुमरू भैया ने एक थप्पड़ हम दोनों को मार दिया तो हमारे तो फिल्मी स्टाइल की तरह दांत बाहर आ जाएंगे। भाई तुम दोनों को अपने बाल कटवाने हैं क्या? बाल भी कटवाने हैं और शेप भी बनवानी है।
2: पर ध्यान रखना झुमरू भैया, आज हम दोनों के चेहरे पर तुम्हें फेशियल भी करना है। वो क्या है ना, गांव के मुखिया की बेटी की आज शादी है और हम दोनों को उस शादी में सबसे सुंदर दिखना है।
0: इतना कहकर दोनों कुर्सी पर बैठ गए। झुमरू ने एक एक करके उन दोनों की शेव और बाल बना दिए। जग्गू और बिल्ला ने अपने चेहरे पर खूब महंगा मसाज भी करवाया।
3: आप दोनों के 5 हो गए।
2: बस 500, मुझे तो लगा था कि हम दोनों के चेहरे पर फेशियल करने के तुम 5000 रुपए लोगे।
3: आप दोनों ने चेहरे पर जो फेशियल करवाया है वो थोड़ा महंगा है, उसकी क्रीम बहुत महंगी आती है।
1: सोच लो, कुछ और ज्यादा कर लो पैसे।
3: आप दोनों क्यों मजाक कर रहे हैं मुझसे?
2: अरे क्या तुम हमारी भाभी लगती हो हैं, जो हम तुमसे मजाक करेंगे हैं भाई?
3: मैंने आप दोनों से बिल्कुल मुनासिब पैसे मांगे हैं। भला मैंने गांव में किसी से ज्यादा पैसे लिए हैं क्या?
1: ठीक है बिल्ला, इन्हें 500 दे दो।
0: बिल्ला के इतना बोलते ही जग्गू ने झुमरू के 5 थप्पड़ जड़ दिए और बिल्ला ने तो झुमरू के मुंह पर 2 मुक्के मार दिए। बेचारा कमजोर झुमरू जमीन पर गिर गया।
1: झुमरू भैया देखो, पूरे 500 दिए हैं। देखो 5 थप्पड़ मैंने मारे और बिल्ला ने तुम्हारे मुंह पर 2 घूंसे लगाकर 2 शून्य बना दिए। हुए ना पूरे 500।
2: आइंदा से हमसे पैसे मांगे तो तेरी दुकान को तोड़कर यहाँ पर तेरा तंबू बना देंगे। बड़ा आया हमसे पैसे मांगने वाला, 1.5 पसली गई का।
0: इतना कहकर वो दोनों चले गए। झुमरू बेचारा आंखों में आंसू लिए बैठ गया। शाम को झुमरू अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान देख उसकी पत्नी शर्मीली गुस्से से बोली,
4: तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे हैं?
3: कुछ नहीं, सुबह दुकान पर जाते वक्त पैर फिसल गया और मैं गिर गया।
4: मुझे क्या बेवकूफ समझा है, शक्ल से ही लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारे हैं।
3: जब सब कुछ जानती ही हो तो फिर पूछ क्यों रही हो?
4: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप इतने डरपोक क्यों हैं? गांव वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी मर्जी होती है वो आपको पीट कर चला जाता है, आप कुछ कहते क्यों नहीं?
3: कैसे कहूँ, मैं और लोगों की तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं कितना दुबला पतला हूँ, गांव वाले मुझे 1.5 पसली कहकर बुलाते हैं।
4: अरे अगर आप दुबले पतले हैं तो क्या हुआ, क्या दुबले पतले लोगों के अंदर ताकत नहीं होती, लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए? तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है, अब खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर नील पड़ रहे हैं, जाओ जाकर डॉक्टर बाबू को दिखा कर आओ।
0: शर्मीली की बात सही थी, झुमरू को वास्तव में बहुत दर्द हो रहा था। झुमरू चुपचाप घर से निकलकर डॉक्टर मुरारी के घर पर चला गया। मगर मुरारी के घर जाकर हैरान रह गया।
3: अरे मुरारी जी, आपका कमरा तो किसी साइंटिस्ट के कमरे जैसा लग रहा है।
1: दरअसल मुझे डॉक्टरी करने के साथ साथ प्रयोग करने का भी बहुत शौक है। झुमरू खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कैसे आना हुआ?
3: मेरे चेहरे पर बहुत दर्द हो रहा है।
0: झुमरू के कहने पर डॉक्टर मुरारी झुमरू के चेहरे को गौर से देखने लगे।
1: लगता है आज तुम्हें फिर से किसी ने पीटा है, और मेरा ख्याल है तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि जग्गू और बिल्ला ने ही पीटा है।
3: आपने बिल्कुल सही पहचाना, एक तो उन लोगों ने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से मुझे मारा भी अलग से।
1: क्या तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए और तुम्हें पीटा अलग से? आखिर तुम इतना डरते क्यों? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता?
3: बहुत आता है। मन तो कर रहा था कि उन दोनों का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं ऐसा करता तो और ज्यादा मार खाता। वैसे आप ये शीशी में क्या बना रहे थे? उसमें से धुआं निकल रहा था।
1: मैं एक ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूं कि जिसे पीकर इंसान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि एक ही मुक्के से वो चट्टान को भी तोड़ देगा।
4: डॉक्टर की बात सुनकर झुमरू हैरत में पड़ गया।
3: अगर ऐसा है डॉक्टर साहब, तो वो दवाई आप मुझे पिला दीजिए।
1: पागल हो गए हो क्या? पहले जानवरों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, इंसानों के ऊपर नहीं। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जेल चला जाऊंगा।
3: ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ दवाई लिख दीजिए ताकि मेरा दर्द कम हो जाए।
4: झुमरू के कहने पर डॉक्टर ने झुमरू को कुछ टेबलेट दे दी। झुमरू को गोली खाकर आराम मिल गया और झुमरू अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन झुमरू अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहा था कि तभी जग्गू की बाइक शर्मीली से जा टकराई। शर्मीली, जग्गू और बिल्ला नीचे गिर गए।
3: ये क्या हरकत है बिल्ला भैया, देखकर नहीं चल पाते क्या? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी को चोट लग गई।
4: बिल्ला और जग्गू उठकर खड़े हो गए।
5: क्या बोला डेढ़ पसली नाई है, खुद तो अंधों की तरह चल रहे हो सड़क पे है, ऊपर से हमें दोष दे रहा है।
1: लगता है ये उस दिन के 500 रुपए भूल गया, इसे फिर से 500 रुपए देने होंगे।
4: इतना बोलकर दोनों ने झुमरू को पकड़ लिया।
3: ऐसा मत करो, मेरी पत्नी के सामने मुझे मारोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
4: शर्मीली दर्द से कराहते हुए बोली,
6: छोड़ दो मेरे पति को, एक तो अंधाधुंध फुल रफ्तार से अंधे होकर बाइक चलाते हो, तुम्हारी बाइक मेरी कमर से टकराई है, माफी मांगने की बजाय ऊपर से अकड़ रहे हो, मैं तुम दोनों की शिकायत मुखिया से करूंगी।
5: ऐ शौक से कर दो, मुखिया हमारा क्या बिगाड़ लेगा है, वो तो खुद हमारे पिता से उधार पैसे मांगने आता है।
1: मत भूलो, मेरे पिता और बिल्ला के चाचा इस गाँव के जमींदार है। वैसे भाभी, तुम्हारी कमर इतनी नाजुक है तो हम क्या करें?
5: अरे शर्मीली भाभी, इस डेढ़ पसली में क्या रखा है, हम दोनों से दोस्ती कर लो, तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे रानी।
3: ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे ही सामने मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो।
1: हाँ छेड़ रहे हैं तो तू क्या कर लेगा बे, है?
5: ओ यार क्यों इस डेढ़ पसली से खामखा बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, है? जड़ दे दो तीन गाल पर।
4: बिल्ला के कहने पर जग्गू ने 2-3 थप्पड़ झुमरू के गाल पर जड़ दिए और वो दोनों झुमरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। जब तुम मेरी सड़क पर इन लड़कों से मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पति होने का क्या फायदा, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर शर्मीली गुस्से से वहाँ से चली गई। झुमरू रात तक वहाँ गुस्से की हालत में खड़ा रहा। रात को झुमरू अपने घर की ओर जाने लगा, तभी उसकी नजर डॉक्टर मुरारी के घर पर पड़ी। झुमरू तुरंत मुरारी के घर के अंदर चला गया और झुमरू वही ताकत की दवाई उठाकर घर चला आया। अगली सुबह वो बगैर कुछ खाए पिए घर से बाहर आकर उस शीशी को जेब से निकालते हुए गुस्से में अपने आप से बोला,
3: बिल्ला और जग्गू ने मेरा जीना हराम कर रखा है, कल तो इन दोनों ने हद कर दी, मेरी पत्नी के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और उन दोनों को ही क्यों, पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता है, मैं सबको सबक सिखाऊंगा।
4: इतना बोलकर जग्गू वो पूरी शीशी पीने ही वाला था कि तभी वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला,
3: नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्टर मुरारी ने कहा था कि इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों में किया जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी भी तो किसी जानवर से कम है क्या, जब भी किसी का दिल चाहता है तो जानवरों की तरह मुझे पीट कर चला जाता है, मैं एक काम करता हूँ इसको आधा ही पीता हूँ, जो होगा देखा जाएगा।
4: इतना कहकर झुमरू ने आधी शीशी पीकर जेब में रख ली, मगर उसे अपने अंदर कुछ भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ।
3: अरे मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ऊपर से मुझे भूख और लगने लगी, जेब में खाने के लिए पैसे तो है नहीं, चलो चाय से ही गुजारा कर लेते हैं।
4: झुमरू गांव में एक चाय की दुकान पर आकर चाय वाले से बोला,
3: एक चाय देना भैया।
5: क्या हाल है झुमरू भैया, सुना है कल बिल्ला और जग्गू ने तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हें पीट दिया।
4: इतना कहकर चाय वाला हंसने लगा। झुमरू ने अपनी मुट्ठियां गुस्से से भींच ली, तभी वहाँ जग्गू और बिल्ला हंसते हुए आ गए।
5: और एक कप चाय हमें भी पिला दो भैया। और हाँ भाई, चाय के पैसे वैसे जो है ना, हमारे झुमरू भैया देंगे समझे। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चाय के पैसे हैं समझे। अबे हमें इससे क्या मतलब बे? अबे पैसे तो तू देगा बे। अरे बहस मत करो झुमरू भैया, अभी नहीं है तो बाद में दे देना। और ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ अपनी चाय के पैसे दूंगा? अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि ये दोनों तुम्हें खामखा पेट देंगे। आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है?
4: चाय वाले के कहने पर झुमरू सोच में पड़ गया। ये सच था कि दवाई पीने के बाद झुमरू को बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक देखते ही देखते झुमरू की शर्ट फट गई और झुमरू के हाथों के मसल्स निकल आए। ये देखकर चाय की दुकान पर मौजूद सभी व्यक्ति हैरत में पड़ गए।
3: तुम दोनों ने कल मेरी पत्नी के सामने बहुत बेइज्जती की है ना, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
4: झुमरू का शरीर देखकर जग्गू और बिल्ला थर थर कांपने लगे।
1: अरे इसको क्या हो गया बिल्ला, ये कमजोर नाई से पहलवान कैसे बन गया?
4: तभी झुमरू ने उन दोनों को पूरी तरह से पीट दिया। बिल्ला और जग्गू की पसलियां तोड़कर झुमरू गुस्से से चाय वाले से बोला,
3: क्यों रे, तुझे बड़ी हंसी आ रही थी मुझे देखकर, हैं?
5: अरे नहीं झुमरू भैया, हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे, हम सब आपके साथ में हैं।
3: आते ही तूने मेरा सबसे पहले मजाक उड़ाया था। उन दोनों से कुछ कहने के बजाय तू मुझसे ही चाय के पैसे मांग रहा था, है बे?
4: इतना कहकर झुमरू ने लातों और घूसों से चाय वाले का मुंह लाल कर दिया। चाय वाला बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कुछ ही देर में गांव का जमींदार चौधरी अपने आदमियों को लेकर गुस्से से झुमरू के घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी से बोला,
1: कहाँ है तेरा पति झुमरू? उसने मेरे भतीजे और बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा है कि उनकी पसलियां तक तोड़ दी।
6: ये कैसी बात कर रहे हैं आप चौधरी जी? मेरे पति तो बेहद दुबले पतले और बहुत सीधे हैं। उल्टा तुम्हारे बेटे और भतीजे ने कल बाइक से मेरी पीठ पर चोट मार दी और मुझे छेड़ा और।
1: अरे बकवास मत कर शर्मीली, हैं? अरे पूरे गांव में तेरा पति सबको बेदर्दी से पीटता फिर रहा है, हैं?
4: तभी अचानक वहां पर झुमरू आ गया। झुमरू को देखकर चौधरी थर थर कांपने लगा और अपने आदमियों से बोला,
1: अरे देखते क्या हो, अरे निकाल दो इसकी सारी पहलवानी।
4: चौधरी के कहने पर चौधरी के आदमी झुमरू को मारने के लिए बढ़े, मगर झुमरू ने देखते ही देखते चौधरी के सारे आदमियों को धूल चटा दी। ये देखकर चौधरी डर कर वहां से भागने लगा। झुमरू ने तुरंत चौधरी को पकड़ लिया।
3: कुछ देर पहले तेरे बेटे और भतीजे को मारा था, अब तेरी बारी है।
4: इतना कहकर झुमरू ने चौधरी को भी बुरी तरह से पीट दिया। चौधरी दर्द से कराहता हुआ वहां से चला गया।
6: अजीब, ये आपको क्या हो गया? आप तो बेहद दुबले पतले थे, अचानक इतने तगड़े कैसे हो गए?
3: ये सब डॉक्टर मुरारी की दवाई का कमाल है। अब मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा और सारे गाँव वालों का जीना हराम कर दूंगा।
4: तभी दवाई का असर खत्म हो गया और झुमरू अपनी पहले जैसी अवस्था में आ गया।
6: अरे ये तो आप पहले जैसे हो गए।
3: नहीं नहीं, मैं पहले जैसा नहीं होना चाहता, अभी भी दवाई मेरे पास है।
4: झुमरू शीशी निकालकर पीने ही वाला था कि तभी डॉक्टर मुरारी दौड़ता हुआ वहां आ गया।
1: अरे झुमरू भैया, ये क्या कर रहे हो, इस दवाई को मत पियो।
3: अरे नहीं, इस दवाई की वजह से आज मैंने उन सबको धूल चटा दी जो मेरा मजाक उड़ाते थे।
1: अरे झुमरू भैया, कल पूरी रात मैं इस दवाई को घर में ढूंढता रहा, लेकिन जब सुबह मुझे पता चला कि तुमने सबको पीट दिया तो मैं समझ गया कि ये दवाई तुमने पी ली है। ये दवाई वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो।
3: दूर हट जाओ डॉक्टर मुरारी, और तुम मुझे इस तरह की और दवाई बना कर दो।
1: झुमरू, मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दवाई सिर्फ कुछ देर के लिए इंसान को थोड़ा सा आकार बढ़ाकर मसल्स बना देती है, लेकिन ताकत पैदा नहीं कर सकती।
3: आप कहना क्या चाहते हैं?
1: वही जो तुम सुन रहे हो, इसे पीने से सिर्फ तुम्हारे मसल्स और थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन जिन गांव वालों को तुमने पीटा है वो तुम्हारी खुद की ताकत है झुमरू।
3: मैं नहीं मानता, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था?
1: झुमरू, इस दवाई को पीने के बाद सिर्फ इंसान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। जब तुम्हारे शरीर का आकार और मसल्स बढ़ गए तो तुम्हें उसे देखकर हिम्मत आ गई, जबकि सच तो यह है कि अगर तुम इसे नहीं भी पीते और अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लेते तो तुम उन लोगों को वैसे भी मार लेते। झुमरू, तुम सिर्फ देखने में दुबले पतले जरूर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आम आदमी की तरह ही ताकत है।
3: आप सही बोल रहे हैं डॉक्टर, शायद मुझ में हिम्मत की ही कमी थी। आज के बाद अब मैं अन्याय नहीं सहूंगा।
4: उस दिन के बाद झुमरू ने डरना छोड़ दिया। एक दिन झुमरू उसी चाय वाले की दुकान पर चाय पी रहा था कि तभी वहाँ पर जग्गू और बिल्ला आ गए।
3: कहीं ये लोग मुझसे बदला लेने तो नहीं आए?
4: झुमरू उन दोनों की ओर गौर से देखने लगा। तभी जग्गू फुसफुसाकर बिल्ला के कान में बोला,
1: अबे यहाँ तो झुमरू नहीं खड़ा है, देख कैसे हमें घूर कर देख रहा है।
5: अबे तो हमें क्या है, हम कोई लड़ने थोड़ी आए हैं भाई।
1: अबे ये हमें घूर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से पहलवान बनकर हमें पीट दे।
5: तू सही कह रहा है यार, चल निकल लेते हैं यहाँ से चुपचाप, कहीं ऐसा ना हो।

0: ये हमें फिर से पीट दे।
1: जग्गू और बिल्ला बड़ी फुर्ती से दुम दबाकर भाग गए। झुमरू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद झुमरू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।

0: लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदाई हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे कम बोलो, धीरे बोलो।

जय देव जय देव। आज था बुधवार का ये खूबसूरत दिन, विश्व साइकिल दिवस। इसी के साथ साथ उड़ान से कहना चाहेंगे गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, इकोनॉमिकल बनिए, साथ ही साथ जितना कम हो सके पेट्रोल खर्च कम करिए। साइकिल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण का, अपने पॉकेट का पूर्ण रूप से ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान कार्यक्रम से कहना चाहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
3: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
2: सोनोग्राफी वो किस लिए?
3: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
2: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
3: फिर तुम शुरू हो गई।
2: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
3: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: नमस्कार, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल जब नाम सुनते हैं कितना खुशबू प्रदान करता है। जिस गाँव जिस अंचल में हम पले बढ़े और यहाँ तक पहुँचे, उसको रिटर्न देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि गाँव जो होता है स्वर्ग जैसे लगता है, क्योंकि अपना परिवार रहते हैं और हम खुश रहते हैं उसी गांव अंचल में। तो इस कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव मेरा अंचल। आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ सकलाराम जी है, जो कि उमरेनी से बिलोंग करते हैं और खासकर सिक्योरिटी शांतिवन में सेवा रहते हैं। यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं और यहाँ से और बाहर से क्या अंतर है, थोड़ा पहले क्या करते थे, वो सब जानकारी आज प्राप्त करेंगे। क्योंकि समय किस तरह आता है, कभी अच्छा आता कभी खराब भी आता, उसी अच्छा बुरा स्थिति में हमको कैसे सजग सुरक्षित रहना है, हम सब भलीभांति जानते हैं। समय जो भी है लेकिन अपना स्थिति को, परिस्थिति जो भी आए लेकिन अपना स्थिति को मजबूत रखना, उसके लिए हम किस तरह प्रयास करते हैं। सभी घर में रहते हैं, घर में जो आवश्यक अनुसार ही घर से बाहर निकलते हैं। तो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सकलाराम जी को स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। खासकर हमारा मेरा गांव मेरा अंचल में जो हमारा गाँववासी अंचलवासी और सभी सिक्योरिटी विभाग तरफ से उनको स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो सकलाराम जी, आप अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए, आपका गाँव और आपका बचपन पढ़ाई कहाँ तक की, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, बताइए, आपका स्वागत है।
1: हमारा क्या है, बचपन से मतलब हमारा पिताजी किसान है और खेती बाड़ी करते हैं और हम गरीब परिवार से आए।
0: जी जी।
1: और हम पढ़ते थे, 9th class तक पढ़ाई किया हमने, उसके बाद स्कूल हमने छोड़ दिया, इतना पैसा नहीं था घर वालों के पास पैसा था नहीं। उसके बाद काम काज करने लग गए, MP मोटर्स मानपुर में ट्रैक्टर एजेंसी था, उधर किया मैंने 1 साल तक। उसके बाद सुखदेव सिक्योरिटी से मैं शांतिवन में सिक्योरिटी में लग गया।
0: जी जी।
1: और उस समय से 2011 से लेकर अभी तक मैं ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ शांतिवन में।
0: जी जी।
1: दादी जानकी जी के पास मैंने सेवा किया और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। वहाँ पे दीपक भाई अंसाबेन के

0: सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हम सेवा करते हैं यहाँ, ड्यूटी करते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, और बहुत अच्छा है और हम सुरक्षित हैं इधर, और हमको खाना पीना चाय वगैरह सब आश्रम देता है, पैसा भी देता है, तो हम खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं और बाकी आगे भी सब कुछ ठीक ही चलेगा। अभी
1: जो आप यहाँ पर लगे हैं पहला, उस समय क्या सोच रहे थे संस्था के बारे में, जो पहला पोस्टिंग हुआ तो

0: थे
1: पहले शुरू में आया था तो इतना ज्ञान नहीं था, तो अभी ब्रह्म कुमारी का क्या है क्या नहीं है, ऐसे थोड़े दिन ड्यूटी कर लेते हैं और फिर चले जाएंगे। बाकी एक दो महीने किया, जब समझ में आया सब लोग इतने सारे विश्व से आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम तो इतने पास में रह रहे हैं, हम क्यों ना ज्ञान ले। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब इधर ही रहेंगे, ड्यूटी करेंगे, और हमको अच्छा लगता है यहाँ पे, और बोलने वाले सब लोग प्यार से बोलते हैं, शांतिवन में जो भी बीके भाई है अपने अच्छा ज्ञान देते हैं और अच्छा सब कुछ करते हैं, इतने सेवा करते हैं तन मन से, और सब कुछ ठीक है अभी, और हम ड्यूटी कर रहे हैं।
0: तो पहले जो संसद था, मैं दो तीन चार दिन में थोड़ा दिन के लिए देखते हैं क्या है ऐसे सोच कर आए थे लेकिन पहला ड्यूटी क्योंकि संस्था क्या है, क्या बताएगा, क्या सुनिश्चित, क्या चलता होगा, कुछ जानकारी जब नहीं रहता है, परिचय जब नहीं रहता है, तो मन में तो बहुत सारा प्रश्न आता होगा ना दिमाग में।
1: शुरू में लगा था, इच्छा नहीं थी कि मैं ब्रह्म कुमारी में जाऊँ बाकी, लेकिन एक बार आ गया मैं अंदर 2011 के अंदर, फिर एकदम देखा इधर क्या रहन सहन है, और देख के बहुत अच्छा लगा हमें, जब से लेके अभी तक कर रहे हैं हम ड्यूटी।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी सुन रहे हैं इस समय, और हमारा जितना सिक्योरिटी भाई लोग भी सुन रहे होंगे जहाँ पर भी करते हैं, लेकिन देखो शुरुआत में जब भी जाते हैं कोई भी अनजान जगह, अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, भाई हमारा ड्यूटी कैसे होगा, किस तरह होगा, लोग का व्यवहार कैसे, तो सबका आता है, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा तो आएगा ही, लेकिन इसके बाद जब एडजस्ट हो जाते हैं, जानकारी हो जाता है, संबंध परिचय मिल जाता है, संबंध आ जाता है, तो लेन देन काफ़ी सहज हो जाता है, जिसका चलते आगे बढ़ने के लिए सुविधा होता है। जैसे हमारा सकलाराम जी अपना बात बताए, शुरू में थोड़ा सा संसद थोड़ा सा था, लेकिन उम्रिन तो नज़दीक, उम्रिन ग्राम पंचायत में ही तो ये दानवाव जो है,
1: हाँ,
0: ग्राम पंचायत में
1: है।
0: इतना बड़ा विश्वविद्यालय है और पूरा देश विदेश से लोग बाग आते हैं, अपना आस्था विश्वास और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी को जीवन में धारण करने के लिए आते हैं, और हम नज़दीक रहकर उसी ग्राम पंचायत में रहकर हम वंचित हो जाए, ये तो परमात्मा को सुहाएगा नहीं, हमारा बच्चे और ऐसे सूखा रहे, यहाँ तालाब है, पानी जहाँ है, और वहाँ पर कोई प्यासा रहेगा, ये कैसे हो सकता है। इसलिए जिसका भाग्य में है वो जरूर पहुँचता है किस ना किसी रूप में, जैसे सिक्योरिटी का नाम पे हो, चाहे कोई काम करने के बदले हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टिंग करने में आने के बाद जीवन में उनका भाग्य परिवर्तन होता है। जैसे हमें सकलाराम जी अपना बात को रखें, बहुत अच्छा लगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ जानकारियाँ लेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार और राम राम। अल्प विराम के बाद हम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शांत परिवेश में जब बैठते हैं तो वातावरण कुछ अलग प्रेरणा देता है, क्योंकि वर्तमान समय किस तरह चल रहा है सबको विदित है। उस समय को हम भी सम्मान देते हुए, समय ही बलवान कहते हैं, समय को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आज हम समय को सम्मान देंगे तो समय भी हमको सम्मान देगा। समय पर हम जब काम करते हैं तो समय को बलवान कहते हैं। तो इस समय हम किस तरह चल रहे हैं और किस तरह सभी भली भांति जानते हैं, जहाँ भी रहे मस्त रहे, स्वस्थ।

0: नहीं चाहिए। पुनः उनको स्वागत करते सकलाराम जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए। तो खासकर आपका बचपन में कभी सोचा था मैं सिक्योरिटी में करूँ, मैं क्या एम रखा था, लक्ष्य रखा था कुछ करने के लिए?
1: ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पढ़ाई करने का था, लेकिन घर वाले, इतने गरीब परिवार से था मैं, पढ़ाई नहीं कर सका, इसलिए फिर जॉब किया और सुखदेव सिक्योरिटी से मैंने ज्वाइनिंग किया और सुखदेव सिक्योरिटी ने मेरे को यहाँ शांतिवन में भेज दिया ड्यूटी के लिए।
0: क्या ट्रेनिंग करना पड़ता?
1: ट्रेनिंग वगैरह सब किया था मैंने।
0: क्या क्या ट्रेनिंग किया सिक्योरिटी को?

0: सावधान विश्राम सैल्यूट किया कैसे किया जाता है ये सब, और अपने जो भी बड़े लोग आते हैं उनका कैसे सम्मान किया जाता है, क्या है क्या, कैसे बोलना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से ड्यूटी करनी है, किस समय क्या संकेत देना है मिसाइल से हमें, और सब कुछ सिखा के ट्रेन करके फिर हमें शांति वन में भेजा गया।
1: तो आप जो ट्रेनिंग लिए उस टाइम आपका इस तरह सेवा मिलेगा उसमें हाँ कर पाएंगे, इसे दृढ़ता आया हाँ ये चीज़ हम कर पाऊंगा जो ट्रेनिंग के समय में,
0: ट्रेनिंग के समय में तो था मैं कर पाऊंगा ऐसे, लेकिन यहाँ आने के
1: लेकिन और कोई चीज़ और किसी लाइन को क्यों क्यों नहीं चुने, सिक्योरिटी क्यों चुने, जैसे और कोई काम होता है ना बहुत सारा
0: काम देखा था, लेकिन उस समय फिर कोई काम नहीं था मेरे पास, तो मैंने ज्वाइनिंग कर लिया यहाँ पे सुखदेव से। 8 घंटे ड्यूटी था तो मैं सोचा घर पे भी काम हो जाएगा और अपने इधर भी ड्यूटी चलती रहेगी। उसके बाद वो ड्यूटी चलती रहा, शांतिवन में अच्छा लगा, और उसके बाद ड्यूटी करते करते गेट पे फिर सीधा डायरेक्ट जानकी दादी के पास सेवा मिल गया हमको, और उधर काफ़ी हम 3-4 साल तक रहे। उसके बाद 3-4 साल बाद रहने के बाद अभी जानकी दादी तो रहे नहीं।
1: इस पर विश्वविद्यालय मुख्य प्रशासिका थे दादी जानकी जी, है ना, तो उनका कॉटेज में आप सिक्योरिटी किए, तो इस तरह जब सिक्योरिटी किए तो आप कभी कुछ अलौकिकता वासना मिला, ओम शांति जो करते लोग ज्ञान जो करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो जब जाते तो यहाँ के वातावरण में क्या आपको थोड़ा सा भी तो मिला होगा ना।
0: शक्ति भवन में जाने से हमें बहुत शांति महसूस होती थी, दादी से बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, हम सोचते थे हम कितने भाग्यवान आत्मा है जो बिगड़ देखे, देखो हमेशा हम दादी के पास 12 घंटे सेवा करते हैं, लोग बड़े बड़े कलेक्टर आते हैं उनको एक मिनट मिलने का समय नहीं है, और हम दादी के पास 12 घंटे सेवा करते थे, तो ये भी हमारा एक भाग्य है, ईश्वर ने हमें भेजा वहाँ पे, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमने दादी जानकी के वहाँ सेवा किया।
1: दादी जानकी को पूरा वर्ल्ड जानते हैं और विश्व में सबसे स्टेबल माइंड लेडी है इस पर विश्वविद्यालय का, और मुख्य प्रशासक थी, तो आप उनका कॉटेज में सिक्योरिटी किए हैं, तो ज़रूर दादी से कुछ प्रेरणा मिला होगा, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में, दादी से तो मुलाकात होता होगा, कभी टोली हो चाहे उनका जो स्टाफ
0: टोली वगैरह सब मिलता था दादी से, और हमें प्रेरणा मिलती थी कि लोगों का सेवा किया करो तन मन से, और अच्छे रहो, सुरक्षित रहो, और वही अच्छे बातें करना और अच्छे लोगों को ज्ञान देना बाबा का, किस तरह से हमें बातचीत करनी है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, यही हमने सब शांतिवन में सीखा, किस तरह से रहना है, हमें पवित्र रहना है, और सब कुछ ये लोगों को ज्ञान देना है।
1: शुक्लाराम जी आप बताइए, खासकर दादी कॉटेज आप इतना प्रेरणा लिया और आपको खुद को भाग्यवान महसूस करते हैं, इस तरह जो चांस मिला, जितने दिन आपको सेवा करने का मौका मिला उसमें भले लोग तरसते हैं वहाँ मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री, सभी लोग जानते हैं दादी को, आप भी जानते हैं, तो उस कैटेगरी में आ गए ना, तो आप तो खुद खुश महसूस करते थे और अभी भी कर रहे हो, कभी कोई भी स्मरण आता होगा भाई दादी के पास वो पल
0: वो तो याद रहता है हमें, जब अभी भी सोते उठते हम दादी को भूल नहीं पाते, क्योंकि हमने 5 साल तक सेवा किया दादी के पास, दादी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे पास है, और हम हमेशा महसूस करते हैं दादी को।
1: जैसे 5 साल का जो सर्विस वहाँ पर करते थे उस बीच में कोई एक पल जो समय बहुत अनुभव किया दादी को, होता है परमात्मा को पास शांति का वातावरण, रात में हो चाहे दिन में, कभी वो क्यों नहीं याद है, कोई जब ड्यूटी करते थे प्रभु का कृपा व कभी अलौकिकता भाषना जो इस पर विश्वविद्यालय में जो मेन पढ़ाई होता है ज्ञान योग का, परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा से बात करना, ऐसे मन को शांति,
0: मन को शांति जब नाइट ड्यूटी में करता था वहाँ पे,
1: कभी एक पल कौन सा दिन याद है?
0: हाँ, नाइट ड्यूटी में जैसे बाबा मिलन रहता था तो उस समय से रात को 2 बजे अमृत वेला है, बहुत शांति सा महसूस होता है, जैसे कि स्वयं भगवान हमारे पास आ गए हैं और हम दादी के पास बैठे हुए हैं और दादी ही हमारे बाबा हैं, वो हमें महसूस होता था कि अभी बहुत शांति से और सब कुछ हमें भगवान ने दे दिया है कि हम खुद ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि दादी तो खुद भगवान का रूप था, उनसे बड़े बड़े लोग आते थे, भाग्यवान आत्माएँ मिलती थी उनसे, तो हम तो सबसे बड़ी भाग्यवान आत्मा थे, हमेशा उन दादी के पास ही रहते हैं,
1: तो ये एक अनुभव का बात है, तो परमात्मा मिलन होता था उसमें रात वक्त परमात्मा का तो निगरानी दादी का ऊपर, चीफ के ऊपर में, उसका अंदर में ही बाबा का पूरा छत्र छाया में रहते थे, तो उनका जो ओरा, जो वायुमंडल, जो शांतिवन का जो परिवेश, खासकर दादी कॉटेज का जो वातावरण, शुद्धता हो, पवित्रता हो,
0: एकदम शांत वातावरण रहता था और बहुत अच्छा लगता था।
1: योगी है ना, योगी आत्मा का जो वाइब्रेशन है उसका फैलता है, तो जो भी आता है तो उनको, जैसे हम यहाँ आग लगाएंगे तो गर्मी महसूस होता है। कोई साधु आत्मा, पवित्र आत्मा या पवित्र लोग जब पहुँचेंगे तो उनका ओरा, उनका जो वाइब्रेशन, उसका मन में जो संकल्प चलता है तो दूसरे को शांति महसूस होता है। तो आप तो अनुभव किए होंगे बहुत सारे।
0: हमको महसूस होता था, सब कुछ भूल जाते थे और हमें शांति महसूस होता था। कोई भी कष्ट है, जो भी दुख दर्द, जो भी कोई भी, हम सब भूल जाते थे। अच्छा। दादी की याद जैसे कि हमारे कोई नहीं है, सब बस बाबा है,
1: ऐसे करते थे। हाँ। सिर्फ बाबा पूरा।
0: हम सुबह 2 बजे उठ के अमृत वेला में डेली बाबा रूम जाते थे हम। वहाँ पे गुड मॉर्निंग करके हम आते थे सुबह, फिक्स था हमारा।
1: कैसे सीखे आप गुड मॉर्निंग बाबा, अमृत वेला, सब कोर्स वर्क किए आप?
0: हमने मतलब वो कोर्स वगैरह तो नहीं किया, लेकिन बाकी जैसे हमारे केतन भाई है, दीपक भाई है, तो वो हमें सब समझाते रहते थे ये वो सब। अच्छा। तो उसके कारण हम भी सोचते थे कि लोग इतने जाते हैं तो हम भी जाते हैं, तो हमें शांति महसूस होती थी, बहुत अच्छा लगता था। सुबह अमृत वेला 2 बजे में फिक्स दरवाजा खुलते, हम फर्स्ट में पहुँचते थे सबसे पहले। जैसे हम 2 बजे का हम देखते थे, 2 बज गए हैं, तो हम पहले से तैयार रहते थे। वहाँ जैसे वो भाई आता था, खोलता था, तो एकदम शांत वातावरण में, बाहर कुर्सी लगी रहती थी, तो हम थोड़ी देर 2 मिनट बैठ जाते थे, या फिर खड़े खड़े बाबा को देख के, याद करके, गुड मॉर्निंग करके, फिर शक्ति बंद में दादी के पास जाते थे, क्योंकि वहाँ भी ड्यूटी देना ज़रूरी है। इस टाइम क्या पता रात में कोई घुस जाए, तो थोड़ी देर 1-2 मिनट जो भी है याद करते थे।
1: ऐसे जैसे आप बोले ना, सिक्योरिटी हमको दिया जाए तो सुरक्षा करने के, दादी को, दादी कॉटेज को कुछ भी ना हो, इस तरह आपका 5 साल का अंदर में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट में कोई खतरा आया?
0: खतरा कोई नहीं था,
1: कोई नहीं, कभी भी, क्योंकि वो तो अच्छा चाहते कौन आएगा
0: दादी के पास, कौन आएगा
1: मैं कभी बोलते मैं अपना ड्यूटी, हम अपना ड्यूटी तो करते थे, लेकिन कभी इस तरह
0: नहीं, नहीं ऐसा कभी कुछ
1: भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो होना नहीं, होगा ही नहीं कभी, जहाँ अच्छा जगह में बुराई कहाँ से आएगा, जहाँ बुराई होगा तो वहाँ बुराई ज्यादा
0: आज तक वहाँ पे कुछ शक्ति बल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दादी के पास हम सुरक्षित रहते,
1: शक्ति है, शक्तिशाली,
0: सुरक्षित रहते थे वहाँ पे, एकदम बाबा की याद में खोए रहते थे, दादी थे हमारे पास।
1: ना कोई आएगा ना, गलत सोचेगा ना, क्योंकि पूरा अंदर में रहते दादी वहाँ, और बहुत पालना में भी, ये भी भाग्य का बात है, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा काम मेरा अंचल, ये था कुछ परमात्मा का सानिध्य व परमात्मा का घर में जब हम सेवा देते हैं तो उनका आवास तो जरूर मिलता होगा। जैसे अपना अनुभव आधार से सकलाराम जी किस तरह दादी कॉटेज में रहकर परमात्मा का शक्ति को अपना जीवन में धारण करते हुए जीवन को श्रेष्ठ, सरस और सुंदर बना रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं उसी राह में, और जहाँ भी रहे मस्त रहे, और सबको संदेश, जब गाँव में जाते हैं तो किसको किसको संदेश देते, परमात्मा का अनुभव किसको सुनाते, ये चीज हम रखेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्कार, अल्प विराम के बाद मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जब आध्यात्मिकता बात होता है। आध्यात्मिक मीन्स स्पिरिचुअलिटी जो बात होता है, सबका जीवन में आध्यात्मिक आए, खुद को जाने, परमात्मा को जाने और हमारा जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर, सरस बने और पवित्र रहे, योगी बने। क्योंकि हमारा स्लोगन है पवित्र बनो योगी बनो। जब शांति सुख आनंद खोजेंगे तो पवित्रता जब रहेंगे सब मिलेगा। तो सकलाराम जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें भी। इस तरह कार्यक्रम में जब आध्यात्मिकता और परमात्मा का बात हो रही तो हमारा गांववासी, अंचलवासी आस्था और विश्वास में जो ओत प्रेत जो इच्छा रखते हैं उनको भी कुछ संदेश मिले। क्योंकि परमात्मा तो सभी का है, कोई जाति वर्ण धर्म कोई पढ़ा लिखा इस तरह कुछ नहीं, सबके लिए। आज जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, पात्र अंतर नहीं देखता है, सभी को देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जो भी, जहाँ पर भी गटर भी देगा अच्छा जगह पुल में भी देगा। तो उनका काम है देना। तो परमात्मा तो ज्ञान सूरज है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है और हमारा सबका पिता है, परम पिता है। तो पिता का काम पुत्र को, संतान को देना है, को कभी खराब नहीं करेगा। जिस तरह सकलाराम जी अपना ड्यूटी में रहते हुए शांतिवन में जो शांति का महसूस किए वो अपना बताए पिछला लिंक में। तो चलते हैं और कुछ बातचीत करेंगे। खासकर जब इस तरह परमात्मा का व शांति का महसूस आप करते हैं तो इस चीज़ जो अच्छा चीज़ होता है हम दूसरे को बांटते हैं, बताते हैं। क्योंकि कोई भी ये सस्ता होता है तो हम दूसरे को बोले भाई सस्ता सामान है, मैं लिया तुम भी लो। बोलते हैं ना भाई आज मार्केट में टमाटर हो चाहे कोई सब्जी सस्ता हुआ तो 3 किलो 4 किलो ले लेते हैं रखने के लिए। तो जब हमको बिना मेहनत से मोहब्बत मिलता है परमात्मा का शांति सुख जो बाहर में नहीं है, इतना कलयुग दुनिया में कलयुग तो पूरा कलर क्लेश, बाहर का दुनिया तो हम जानते हैं पूरा गंदा रावण का राज्य है, दुख ही दुख भरा हुआ है जहाँ भी जाओ। लेकिन इस तरह परिस्थिति में हम जो शांति बन में रहते हैं, इस तरह जो प्रेरणा मिलता है, जो शांति परिवेश मिलता है, तो आप ये चीज़ सबको बताते हैं, किस किस बताते हैं
1: ये सबको? हम गांव के लड़के हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे गांव में पढ़ने वाले लड़के हैं और अनपढ़ जो भी कोई भी है, सबको हम सुनाते हैं।
0: मौका मिलता है
1: कोई भी मिल गया आओ भाई, तो वो पूछते हैं शांतिवन में तुम जाते हो क्या क्या सीखते हो? हमने बोला बहुत कुछ सीखने के लिए है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। हम तो भाग्यवान आत्मा है जो हमें सब कुछ बिगर दिए बिगर पैसों से हमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारी जिंदगी सवर गई है। हमारा सब बाहर के लोग क्या क्या करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी गुटखा। हम इधर आने के बाद सब कुछ ये 2011 से पहले भी नहीं करते थे, बाकी इधर आने के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं। ये मांस मदीना दारू फारू सब इनसे सब दूर रहते हैं, हमारा रूम ही अलग है, हम पीने वालों से बात तक नहीं करते हैं।
0: ओके, ये आपका बदलाव है, ये चीज़ आप दूसरों को बताते हैं?
1: ये हम दूसरों को सबको बताते हैं, गुटखा नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। भगवान को याद करो, उसको ज्ञान
0: सुनो, परमात्मा
1: ज्ञान सुनो, परमात्मा आए हैं शांतिवन में, वहाँ जाओ कोर्स करो,
0: अनुभव करो। जैसे समुद्र किनारे में जाओ तो ठंडक महसूस होगा, है कि नहीं? पानी का किनारे में जाएंगे तो ठंडक महसूस होगा ना। तो परमात्मा के पास जाएंगे तो शांति का, प्रेम का, खुशी का, जो जीवन में लक्ष्य क्या है वो तो हमारा असली बाप है। परमात्मा को कहते हैं ना भगवान को, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कर, तुम्हें वो माता चौ पिता तुम्हें भी कहते हैं। तो कहाँ है ऊपर वाला है ना, नीचे वाला थोड़े, ऊपर वाला मीन ऊपर रहता है
1: वही है परमात्मा।
0: परमात्मा अब जो नीचे वाले हैं तो हमारा एक्टर है, डायरेक्टर तो वो है। तो परमात्मा को हम जितने याद करेंगे उतना हमारा फायदा है। ये बहुत अच्छा बात बताए, जैसे खुद परिवर्तन होते हुए दूसरों को भी परिवर्तन करना में कराने में जो लगे हैं, खुद बदलते हैं दूसरों को बदलाते हैं, है ना। ये एक पुनीत काम है, श्रेष्ठ काम। हम खुश रहे तो सबको खुश रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो आप जो काम करिए तो बाबा भी खुश होता होगा, भले कोई करे कि नहीं, ना अपना जो कर्तव्य है हम कर रहे हैं। जैसे आप सुरक्षा देते हैं सिक्योरिटी में, तो आपका कर्तव्य सुरक्षा देना है। तो परमात्मा तो आया, बड़ा सिक्योरिटी है, दुनिया को पूरा सुरक्षा रखते हैं,
1: वो सबको देखता है।
0: हाँ, चौकीदार, वो तो बड़ा चौकीदार है
1: उसके नजरों में सब, सब है। एक एक आत्मा क्या कर रही है वो सब ध्यान रखते हैं बाबा। तो हम कोई भी कार्य हम जो भी करते हैं, जो भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ वो देख रहा है, तो हमें अच्छा कार्य करना है, सब गलत काम तो करना नहीं है, क्योंकि गलत करेंगे तो गलत मिलेगा कर्मों का फल, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल देंगे। हमें खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है, बाबा को भी याद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय मिले उतना ही याद करो तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात।
0: आपका परिवार में कौन कौन रहते हैं?
1: हमारे परिवार में हमारे माता जी है, पिताजी है, भाई है।
0: और परिवार में आप शादीशुदा?
1: हाँ शादीशुदा है।
0: शादी आपकी है?
1: हाँ।
0: तो उनको ज्ञान सुनाए कभी बाप?
1: हाँ उनको भी सुनाते हैं, घर पे माता पिता है उनको भी सुनाते हैं, तो वो बहुत खुश रहते हैं कि हमारा लड़का वहाँ जाके कुछ अच्छा सीख रहा है और उनकी आदत अच्छी है। हमारे गांव में इस कारण से हमारा लड़कों में सबसे ऊंचा नाम हमारा आता है।
0: ओ।
1: क्योंकि लड़के सब कोई पीने वाले कोई क्या है, तो हम क्या है लोगों की सेवा भी करते हैं।
0: आपका समाज जो गैराज समाज है ना, तो वहाँ पर पीना होता है?
1: ये पी लेते हैं इधर उधर जाके, फिर झगड़ा करते हैं वो करते हैं सब, तो हमारा वो सब।
0: आपको देखने से तो गैराज से जैसे नहीं लग रहे, लेकिन आप पर पूरा ओम शांति में आकर जो सिकुड़ देकर आप
1: वो शांतिवन में आके सब एकदम सीख के अलग ही हम दिखाई देते हैं। कहीं भी हम कपड़े पहन के जाते हैं, हमारे बोल चो वो चालन से कोई हमको पहचान नहीं पाता कि आदिवासी है।
0: आदिवासी
1: क्योंकि वो सब से जाता है शांतिवन ब्रह्मा कुमारी, उसने हमको इतना हमने स्कूल में भी नहीं सीखा होगा इतना यहाँ सीखा है शांतिवन में।
0: यहाँ तो सिखाने के लिए फिर भगवान शिक्षक है, यहाँ कोई मनुष्य शिक्षक थोड़े, भगवान शिक्षक है, परम शिक्षक तो शिव बाबा है, शिक्षा रूप में मुरली सुनाते हैं यहाँ, है ना।
1: 8-9 साल हो गया है सब शांतिवन में रहते थे, रोज मुरली भी सुनते थे, माइक में वहाँ आता था उधर शक्तिवन में बैठे बैठे स्पीकर में रोज मुरली आता था 1 घंटे का, सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक तो सुन लिया करते। अभी मोबाइल में कभी टाइम मिलता है तो सुन लेते हैं।
0: 12 घंटे ड्यूटी देना पड़ता है?
1: हाँ।
0: और 12 घंटे अपना गांव घर में जाकर क्या करते हैं?
1: फिर 12 घंटे अपना घर पे कोई काम काज होता है तो वो कर लेते हैं।
0: चलिए सुनेंगे अल्प विराम के बाद, सिक्योरिटी का साथ साथ 12 घंटा करने के बाद और जो 12 घंटा रहता है तो किस तरह दिनचर्या रहता है, और खासकर समाज को भी अपने जो यहाँ का जो समाज का लोग है, ग्रह समाज हो चाहे भील समाज हो चाहे जो भी समाज का लोग रहते, सबको सम्मान देते हुए अपना समाज वालों को भी खुश रखना है इधर भी खुश रखना है, इस तरह बात रखेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: this is triple Guinness World Record holder, Dr. Ghazal Srinivas. And you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling. Thank you, Radio Madhuban.
1: नमस्कार, अल्प विराम के बाद मिल रहे हैं। बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो रही, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है तो गांव वासियों से जब मिलते हैं तो हमें खुशी और नाज इस तरह प्रोग्राम में जब गांव वालों से मिलते हैं अपनापन लगता है, क्योंकि जिस अंचल में हम रहते हैं उस अंचल का जो शुद्धता और जो गतिविधि है सब तक पहुँचे और होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो मानविकता जिसको कहते हैं, मनुष्य जीवन ही परोपकार के लिए भगवान उसने भेजा, सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहते हैं मनुष्य को, इंसान को एक दूसरे का सहयोग देने के लिए। तो रेडियो मधुबन एक सेतु का काम कर रहा है, एक माध्यम है जो हमारा गांव और अंचल में, हमारा ढाणी में और हमारा कस्बा में जो हो रहा है, हमारा भाई बहन कैसे रहते हैं और उनका जीवन में कैसे बदलाव आया, हो सकता हमारा जीवन से किसको परिवर्तन कर दे, किसको प्रेरणा मिले। तो इसी को लेकर आज रेडियो मधुबन चार तरफ जाता है, सबसे मिलते हैं। जैसे आज उमरिन ग्राम पंचायत के सबलाराम से मिल रहे हैं और किस तरह उनका जीवन में परिवर्तन आया और आज ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर में अपना सुरक्षा विभाग में सेवा दे रहे हैं, सबको सुरक्षित महसूस कर, तो उनका चलता हम आंध्र में जो भी भाई बहन सुरक्षित सो पाते हैं, जैसे बॉर्डर में जो सिक्योरिटी वाला जो सैनिक रहते हैं तो उनका चलते भारत सेफ महसूस करता है कि नहीं, तो बॉर्डर पर रहते हैं तो हम लोग भी आराम से रह पाते हैं। तो रेडियो मधुबन हो चाहे जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर है, सभी खुशी से शांति से आराम से, कोई विघ्न नहीं आता है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी हमेशा 24 आवर्स जागरूक रहता है। तो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सबलाराम जी। तो सबलाराम जी, आप बताइए, आपका जो गांव में आपका रीति रिवाज, आपका संस्कृति जो आपका समाज के और जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रीति रिवाज संस्कृति दोनों को देखें, कहीं यहाँ ड्यूटी पीरियड है वहाँ पर घर में रहते हैं 12 घंटा, यहाँ 12 घंटा देते हैं, ऐसे जब जाते हैं तो उनका खान पान वगैरह, यहाँ पर कभी कभी आपका जो शुद्धता वहाँ पर अशुद्धता होता है, तब इस तरह कुछ टकराव होता है?
2: टकराव तो क्या है, हम हमारा रूम अलग ही बना हुआ है और हमारे घर में ये सब कुछ चलता नहीं है।
1: ओह,
2: हम सब अलग ही खाना बनाते खाते हैं और जो भी ये सब दारू पीने वाले मांस मदीना वाले
1: घर में होता है, भाई लोग पीते, कोई
2: भाई वगैरह पहले खाते पीते थे, अभी वो मना किया हुआ है।
1: जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप? परिवार
2: नहीं, जॉइंट में नहीं, हमारा अलग अलग है रूम, बाकी उनको भी ज्ञान दिया है तो अभी थोड़ा बहुत वो भी सुधर गए हैं, वो भी इतना कम कर दिया
1: उनका,
2: हाँ वो भी धीरे धीरे कम कर देंगे, हो जाएगा। और हमारा तो चलता ही नहीं है, लोगों को शराब पी रहा है, वो कर रहा है, उन्हें गालियाँ दे रहा है, उनको फिर समझाते हैं ऐसा मत करो, ये पीने से ये होता है, फलाना है सब, तो वो सब सिखाते हैं उनको, बाबा को याद करो, भगवान को याद करो, क्योंकि हम बचपन से लेके मंदिर तो जाते थे, हम आस्था है भक्ति मार्ग में चलते थे हम, लेकिन यहाँ
1: देवी को मानते थे
2: हम, कुलदेवी हमारी माता जी है, आशापुरी माता जी का मंदिर, और फिर ऋषिकेश भद्रकाली मंदिर है, उधर भी हम जाते हैं, अभी भी हर संडे को जाते हैं, तो उधर भी शांति मिलती है। लेकिन जो हमारा भगवान है, सबसे बड़ी शांति हमें शांतिवन में आने से ही मिलती है। एक दिन भी छुट्टी मारते तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि शांतिवन में हमें एकदम परिवार जैसा लगता है और एकदम शांति महसूस होती है। यहाँ पर लोग इतने अच्छे मिलते हैं, उनकी बातें, बात करने वाले लोग इतना अच्छा बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब
1: ऐसे आपको कोई कभी भी नहीं बोले भाई ओम शांति में तुम सिक्योरिटी कर रहे हैं वहाँ, तो आपको ज्ञान सुना कर क्या क्या करा देंगे, फिर आपको यहाँ पर समर्पित करा देंगे, क्या क्या वो ले लेंगे, ऐसे कभी कोई बाहर का लोग
2: आज तक
1: शुरू में
2: भी आज तक बोला तो नहीं है,
1: कोई बोला नहीं?
2: नहीं बोला नहीं है अभी,
1: क्योंकि जा रहे वहाँ पे नहीं, सबको पता है यहाँ पर अच्छा काम होता है, इसलिए
2: उनको पता है, और हमारी लाइन थोड़ी है, ठीक है, दारू वारू पीते नहीं है, तो
1: मिलते नहीं, वो खराब संगत नहीं,
2: तो वो लोग बोलते हैं लड़का अच्छा है, तो वो कोई ऐसे बोलते नहीं है कि शांतिवन क्यों जाते हो, उनको पता है जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, ये अच्छे लोगों को जो अच्छा है ज्ञान देता है उनको कौन क्या बोलने वाला है, उनको पता है कि शांतिवन में जाता है, हम तो खुद ही बोलते हैं कि हम शांतिवन में जाके इतना ज्ञान लिया है, हमने इतना सीखा है, वही ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, अगर इसमें कोई गलत हो तो हमें बताओ, कोई लोग नहीं बोलता गलत है, सब ठीक है, अच्छा है, अच्छा कहीं भी बैठेंगे 5-10 मिनट भी तो वो ज्ञान की बात चालू हो जाती है हमारी, तो लोग क्या हमारे पास कोई कोई आते हैं खड़े रहने के, अच्छा भाई अच्छा आदत इसकी अच्छी है, ज्ञान सुना दे, फिर शांतिवन का पूछते हैं क्या है ज्ञान, तो उनको सब बताते हैं शांतिवन में ये होता है, बाबा को याद करते हैं लोग, ऐसा अच्छा पवित्र खाना बनता है और सब कुछ ठीक ठाक से रहते हैं बढ़िया।
1: और क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ क्या जो बताते दूसरों को, जैसे बताए खाना पीना शुद्धता पवित्रता परमात्मा का बात बताए, और भाई बहनों का जो व्यवहार वो भी आपको अच्छा लगता है?
2: यहाँ के वो भाई बहन है वही बहुत अच्छे हैं, उनकी बातचीत भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी इतने सालों से रह रहे हैं तो सब लोग अंदर के जानते हैं, जैसे अधिकतर लोग शांतिवन में जानते हैं हमें, तो सब अच्छी बातें करते हैं और वो ज्ञान ही सुनाते हैं हमको भी, तो उनको देख के हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
1: अभी जैसे शटडाउन व लॉकडाउन कुछ में परिस्थिति आया, इस तरह परिस्थिति में आपका कुछ दिक्कत हुआ?
2: दिक्कतें बहुत हुआ, हम शांतिवन में जब ड्यूटी करते थे, हम दादी जानकी कॉटेज में थे, अभी लॉकडाउन के कारण बाहर वालों को अंदर लेते नहीं है कोरोना के हिसाब से।
1: कब से लागू हुआ था आप आए अभी ड्यूटी में
2: यहाँ पे? लगभग हम 11 तारीख से आए हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: उससे पहले हम शांतिवन में थे, शक्ति भवन में ड्यूटी थी हमारा, और हम 11 तारीख से आज कितना तारीख हो गया, 8 तारीख तक यही कर रहे हैं, तो थोड़ा अलग
1: बंद था आपका सेवा?
2: सेवा चालू ही था।
1: चालू था, बंद नहीं था, मैं वही पूछ रहा हूँ, कहाँ भी सेवा किया लेकिन चालू था,
2: सेवा चालू ही था।
1: वही बात,
2: सुरक्षा कर्मी वालों को आने दिया था,
1: जाने दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ उसमें, पैसा पेमेंट जो बाहर का लेबर वगैरह काम करते हैं उन लोगों को बंद कर दिया ना?
2: वो सारा बंद है, सिक्योरिटी वाले
1: हुआ, सिक्योरिटी वालों को चांस था। हाँ। तो कोई हम पर में दिक्कत नहीं हुआ है ड्यूटी में?
2: नहीं नहीं।
1: अच्छा, आपका परिवार में आपका मिसेस होगा, स्त्री होगा और बच्चे?
2: एक लड़की।
1: एक लड़की, कितने साल के?
2: वो 1.5 साल की होगी।
1: 1.5 साल, मैंने अभी रिसेंटली शादी की है। नौकरी के बाद?
2: नौकरी के बाद ही बस।
1: और बचपन में क्या रुचि रखते थे खेल कूद में, ऐसे गीत बगैरह?
2: बचपन में, बचपन से लेके आज तक वो क्रिकेट में ही ज़्यादा खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ क्रिकेट में ही ज़्यादातर खेला।
1: समय मिलता है क्रिकेट खेलते हैं।
2: अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, और शांतिवन में भी भाई अपने खेलते तपोवन, तो उनके साथ भी कभी कभी जाता हूँ।
1: क्या बात है।
2: उनके साथ भी क्रिकेट ज़्यादा ही खेलता, स्कूल में ही वही खेलता था।
1: अच्छा अच्छा।
2: बाकी इतना कोई शौक नहीं है।
1: अच्छा, अपना जो भाषा गारस्य भाषा हम लोग तो जाते बाहर, हम तो समझ में नहीं आता मुझे। एक लड़का को लेकर कभी जाते तो वो थावरा राम था।
2: थावरा,
1: उसका नाम है थावरा राम। वो अच्छा से मैं जो बोलूँगा वो अपना भाषा में क्वेश्चन करेगा। तो इस तरह आपका जो भाषा है बहुत मिठास भाषा है, गरासिया भाई का बहुत लोग सुनते हैं, तो सभी हमारे जो गरासिया भाई लोग को थोड़ा राम राम करो, उनको बोलो अपना भाषा में किस तरह है, और ऐसा गीत बहुत आता होगा दोस्त ऑनलाइन करा से भाषा में गीत सुना, जब खुश रहते गीत गुनगुनाते होंगे ना एकांत में, सेवा करते हैं ड्यूटी में, कभी ऐसे गुनगुनाते?
2: नहीं, गीत तो नहीं गाता हूँ मैं, उसमें इतना रुचि नहीं है।
1: नहीं, शुरू में। अच्छा, सुनते हैं ज़्यादा?
2: सुनता भी नहीं हूँ इतना खास, तो
1: सेवा हिसाब से ड्यूटी रहता है। तो 12 घंटे यहाँ ड्यूटी करने के बाद 12 घंटे जाते हैं, क्या क्या करते घर में?
2: घर जाके फिर थोड़ा बहुत स्नान वगैरह करके मंदिर है हनुमान जी का, उधर थोड़ी देर जाता हूँ।
1: उमनी में? हाँ, गांव का अंदर में।
2: हाँ, वर्धा आश्रम के पास एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ, उधर थोड़ी देर बैठता हूँ, जो भी है कुछ उधर पूजा पाठ कुछ भी होता है वो तो करके, फिर घर जाके थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देख के 8-9 बजे खाना वाना खा के सो जाता। फिर सुबह वही 4:40 पे उठता हूँ मैं, वही स्नान करना, फिर वो मंदिर जाना, फिर जो भी अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह वो करना, शेविंग वगैरह करके कपड़े वगैरह प्रेस पे भी।
1: डेली रूटीन आपका?
2: हाँ, ये डेली।
1: तो उसमें संतुष्टि है पूरा? हाँ। खुश राजी इस दो ड्यूटी मिला है पर
2: बस बहुत इधर
1: तो लफड़ा वगैरह काम कुछ नहीं, अपना सेवा करो गांव परिवार से,
2: वो घर से शांतिवन में ड्यूटी और ड्यूटी से घर, बस ये दो ही काम है अभी।
1: काम अभी माँ बाप है तो है ना, माँ बाप है तो उनका भी सेवा करना पड़ता होगा।
2: हाँ।
1: उनकी देखभाल। भाई लोग कितने भाई है?
2: हम 3 भाई है।
1: सब सेटल है? 3 भाई,
2: तीनों भाई है। हम तो शांतिवन में आते हैं और वो मॉडर्न में करते हैं।
1: मॉडर्न में भी क्यों जाता है?
2: वो
1: सिक्योरिटी, वो भी
2: सिक्योरिटी में नहीं है, कुछ और काम करते हैं, इंसुलेटर्स का कोई भी
1: काम करते हैं। हाँ। सब काम रोजगार लगे हुए।
2: हाँ।
1: बहुत अच्छा। जो भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, दिल से काम करेंगे ना, मोहब्बत से काम करेंगे तो नाम करता है, चाहे चौकीदार। हाँ। हो चाहे चपरासी हो,
2: जो कुछ भी हो,
1: क्योंकि दिल से सेवा करेंगे ना लोग पसंद करेंगे।
2: हाँ।
1: राजा होंगे बा मंत्री होंगे बा बड़ा पोस्ट में इंजीनियर डॉक्टर होंगे, लेकिन उसका व्यवहार उनका कर्म जो ठीक नहीं रहेगा, कोई मानेगा नहीं,
2: नहीं मानने वाले,
1: और दुआएं नहीं मिलेगा,
2: कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा तो कौन मानेगा,
1: मानेगा तो इसलिए कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। छोटा बड़ा कर्म नहीं होता है, कर्म अच्छा से दिल से जब करते हैं दुआएं मिलता है और हमें भी खुशी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सगला राम जी को, अच्छा जानकारियाँ दी। जाते जाते अपना घर से भाई लोग को तो राम राम करो जब सुन रहे हैं आपका समाज के लोग,
2: सारे लोग
1: क्या कहेंगे अपना भाषा में
2: जो हारा भाई मतलब शांति बंद सब हो बड़ो हो तो उन्होंने हारा रोम रोम है।
1: अच्छा
2: रोम रोम करो ने शांति बंद रो ज्ञान लियो ने रेडियो मधुबन रो रोज आपने हो बड़ो ने खूब हाव मतलब ज्ञान दिए है ने मो उमड़ नहीं हो मतलब सागला राम नाम है मारा शांति बंद में ड्यूटी करो ने मैं रेडियो मधुबन में मतलब आपने तो सब वैताल जो है जो कोई भी है उन्हें सब रोम रोम है ओम शांति ने सब सुख शांति मारो। लॉकडाउन में हारो आपने ध्यान रख जो
1: घर में रहे
2: घर में रह सुरक्षित रहो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सगला राम को, बहुत अच्छा संदेश का रूप में अपना भाषा में दो शब्द प्रेरणादायी संदेश सुना और रेडियो मधुबन का भी जिक्र किया। इस तरह उनको मौका मिला जो अपना दिल का बात अपना जो प्राप्ति का बात सबके पास रखें, ये काम बात नहीं सभी को मिलता नहीं, किसी किसी मिलता जिसका भाग्य में आता। आज उनको अचानक मिले तो अचानक पार्ट में ही अपना बात को रखा, बहुत अच्छा लगा हमें। इस तरह सभी स्वस्थ रहे मस्त रहे, अपने ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। इन सब भावना के साथ हमें और सगला राम जी को दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे और किसी बात को लेकर। अच्छा सभी को नाम का साथ आभार धन्यवाद ओम शांति। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

नमस्कार, प्रणाम और एक बहुत ही खूबसूरत सी गुड इवनिंग आप सभी प्यारे श्रोताओं को। अरावली की इन हसीन वादियों में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे केवल, और मैं आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जी हाँ, आज है तारीख 3 जून साल 2026। जून का महीना शुरू हो चुका है, शाम ढल रही है और मौसम में वो हल्की सी ठंडी हवाएं, आज शाम को हल्की हल्की ठंडी हवाएं थी, लेकिन गर्मी मानो दिल को मतलब इतनी है कि क्या बताया। कुछ पुराने पन्ने पलटने का वक्त हो गया है, तो बस चाय का कप हाथ में थाम लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे, सिर्फ एक घंटे के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके चहेते शो खुशी के नगमे दिल की बातें। आज के सफर में हम सुनेंगे, गुनगुनाएंगे गुजरे जमाने के वो सुनहरे गीत जो सीधे दिल पर उतर जाते थे, और साथ ही करेंगे ढेर सारे दिल की बातें। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं गोल्डन एरा की इस बेहद खूबसूरत और रूहानी नगमे के साथ। एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

बलम बेईमान जी हाँ, अभी हमने जो गाना सुना आशा भोसले जी की आवाज़ में, शैलेंद्र जी की म्यूज़िक और मूवी थी दूर गगन की छाँव में। जी हाँ दोस्तों, जब कभी ऐसा होता है जब दो चाहने वाले आखिरकार मिल ही जाए और वो भी सरेआम किसी राह चलते मोड़ पर, तो फिर शुरू होती है वो पुरानी पारंपरिक और बेहद प्यारी सी नोकझोंक, जहाँ दिल तो ठहरना चाहता है पर जुबान कहती है कोई देख लेगा। जी हाँ, छोड़ो मेरी बइयां बलम बेईमान, आते जाते देख लेगा कोई। तो सब आजकल के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी कि पीडीए के ज़माने में, जहाँ किसी को कोई परवाह नहीं होती, ये गाना हमें उस दौर की याद दिलाता है जहाँ सिर्फ हाथ पकड़े जाने के डर से जब हाथ पकड़े जाने के डर में भी एक कमाल का रोमांच और शर्मिलापन छुपा होता था। वो छुई मुई सा एहसास, वो नन्ही सी जान का घबराना, यही तो हमारे गोल्डन एरा की असली खूबसूरती थी। दोस्तों, जब भी ये पुराने नगमे कानों में पड़ते हैं ना, तो दिल जैसे ठहर सा जाता है। आज की इस ढलती शाम में मुझे याद आ रही है वो बात कि वक्त बदलता है, मौसम बदलते हैं, लेकिन कुछ यादें और कुछ गाने कभी नहीं बदलते हैं। वो सीधे ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने से निकलकर हमारी आज की रंगीन जिंदगी में अपनी जगह बना लेते हैं। वैसे आज की सुहानी शाम में आपके दिल में क्या चल रहा है? कौन सी पुरानी याद है जो अचानक मुस्कुराने की वजह बन गई है? चाहे आप घर पर हो, गाड़ी चला रहे हो, या अपने बरामदे में बैठकर उस ठंडी हवा का मज़े ले रहे हो, हमारी इस महफिल में आपका स्वागत है। चलिए यादों के इस सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। किशोरदा, रफ़ी साहब, लता दीदी की, मुकेश जी के उस दौर में चलते हैं जहाँ हर लफ्ज़ एक कहानी कहता था। चलिए सुनते हैं ये अगला नगमा। लेकिन दोस्तों, अगले नगमे की ओर बढ़ने से पहले, गानों के सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन चलिए इस ढलती शाम में आपके दिमाग के घोड़े को थोड़ा सा दौड़ाते हैं। वक्त हो गया है हमारी आज की बेहद खास पहेली का। पहली एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। सूरज की गर्मी से मैं पैदा होती हूँ, ठंडी हवाओं को देखकर मैं रोती हूँ। छू सको तो छू लो मुझे तुम, पर हाथ लगाओगे तो मैं खो जाती हूँ। फिर से ध्यान से सुनिए। सूरज की गर्मी से मैं पैदा होती हूँ, ठंडी हवाओं को देखकर मैं रोती हूँ। छू सको तो छू लो मुझे तुम, पर हाथ लगाओगे तो मैं खो जाती हूँ। चलिए अब देखते हैं हमारे रेडियो मधुबन के कौन से श्रोता सबसे पहले और सही जवाब देते हैं। अगर आपके पास जवाब है तो तुरंत हमें फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए 9414151415 पर, या फिर कमेंट या मैसेज करके बताइए। सही जवाब देने वाले के नाम में अगले म्यूज़िक अगला जो ब्रेक होगा, जो अगले गाने बजेंगे, उसमें हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए बढ़ते अगले नगमे की ओर। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लौट के फिर आएगी। वैसे ये गाना था मेरी तरफ से, मतलब मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, मुझे बड़ा पसंद है। और ये गाना स्पेसिफिकली आज मैंने अपने दोस्तों के लिए, जो कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं और फिर वापस जाते हैं, मिलते हैं हमसे और फिर वापस जाते, तो सोचा क्यों ना आज हम भी ये गाना उनके लिए पेश करें कि जाइए आप कहाँ जाएंगे लौट के, तो फिर यहीं आना है, नज़र भी फिर यहीं आएगी। मजरूल सुल्तानपुरी साहब ने जब ये बोल लिखे होंगे तो शायद उन्हें भी अंदाज नहीं रहा होगा कि दशकों के बाद साल 26 की, यानी कि इस साल इस जून की शाम को भी ये शब्द हमारे दिल को उतनी ही शिद्दत से छुएंगे। सही है ना कि पुराने गानों की वो जो बात हम हमेशा करते हैं, और जब उन गानों को आज इस वक्त इस जमाने में हम जब सुनते हैं तो कितना ही एक रूहानी सा मौसम बन जाता है। ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि उस दौर की रूह है, जहां प्यार में जबरदस्ती नहीं बल्कि आवाज और निगाहों का एक ऐसा जादू था जिसे कोई बच ही नहीं सकता था। अक्सर हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा खास इंसान होता है जिसे हम चाहे कितना भी दूर चले जाए, उनकी याद, उनकी बातें किसी ना किसी मोड़ पर हमारे सामने आ ही खड़ी होती है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, बिकॉज जो अगला नगमा है इसी से रिलेटेड हमने लगाया है आज। तो सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो
1: हेलो हेलो जी नमस्कार बाबा जी नमस्कार
0: नमस्कार भूलाल जी कैसे हैं आप।
1: बात मत पूछो, हवा तूफान के साथ में बच करके फिर आपसे बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, अभी आज भी हवा तूफान है।
1: अरे इस ठंडे मौसम में बरसात की फुहारों में आपसे बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल किया।
1: इसके साथ में मेरे बहरे भी है।
0: अच्छा,
1: अगर अगर तुम मेरे को साथ देने का वादा करो तो मैं मस्त मस्त नगमे का लिस्ट आपको दिया करूंगा।
0: क्या बात है।
1: और ये फिल्म का नाम है हमराज।
0: हमराज,
1: हाँ फिल्म का नाम है हमराज।
0: एक बार फिर से गाना दोहरा दीजिए।
1: अगर तुम साथ देने का वादा करो, अगर तुम हमें साथ देने का वादा करो, मस्त मस्त मस्त सुनाया करो।
0: क्या बात है, और सही बात है भूरीलाल जी, आप हमारे साथ ऐसे इसी तरह से बने रहिए, जुड़े रहिए, हमें रोज कॉल करते रहिए और हम आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया वादे के साथ गाने सुनाते रहेंगे।
1: आपको भी मैं बढ़िया बढ़िया गाने देता रहूंगा।
0: बिल्कुल, ये तो हमारी सबसे अच्छी बात होगी। चलो ये बात हमारा फिक्स है,
1: इसलिए मस्त मस्त गाने सुनते रहेंगे, सभी साथी मेरे को भी याद करते रहेंगे और आपको भी याद करेंगे। और ऐसे रेडियो मधुबन में हमारे क्या एक मिलने के संजोग है, संजोग के साथ में ये पॉइंट हमारे हमेशा अगर नहीं देखते तो कम बाद में फोन बात करके भी हम आपसे संपर्क करके मस्त मस्त गाने सुनते रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: और एक दूसरे से संपर्क करते रहेंगे, ऐसे हम आशा कर रखते हैं।
0: चलिए बिल्कुल, कोशिश जरूर से करेंगे।
1: जो भी सुनने वाला है, सुनाने वाला है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार भी है।
0: नमस्कार नमस्कार सब जो भी सुन रहे हो, नमस्कार।
1: सुरेंद्र भाई को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: चलिए
1: सुनिए, आज नहीं है,
0: आज अभी आएंगे वो एक्चुअली। हाँ नहीं नहीं, आ गए थे,
1: तैयारी कर रहे होंगे तो भूरीलाल जी पहले आएंगे, उसके बाद मैं आऊंगा।
0: बिल्कुल, भूरीलाल जी का वेट ही कर रहे थे और वो कह के गए हैं कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो पहली का जवाब ढूंढ रहे, तो पहली का जवाब देने के लिए वो तुरंत आ ही रहे। शायद हो सकता है इसके बाद आ ही जाए,
1: कोई बात नहीं।
0: चलिए,
1: अरे क्या है, हमारे यहाँ रेडियो की थोड़ी आवाज सही नहीं आती, आज पहली क्या कहते हैं, हमारे जवाब कैसे दूंगा, उसका कोई जवाब का सही सही।
0: चलो अभी अभी मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, पहली आप सुन लीजिए, अगर आपको उत्तर आ जाए तो बता दीजिए।
1: आवाज आवाज हमारे पहाड़ी एरिया है ना।
0: हाँ,
1: आवाज साफ नहीं आती।
0: चलिए तो मैं सुना दूं आपको, पहली सुना दूं फिर से, ताकि सुरेश भाई भी सुन रहे तो वो सुन लेंगे। चलिए पहली है, पहली ध्यान से सुनिए। सूरज की गर्मी से मैं पैदा होती हूँ, ठंडी हवाओं को देखकर मैं रोती हूँ, छू सको तो छू लो तुम मुझे, पर हाथ लगाओगे तो मैं खो जाती हूँ।
1: क्या कहना है,
0: फिर से एक बार दोहराता हूँ भूरीलाल जी, सुनिए। सूरज की गर्मी से मैं पैदा होती हूँ, ठंडी हवाओं को देखकर मैं रोती हूँ, छू सको तो छू लो मुझे तुम, पर हाथ लगाओगे तो मैं खो जाती हूँ।
1: खो जाती हूँ, परछाई है, परछाई।
0: लेकिन सूरज की गर्मी से वो पैदा होती है, गर्मी से, और ठंडी हवाओं को देखकर वो रोती है, तो कुछ और सोचिए। हाँ बिल्कुल, कोशिश कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच भूरीलाल जी कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे भूरीलाल जी, और पहली का जवाब तो कोशिश कर रहे देने के लिए, और जो भी सुन रहे थे उनके लिए फिर से मैंने दोहरा दिया है, और आप सब उसका उत्तर हमें जल्दी से जल्दी कॉल करके दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम गाना सुन रहे थे, जी हाँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा, अल्लाह मेरी दुआ। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गाना अभी हमने सुना। चलिए फिर से हमारे एक कॉलर है, सुनते हैं पहले हमारे कॉलर से, फिर करते हैं इस गाने के बारे में बातें। हेलो,
2: रमेश भाई, पूराराम बोल रहा हूँ और से।
0: रमेश भाई जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: थोड़ा ऑपरेशन हो गया, कार से बैठ के आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है?
2: ठीक है, बैठ के आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, अच्छे से गाने आप सुनाते, इसीलिए मैं ध्यान से आपका सुनता हूँ।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच रमेश जी। वैसे क्या हो गया, किस चीज का ऑपरेशन हुआ?
2: ये मेरे को पैर, वो ये होता है ना, ये पैसा बंद हो गया था, उसको वो क्या बोलते है, सर, उसके नाम,
0: अच्छा
2: नाम भी नहीं आ रहा, तो पैसा बंद हो गया था, तो उदयपुर वो गीताजली में ऑपरेशन करवाया।
0: अच्छा,
2: तो पहला और आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आपकी,
2: पहले क्या है, हाँ जी, पहले क्या बोल रहे थे, मेरे को सुना था
0: जी, पहली तो, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, सुन लीजिए। सूरज की गर्मी से मैं पैदा होती हूँ,
2: अच्छा,
0: ठंडी हवाओं कर देख कर मैं रोती हूँ, छू सको तो छू लो मुझे तुम, पर हाथ लगाओगे तो मैं खो जाती हूँ।
2: अच्छा, देखो मेरे ख्याल से वो ये बगीचे में सुई मुई का झाड़ रहता है।
0: अच्छा,
2: वो पौधा रहता है, उसका लाल कलर रहता है
0: जी,
2: वो जब धूप खिलता है, जब वो फूल खिलता है,
0: ओके,
2: और जब शाम आती है तो वो मुरझा जाता है, और हाथ लगाते ही वो एकदम, बोले तो अपन जैसे नजदीक थोड़ा हाथ लगाया
0: है,
2: वो कभी भी मुरझा जाती है, फिर अपन बाजू में सरक जाते तो फिर धीरे धीरे वापस अपना खुल जाता है।
0: बिल्कुल,
2: मतलब सुई मुई का झाड़ बोलते,
0: सुई मुई का झाड़ बोलते हैं। ठीक है रमेश जी,
2: तो मेरे ख्याल से बोल रहा हो तो।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल आपने जो जवाब दिया है हम उसका उत्तर भी देंगे, और लेकिन थोड़ा सा और हम वेट करते हैं, कुछ लोग और हैं, जैसे हमारे सुरेश जी भी वेट कर रहे हैं आंसर के लिए, तो उनके आंसर को भी हम सुनते हैं, आपका भी, और हम जिसका भी सही जवाब होगा उसका नाम अगले सेगमेंट में, यानी कि इस गाने के बाद में जरूर से दूंगा।
2: कोई बात नहीं, और मेरी तरफ से एक अच्छा पुराना गाना सुना
0: दिया। जी बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
2: अभी आपके हिसाब से मेरे को तो क्या पुराने गाने बहुत पसंद है, अभी मेरे तो एज भी तो 87 की अभी मेरे बैठ गई है।
0: अच्छा,
2: बहुत तो देखते थे फिल्म, देखते थे, लेकिन पुराने गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
0: चलिए अगला जो गाना है, अच्छा, बिल्कुल एक बहुत ही पुराना और प्यारा नगमा है, आप सुनिएगा इसको जरूर से, और आपको आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आएगा।
2: ओके सर,
0: थैंक यू सो मच रमेश जी, आपने हमें कॉल किया, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा जरूर से। जी हाँ, देखिए ये थे हमारे रमेश जी, और कितना ही खूबसूरत, इन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है लेकिन पलंग पे है, बेड पर है, फिर भी गाना सुन रहे हैं, रेडियो को सुन रहे हैं, और यही एक प्यारी बात हमेशा मुझे लगती है रेडियो की। मैंने कई जगह पे ऐसे काम किए, कई जगह पे ऐसा हमने देखा भी है, लेकिन सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि रेडियो की लोग कनेक्ट करते हैं, लोग सुनते हैं रेडियो को, पसंद करते हैं गाने, पसंद करते हैं अपने शाम के समय को बहुत ही पसंद करके रेडियो को सुनना और कनेक्ट करना, ये मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ लगती है। चलिए फिर से आज एक हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, चलिए सुनते हैं पहले उस कॉलर के साथ। हेलो,
3: हाँ जी सर, नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ, जटाना से।
0: सुरेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: जी जी, वो भाई हमारे रमेश भाई नहीं थे, हमारे भूरा राम जी थे, वो उसका नाम भूरा राम जी है।
0: अच्छा, रमेश भाई भूरा राम ऐसा कुछ उन्होंने बताया?
3: नहीं, रमेश भाई नहीं है, भूरा भाई, भूरा राम जी इसका नाम है,
0: वो और से
3: हमारे, जी जी जी, और से, हाँ
0: जी,
3: भूरा राम जी है, बहुत अच्छे हमारे हर दम जुड़ते रहते हैं रेडियो में
0: जी,
3: और बहुत अच्छे हमारे गिर राम जी बात बताते हैं, अच्छा लगता है हमको भी।
0: Yes.
3: तो ये भी हमारे रेडियो के एक मित्र हैं।
0: तो हाँ, एक दो बार उन्होंने पहले भी कॉल किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि भी शायद काफी समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो
3: हाँ तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ऑपरेशन करवाया है, मुझे पता है, लेकिन हमने देखा नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बातों से हम समझ लेते हैं और देख भी लेते हैं बातों से, क्योंकि मित्र है
0: जी।
3: हमारे भूरे राम जी को भी हमारा नमस्ते,
0: सभी ने आज आपको याद किया है, सुरेश भाई आए नहीं करके।
3: हाँ, तो मैं आपको सवाल का जवाब तो दे दूँ, शायद सही है गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अनुमान लगाऊँ तो वो इसको हिंदी में उसको ओस बोलते हैं, और इसको हम गुजराती में उसको बूंद कहते हैं।
0: बूंद कहते हैं, ओके
3: जी।
0: चलिए आपका भी जवाब आया है, भूरा राम जी का भी जवाब आया है, भूरीलाल जी ने भी जवाब दिया है, तीनों ने जवाब दिया है, सही जवाब हम इस सेगमेंट के बाद देते, इस गाने के बाद देते हैं।
3: चलो एक गाना भी की फरमाइश की भी मैं दे दूँ, कि छोटा सा गाना है, फिल्म का नाम है अंदाज, और मुकेश साहब ने गाया है कि झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत,
0: झूम झूम के नाचो आज है।
3: जी जी,
0: चलिए आज तो बिल्कुल झूम झूम के नाचने की बात ही है, बहुत ही प्यारा गाना। आपने
3: अगले सोमवार को ही मिलेंगे तो हम
0: बिल्कुल अगले सोमवार को मिलना है आपको।
3: बिल्कुल, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत, गाओ खुशी के गीत, वही गाना है सर।
0: चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं आज आपके लिए गाना बिल्कुल से प्ले करें। जी
3: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार जी। हाँ दोस्तों, ये थे हमारे सुरेश जी और इन्होंने भी अपना जवाब दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस गाने के बारे में बाद इसका सही जवाब दें। दोस्तों जब बात हम कर रहे थे इस अल्लाह मेरी तौबा के गाने में, गाने के बारे में, तो जितनी भी बार इस गाने को सुन लो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और जुबान गुनगुनाने लगती है। अच्छा, इस गाने के लिए आशा भोसले जी को उस साल का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। पर्दे पर इस मशहूर अदाकारा आशा पारेख पर फिल्माया गया था और ये आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कव्वाली नाम गानों में गिना जाता है। वैसे इस गाने को सुनते सुनते मेरे दिल में एक और बात आई है, और भी गहरी हो जाती है। गाना कहता है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ हम सब उठने से लेकर रात को सोने तक अपनी हर छोटी बड़ी बात को पर्दा खुद ही उठा देते हैं। कई बार हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं फीलिंग हैप्पी विद फाइव अदर्स, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं ना, से लेकर ईटिंग डिनर एट दिस रेस्टोरेंट से लेकर फीलिंग हैप्पी ट्रैवलिंग, मैं यहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, सब कुछ ऑन एयर रहता है, मतलब सब कुछ खुला रहता है। ऐसे में 1968 का ये गाना हमें याद दिलाता है कि यार जिंदगी में थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ी सी प्राइवेसी और थोड़ी सी मिस्ट्री बची रहनी भी कितनी ज़रूरी है। सब कुछ अगर सामने आ ही जाए तो फिर उस राज को जानने की बेकरारी कैसे बचेगी, है ना? तो वो जो कभी किसी की आंखों के पीछे छुपे जज्बात को पढ़ने की कोशिश होती थी, वो जो किसी की मदद, मंद मंद मुस्कुराहट के पीछे का कारण ढूंढने का मज़ा था, वो आज की रील्स यानी कि जब हम फेसबुक पर रील्स देखते हैं या स्टोरीज के दौरान में हम कही जाती है, वो कहीं से खो सा गया है। चलिए बढ़ते हैं इस अगले नगमे की ओर, जो कि बहुत ही प्यारा सा नगमा है। सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। लेकिन गाने पे जाने से पहले चलिए कॉलर से बात करते। हेलो
4: जी, नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: मदन लाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ
0: जी। जी आपका आवाज़ नहीं आ रहा है मदन लाल जी।
4: नहीं, आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज
0: अब आ गया, ठीक है जी, बताइए।
4: आ गई आवाज? क्या आवाज
0: आ गई?
4: मेरी जान
0: जी बताइए
4: कैसे है?
0: बढ़िया है, आप
4: कैसे? और मैं बहुत बढ़िया हूँ और अभी आया हूँ और बस आपको फोन किया है
0: जी।
4: क्या हाल चाल है?
0: एकदम बढ़िया है, आप बताइए।
4: मैं बढ़िया हूँ और बस हमारे दोस्तों को नमस्कार कर रहे हैं और आपको नमस्कार, खुशी के लगने और दिल की बातें को और सभी शो को
0: जी,
4: और जिनका भी जन्मदिन है उनको भी, और बस आज के इस दिन की सभी को चैंज करते हैं ओम शांति
0: जी।
4: और क्या गाएंगे अब, बारिश के मौके हैं।
0: हाँ, तो उस वक्त बारिश हो रही है क्या?
4: नहीं अभी तो नहीं हो रही है, फिर हुई थी कल परसों।
0: अच्छा,
4: और आज कहीं समाचार आते हैं, कहीं बारिश कहीं हवा तो कहीं तूफान तो कहीं पेड़ गिर रहे, तो कोई कुछ न कुछ समाचार चलते ही रहते हैं
0: जी।
4: तो पेड़ पौधे हैं तो वहाँ भी अपने पक्षी हैं बैठे हैं तो उनको भी नुकसान तो होता ही है, सभी तरफ नुकसान ही है
0: बिल्कुल।
4: तो अब एक गाना याद आ रहा है
0: जी,
4: दरिया में जहाज चले पासा, नया देखो आज तमाशा, दौड़े जोगी अरे पानी में।

0: ना इनको लालच माया का, ना इनको सर्दी लगती है, ना इनको गर्मी लगती है, ना इनको लालच माया का। ये दोनों है, ये दोनों दरिया में जहाज चले पाजा, नया देखो आज तमाशा। दरिया में ये गाना,
1: क्या बात है। ये कौन सी मूवी से ये गाना है?
0: ये शांत चित्र का गाना है, किशोर साहब की आवाज है।
1: कौन सी गाने, कौन सी मूवी का गाना?
0: शांत पिक्चर का गाना
1: है। शांत पिक्चर का गाना है।
0: हाँ, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सदरुन सिंह और जॉनी ओकर और बहुत सारे हैं।
1: जी जी।
0: तो ये पिक्चर समय सेट्टी की पिक्चर है
1: जी।
0: बार बार सुनते हैं गाना, जब भी मौसम होता है, जब भी गाते हैं, जब दरिया पानी भरा जाता है या तूफान चलते, उसी लायक का ये गाना। तो आपको नमस्कार करते हैं और आज बस इतना ही।
1: बिल्कुल, चलिए कोशिश करते हैं कि ये गाना आपके लिए जरूर से सुनाए।
0: जी जी, जब तक मैं पहुंच
1: जी। बिल्कुल,
0: कोई बात नहीं, कल सुना देना।
1: बिल्कुल कोशिश,
0: समय बड़ा बलवान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मदन लाल जी का कल
0: आपको।
1: जी सॉरी,
0: जी जी
1: जी, ठीक है। ओम शांति मदन लाल जी,
0: बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति।
1: हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे मदन लाल जी, और मैं बात कर रहा था, हम चल रहे हैं अगले सेगमेंट की ओर। तो सेगमेंट में जाने से पहले फिर से आज हमारे कॉल आज कंटिन्यूस चल रहे हैं। चलिए पहले बात करते हैं हमारे कॉलर से। शायद कट गया है फ़ोन। यस, कोई बात नहीं, फ़ोन शायद कट गया, लेकिन चलिए सुनते हैं ये अगला नगमा प्यारा सा, और फिर ढेर सारी करते हैं बातें।

0: बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक
1: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में आशा मामा सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हो तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें से मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, रहो मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक दोस्तों। अभी बहुत ही प्यारा हमने गाना सुना। असल में ये जो गाना है किशोर कुमार के वास्तविक जीवन के किस्से पर आधारित है। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान किशोरदा पर कॉलेज की कैंटीन के 5 रुपये और 12 आना उधार थे। कैंटीन वाले जब भी पैसा मांगते थे तो किशोरदा टेबल पर कंघी या चाबी से म्यूजिक बजा कर गाते थे 5 रुपया 12 आना। चलिए कॉल उठाते, सबसे पहले हमारे कॉलर हमारे से जुड़े। हेलो,
1: कैसे हो भाई साहब?
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं? बड़े सालों बाद, आपकी तबीयत ठीक है?
1: हाँ अभी ठीक है, कोई हिसाब किताब है वो खुशी से चुप कर रहा हूँ भाई। ये बहुत प्रोग्राम तो हम डेली सुनते हैं।
0: क्या बात है, हम तो
1: अभी भी सुन रहा हूँ। और सुरेश भाई, बलराम भाई, मदन भाई, सभी हमारे दोस्तों की बातें और आपकी बातें बहुत ही अच्छी लगती है हमेशा की तरह।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चलो मैं बोलूं का जवाब दे दूं और सभी को नमस्कार कर दो।
0: बिल्कुल।
1: तो शायद पहली का जवाब भाई साहब बादल या ढग, मराठी में बोलते हैं पानी से भरे हुए, वो सकता है। और सभी को नमस्कार भाई साहब। ओम शांति।
0: और बहुत बहुत अच्छा लगा हमें, आपने हमें कॉल किया। और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल से ध्यान रखिए, और थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए हमें।
1: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच। और देखिए आज इतना प्यार मुझे मिल रहा है कि कॉल पे कॉल आ रहे हैं और हमारे कॉलर्स के साथ हमारे आंसर्स, हमारी जो पहेली है उसके आंसर्स भी हमें मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बात ना करें और हमारी पहली के आंसर के बारे में बात करते। तो हमारे कईयों ने हमें इसका सही जवाब देने की कोशिश की है। भूराराम जी ने भी बताया कि इसको हम छुई मुई का पेड़ कह सकते हैं। भूरीलाल जी ने भी कहा कि ये है, और सुरेश जी ने भी बताया कि ये बूंद हो सकती है, ओस की बूंद कहते हैं या फिर बूंद हो सकती है। कईयों ने हमें जवाब दिया, किसी ने हमें भाप का आंसर दिया, किसी ने हमें स्टीम मतलब जो भाप बनती है सूरज से वो भाप भी कहा। और ये सारे ही उत्तर सही है एक तरफ से। तो हमारे सुरेश जी, भूरीलाल जी, हमारे फ्रेंड जो हमें सुन रहे हैं, सभी का ये जो आंसर है सही है। सही उत्तर है इसका ड्रॉप, बूंद, जो सुरेश जी ने इसका सही जवाब दिया, बूंद। या फिर हम ये भी कह सकते हैं पसीना, क्योंकि पसीना जब सूरज की गर्मी से बहुत तेज बनती है तो पसीना भी होता है, तो पसीना भी इसका सही जवाब है। तो किसी के भी जवाब गलत नहीं थे, लेकिन सुरेश जी और हमारे भूरीलाल जी के जो जवाब थे वो सही थे, और पसीना भी हम कह सकते हैं। तो ये थे आज की पहेली का जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं गाने की तरफ। तो जो हम गाना अभी हम सुन रहे थे 5 रुपये 12 आना के बारे में, तो किशोरदा कंघी या चाबी से म्यूजिक बजाकर गाते थे 5 रुपया 12 आना। बाद में उन्हें मजरूल सुल्तानपुरी साहब के साथ मिलकर इसी लाइन को इस अमर गाने के में तब्दील कर दिया। शो के पिछले हिस्से में जब हम हुसन और इश्क के पर्दे की बात कर रहे थे, लेकिन जनाब मोहब्बत अपनी जगह है और जेब का हिसाब किताब अपनी जगह। जब प्यार के बीच में उधारी आ जाए तो बड़े से बड़ा आशिक भी शाया से सीधे मुनीम बन जाता है। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नज़र बन जा दीवाना। तो दूसरी तरफ हमारे किशोरदा हाथ धोकर पीछे पड़ जाते और कहते हैं कि रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दो मेरा 5 रुपये 12 आना। जी हाँ, क्या बात है ना, आज के ज़माने में तो लोग हजारों लाखों का उधार भूल जाते हैं, लेकिन 1958 में 5 रुपया और 12 आने के पीछे ऐसी ज़बरदस्त चलती का नाम गाड़ी चली कि इतिहास बन गया। वैसे आज के ज़माने के हिसाब से हिसाब लगाए तो ये लगभग 5 रुपये 75 पैसे होते हैं, लेकिन इस गाने को जो आनंद है वो अनमोल है। अगर आप भी कोई ऐसा दोस्त है, अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिसकी कैंटीन की चाय या समोसे के पैसे अभी तक नहीं लौटा है, तो उसे ये गाना डेडिकेट कर दीजिए और कहिए भाई पहले हिसाब तो चुकता करो। जी हाँ दोस्तों, चलिए वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन गाने की प्लेलिस्ट इतनी है कि गाने ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि फरमाइश आज इतनी आई है। तो आज की जो भी हमारी फरमाइशें थी, हम कोशिश करेंगे कि उसे हम कल के दिन पे प्ले करें, लेकिन आज ज़रूर से एक गाना तो हम प्ले करते हैं। और हमारे भूरीलाल जी ने एक बहुत ही प्यारा सा गाना हमें सजेस्ट किया था, तुम अगर साथ देने का वादा करो, तो चलिए सुनाते हैं हम आपको ये बहुत ही प्यारा सा नगमा, और आप सभी से लेते हैं विदाई, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते मंडे को, और आपकी जो भी फरमाइश थी मेरे पास नोटेड है, हम ज़रूर से वो आपको अगले हफ्ते सुनाएंगे। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: ऐसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाएं। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, स्वास्थ्य एक बहुत ही बहुमूल्य पूंजी है। जीवन में लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई जमीन खरीद कर रखता है, कोई मकान खरीद के रखता है, कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज, बैंक में FD, न जाने हम क्या क्या चीजें अपने सेविंग्स के हिसाब से रखते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि भाई, जीवन में कभी ऐसी समय का सामना करना पड़े जब स्वास्थ्य बिगड़े या कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति आए तो कम से कम पैसे की पूंजी होनी चाहिए। मगर क्या ये बात सत्य नहीं है कि हम पैसे को इकट्ठा करने की इस कोशिश में हम अपने स्वास्थ्य को अगर गंवा बैठे तो कमाए हुए उन्हीं पैसों को वापस स्वास्थ्य को हासिल करने के लिए खर्चना पड़ेगा। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि स्वास्थ्य की पूंजी को बरकरार रखने के लिए हम मेहनत करना शुरू करें, कुछ ऐसी चीजें करें ताकि स्वास्थ्य हमारा बिगड़े ही नहीं। थ्योरी में तो ये बात सुनने को बहुत अच्छी लगती है, मगर क्या प्रैक्टिकल में ये संभव है? आइए स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए एक्सपर्ट से ही इन चीजों पर राय करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में इनका लंबा अनुभव है। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं। आरोग्य मंदिर गोरखपुर में ये प्रैक्टिस करते हैं, जो भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक है। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्रश्न तो मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा जो भूमिका मैं हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। लोग ये अंग्रेजी में बहुत प्रचलित कहावत कहते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये कहा जाता है। और मैं ये बात कह रहा था कि हम अक्सर पैसा इकट्ठा करते हैं, धनोपार्जन कर रहे होते हैं तो पैसा बचा के रखते हैं सेविंग्स के लिए, सोने में, जमीन में, अनेक चीजें करके रखते हैं। सोचते हैं कि कल को कोई मुश्किल घड़ी आए, तबीयत बिगड़ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो उस समय पर ये पैसे काम में आएंगे। मगर अक्सर पैसे कमाने की होड़ में हम पहला टारगेट जो हमारा हेल्थ है वो ही मिस हो जाता है। हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके भी नौकरी और जॉब और बिजनेस और प्रोफेशन पे लगे रहते हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि हम कल को तबीयत बिगड़े तब के लिए आज पैसे कमा कर रखें, या फिर कुछ हम ऐसा कार्य ना करें कि हम स्वास्थ्य को एक पूंजी बना लें कि भाई वही बिगड़े ना और वो स्वस्थ बने रहे हम?
1: भैया, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने और आपने बात की कि 5 मिनट में भोजन करके आता हूं, और मैंने उस पर कहा कि 10 से 15 मिनट में भोजन कर लीजिए। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे शरीर को भी बहुत कुछ नहीं चाहिए। उसको समय से भोजन, थोड़ा शांत मन से भोजन और थोड़ा व्यायाम चाहिए। इतना अगर हमारे शरीर को मिल जाता है तो हमारा शरीर गारंटेड स्वस्थ रहेगा। और ये भगवान की बनाई हुई सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे अच्छी मशीन है। एक सिंगल सेल से लेकर हम इतने बड़े 5.5 फुट 6 फुट के आदमी बन गए। सोचिए, एक कोशिका ने ही हमारी आंख भी बना दी, नाक भी बना दी, मुंह भी बना दिया, कान भी बना दिया, हृदय भी बना दिया, सब कुछ बना दिया एक सिंगल कोशिका ने। हम चाह कर भी 9 महीने से पहले तो बाहर आ नहीं सकते। मेरा ये मानना है जब आप समय से बढ़ रहे हैं तो प्लीज समय अपने शरीर को भी दीजिए, अपने भोजन को भी दीजिए, व्यायाम को भी दीजिए। और अगर आप समय अभी देंगे तो आपका भविष्य सुखद होगा। एक कहावत और है कि जब संतोष धन पायो सब सुख धूल समाओ। दौड़ते रहिए, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, एक सूट, दो सूट, तीन सूट, एक घर, दो घर, तीन घर, एक जमीन, उससे बड़ी जमीन, 1 किलो सोना, 5 किलो सोना, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, तो हम लोग दौड़ते रहेंगे। जैसे श्री भैया भी बहुत ट्रैवल करते हैं और मैं भी ट्रैवल करता हूं, और मैं तो भी इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूं, तो मन में हमेशा एक हो रहता है, काश थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाए कि मैं उस बिजनेस क्लास तक पहुंच जाऊं। तो वो सोच जरूरी है, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि हम थोड़ा आगे बढ़ पाए। पर अब ये मैं दिन भर सोचता रहूं, अरे मैं कैसे बिजनेस क्लास में बैठूंगा, अरे मैं कैसे, तो मैं अपने शरीर का नुकसान करूंगा, अपने मन का नुकसान करूंगा। तो धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, संतोष जरूर करना चाहिए, और अपने शरीर अपने मन उस पे भी टाइम रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप हफ्ते भर नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज वीकेंड में इन्वेस्ट करिए। आप मंडे टू फ्राइडे नहीं काम कर पा रहे हैं तो प्लीज सैटरडे संडे अपने शरीर के लिए कुछ करिए। और आप करेंगे तो आपका शरीर आपको उसी हिसाब से फल भी देगा। हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड, तो इफ यू हैव हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड देन ओनली यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और अगर हम बीमार पड़े रहेंगे तो अस्पताल में पड़े रहेंगे, शरीर से भी नुकसान होगा और आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा।
0: अक्सर ये चीज देखने को मिलती है कि हम अस्पताल में पड़े रहेंगे, इसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं। लोग बोलते हैं मेडिक्लेम ले लो, थोड़ा बड़ा कवरेज कर ले लो, कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कम से कम 5-10 लाख तक कवरेज होना ही चाहिए। आजकल लोग बड़े शहरों में ये चीजें बातें करते हुए सुनाई देते हैं, और ये भी है कि साथ में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो।
1: भैया मैंने दीदी का एक एपिसोड में सुना था, उन्होंने बोला था गॉड इज माई इंश्योरर। तो आप भगवान पे भरोसा न करके, हम क्यों भगवान पे भरोसा न करके इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य अपने शरीर के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो जब हम अपने शरीर के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, भगवान का भी भरोसा हमारे काम नहीं आएगा, तब तो इंश्योरेंस वाले ही काम आएंगे।
0: फिर वो इंश्योरेंस के लिए जितना अमाउंट इंश्योरेंस का सब कवर है वो भी कम पड़ता जाता है, पर बोलते नहीं उससे भी ज्यादा चाहिए।
1: भैया इंश्योरेंस कम पड़ता है, वो कैशलेस की जगह कहता है कि पूरा कवर नहीं हो रहा है, इसमें भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक अलग मेंटल स्ट्रेस टेंशन। तो क्यों हम उस टेंशन स्ट्रेस में पड़े? अच्छा खाएं, अच्छा टहलें, शरीर के लिए अच्छा करें।
0: जब अच्छे खाने की बात आप कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे कि भोजन की मात्रा पे आपने कहा कि हम भोजन की मात्रा पर ध्यान रखें। आजकल अनेक चीजें सुनने को मिलती हैं कि कितने समय खाना है, किस समय खाना है और कितना खाना है, ये अनेक चीजें हैं। पहले तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंसान को 3 वक्त खाने की जरूरत है? कुछ लोग हमेशा ही मुंह चलाते रहते हैं कि आते जाते जो दिखता है भाई मुंह में डालते रहो, चलता रहता है। तो अनेक चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं, तो पता चलना चाहिए कि सही तरीका क्या है। कई कहते हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा मत खाओ, बट थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर खाते रहो तो कोई नुकसान नहीं होता। अब इन अनेक चीजों की जब बात आती है तो प्रश्न उठता है कि आखिर सही क्या है, कब खाया जाए, कितना खाया जाए।
1: एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पकाई हुई चीज से कच्चा जो सलाद और फल है उसमें ज्यादा अधिक गुण होते हैं। तो अगर आप निबलिंग करते रहते हैं या जब मिल रहा है तो कुछ खा लिए, तो कोशिश करना चाहिए कोई फ्रूट ही अपने मुंह में डालें। और फ्रूट की बात कर रहा हूं, फ्रूट जूस की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रूट की बात कर रहा हूं। दूसरा, आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग रही है, कुछ होना चाहिए, तो प्लीज टेक अ सिप ऑफ वाटर। जहां आपने थोड़ा सा पानी पिया वो आपकी जो क्रेविंग है वो बंद हो जाएगी। 2 कंसेप्ट है भैया जो कहता है, और दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है कि सुबेरे का जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे हेवी होना चाहिए, और हम फिर शाम होते होते हल्का भोजन करते करते हमको सो जाना चाहिए, क्योंकि रात का भोजन भारी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम आराम करने जा रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि हल्का मीडियम ब्रेकफास्ट, लाइट लंच, हैवी डिनर। तो सब लोग ये सोचते समझते चले आ रहे हैं। पहली चीज, सुबेरे उठते ही कुछ भी चीज अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए, थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, थोड़ा टहलना घूमना चाहिए कि हमारा शरीर पूरी तरह से जग जाए। अगर हम योग करने जा रहे हैं तो थोड़ा गुनगुना पानी, कोई काढ़ा या कुछ नींबू पानी, नींबू शहद, वो पीकर हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद हम जो भी फ्रूट जूस पीना चाहें या हम कुछ स्नैक्स खाना चाहें, सुबेरे के जो स्नैक्स हैं वो खा के हमको अपने काम पे निकलना चाहिए। कुछ लोग जो भैया मॉडर्न काम करते हैं, ऑफिसर्स में जाते हैं, जो 10 o'clock एक हैवी ब्रेकफास्ट करके जाते हैं क्योंकि उनका पूरा दिन उस हिसाब से चलता है, तो वैसे लोगों को दोपहर में 2-3 बजे कुछ फ्रूट या कुछ सैलेड जरूर लेना चाहिए। और रात का डिनर अगर आप करते हैं हैवी या लाइट, जैसा भी आप करते हैं, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सोने से करीब 1.5 से 2 घंटा पहले वो भोजन आप कर चुके हो। आप भोजन करते ही ना सो जाइए, वो आपके लिए सबसे हानिकारक है। हम लोग ने वाटर वाले एपिसोड में बात की थी कि हम लोग को दिन भर सिप्स ऑफ वाटर जरूर पीना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और एक्स्ट्रा तली चीजें, एक्स्ट्रा भुनी हुई चीजें, चाय, कॉफी, अल्कोहल, इससे हमको परहेज करना चाहिए। करिए वो जो आपके लिए आपके टाइम फ्रेम को सूट करता हो, बट उठते ही भोजन नहीं करना चाहिए या कोई हैवी चीज नहीं खानी चाहिए, और सोने से करीब 1.5 से 2 घंटा पहले अपने भोजन को खत्म कर देना चाहिए।
0: ये बात तो समझ में आती है कि भोजन के इस क्लॉक को भी समझना है कि हम कब नाश्ता कर रहे हैं, कब भोजन कर रहे हैं, कब रात्रि का भोजन कर रहे हैं। खासकर तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज देखने को मिलती है कि भाई यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है, लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी खेतों में जाना हो रहा है, इसके हिसाब से लोग जल्दी भोजन कर लेते हैं। और शहरों में थोड़ा भोजन के टाइमिंग में देरी होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें, ये भी चीज सुनने को मिलती है। क्या इसके पीछे भी कोई तथ्य है या इसे सही तरीके से समझा जाए?
1: जो मॉडर्न शहर में 2 घंटा पहले वाला भोजन था, वो हमारे जैनिज्म में इसको सूर्यास्त से पहले भोजन करने की बात करते हैं। आपके आश्रम में भी भैया बहुत सारे लोग जब बड़े बड़े शहरों से और कॉर्पोरेट कल्चर से आते होंगे, तो उनको 1-2 दिन डिफिकल्टी होती है आश्रम लाइफ में एडजस्ट करने में, और वो बहुत बार बात करते हैं बड़ा कष्ट थोड़ा सा है, अरे इट इज सो अर्ली फॉर माई डिनर, ओ आई के नॉट, यू नो दिस इज द टाइम फॉर माई इवनिंग कॉफी या इवनिंग स्नैक। हाँ, तो वो बड़ा ही, और आप खुद देखते हैं कि वो 3 से 4 दिन में पूरा आपके आश्रम लाइफ में एडजस्ट कर जाते हैं। तो ये सब हमने अपने लिए बना के रखा है। क्यों सूर्यास्त से पहले भोजन का महत्व है? यही है कि आप अगर उस भोजन को कर लेंगे तो वो पचने में उसको आसानी होगी, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं, हम हिल डुल रहे हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। अगर हम लेट गए हैं तो हमारा शरीर थोड़ा सा कहते हैं शांत हो जाता है, और ऐसा भोजन जो है वो हमारे शरीर को लगता भी ज्यादा है। जैसे लोग बोलते हैं ना, चावल खा के नींद बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसने पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन को भोजन की तरफ खींच लिया, और आप हिल भी नहीं रहे, डुल भी नहीं रहे, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होकर आपके शरीर का फैट बढ़ाएगा। तो इसीलिए आप अगर जल्दी भोजन करते हैं, या और आप ये देखिए कि मॉडर्न सिटीज में आदमी घर पहुंच के ही, अब कुछ लोग जो कॉर्पोरेट की लैडर को ग्रो कर गए हैं, वो अब हेल्थ की टॉक्स पे बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ लेक्चर्स के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, और सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स सिर्फ एक ही, उनका अगर सार निकाला जाए तो यही बोलते हैं कि कम खाइए फ्रूट एंड सैलेड, ज्यादा खाइए, प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए, और खाने के बीच में भी गैप रखिए कि अभी खा के निकले, फिर घूमे, फिर कुछ खा लिए, फिर कुछ, थोड़ा पेट को भी अपने आराम दीजिए, अपने दांतों को आराम दीजिए, क्योंकि अगर आप आराम देंगे तभी तो जो आगे काम कर रहे हैं वो ठीक से काम कर पाएंगे।
0: यानी सदा एक के बाद एक चीज खाने की आदत नहीं है, मगर बीच में, खाने के बीच में गैप्स देने की भी जरूरत है। अब ये एक आइडियल टाइम फ्रेम क्या होता है कि भाई हमने एक मील खाया, उसके बाद में नेक्स्ट मैं कुछ खाना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए? खैर, आपने डिटेल में ये चाय और इत्यादि चीजों की और बीच में मंचिंग करने की आदतों के बारे में भी विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा हमने दोपहर को 1 बजे खाना खाया, शाम को 4 बजे चाय पीनी है, फिर रात्रि का भोजन करना है, फिर चाय के साथ भी कुछ खाना है, फिर सुबह भी नाश्ते के बाद 11 बजे के करीब कुछ फिर एक चाय पीना है या कॉफी है, कुछ एक स्नैक खाना है, ये ऐसे अलग अलग एक प्लान बना के चलते हैं, और कभी कभार तो मतलब इन प्लान्स को तोड़ के बीच में भी अगर कोई कुछ दे देता है तो लोग खा लेते हैं, तो क्या ये सही चीज है?
1: एक्सेसिव ईटिंग इज ऑलवेज बैड फॉर द हेल्थ एंड ईटिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स इज ऑल्सो नॉट गुड. नॉर्मली ये कहा जाता है कि योर ब्रेकफेस्ट शुड बी बिटवीन 7 and 8. योर लंच शुड बी बिटवीन 1 to 2 एंड योर डिनर शुड बी बिटवीन 8 to 9. ये एक इधर जो हम काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है. और आप ये देखिए कि ब्रेकफेस्ट और लंच के बीच में 5 to 6 hours का गैप है और लंच और डिनर के बीच में 7 to 8 hours का गैप है और जो स्नैकिंग टाइम है ये 4 o'clock वाला, वो 4 to 5 वाला जो स्नैकिंग टाइम है ये इंडिया में इधर कुछ ज्यादा हो गया था बट अब धीरे धीरे उस पर भी बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं और वो इवनिंग स्नैक को लाइम एंड वाटर से या किसी फ्रूट से या किसी सैलेड से उसको चेंज कर रहे हैं. थोड़ा खाइए और ज्यादा ज्यादा देर में खाइए. ये मत करिए कि थोड़ा खाइए और हर थोड़ी देर में खाइए, तो वो आपके शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है कि अगर आप थोड़ा खाएं और थोड़े गैप्स में खाइए तो, क्योंकि तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करेगा उसके लिए.
0: अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भोजन के बारे में है, जैसे हम दोपहर को खाना खा रहे हैं, रात को खाना खा रहे हैं, आपने ये कहा कि भोजन की मात्रा पर भी ध्यान होना चाहिए. प्रायः कुछ लोगों के घरों में जैसे आप कह रहे थे कि जो मेन मील ऑफ द डे होता है वो दोपहर का भोजन होता है, वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और उसमें बहुत सारी आइटम्स बनी होती हैं, और रात्रि के समय पर कम होता है. और कईयों के घरों में इसका उलट होता है कि रात्रि के भोजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि या तो हम दिन भर काम कर रहे होते हैं, शाम को घर आए तो भैया शाम को हम सारा फुल मील खाएंगे, वे सारी चीजें कम से कम 7-8 आइटम हो घर पे, वो वैरायटी भी लोग पसंद करते हैं. तो क्या भोजन के प्रति ये जो हमारा कल्चर है इसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों के दिनचर्या में भोजन की शैली में चीज देखने को मिलता है. कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो कहते हैं कि हर भोजन के बाद दोपहर का खाना होती है उनको कुछ मीठा चाहिए, फिर रात्रि का भोजन, अरे कुछ मीठा नहीं है, ये लोग पूछते भी हैं. कभी कभार मेहमान घर पे आए उनको खिलाने की बात अलग है, यहाँ हर दिन की आदत बन जाती, ये चीजें क्या है?
1: भैया आप स्वस्थ हैं तो सब करिए. आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, जितने लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं जहाँ जो 9 to 5 नहीं कर रहे हैं, बोला तो 9 to 5 जाता है, वो टेक्निकली वो घर सुबेरे 7:30-8 बजे छूटता है और वो घर वापस आते आते शाम का 7 बज जाता है. तो ऐसे लोग एक अच्छी मील रात में अपने घर में करते हैं और उसको कहते हैं ना गर्म खाना, फ्रेश खाना खाते हैं, क्योंकि वो सुबेरे का टिफिन जो है वो खाके उनको 1 बजे जो उन्होंने खाया. आपको बहुत सारे शॉपकीपर्स या दुकान वाले ऐसे मिलेंगे जो अपनी दुकान 11 बजे या 10 बजे खोलते हैं, वो सुबेरे 10 बजे पूरा खाना खा के जाते हैं कि शाम तक भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कंप्लीट कर पाए. एंड सो हाउ इज योर प्रोफेशन, हाउ इज योर वर्क, ये भी डिसाइड करता है कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए. भैया सबका रूटीन अलग है, जैसे मैं क्रिकेटर्स के साथ काम किया, अभी IPL चल रहा है, आप अगर उस गेम को देखते हो तो 10:30-11 बजे वो गेम खत्म होता है, सेरेमनी होते होते उसके बाद सारे प्लेयर फ्रेश एंड अप होंगे, तो वो 11:30-11 बजे कुछ खाएंगे अपने शरीर के लिए क्योंकि गेम उस समय खत्म हुआ. सो व्हाट इज योर वर्क, जैसे हम डॉक्टर्स हैं भैया, इमरजेंसी में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि रुक जा भाई थोड़ी देर का समय दे, मैं 15 मिनट में खाना खा के रेडी होकर आता हूं, वो नहीं हो सकता. तो योर सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद योर टाइमिंग, बट जिस दिन आप फ्लेक्सिबल नहीं है उस दिन प्लीज अपने एक बेसिक रूटीन को जरूर फॉलो करिए. एंड योर वर्क, योर टाइम ऑफ वर्क, कितने लोगों ने भैया कॉल सेंटर में इंडिया में काम किया, उनका पूरा लाइफ साइकिल ही उल्टी हो गई. और मैं ये नहीं कह सकता कि आप मत काम करिए भाई, पुलिसिंग, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर्स, ये सब इंजन ड्राइवर्स, पायलट्स, ये सब भाई एनी टाइम ऑफ द डे काम कर रहे हैं, तो इनका बॉडी साइकिल जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका भोजन होना चाहिए। क्वांटिटी कम रखिए, पेट में प्रेशर ना हो कि आपने बहुत खा लिया, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। आपका पेट अगर साफ हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं, आप पानी ठीक से पी रहे हैं, आप प्रचुर मात्रा में सैलेड और फ्रूट खा रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आज की ये चर्चा रही है डॉक्टर साहब। ये बातें समझ में आई है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनने के लिए भोजन के प्रति जागरूक बनना आवश्यक है। दोस्तों, भोजन में आप क्या खा रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना है। सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं, सलाद को बढ़ाएं, फलों को खाना शुरू करें। जो एम्प्टी कैलोरीज हैं, जैसी तली हुई चीजें हैं या मिठाइयां हैं, उन चीजों को खाने से बचें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चीज आप खा रहे हैं उसके प्रति सजग होना भी जरूरी है। अगर हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो भोजन के लिए अपने टाइम टेबल को ध्यान पे रखें। कोशिश करें कि भाई आप समय पर खाना खाएं, अच्छे से चबाकर खाएं, और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप खा रहे हैं तो आप एक शांत मन शांत चित्त से भोजन ग्रहण करें। और जितना आप हेल्दी चीजें खाएंगे, कम खाएंगे, उतना आप बेहतर और स्वस्थ रहेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही दोस्तों। समय को देखते हुए रुकते हैं, कल की बातचीत में कुछ और विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने इन सारी जानकारियों को हमारे साथ साझा किया। इसके लिए डॉक्टर साहब, हमारे सभी श्रोता मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। ओम शांति।
0: दोस्तों, आज सहज स्वास्थ्य में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ और विषयों और आयामों पर हम कल चिंतन करेंगे। आज जो कुछ भी आपने सुना है वो सब कुछ आप आजमाएंगे और सहज स्वास्थ्य को हासिल करेंगे, ऐसी शुभ आशाएं हैं। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 107.8 FM।

0: हेलो बच्चों, चलो चलो आ जाओ रेडियो के पास, क्योंकि आपका फेवरेट कार्यक्रम शुरू हो गया है, सपनों की सैर। परी और मनी दीदी भी आ गए हैं आपसे बातें करने।
1: हाँ बच्चों, तो अभी तो हम बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे हैं, और अभी आपको हमारे साथ बने भी रहना है, क्योंकि परी की कहानी भी सुनेंगे, फिर तेनाली रामा की किताब भी पढ़ेंगे, और फिर अपनी पहेलियों का जवाब भी जानेंगे।
0: हाँ बच्चों, लेकिन उसके पहले हम बातें करेंगे प्रकृति के बारे में। पता है ना बच्चों, प्रकृति के बारे में हमने जाना कि वो हमारी माँ है, हमारी पालनहार है, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए।
1: हाँ बच्चों, प्रकृति बिना स्वार्थ के हमें सब कुछ देती है, हमारी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है, तो हम क्या करेंगे अभी परी?
0: हाँ बच्चों, तो चलो हम शपथ लेते हैं।
1: हाँ बच्चों, तो चलो अपना दाहिना हाथ करो आगे।
0: मैं वचन देता हूँ, देती हूँ कि,
1: मैं वचन देती हूँ कि,
0: प्रकृति को स्वच्छ रखूंगा, रखूंगी,
1: प्रकृति को स्वच्छ रखूंगी,
0: पेड़ पौधे लगाऊंगा, लगाऊंगी,
1: पेड़ पौधे लगाऊंगी,
0: और पानी व हवा की रक्षा करूंगा, करूंगी,
1: पानी व हवा की रक्षा करूंगी।
0: तो बच्चों देखा, जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर और सुरक्षित बनता है।
1: हाँ, तो आज तो हम सभी को मिला हरियाली भरा संदेश, है ना? तो ध्यान रखेंगे ना हम प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति की देखभाल करना माना अपने ही भविष्य की रक्षा करना, और पानी की रक्षा माना जल की बचत, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, जैसा कि परी ने कहा।
0: तो चलो बच्चों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू, मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बच्चों चलो जल्दी जल्दी जल्दी बैठो रेडियो के पास, वरना आपकी कहानी मिस हो जाएगी। आज आपको लोमड़ी और सारस की कहानी सुनाएंगे। ध्यान से सुनना बच्चों। एक सारस की एक लोमड़ी से मित्रता हो गई। एक बार लोमड़ी ने सारस को भोजन का निमंत्रण दिया। उसने सूप तैयार किया और उसने फिर दो सपाट तश्तरियों में पिरोस दिया। चलो खाने की शुरुआत करें, ऐसा लोमड़ी ने सारस को कहा और सूप चाटना शुरू कर दिया। बच्चों लोमड़ी तो सूप चाटने लग गई और कहा, बड़ा मजेदार है ना। सारस सूप की सुगंध ली, उसके मुंह में पानी आ गया, पर सूप की एक बूंद भी वो उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाई। उसकी चोंच लंबी थी और तश्तरी सपाट थी। उसे पता चल गया कि धूर्त लोमड़ी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन सारस चुप रहा। वो देखता रहा, लोमड़ी सूप चट कर गई। बच्चों फिर क्या हुआ सोचो, सारस ऐसे ही चुप थोड़ी बैठने वाला था। सारस कुछ दिनों के बाद लोमड़ी को भोजन पर निमंत्रण देता है। वो लोमड़ी को अपने यहाँ ले गया। उसने भी स्वादिष्ट सूप बनाया। संकरे मुंह वाली दो सुराइयों में सूप परोसकर सारस ने कहा, चलो शुरू करें खाना। उसने अपनी लंबी चोंच सुराई में डाल दी और सारस आराम से सूप पी रहा था। सूप पीते पीते उसने लोमड़ी से कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट सूप कभी नहीं चखा था। इसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है, शर्म मत करो, जी भर कर खाओ। बच्चों सोचो क्या हुआ, लोमड़ी सूप का जरा भी स्वाद नहीं ले पाई। सुराई का गला बहुत तंग था, सूप तक उसका मुंह पहुंच नहीं पाया। उसे बड़ा दुख हुआ। लोमड़ी समझ गई, उसने सारस के साथ जो शरारत की थी ना, उसी का ये फल भुगतना पड़ रहा है। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें क्या समझाती है, जैसे को तैसा। बच्चों आप किसी के साथ मजाक करोगे तो आपके साथ भी कोई वैसा ही मजाक करेगा ना, इसलिए कभी इस तरह का मजाक किसी के साथ मत करना, ठीक है ना बच्चों। तो चलो अब क्या करना है, दूसरी कहानी सुननी है। उसके पहले सुनते हैं ये गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों

0: मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की, और जिसमें हमने शुरू की है नई कहानी जिसका शीर्षक है स्वर्ण पिंडों की पहेली, जिसमें महाराज ने तेनाली रामा को दरबार में जीवन में सफल होने के उपाय के विषय पर भाषण में विजेता घोषित किया और धीरे धीरे सभा सदों में तेनाली रामा से ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन तेनाली रामा किसी भी सभासद के इस विरोधी आचरण पर उत्तेजित नहीं होता था। चलें आगे पढ़ते हैं किताब में क्या लिखा है। एक बार विजयनगर के महामंत्री के घर पर पोता जन्मने के अवसर पर एक भोज का आयोजन हुआ। वर्षों की प्रतीक्षा और मन्नतों के बाद अपने पौत्र के जन्म से महामंत्री की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उन्होंने भोज को इतना भव्य आयोजन किया था कि उसकी तुलना विजयनगर में हुए किसी भी अन्य भोज से नहीं की जा सकती थी। रसोई तैयार करने के लिए विभिन्न पड़ोसी राज्यों से विशिष्ट रसोइये बुलाए गए थे। उनके बनाए व्यंजनों की सुगंध से महामंत्री के आवाज से दूर दूर तक का वातावरण महक उठा था। इस भोज में महामंत्री ने महाराज कृष्णदेव राय और विजयनगर के सभी सभासदों को भी आमंत्रित किया था। भोजन करने के बाद महाराज ने महामंत्री से पौत्र का मुंह दिखाने को कहा। महाराज के साथ सभी सभासद नवजात शिशु को देखने के लिए महल के अंतकक्ष में गए। बच्चा एक सुंदर से खटोले पर रखा गया था, पालने पर रखा गया था। 6 दिनों की आयु का शिशु प्रायः सोया रहता है, तो महाराज जब शिशु के पालने के पास गए तब उन्होंने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी इस बात का ध्यान रखा जाए कि बालक की नींद को कोई व्यवधान न पड़े। नवजात शिशु जितनी चैन की नींद सोएगा उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास उतने ही अच्छे ढंग से होगा। पास खड़े एक अन्य सभासद ने महाराज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हाँ महामंत्री जी, ऐसे भी शिशु की नींद में दो ही कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है। पहला ये कि जब शिशु को भूख लगती है, और दूसरा ये कि बिस्तर गीला करता है। यदि आपकी बहू सतर्क रहे और शिशु को भूखा न रखे और बिस्तर गीला होते ही उसके वस्त्र बदल दे तो शिशु की नींद में कोई अड़चन नहीं आएगी। और महामंत्री भी उन सभी लोगों की बातें मुस्कुराते हुए सुनते रहे। तो चलो बच्चों अब आगे क्या होगा, क्या इस शिशु से रिलेटेड कुछ नई पहेली मिलने वाली है तेनाली रामा को? तो चलो वो तो हमें पता चलेगा अगली कड़ी में। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम आ गए हैं और वो भी है पहेलियों का दौर। पिछली कड़ी में परी ने क्या पूछा था, याद है ना आपको? काली है पर दूध देती, गांव गांव में सबको मिलती, तो बताओ कौन?
2: भैंस।
1: हाँ, काली है लेकिन दूध तो देती है। तो बच्चों, आप तो सही जवाब दे ही दिया आपने, तो अपने लिए बजाओ ढेर सारी तालियां।
2: वाह बच्चों, आप बहुत ही स्मार्ट हो, फटाफट मैसेज आने लग जाते हैं किन किन के नाम हम सुनाएं। तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। बिना पैरों के चलता है, फुफकार कर सबको डराता है।
1: तो बच्चों समझ ही गए होगे कौन सा जीव है ये, है ना? इसके पैर तो होते नहीं है। तो जल्दी से हमें सही जवाब 9414151415 पर लिख कर भेज दो।
2: हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो गुड बाय कहने से पहले दिन की सारी थकान भूल जाओ, चिंताओं को दिल से दूर भगाओ,
1: आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ, कल फिर एक नई शुरुआत पाओ।
2: तो चलो करते हैं गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट, गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणिसा। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए बड़ी बातों को ज्यादा महत्व देने के बजाय अच्छी सोच को ज्यादा महत्व दीजिए। कैसे, जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, गाय का घी हमारे हेल्थ के लिए किस तरह फायदा करता है और कौन सी बीमारियां ठीक करता है, जरूर जानेंगे आप सभी। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो हमारे श्रोता बंधु के कहने पर आज हम आपको फिर से सिखाएंगे अचार, लेकिन कौन सा वाला वो अभी नहीं बताएंगे। अगर आपकी कोई विशेष फरमाइश है तो जरूर बताइएगा कि कौन सा आप अचार सीखना चाहते हैं, नहीं

तो फिर हमने तो सोच ही लिया है कि कौन सा सिखाएंगे, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओ भाई साहब इधरा कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: और पहाड़ भले ही ना टूटे लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। और इसलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। आज का सुंदर सा विचार है, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए बड़ी बातों को ज्यादा महत्व देने के बजाय अच्छी सोच को ज्यादा महत्व देना चाहिए। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। एक महान विद्वान से मिलने के लिए एक दिन रोशनपुर के राजा आए। राजा ने विद्वान से पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हो? विद्वान ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई गुना महान है। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसे कैसे भला संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवा सकता हूं। इतना कहकर के विद्वान राजा को लेकर के एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति वहां उनको मिल गया। बूढ़े व्यक्ति के पास एक पानी का घड़ा और कुछ डबल रोटी थी। विद्वान और राजा ने उससे मांग करके डबल रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े व्यक्ति को डबल रोटी के दाम देने लगा तो वह व्यक्ति बोला, महोदय मैं कोई दुकानदार नहीं हूं, मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं इस उम्र में करने योग्य हूं। मेरे बेटे का डबल रोटी का व्यापार है, मेरा घर में मन नहीं लगता, इसलिए राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना और डबल रोटी खिलाने आ जाया करता हूं यहां पर, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। विद्वान ने राजा को इशारा देते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े व्यक्ति की इतनी अच्छी सोच ही इसे महान बनाती है। फिर इतना कह करके दोनों ने गांव में प्रवेश किया। तब उन्हें एक स्कूल नजर आया। स्कूल में उन्होंने एक शिक्षक से मुलाकात की और राजा ने उससे पूछा कि आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? उस शिक्षक ने कहा राजा से कि महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ कोई शिक्षक नहीं थे और विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर था, इस कारण मैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने आ रहा हूँ। विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला भी बहुत ही महान होता है और ऐसे कई लोग हैं जिनके ऐसी महान सोच ही उन्हें महान से भी बड़ा महान बनाती है। इसलिए राजन, अच्छी सोच व्यक्ति का भाग्य निर्धारित करती है, इसलिए हमेशा अच्छी बातें ही सोच करके कार्य करें और महान बने। आदमी बड़ी बातों से नहीं बल्कि अच्छी सोच व अच्छे कर्मों से महान माना जाता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, इसीलिए कहा गया है, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए बड़ी बातों को ज्यादा महत्व देने के बजाय अच्छी सोच को अगर ज्यादा महत्व दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी अच्छी सोच ही आपके कार्य को निर्धारित करती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो,
4: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
4: बस एकदम मस्त है, और कल थोड़ा बिजी था तो फोन नहीं किया था।
3: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी देखिए आप जुड़ जाते हैं समय मिलते ही, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो बहुत ही जल्दी हम विषय भी रखेंगे, बहुत ही जल्दी प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है?
4: बराबर, विषय तो मेरे ख्याल से हम समझ गए कि देखो कि कहीं मथुरा के झगड़े में राम गए हैं वन वगड़े में जी
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई
4: जी जी जी आज
3: ठीक है ना। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। आइए यहाँ पर एक अल्प विराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव की रहने वाली भूषा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हैं आप?
2: हम अच्छे हैं, आप कैसे हो?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
2: आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे होंगे। और बस आप आए तो बाहर आई।
1: थैंक यू।
2: और बस आशियाना प्रोग्राम सुन रहा है तो बस सभी रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं। और दीदी का परसों के दिन हमारे दोस्तों का बर्थडे था
1: जी,
2: तो मैं शुभकामनाएं नहीं दे पाया तो मैं आज देना चाहूंगा
1: जी।
2: हमारे एक कंचन भाई मंडाली वाले और ठाकुर भूपत सिंह सिन्हा, दोनों का जन्मदिन था तो उनको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाबा उनको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे और अपने परिवार में खुशियां ही खुशियां प्रदान है।
1: चलिए, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई।
2: थैंक यू।
1: हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। देसी गाय का घी कितना फायदा करता है, कैसे करता है, कैसे इसका उपयोग में लाएंगे, सब कुछ जानेंगे आप। ठीक है, देखिए, देसी घी के बिना तो भारतीय भोजन का स्वाद अधूरा ही माना जाता है ना। लेकिन फिर भी कहते ना कि घी का नाम सुनते ही कुछ लोग मुंह बनाने लगते हैं, क्योंकि इससे उन्हें वजन बढ़ने का डर सताने लगता है और बीमारियों का कारण समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। घी क्यों खाते हैं, वो भी गाय का, खास तौर पर देसी गाय का घी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आयुर्वेद में तो देसी गाय के घी को अमृत समान माना जाता है, जिससे 100 से भी ज्यादा गुण होते हैं जो दवा की तरह काम करता है। तो जी हाँ, अब मैं आपको इसके फायदे बताऊंगी कि देसी गाय में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इनसे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, और ये हेल्थ को दुरुस्त रखने के साथ ही साथ स्किन और बालों के लिए भी किसी वरदान की तरह होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह आपको कई तरह की बीमारियों से बचाता है। ये बॉडी के वेट को बढ़ाने से रोकता है। देसी गाय के घी में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है, जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जैसे फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो बढ़ते बच्चों की ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है, मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। ठीक है, और भी आपको बताना चाहूंगी मैं कि देसी गाय का घी हेल्थ के लिए कितने फायदेमंद है। अब आप देखिए, एक तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, अक्सर हम सोचते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन गाय के घी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, वजन भी नहीं बढ़ता है, बल्कि ये वजन को बैलेंस करता है। यानी कि कमजोर व्यक्ति का वजन बढ़ता है, मोटे व्यक्ति का वजन कम होता है। साथ ही मतलब मैं आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय बता रही हूँ। ठीक है, फायदा तो आपने जान लिया। अब गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो गाय का घी नाक में डालिए, इससे एलर्जी खत्म होगी। दूसरा है बहुत ही सुंदर नुस्खा, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। ठीक है, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। फिर तीसरा है, गाय का घी नाक में डालने से लकवा का रोग भी उपचार होता है। गाय का घी नाक में डालने से लकवा का रोग में भी उपचार होता है। अब चौथा आप सुन लीजिए, 20-25 ग्राम घी और मिश्री मिक्स करिए और खाइए, इससे शराब, भांग और गांजे का नशा कम हो जाएगा। तो 20-25 ग्राम घी और मिश्री मिक्स करके खाइएगा, इससे शराब, भांग और गांजे का नशा कम होगा। और पांचवा सुन लीजिए, नाक में घी डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तरोताजा हो जाता है। देखिए, नाक में घी डालने के कितने सारे फायदे हैं, 4-5 फायदे मैं आपको सुना चुकी हूँ। नाक में घी डालने से नाक की खुश्की दूर होती है और दिमाग तरोताजा हो जाता है। गाय का घी नाक में डालने से बाल झड़ना दूर होकर के नए बाल भी आने लगते हैं। ठीक है, तो गाय का घी नाक में डालिए, इससे बाल झड़ना दूर होगा और नए बाल भी आने लगेंगे। और भी देखिए फायदे इसके, गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। ठीक है, गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। लास्ट उपाय बता रही हूँ, हाथ और पैरों में जलन होने पर गाय के घी को तलवों में मालिश करिए, इससे जलन ठीक हो जाएगी। अगर हाथ और पैरों में जलन रहती हो तो पैरों के तलवों में गाय के घी की मालिश करिए, इससे जलन ठीक हो जाएगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, 9 साइड इफेक्ट आजमा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों का अलविदा कर सकते हैं। तो आइए अब आज के प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नुस्खे तो आपने जाने हैं, बहुत सारे उपाय हैं, हम बताते रहेंगे आपको। आज के लिए इतना ही। और आज का प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए बनाई गई है और क्यों बनाई गई है? सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए बनाई गई है? जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन का नंबर है 94-14-15-14-15। और अब फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आज का प्रश्न मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। सरकार ने जो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई है वो किसके लिए है, ये आज का प्रश्न है। आज का खुशनुमा जीवन का विषय भी बहुत ही सुंदर है जिसको मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है, क्या कहेंगे आप? हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। जो भी जुड़े हैं बात जरूर करिएगा। हेलो, तो विषय आपके समक्ष में रख चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर विषय है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। तो ये है आज का विषय जिसमें आपको अपनी राय व्यक्त करनी है और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है इसका आपको जवाब देना है। तो आप जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं, जो भी जुड़ते हैं बात करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। भला थोड़ा सा विश्लेषण करिए, ज़्यादा नहीं राय व्यक्त करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन जुड़िएगा ज़रूर। तो हमारे श्रोता बंधु कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए हैं, नव तपा का आज लास्ट दिन है ना। नव तपा मने 9 दिन इतनी भयंकर गर्मी कि पूछिए मत, आज भी बहुत गर्मी है। बीच में ठीक है वो थोड़े से हवा पानी हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त आंधी तूफान चले, उससे हल्के से ही राहत मिली, फिर से गर्मी बढ़ गई है। तो ध्यान रखिएगा, और आपको रेडियो से जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको धूप में जाना पड़े, आप घर बैठे जुड़ सकते हैं छाँव में पंखे के हवा में खाते हुए। तो देखिए, जीवन मिलना तो सचमुच भाग्य की ही बात है ना, और मृत्यु होना भाई समय आएगा तो सभी को जाना पड़ेगा, लेकिन मेन बात है कि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। तो बहुत ही गहरी बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जेठाना।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बस हम भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कार्यक्रम सुन रहे हैं। गर्मी तो दीदी है, क्योंकि गर्मी तो इतनी बढ़ गई है कि पता नहीं
0: जी
1: कैसे इसको संभालने का हो गया है, लेकिन फिर भी चलो गर्मी तो गर्मी तो उसका काम कर रही है, लेकिन हमको संभालना है दीदी
0: जी।
1: तो बाहर ना जाए, कोई ऐसी जगह पे ना जाए, धूप में ना जाए, तो हम समझ सकते हैं
0: जी।
1: और विषय भी बहुत अच्छा रखा है दीदी कि देखो आज हम कई लोगों को हम याद कर रहे हैं दीदी, ऐसे तो कोई याद करते नहीं, कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं
0: जी
1: दुनिया से, लेकिन जो अच्छा कर्म करके जाते हैं, अच्छा नाम करके जाते हैं दीदी, उसको हम याद करते हैं
0: बिल्कुल,
1: वरना तो हम किसी को याद नहीं करते। देखो मैं बताऊं दीदी कि कई लोग ऐसे हैं बहुत अच्छे, जब तक जिए तब तक बहुत अच्छे कर्म किए, किसी के साथ कोई संबंध, किसी के साथ कोई ऐसा अनबन नहीं किया है, सबसे अच्छा संबंध रखा है, और जो काम किसी ने किया वो किया है, अच्छा कर्म किया है, सबके साथ मिल मिलके रहे हैं, जाते वक्त भी उसने अच्छा कर्म करके गए, कोई तो उसको याद करते हैं, वरना तो दीदी देखो आज कई लोग ऐसा एकदम उसको गया तो अच्छा चलो जगह हो गई, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन तक जिया तब तक लोगों से बस झगड़ा किया, ऐसा किया ऐसा किया, लोगों को अच्छी तरह से सबको परेशान किया, घर में भी अच्छा नहीं रहे, किसी के साथ अच्छा संबंध भी नहीं रखा, तो इसको तो कैसे याद करेगी दीदी, कोई याद नहीं करेगा। आज देखो हमारे कहा कई ऐसे महानुभाव है गए हैं दुनिया से, कोई फिल्मी कलाकार गए हैं, कोई ऐसा झांसी की रानी है, कई सारे ऐसे
0: महाराणा प्रताप है,
1: महाराणा
0: मीराबाई है, नरसिंह मेहता है जी, बहुत तो सारे एग्जांपल है,
1: ऐसे तो याद नहीं करते दीदी, लेकिन अच्छे कर्म करके गए। हमारे समाज में भी कई दीदी ऐसे लोग हैं कि जब तक जिया तो समाज का अच्छा कर्म से अच्छा काम किया, समाज का सबको आगे लाए, किसी का जो परिस्थिति ऐसी नबड़ी होती है इसको कहाँ से पैसा लाके समाज से उसको मदद किया दीदी, इसको याद करते हैं लोग। देखो हमारे दीदी, हमारे समाज की मैं बात करूँ दीदी, तो एक नया हमारे समाज ने किया है कि जो पुराने जो जो पुस्तक होते हैं बच्चों के, तो वो सब इकट्ठा करके ले लेते हैं, समाज में भेजते हैं, और समाज वाले कोई ऐसी परिस्थिति वाले, गरीब परिस्थिति वाले जो पढ़ा नहीं सकते पैसा नहीं, उसको ये पुस्तक देते हैं। वरना लोगों को आज तक लोग कश्ती में दे देते थे, रुपये दो रुपये में कश्ती।
0: हाँ,
1: में
0: बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है ये भाई, बहुत अच्छी
1: तो
0: पहल है।
1: हाँ, तो ये हमारे समाज में एक अच्छी जो क्रिया प्रक्रिया चालू की है दीदी की, ये सबको एक मंगवाते हैं, सब उसको भेज देते हैं, तो हमारे समाज में जो लोग होते हैं कारोबार करते हैं उसको भेज देते हैं। आज लगभग हमारे लगभग कम से 50 लोगों को दीदी, ठीक है, हमारे सब मैसेज आता है किसने दिया और किसको दिया, ये हमारे सभी मैसेज आता है हमारे मोबाइल में समाज का।
0: अच्छा, बहुत
1: तो सभी जानकारी हमको मिलती है कि चलो भाई इसने पुस्तक दिया, ये बच्चे ने पढ़ते थे तो वो पुस्तक वहाँ पहुँचाया, और उसको जिसको मदद थी जरूर थी उसको मदद किया। तो ऐसे दीदी हम ऐसे पुस्तक में देते थे, उसका कैसा पैसा नहीं आता है, और जो बिना पैसे उसको पुस्तक मिल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है।
1: हमारे समाज काम कर रहे दीदी, हमारे समाज तो ऐसा भी काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा निराधार है उसको हर साल 10,000 रुपये का वो किराया दुकान से करियानों लेके उसको देते हैं, ऐसा भी काम कर रहे हैं हमारे समाज वाले।
0: अभी तो बहुत जागरूक हुए हैं लोग, अच्छा अच्छा नए कार्य कर रहे हैं।
1: ऐसे लोगों को दीदी याद किया जाता है
0: जी,
1: तो ये देने वाले को याद किया जाते हैं, और जो संभालते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं इसको भी याद करते हैं
0: जी।
1: ऐसा काम करना है दीदी, ऐसा काम करना। मैं बताऊं दीदी, मैं मेरी जो बेटी है उसका जो बच्चे हैं, तो उसका जो चौपड़े हैं, तो दीदी हमारे एक भाई है मेरी साली का लड़का उसको हर साल देते हैं, क्योंकि वो इसके पीछे मेरी बेटी की बेटी आगे है कि वो पीछे है, तो हर साल उसको पुस्तक देना देते हैं, उसको पैसा खर्चना नहीं करता है।
0: जी जी, बहुत अच्छा है।
1: ऐसे बच्चों को एक दूसरे बच्चों को ऐसा सहारा मिल जाता है दीदी, तो ये अच्छा काम हो जाता है। तो बस मैं तो दीदी ऐसा कहूँगा कि हर कोई भी वो अच्छा काम करके जाओ तो आपको याद करेंगे, वरना तो आया गया दुनिया में कोई।
0: बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन गया दुनिया से।
1: बस ऐसी बात है दीदी, तो हम तो ऐसा कहेंगे बस हम भी अच्छे कर्म कर रहे हैं दीदी, हर सुबह में मैं कि मेरा रूटीन का काम
0: नहीं, आपका तो पता ही है कि आप
1: रहा हूं। और मैं ऐसा नहीं दीदी, मैं मुझे ऐसा परमात्मा ने काम मुझे सौंपा है और मैं कर रहा हूँ, वरना तो ये काम 4 बजे उठ के कौन कर सकता है, 5 बजे उठ के, लेकिन मुझे परमात्मा ने काम सौंपा है मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है।
0: बहुत अच्छा है, और सुबह जो जल्दी उठते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन।
1: दीदी हमारे फायदे हैं, एक तो हमारा पैदल चलना, मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ सुबह में,
0: क्या बात है।
1: तो ये पैदल चलना भी एक फायदा है, मेरी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। दूसरा कि जो हम कर्म करते हैं वो जो कीड़ियों को खिलाना, पक्षियों के पानी के लिए फूल सगुड़ में करता हूँ, और कई सारी कुत्ते को बिस्किट खिलाना, ये सभी काम मैं एक साथ 5-5 काम करता हूँ
0: जी,
1: तो ये भी एक अच्छी मेरी हो जाती है, हेल्प हो जाती है।
0: बहुत बढ़िया
1: जी, नमस्ते दीदी
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने विषय को बहुत ही अच्छा स्पष्ट किया है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में करते हैं तो वो डंके की चोट बोल भी सकता है, और आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। देखिए हर एक इंसान कुछ न कुछ तो ऐसा करता ही है जो परोपकारी हो, है ना, तो हर एक कोई कुछ करते होंगे परोपकार का, बहुत जन है। जैसे आपने बताया सुरेश भाई ने कि ये किताबें जो होती है बच्चे पढ़ाई करते हैं पूरे साल के बाद, वो किताबें अगर हम रद्दी में डालते तो क्या आता है, और इस तरह हम बच्चों की हेल्प कर देते हैं, परिवारों की हेल्प कर देते हैं, तो कितनी दुआएं मिलती है। हेलो,
2: हाँ भूरा राम बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
2: राम बस ठीक है, अभी ऑपरेशन हो गया, घर पर बैठा हूँ।
0: अच्छा,
2: प्रोग्राम सुन रहा हूँ दीदी, और बस 2-3 दिन से ट्राई कर रहा, फोन ही नहीं लग रहा था आपका।
0: अच्छा चलिए,
2: आज लगा है।
0: जी जी जी, तो ऑपरेशन हुआ आपके, ऐसा आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी?
2: ठीक है, मैं अभी आराम आया थोड़ा।
0: हाँ हाँ,
2: और तो अभी एक थोड़ा चलने फिरने में तकलीफ है, लेकिन फिर भी आराम है, पहले से भी आराम हो गया दीदी।
0: जी जी, तबीयत का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
2: ओके। ओके, और सब मधुबन भाइयों को और मेरे सब की तरफ से राम राम
0: जी।
2: और दीदी
0: हाँ जी, हाँ जी, आपकी दुआ से अच्छे हैं। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे या आज के विषय में जुड़ेंगे आप? जी जी जी, आप पहले तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और आज का प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है?
2: अच्छा।
0: और क्यों क्यों है? ठीक है। और आज का विषय है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है, क्या कहेंगे आप?
2: दीदी बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि बहुत अच्छे कर्म की आगे भी कर्म किए रहेंगे तो ये मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन में आकर तो अपन अच्छा काम करेंगे या अच्छा अपन बोले तो लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार करेंगे, तब बोले तो किसी के बारे में गलत सोचना करना ये बोले तो करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे तो मरने के बाद में लोग याद करेंगे, और किसी से झगड़ा फंदा ये, किसी से बैर रखना ये करना, घर में झगड़ा ये करना तो लोग सब जानते हैं और समझ भी जानते हैं, सब को ये अनुभव रहता कि ये तो ऐसा आदमी है, तो मरने के बाद में भी वो वैसे ही नाम नहीं करते, कर्म करेंगे तो अच्छा बोलेगा अपना नाम में
0: जी। बहुत अच्छा बुरा राम जी, बहुत ही अच्छा बोले आप।
2: ओके।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत है, ठीक है?
2: ओके दीदी।
0: हाँ जी, तो ये थे भुराराम जी ओर से, और विषय बहुत ही सुंदर है, इसमें और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते तो ठीक है, हम एक ब्रेक के बाद पुनः इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, आप जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आज के प्रश्न का जवाब भी सुना सकते हैं। तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो, कौन सा लेंगे दीदी?
0: हाँ जी,
3: लिंक कौन सा चल रहा है?
0: हाँ जी, खुशनुमा जीवन का।
3: अच्छा, क्या है?
0: अच्छा, खुशनुमा जीवन का विषय है, आपको पहले तो मैं प्रश्न सुना दूं या विषय सुना देती हूँ? चलो, जीवन जी, विषय है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है।
3: बिल्कुल सही बात है ना। देखिए, जीवन भाग्य से मिलता है, ये बात सत्य है, क्योंकि जीवन, मनुष्य जीवन मिला है तो आपको किस कारणों से मिला है, क्या करने के लिए मिला है, ये पहले सोचना जरूरी है
0: जी।
3: और मृत्यु तो वो तो ठीक है, जीवन में आए हैं तो मृत्यु निश्चित है समय के साथ में, वो ठीक है, मगर ये आखिरी पॉइंट है ना, मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना जरूरी है, वो कर्मों का काम है, तो कर्म अच्छे करिए। भगवान ने अपन को इस तरह से जीवन मतलब कर्म करने के लिए भेजा है कि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए या अच्छे किए तो इस जन्म मतलब पूरे किए तो इस जन्म को सुधारो
0: जी,
3: इतने अच्छे करो कि जाने के बाद भी लोग याद करें और मतलब कि आवागमन की गति खत्म हो जाए।
0: जी
3: सही है ना
0: जी,
3: दिल मतलब आपको मतलब कुछ विशेष बन के दिखाना है, जैसे कि देखिए हमारे कुछ क्रांतिकारी मतलब कितने ही लोग आके गए हैं, आज भी अपन याद करते हैं।
0: बिल्कुल,
3: तो उन्होंने अच्छे कर्म किए
0: जी,
3: इसलिए हम याद करते हैं। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आप जिंदा हो तो भी बोलेंगे जाने दो ना इसको, चाहे और पिलानी पड़ेगी, जाने दो इसको। और अच्छे कर्म करोगे तो अरे भाई आओ आओ बैठो यार बैठो, आप भगत भी होगी
0: जी,
3: जिंदा भी आप भगत होगी उन मरने के बाद।
0: बिल्कुल,
3: तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे कर्म कीजिए। आप अच्छे कर्म करने का मतलब धन से ही नहीं है, आप किसी भी तरह से अच्छे कर्म कर सकते हैं
0: जी। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी बातें हैं।
3: क्योंकि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मेरे पास धन ही नहीं है तो मैं अच्छे कर्म कैसे कर सकता। अरे आप अपने दिल को साफ रखिए ना, किसी के प्रति बुराई का व्यवहार ही मत कीजिए ना, बुराई को दिल से मिटा दीजिए, बुराई के कलंक को मिटा दीजिए
0: जी।
3: और जो भी अपन से बने वैसा कर्म करते रहिए, सही है ना दीदी
0: जी? बिल्कुल,
3: पशु पक्षियों के लिए, मनुष्य के लिए,

0: जो भी अपने
1: बहुत बड़ा विस्तार है जिनके लिए भी करना चाहते हो कर सकते हैं, पेड़ पौधों के भी सुरक्षित रख सकते हैं, उनका भी ध्यान रख सकते हो,
0: मगर कर्म कीजिए और अच्छे वाले कर्म कीजिए
1: जी।
0: वो भगवान प्रभु ने भी गीता में कहा है कि कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा ना कर, तो बस अपना कर्म करते जाइए और बस आगे बढ़ते जाइए, तो आपके मरने के बाद भी आप जिंदा रहेंगे लोगों के दिलों में
1: जी,
0: बस यही बात है। और प्रश्न क्या है
1: आज का? प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है?
0: ऑफलाइन दो दे दो।
1: हाँ जी ठीक है।
0: जी
1: जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आइए एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें चल रही है। कैसे छोटी छोटी बातों से तनाव आता है और कैसे हम इन तनाव को दूर करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, तो विषय बहुत ही सुंदर है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है और क्यों है? जवाब देने के लिए नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ व्यस्त हो गए हैं? अभी तो गर्मी के दिन है, कहते हैं ना गर्मी के दिन लंबे होते रात छोटी होती है, सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रात लंबी होती है। तो भाई अभी तो दिन बड़ा है, तो आपके पास समय पड़ा होगा, तो ज़रूर आप जुड़ने की कोशिश करिएगा। और बाकी तो विषय बहुत ही सुंदर है, जीवन मिलना तो भाग्य की ही बात है, लेकिन मृत्यु के बाद सभी के दिलों में जीवित रहना यह अहोसो भाग्य की बात है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा से, आपको और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसा है आप?
2: बस दीदी अच्छे है, काम काज चालू है और प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी दोस्त भी बातें कर रहे हैं, आप भी अच्छे विषय लेके आए हैं दीदी, और बहुत प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो मैं पहले विषय पर आता हूँ दीदी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: जो हम मनुष्य जीवन जो भगवान ने भेजा है, तो अपने आप जानना चाहिए कि क्या उद्देश्य से हमने भगवान ने भेजा है। एक अपना उद्देश्य लक्ष्य तय करे, और ना कि किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुख चोट पहुंचाने की, गलत कर्म करने की, ये उद्देश्य नहीं है मनुष्य अवतार का दीदी
1: जी।
2: तो मैं यही कहूंगा। और मुझे एक बात भी याद आ रही है कि एक गुरुजी ने एक इंसान को कहा कि 2 दिन में तुम्हारी के मौत हो जाएगी, तो वो तो बहुत बड़ा भयभीत हुआ
1: जी।
2: तो के चलो अब क्या करे, चलो के वो मौत तो आनी है तो आएगी, इससे पहले क्यों ना हम जो किसी से वेर जेर सगा संबंधी दुश्मन उससे जो भी किया है तो मैं ठीक करके जाऊ, तो सभी को न्योता भेज जाओ और कहा कि मेरे घर आओ, जो भी चीज है ले जाओ, और कोई नहीं आ रहा है तो पैरों में गिर कर भी माफी मांग कर भी ये सब किया, और सब किया, सब खुश हो गए कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, तो आज हम पता चला। तो वो था मृत्यु का भय
1: जी।
2: तो फिर दो से तीन दिन हो गए गुरुजी के पास गए कि गुरुजी क्या हुआ, कि आप तो कह रहे थे कि मौत आएगी, तो कहे मृत्यु के तुम्हारी टल गई, अच्छे थोड़े दिन में, 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में अच्छे कर्म कर लिए तो टल गई,
1: बुरे बुरे विचारों की मृत्यु हो गई।
2: सही सही सही, यही कहना चाह रहा। तो क्यों ना ये 2 दिन के लिए वो उसने किया, तो हम मनुष्य जीवन पूरे जीवन दिया है भगवान ने, तो क्यों हम अच्छे कर्म क्यों करना करें। तो बस मैं यही कहूंगा कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, ताकि लोग मरने के बाद भी याद करें कि ये इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, जाने वाला तो जाएगा ही, और सब कुछ जो संसार में होता है वो तो होता रहेगा, लेकिन बस याद करें वही काफी है, और अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी सब साथ लेकर चले, ये बातें दीदी
1: जी।
2: और दीदी प्रश्न का जवाब है ना, तो हाँ मैं तो प्रश्न का जवाब तो भेजा है, लेकिन
1: हाँ जी, मैंने देख
2: लिया। मैंने एक बात कहना चाहूंगा कि गांव में कई लोगों को पता भी है और नहीं भी पता,
1: नहीं भी
2: तो
1: है।
2: उसमें क्या है कि 18 साल की जो लड़की है ना, उसको ये शादी ब्याह होता है ना, तब वो पैसा मिलता है, तो लोग क्या करते हैं 18 साल का इंतजार भी नहीं करते, 16-17 साल में लड़की का ही विवाह कर देते हैं तो ये लाभ खास करके इस चीज से भी नहीं लेते ये सरकारी लाभ लोग। तो ये सुनने वालों को कहूंगा कि ये बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है कि
1: भाई 18 साल की तो होने दो कम से कम।
2: अरे थोड़ी जो 15-17-16 साल के हो गई ना तो आजू बाजू लोग वाले कह रहे इनके घर तो ये इतनी बड़ी बेटी है कुछ ऊंच नीच कर बैठेगी, ये ताने मारते हैं तो लोग ये भी कर ले। अभी भी गांव में है ना वो
1: जी जी
2: पुरानी जी।

0: करना भी चाहिए। और विषय बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, जीवन तो मिलना भाग्य की ही बात है, लेकिन कहते ना, मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में राज करना हर किसी के बस में नहीं होता है, वो सारा कर्मों पर मदार है। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार। ठाकुर भूपत सिंह से पूछ रहा
0: हूं। जी भूपत सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
1: बिल्कुल बढ़िया दीदी, प्रोग्राम सुन रहा था।
0: जी देखिए, आप जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, लेकिन हमारे श्रोता बंधु सभी याद करते हैं आपको। अभी आपका जन्मदिन गया तो भी सभी याद कर रहे थे आपको।
1: अभी सुरेश ने कॉल किया था, अभी वो सुरेश ने की बात चल रही थी, सुन रहा था, रेडियो तो सुनता रहता हूँ
0: जी। लेकिन ऐसे विशेष दिन हो तब जुड़ भी जाइएगा रेडियो से।
1: एक बात बताऊं दीदी, परसों पर चार दिन हो गया
0: जी,
1: 8 बजे जो मेरा सीलिंग फैन था ना
0: जी,
1: वो घूमता घूमता गिर गया मेरे पलंग पर।
0: ओहो,
1: तो बिल्कुल बाजू मेरे पैर के बाजू में गिरा।
0: अरे देखो,
1: मैं भी सुबह एकदम आवाक हो गया कि ये क्या हो गया।
0: जी जी जी जी,
1: बिल्कुल इतना आसानी से गिरा कि बाजू में किसी ने रखा हो या इसी तरह गिरा।
0: जी जी जी,
1: मैंने सोचा कि मेरा कर्म कोई काम कर गया, नहीं तो
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कर्म काम कर गया।
1: पंखा तो कई दीवार पे टकरा जाता होता है,
0: अरे हालत ही खराब कर देता अगर कोई नीचे होता तो।
1: जी, एक बाजू मैं सो रहा था, एक बाजू संजय की बिटिया सो रही थी, यानी दोनों को बीच में आहिस्ता आहिस्ता गिरा वो पंखा, घूमता पंखा गिरा।
0: ओहो क्या बात,
1: किसी को चोट नहीं लगी, मैं भी देख रहा था कि गिरा कैसे।
0: जी जी जी जी,
1: अरे मैंने सोचा कि 2-3 दिन से तो ऐसे ही एक पंखा, तो फिर मैंने फिट कर दिया। तो अभी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये एक मेरे पर गिरा क्यों नहीं, ये क्या मेरा कोई पुण्य काम कर गया।
0: बिल्कुल, हमको पता नहीं होता है, इस तरह जब हम बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, तब ऐसा लगता है कि किसी ने किसी समय का किया हुआ पुण्य का कार्य ही आड़े आया है। या फिर हम बुजुर्गों को भी उस समय याद करते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने कोई अच्छे कर्म किए, उनका प्रताप से हम खुश है। जी
1: कहवत है ना, को जो पंखा तो गिरने वाला ही था
0: जी,
1: लेकिन क्या है, मेरे कहवत है ना कि जो बाला लगने की जगह पर एक सुई लगी।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: हाँ नहीं, पंखा तो गिरने वाला था ही, लिखा
0: जी,
1: था
0: जी, जी,
1: तो गिरेगा,
0: पहाड़
1: किस्मत में लिखा हो वो के रहेगा।
0: जी पहाड़ जैसी समस्या को ईश्वर ने रुई की तरह कर दिया। बिल्कुल, राई कहते ना, राई की तरह
1: पूर्ण होगा ना तो वो कम होगा।
0: जी
1: बस, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, मधुबन रेडियो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: बहुत बहुत आभार, आप जुड़े हैं जो, और हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने आपको याद किया है, बर्थडे भी विश किया है, और शायद हो सकता है हमारे श्रोता बंधुओं के गुड विशेष से भी आप बच गए है ना, तो वो सबका ही रहता है, सबका योगदान रहता है इसमें। जी तो बहुत बहुत आभार, और आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बहुत अच्छा लगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये थे ठाकुर भूपत सिंह जी। देखे, कभी कभी जीवन में इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो किस प्रकार लौट करके आता है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन लौट के जरूर आता है, चाहे अच्छे कर्म किए हुए हो चाहे बुरे कर्म किए हुए हो। तो ये अच्छे कर्मों का ही प्रताप है कि भूपत सिंह जी हादसे के शिकार होते होते रह गए। बहुत बड़ा हादसा हो जाता उनके साथ, लेकिन टल गया, यही तो अच्छे कर्मों का परिणाम है। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि कर्म ऐसे करिए, और हमें ऐसे नहीं कि अरे मैं अच्छे कर्म करूं ताकि मरने के बाद अमर हो जाऊं, नहीं, ये भाव से नहीं, इस भाव से करेंगे तो स्वार्थ हो गया और कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ हो जाएगी। बस वो कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल, और वो नेचुरल आदत बन जानी चाहिए, खाली दिखावे के लिए नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु हैं जिनकी नेचुरल आदत है ना, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, जैसे सुरेश भाई जोटाना से, अब 4 बजे उठ करके पंछी पक्षियों को दाना देना, पानी, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, पूरे मोहल्ले

सफाई करना तो ये एक नेचुरल आदत है, न कि दिखावा है। ऐसे ही हम सभी को भी एक आदत बना लेनी है अच्छे कार्य करने की। बहुत जने दिखावा करते हैं, हाँ मीडिया आ गई, फोटो के लिए खड़े हो गए, फिर बाद में तू कौन और मैं कौन, ऐसा हो जाता है। और बहुत जने लोग देख रहे होते तब करते हैं, लेकिन नहीं, वो कितने दिन, वो झूठ कभी टिक नहीं पाता है ना। सच्चाई ही काम आती है जीवन में। दिल से किया हुआ कर्म, सच्चाई से किया हुआ कर्म और नेचुरल आदत जो वो बन जाती है, उस अनुसार अगर हम अच्छा करते हैं, और जाना तो सभी को है, लेकिन जाने के बाद भी लोग याद करते हैं कि अरे भाई फलाना बंदा या फलानी बंदी बहुत अच्छी थी, बहुत मदद करती थी, बहुत अच्छा कार्य करते थे, ये करते वो करते, वो उनको कभी भूल नहीं पाते। जब जब उनका जिक्र होता है या किसी ने उनका नाम छेड़ दिया तो सभी याद करने लगेंगे, अरे भाई बहुत समाज को कमी मतलब उनकी रहेगी हमेशा के लिए, बहुत अच्छा काम करते थे। तो ऐसा है, इसलिए कर्म अच्छे करिएगा, कर्म के फल की चिंता मत करिएगा, बस अच्छे कर्म किए जा। अच्छे कर्म करेंगे तो मरने के बाद भी हम जीवित रहेंगे कर्मों के रूप में, ठीक है, कर्म रूप में याद करेंगे। ऐसे नहीं अरे वो बहुत सुंदर थी तो क्यों चली गई, अरे वो ऐसी थी तो क्यों चला गया, नहीं, बहुत अच्छे कर्म करके गए भाई, बहुत पुण्यात्मा गई, ऐसे कहेंगे, ठीक है। और आइए अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है और क्यों है, ठीक है। तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94 14 15 14 15। और फिर से एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का, जिसमें अभी सीजन चल रहा है अचार बनाने का, क्योंकि अभी केरी है, करौंदे है, केर है, गोंदे जिसको लसोड़े भी कहते हैं, इस सीजन में ही मिलते हैं, और धीरे धीरे फिर इसका सीजन भी समाप्त हो जाएगा। केरी भी देखिए अब पकने लगी है, फिर भी अभी अचार की केरी मिल रही है, अभी तक तो जुलाई तक तो मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, ठीक है, जुलाई के स्टार्टिंग तक, फर्स्ट वीक तक, उसके बाद देखिए, फिर मान लीजिए मिल भी गई तो उसके भाव बढ़ जाएंगे कच्ची केरी के, ठीक है। तो आज मैं आपको कच्ची केरी का अचार बनाना सिखा रही हूँ। कंचन भाई मंडाली वाले, आपका कहना था कि अभी अचार का सीजन चल रहा है तो अचार सिखा दीजिए ताकि हम अचार बना सकें, तो ठीक है, अभी अचार ही सिखा रहे हैं, तो हर प्रकार का अचार सिखाएंगे, जिसमें आज कच्ची केरी का अचार सिखाने जा रही हूँ। आप सामग्री लिखिएगा, आशियाना के किचन में पेन और डायरी लेकर के पधारिएगा और सामग्री लिखिए। अगर देसी केरी मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, कच्ची देसी केरी, वो थोड़ी खट्टी होती है और उसके छिलके क्या है, जब हम तोतापुरी दूसरी केरी लेते हैं ना, तो उसके छिलके हट जाते हैं, और ये देसी केरी होती है, तो अचार आप खाओगे ना तो ये छिलके नीचे वाला भाग जो हटेगा नहीं, तो अचार टेस्टी लगेगा, क्योंकि अचार में तो भाई गुठली और मेन छिलके का ही रोल होता है, कि दोनों होते हैं तभी अचार का टेस्ट आता है। तो देसी केरी ले लीजिएगा, फिर आप मसाला में लीजिएगा, नमक तो लेना ही है, राई लीजिए, राई की दाल लीजिएगा, अगर दाल अच्छी तरह ले रहे तो फिर राई नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, सौंफ ले लीजिए, फिर आप लीजिएगा चने की दाल, अब आप लीजिएगा हींग, तेल तो लेना ही है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो ये हो गए मसाले, और मेथी, मेथी दाने लेने हैं, ठीक है। तो फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, सामग्री में आप लीजिए, पहले तो केरी तो लेनी ही है, फिर आप लीजिएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तेल, हींग, सौंफ जिसको गुजराती में बरियाली कहते हैं, मेथी दाने लीजिएगा, और चने की दाल आपको लेनी है, ठीक है, और राई की दाल। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। कच्ची केरी धुलाई करके आप उसको काट दीजिए। आजकल तो क्या है कि घर घर में केरी कट्टा नहीं है, तो मार्केट में काट कुटा के भी वो केरी देते हैं बेचने वाले, तो आप कटवा के भी ला सकते हैं अगर घर में काटने की सुविधा नहीं है तो, क्योंकि अचार की केरी हमें गुठली समेत काटनी है, ठीक है, इसलिए भले कटी हुई लाइए, अगर कटी हुई लाते हैं तो घर पर ला करके उसकी धुलाई जरूर करिएगा, क्योंकि मार्केट से लाते हैं कटी हुई तो धुलाई तो की हुई नहीं होती है, और अगर घर पर ला रहे हैं तो फिर केरी की धुलाई करके पोंछ करके फिर काटिएगा केरी कट्टे से, ठीक है। तो केरी कट्टे से केरी काट ली, जो भी साइज आपको पसंद है उस साइज में, और अगर आप धुलाई कर रहे हैं, मार्केट से कटी हुई लाए हैं, तो धुलाई करके आप पहले इसको सुखा दीजिए, सूती कपड़े पर डाल करके, धूप में नहीं डालना है, ठीक है, छांव में ही, पंखे में आप सुखा सकते हैं, तो सुखा दीजिए, थोड़ी सूख जाए उसके बाद सारी फांकों पर आप हल्दी लगा दीजिए, थोड़े से हल्दी सभी पर एक थाली में लेकर के, वो फांकों को भले एक भगोने में, एक बड़े चौड़े बर्तन में ये फांके सारी रख करके, हल्दी डाल करके उसको उछाला दे करके आप अच्छी तरह हिला दीजिए ताकि सारी फाकों के हल्दी लग जाए, फिर आप सूती कपड़े पर इनको वापस डाल दीजिए, 3-4 घंटा इनको ऐसे ही सूखने दीजिए फिर से, ठीक है, एक बार तो पानी उड़ाया उसका, अब हल्दी लगा करके आपको फैलाना है, 3-4 घंटा फैलाने के बाद आप इधर तैयारी कर लीजिए मसाला की। अगर आप साबुत पसंद करते तो इसमें आप सब मसाले साबुत ले सकते हैं, सौंफ कूटने की जरूरत नहीं है, राई की दाल तो आपने ले ही ली है, वो तो वैसे ही दाल आती है, बारीकी आती है, फिर मेथी दाने उसको भी कूटने की जरूरत नहीं, चने की दाल भी ले लीजिए, ठीक है, हाँ मेथी दाने थोड़े से सेक लीजिए, बाकी कुछ भी सेकने की जरूरत नहीं, सरसों का तेल लेना है, अब सरसों के तेल को आप गर्म करिए, जैसे अब ये 3-4 घंटा फाके हो गई हल्दी वाली, ठीक है, अब आप एक बर्तन में ये सारे फांके ले लीजिए। अब वापिस आप ये जो मसाले तैयार किए हैं वो मसाले डाल दीजिए इसमें फांकों में, नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, हल्दी तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं फांकों के, ठीक है। और अब इसमें आप सौंफ, मेथी, राई की दाल, चने की दाल, ये सब डाल दीजिए मसाला, ठीक है। और तेल गरम करिए, तेल गरम हो जाए तो थोड़ा सा ठंडा होवे उसमें आप हींग पाउडर डालिए, ठीक है। ज़्यादा तेल गरम होगा और उसमें आप हींग पाउडर डालेंगे तो हींग जल जाएगी, इसलिए थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद अब आप थोड़ा सा तेल ये फांकों में डालिए और ये सारे फांक तेल और अचार, मतलब ये मसाला मिक्स करिए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद आप एक भले तो चीनी की बरनी लीजिए और भले आप काँच का जार ले सकते, बरनी ले सकते, जो भी आपके घर में उपलब्ध है लीजिएगा। प्लास्टिक के डिब्बों में अचार नहीं डालना है, ठीक है। भले तो चीनी लीजिए, भले आप काँच के बर्तन लीजिए, दोनों में से एक लीजिए, उसमें ये सारा डाल दीजिए। डालने के बाद अब आप ऊपर से तेल डाल दीजिए, तेल आधा ही डालना है, मतलब फांके जैसे पूरा डिब्बा भर गया आपका, पूरा डिब्बा तो खैर भरना नहीं है क्योंकि तेल भी आएगा ऊपर, इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए और थोड़ा पौन भाग रहे ऐसा आप लीजिए, तो फांके दिखे उससे आधा तेल डालिए और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए टाइट ढक्कन लगा करके। दूसरे दिन देखिएगा कि तेल कितना ऊपर आया, अगर पूरे ही ऊपर आ गया है तो अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसाला और फांके तेल में डूबनी चाहिए, तो ये अचार आपका साल भर, दो साल, जितने साल आप चलाना चाहो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और तेल की कमी हुई नहीं, फांके ऊपर आ गई, मसाला ऊपर है, तेल नीचे बैठा हुआ है, तो अचार तो बिगड़ना ही है। इसलिए जो भी अचार आप बनाते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि मसाला और जो भी जिसका भी आप बना रहे हैं तेल ऊपर हो, तरमा तेल हो, मसाला सब नीचे बैठा हुआ हो, ठीक है। और वैसे दो चार दिन तो कुछ होता नहीं है, वो दो चार दिन में तो हम नया नया अचार अच्छा भी लगता है तो खा भी लेते हैं, तो तेल का बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह ध्यान रखना है कि तेल मसालों के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। तो ये स्वादिष्ट अचार बन चुका है, आप अपने इष्ट देव को भोग लगा करके खा सकते हैं। तो आइए फिर से एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
2: तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
3: माँ, अब तो बस करो।
1: बहू, क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है।
4: को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
5: शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
6: अल्लाह, पाक चवन्नी का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर भी जरूर आप गौर करिएगा, और नुस्खे बहुत ही अच्छे दिए हैं। गाय का घी क्यों खाना चाहिए, क्या फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है, वो सभी आपने जाना है। आज का विषय भी बहुत ही सुंदर था, जिसमें आप सभी ने भी अपनी राय व्यक्त की है। और जो अचार बनाना सिखाया है कच्ची केरी का, समय के अभाव से मैं डबल बार रिपीट नहीं कर पाई, कभी और भी सिखा दूंगी, तो जरूर बना करके खाइएगा। साल भर का सवाल है भाई, अचार जरूर बनाइएगा, ठीक है।

और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है, क्यों है। ठीक है, तो पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी, सुकन्या योजना बेटियों के लिए है और वो क्यों है। कारण यह है इसका कि बालिकाओं के उज्जवल भविष्य और शिक्षा के लिए है। बाकी तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है, इतना विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप सभी को भी नॉलेज है और विस्तार में कभी बात भी कर लेंगे फिर भी अगर आप चाहोगे तो। तो हमारे श्रोता बंधु जुड़े हैं अलका जी काबरा कपासन से, सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, ठाकुर भूपत सिंह जी जुड़े हैं सिद्धपुर से, संगीता जी लावटी जुड़े हैं कपासन से। तो जवाब दिया है अलका जी काबरा, सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई जोटाना से और संगीता जी कपासन से। आपका जवाब सही है, इसके लिए और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई धानेराव से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो आपके लिए ढेर सारे आज का मीठा मोती भी बहुत ही सुंदर है, कोई भी काम अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हो सकता है आने वाला अगला पल मंजिल का हो। अब मैं आपको प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सुंदर पहेली के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृ सत्तात्मकता। लेकिन ये पितृ सत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
2: माँ, मारा तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही। कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को कह रही। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो, प्लीज मारो सपनो मत तोड़ो माँ, प्लीज।
3: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी। सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे, मैं थन आगे पढ़ाऊं तो दहेज खूब देनो पड़ी, और थारी दो छोटी बहन भी है वहां को भी सोचनो है मारे।
4: देख बेटा, मारी माँ भी मने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ, बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारा हूँ दहेज तो खूब आयो, पर टीवी वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू थे कई चिंता करो, मैं यो सब चला भी नहीं देऊ तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यूं ही को नहीं राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मारी माँ ने पूछन बताओ।
1: बेटा बींदनी तो घनी अच्छी है ये, पर गूंग तो घणो ओछो काढ़े, यो भी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पॉटन कसी मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जनारो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे हैं, इन वास्ते तारे मारी मारो किनो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बींदनी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ज्यादा शिक्षा मत जा, मैं देख ले हमारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा तू बोल, घड़ा दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन हॉस्पिटल तो घी न, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे ताकि बच्चा में संस्कार हव उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दे ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा मैं थारा हूँ कई छुपाऊ, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेनी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अतरो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अतरा सामान को।
2: रीटा कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वही सामान पे बहु रो कोई अधिकार को नहीं वे वे है।
6: सीता मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहू का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन है ना।

0: माँ सीतन शक्कर आवे रही है नवा घबराए रही है तो मैं बने हॉस्पिटल लेन जाओगे।
1: चुप बैठ चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी, ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो।
2: अरे मैं कई हर मानू, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबीयत तो ठीक है।
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा हा, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लू, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीनड़ी देख अपना घरे कौन आया।
4: हाँ सासू माँ आई। बावा दो
2: खुश रहो। अरे बीनड़ी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केड़ी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगिनी के बगैर छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
2: काकी सा आप सही कह रहे हो, पर बिनणी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है। अरे बिनणी की जांच कराई कि नहीं।
1: देख राधा आपने भी टाबर व्या, एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बिनणी ने क्यों ले जानो दवा खाने।
2: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय गणो बदल गयो, आज कल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, ढीकड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
1: तो दर्पा मत राधा।
2: दर्पावा की बात को नहीं काकी सा, आजकल एड़ो हुए रहे है। मैं आई बिनणी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रहे है बिनणी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
1: चलो बिनणी दवा खाने चला।
5: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए, इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां और फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहे ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहे, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहे तो जरूर पढ़ाएं, ताकि जितनी समझदार महिला होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी, तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, तो इसलिए जरूर पढ़ाइए।
1: आज सो थाने खुद को ध्यान रखनो है, डॉक्टर का अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है, जो भी सलाह देवे बनी अनुसार थारे चालनो है, एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ ठीक है। राजू सुन तू बीनड़ी को पूरा ध्यान रख जे।
6: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है, और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सतात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है। आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के। आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
7: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन है उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम यू नो एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। सो कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए। तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है, यू नो कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो यू नो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं। तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं। तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम यू नो दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजीशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में। उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं। पेट्रियार्की का इशू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है। तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है। आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए।
6: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूँ। घर में नियम भले कोई भी बनाए लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को

समझे और सहयोग भी करे, तभी हम कह सकते हैं सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

सकारात्मकता जिस घर में होती है उस घर की हालत क्या होती है, आइए गीत के माध्यम से जानेंगे।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर बर्वे उर्फ ज्ञानी विशेष मुलाकात में आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक विशेष अतिथि आए हैं। वैसे तो विशेष मुलाकात में ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही पर्सनैलिटीज आती है जिनके जिंदगी से हम कुछ सीख लेते हैं। आज ऐसे ही एक पर्सनैलिटी से आपके साथ मुलाकात करने वाले हैं, और वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो आपकी जान पहचान की है, क्योंकि कुछ साल पहले वो एक कार्यक्रम करते थे रेडियो मधुबन पे, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। चलिए, तहे दिल से हम डॉक्टर सिंह का स्वागत करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि डॉक्टर सिंह MBBS और MD दोनों है। MBBS उन्होंने 1966 में किया, MD कलकत्ता से 1971 में किया, और MBBS उन्होंने पटना में 1966 में किया। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस भी की, उनका नर्सिंग होम था, 35 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो शांतिवन में सेवा के लिए आते हैं। एवरेल्दी हॉस्पिटल में वो कंसल्टेशन देते हैं और साथ साथ अपना अनुभव जो होता है साझा करते हैं हमारे साथ। तो चलिए, फिर से एक बार हम डॉक्टर सिंह का तहे दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, वैसे तो स्वास्थ्य हर कोई चाहता है, अपनी जिंदगी में स्वस्थ होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्वस्थ होना कभी कभी हमारे हाथ में रहता भी नहीं है। छोटी मोटी बीमारी तो आती रहती है, लेकिन कभी कभी बड़ी बीमारी आती है जिसकी जानकारी हमें फिल्मों में भी मिलती है। बड़ी बीमारी अगर कहे तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बहुत भयंकर होती है। अगर किसी को हो गया तो उसका मनोबल खत्म हो जाता है, और उसमें भी ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हमने अभी तक तो फिल्मों में देखा है। यहाँ हमारे डॉक्टर सिंह साहब को कैंसर हुआ, वो भी ब्लड कैंसर हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की, और ये बहुत बड़ी चीज है। और इसलिए हमने सोचा कि उनके साथ हम रूबरू करें और उनका अनुभव जो है वो आपके साथ साझा करें। तो सिंह साहब, हमने जो सुना कि आपको ब्लड कैंसर हुआ था, वो कैसे हुआ, उस समय आप कहाँ थे, उसके बारे में जरा बताइए।
1: ब्लड कैंसर कैसे हुआ ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका कॉज पता नहीं रहता है। कैंसर की बीमारी का जिस दिन कॉज पता लग जाएगा कि क्यों कैसे होता है, तो बीमारी का निदान निकल जाएगा। केवल ये गेस किया जाता है कि टुबैको खाने से होगा, सिगरेट पीने से होगा, शराब पीने से होगा, ऐसे बैड हैबिट से होगा। ये जितना भी लक्षण है ये बीमारी को बढ़ने का मौका देता है, लेकिन हुआ कैसे ये कहना मुश्किल चीज है।
0: अच्छा, ओके।
1: कैंसर कैसे होता है ये नहीं पता है किसी को,
0: तो उसके लिए क्या परहेज रखनी है ये पता नहीं चलता।
1: हाँ, इसके लिए क्या परहेज रखनी है, मैं अपने ऊपर एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने जो करीब करीब 5-6 साल तक लगातार 7 साल तक यहाँ पर हर संडे को रविवार के दिन मेरा प्रोग्राम चलता था 1 घंटे का, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ,
0: बिल्कुल।
1: उसमें मैं लोगों को बताता था कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, सुबह से लेकर के आपकी दिनचर्या कैसी हो, कैसे आपका हेल्थ रहेगा, कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसमें क्या क्या छोटे नुस्खे हैं, उसको लेकर के दवा कम खा करके कम से कम में कैसे हम फिट रह सकते। लेकिन ऐसी बीमारियां जो है वो केवल जो ऐसा कहना कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, ये हाथ में नहीं। हाँ, हाथ में कहाँ पर है, जब हो गया ना, होने के बाद में आपका विल पावर क्या है,
0: अच्छा,
1: वो डिपेंड करता है, वही रिकवरी में काम करता है। विल पावर क्या है,
0: okay।
1: और जो हम राज जो मेडिटेशन जो करते हैं उनको 100% ये विल पावर है कि हम इसे रिकवर करेंगे।
0: मैं अभी ये प्रश्न थोड़ा बदलता हूँ,
1: हाँ,
0: कि ये ब्लड कैंसर आपको डिटेक्ट हुआ, समझ में आया कि आपको ब्लड कैंसर है, हाँ, वो आप उस समय कहाँ?
1: मैं बता रहा हूँ, मैं US में था उस समय, पहले मैं US में था। मैं यहाँ से मई में गया था,
0: ओके,
1: मई जून जुलाई अगस्त में मैं 10 अगस्त को इंडिया लौटा। उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई बीमारी है, क्योंकि 100% मैं फिट था। यहाँ तक कि US में मैं माउंट व्यू में रहता था,
0: ओके,
1: वहाँ पर पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने हर संडे को मैं जाता था, और अपनी टीम में सबसे आगे में रहता था। तो जब मैं यहाँ पर आया इंडिया में, उस समय तक भी मेरा लीडिंग रोल था वहाँ पे, इसलिए कोई हमको ये थी नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद में इंडिया में जब आया मैं, तो एक पीछे गर्दन पर एक छोटा सा मस्सा जैसे लंप जैसा एक ग्रोथ आधे इंच का निकला।
0: अच्छा,
1: तो ग्रोथ निकला तो था तो थोड़ा पहले से ही, लेकिन जब थोड़ा डेवलप करना शुरू किया बड़ा हुआ तो मैंने एक सर्जन से कंसल्ट किया। सर्जन ने कहा कि भाई तो बहुत मामूली चीज है, इसको 10 मिनट में काट करके निकाल देंगे।
0: ओके,
1: आप आ जाओ मेरे इसमें हॉस्पिटल में। मैं चला गया, पर्ची डॉक्टर थे। जब उन्होंने पालपेट किया, पालपेट करने का मतलब कि दबा करके देखना है।
0: ओके ओके,
1: पालपेट करते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है कि जो कोई ग्रोथ है अगर हार्ड है तो कैंसर का शक होता है।
0: ओके,
1: अगर सॉफ्ट है दब जाता है तो कैंसर नहीं हो सकता।
0: तो हाथ से ही टेस्ट पता चलता है।
1: हाथ से टच करके, हाथ करके टच किया तो उनको कुछ थोड़ा सा शंका हुआ। तो उन्होंने कहा कि अंकल इसको ऐसा करते हैं कि इसका हम एफएनएससी करते हैं, बायोप्सी करके देख लेते हैं। मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आप करो। तो वहीं पर किया गया, एफएनएससी भी हुआ, बायोप्सी हुआ। एफएनएससी में तो नहीं पकड़ाया,
0: अच्छा,
1: लेकिन बायोप्सी में पकड़ा गया कि ब्लड कैंसर है, फॉलिकुलर लिम्फोमा है। तो ये अब फॉलिकुलर लिम्फोमा किस स्टेज पर है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ब्लड कैंसर है ना, कोई टिश्यू का ग्रोथ नहीं है, कोई ग्लैंड में ग्रोथ नहीं है, न प्रोस्टेट में है, चाहे मेमोरी ग्लैंड में होता है या कहीं भी होता है, तो उसको काट कर सर्जरी से निकाल देते हैं या फिर रेडिएशन देते हैं पार्टिकुलर एक प्लेस पर हो, लेकिन ये तो ब्लड कैंसर है, ब्लड में है,
0: तो ब्लड कैंसर में तो
1: न रेडिएशन दे सकते हैं ना काट कर निकाल सकते हैं। इसका इलाज तो जब होगा तो कीमो से ही हो सकता है। तो कीमो कौन सा स्टेज पर दिया जाए, कौन से स्टेज पर है, तो उसका एडवांस एक टेस्ट जो होता है उसके लिए टीएमएच में भेजा गया बॉम्बे।
0: अच्छा, ये टीएमएच क्या होता है?
1: टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट, जो कैंसर का नाम ही है इंडिया का।
0: ओके ओके,
1: टीएमएच में भेजा गया। तो वहां से जो रिपोर्ट आया वो चौंकाने वाला था कि साहब आपका ये थर्ड प्लस स्टेज में है।
0: ओहो,
1: मैंने एडवांस स्टेज में।
0: अच्छा,
1: तो कीमो देना मस्त था। तो उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि आपको कीमो दिया जाएगा। तो कीमो दिया जाएगा तो अब डिसीजन लेने में उन्होंने देखा मेरा ये डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया तो कहा कि साहब 82 के तब हो गए हैं।
0: ओहो,
1: और 80 के बाद हम लोग थोड़ा सा बहुत सोच समझ कर देते हैं, जल्दी देते नहीं।
0: तो डॉक्टर भी डर गए,
1: डॉक्टर डर गए, जो वहाँ के अंको फिजिशियन, जो टॉप फिजिशियन जो है अंको फिजिशियन है अहमदाबाद के, उनसे मैं करा रहा था। उन्होंने कहा कि ना इसमें थोड़ा सा डर है क्योंकि हेमरेज हो सकता है कहीं से भी। जब कीमो होगा तो प्लेटलेट्स काउंट डाउन होंगे,
0: अच्छा
1: डब्ल्यूबीसी काउंट डाउन होगा, और डाउन होने की वजह से मतलब आपका इम्यूनिटी वाला जो सहने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। कहीं भी ब्लड ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर होकर के ब्लीडिंग हो सकता है, तो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा फिर।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमारे डेट ऑफ बर्थ से एज मत देखिए, मैं अपने को 60 इयर्स नहीं समझता हूँ।
0: अरे वाह,
1: आप 80 प्लस समझ रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: मैं अभी 60 ही अपने को समझता हूँ, मुझे है वो क्षमता, आप यू गो फॉर दैट, मैं ग्रीन सिग्नल आपको दे रहा हूँ।
0: वैसे तो आपने जैसे बताया कि आप माउंट व्यू में अमेरिका में थे और उस समय पहाड़ी पे चढ़ते थे और पहाड़ी में चढ़ते समय सबसे आगे थे, तो उसे पता चलता है कि आपका मनोबल जो है, एक्टिवनेस जो है, फिटनेस, वो 80 साल की उम्र में भी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा हमारे दोस्तों को संदेश भी देना चाहता हूँ, कि जिस समय आपको पता चला कि ये ब्लड कैंसर आपको हुआ और वो भी थर्ड स्टेज पे, एडवांस स्टेज पे है, उस समय आपकी रिएक्शन क्या थी?
1: मेरा रिएक्शन 100% पॉजिटिव था कि मैं इसे रिकवर करूंगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है।
0: ये कैसे होता है,
1: कैसे हुआ? क्योंकि राजयोग मेडिटेशन में जो हम लोग सीखे हैं कि बाबा का हाथ अगर सर पर है, एक बल एक भरोसा है, उन पर अगर भरोसा है, पूरा विश्वास है कि अगर उनका हाथ है तो हमको कुछ नहीं हो सकता है, हमारा जो थेरेपी होगा वो 100% सक्सेसफुल होगा।
0: तो ये मनोबल आपके पास, ये जो सिर्फ राजयोग मेडिटेशन करने वाले तो बहुत है, राजयोग करने वाले भी बहुत है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये मनोबल सबका एक जैसा नहीं होता। आप कहेंगे कि मनोबल बढ़ाओ तो मेडिटेशन के जरिए तो बिल्कुल बढ़ता ही है, लेकिन उसके लिए और कुछ युक्ति है या बचपन से आप
1: बचपन से
0: स्वभाव ऐसा है?
1: मैं बताता हूँ कि मेरा ये नेचर है कि मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ।
0: अच्छा,
1: उसमें किसी का भी कोई अपोजिशन करे, कुछ करे, उसमें मैं नहीं जाता, क्योंकि जिस समय मैंने अपना क्लिनिक बंद किया, नर्सिंग होम बंद किया, मैं गोपालगंज में टॉप प्रैक्टिशनर था।
0: अच्छा,
1: ओवर बिजी रहने वाला, 7 बजे सुबह से ही पेशेंट की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी और फिर शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक हम बिजी रहते थे कंप्लीटली।
0: अच्छा,
1: लेकिन एक बात जो डिसाइड कर लिया बाद में जब एक बार शांतिवन आया था, ये 2001 की बात है, आया था यहाँ पर 2001 में, और ये जो आप हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है, मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो होता है माइंड बॉडी मेडिसिन,
0: अच्छा,
1: उसका एक सेशन मैंने अटेंड किया, पूरा सेशन अटेंड किया, उसके बाद मैं लाइफ मेंबर बन गया यहाँ का अपने मतलब मेडिकल विंग का। और उसके बाद से धीरे धीरे मेरा ये संकल्प होना शुरू हुआ कि मैं प्रैक्टिस किस लिए कर रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: जहाँ सेवा की बात है तो सेवा हम दूसरे जगह दे सकते, यहाँ अभी तो पैसे के लिए कर रहे हैं। हमारे दो लड़के हैं, दोनों लड़के अपने पोजीशन पर, हाई पोजीशन पर हैं, दोनों अपने, उनको पैसे की जरूरत है नहीं।
0: और एक बेटा भी कैंसर स्पेशलिस्ट,
1: हाँ, बड़ा बेटा कैंसर स्पेशलिस्ट है और छोटा वाला US में, तो मुझे पैसे की, पैसा अगर हम गार्जियन होकर के देते हैं तो लेंगे ही, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं था। और मेरे पास था सफिशियंट ये कि अगर मैं, मुझे पॉकेट मनी की कमी नहीं होगी ये सोच करके, पॉकेट मनी, मेरी मैसेज भी थी, मैसेज इनफैक्ट इस राजयोग मेडिटेशन में और इस संस्था में लाने का मेन श्रेय मेरी मैसेज को है।
0: अच्छा, ओके,
1: वो पहले से थी इसमें, ब्रह्मा कुमारीज में, मुझे नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारीज क्या होता है, क्या इतना बिजी प्रैक्टिशनर था वो, धीरे धीरे वो जितना भी यहाँ का लिटरेचर वगैरह था उसको, जो अच्छा कोई लाइन होता था उसको लाइन करके मेरे टेबल पर रख देती थी, अच्छा, थोड़ा पढ़िए आप,
0: ओके ओके।
1: धीरे धीरे मैं इधर इधर ही हुआ। बाद में वहाँ की जो बहन जो थी, अंगूर बहन जो है गोपालगंज की, उन्होंने मेरे घर आकर के मेरा कोर्स कराया।
0: अच्छा, बहुत अच्छा।
1: 7 दिन का फाउंडेशन कोर्स मेरे घर पर ही कराया, क्योंकि इतना प्रैक्टिस में बिजी प्रैक्टिशनर था कि मैं समय निकालना मुश्किल था।
0: तो ये आपका स्वभाव जो है पहले से चैलेंज लेने का था ही, लेकिन राजयोग में उसे सपोर्ट मिला और उसको बढ़ावा भी मिल गया।
1: और उसके पहले मैं खुद ही MBBS करने के बाद मेरा पहला था कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस करूं, मुझे फौज में जाना है।
0: अच्छा, ओके।
1: तो 6 साल तक मैं फौज में भी रहा।
0: फौज में भी रहे, ओके।
1: 71 वाले वार में था मैं।
0: हाँ
1: हाँ, तो ये अपना कहीं भी डरने वाली बात वाली नहीं होती थी। 71 वाले वार में मैं रहा था।
0: अच्छा, उसका भी एक्सपीरियंस लिया।
1: हाँ, तो अपना ये था कि जो सोच रहे हैं वो सही है। एक बार जो डिसीजन ले लिया है, और डिसीजन लेने में पूछना है अपने युगल से, तो युगल तो पहले ही से तैयार रहती थी, चाहती ही थी कि छोड़ करके, वो भी बार बार करती थी कि भाई किस लिए कर रहे हैं आप, तो आप जो हैं वो, तो मैंने छोड़ा। उस समय जो यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को आश्चर्य हुआ, कहा कि टॉप में जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर है वो मेंटल केस हो गया है क्या है?
0: अच्छा,
1: छोड़कर चला गया।
0: ओके ओके,
1: अपना क्लिनिक और बेंच वेंच करके चला गया, यहाँ से हट गया। तो ये मेरा स्वभाव था।
0: ओके, तो ये स्वभाव आपको काम में आया।
1: हाँ, ये काम में आया है।
0: और जैसे आपका पता चला कि ये थर्ड स्टेज में ब्लड कैंसर है, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये केमोथेरेपी हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या हो गया?
1: तो फिर उन्होंने हुआ डिसीजन हुआ, मैंने कहा कि आप फर्स्ट कीमो दो ना मुझे, फर्स्ट कीमो दे दे, तो उन्होंने 6 कीमो डिसाइड किया।
0: अच्छा,
1: और 1 कीमो का 2 पार्ट किया, क्योंकि ओल्ड एज होने की वजह से। एक फर्स्ट डे वाला 6 घंटे 6.5 घंटे का होता है, और दूसरा होता है 2.5-3 घंटे का होता है।
0: एक्चुअली ये कीमो होता क्या है?
1: कीमो है जो कीमो
0: इंजेक्शन देते
1: दिया
0: है,
1: गया
0: क्या
1: है?
0: करते
1: इंजेक्शन
0: हैं?
1: है।
0: अच्छा,
1: ड्रिप से, बोतल से चढ़ाया जाता है,
0: सलाइन टाइप,
1: लेकिन एकदम बहुत स्लो ड्रिप हल्का करके, कभी भी रिएक्ट कर सकता है। कीमो जो है, समझिए कि इस तरह से ब्लड में जो कैंसर है उस सेल को मारना है।
0: हो,
1: तो पॉइजनस टाइप का है, इतना मैंने पावरफुल है, तो वो बॉडी में जाएगा तो किसी चीज को तोड़ सकता है, कुछ भी।
0: अच्छा,
1: कर सकता है।
0: ओके, ओके।
1: इसलिए कीमो होता है। कीमो से जनरली इसीलिए बाल उल झड़ना शुरू हो जाता है, हर जगह के बॉडी के जहां जहां का भी बाल है सब गिरना शुरू हो जाता है। लोग दुबले पतले हो जाते हैं, सब चीज कुछ सहा नहीं जाता है लोगों से, खाना छूट जाएगा, कमजोरी हो जाएगी,
0: टेस्ट भी नहीं आएगा।
1: लेकिन मेरे साथ, मैं एक दिन भी, मेरा 6 कीमो हुआ, 6 दिन 12, मैंने 12 कीमो हुआ, 12।
0: और एक एक कीमो 4-4 घंटे का था।
1: पहला कीमो जो फर्स्ट कीमो होता है वो 6-6.5 घंटे का,
0: 6-6.5 घंटे आपको लेटना है
1: एक
0: और आपके पास सलाइन टाइप ड्रिप।
1: हाँ, ड्रिप उसमें कंटिन्यूस चल रहा है।
0: हाँ,
1: मतलब एक बोतल जो है 500 ml जो है फ्लूइड, वो करीब करीब आपको 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा में चढ़ता है।
0: अच्छा,
1: एक एक बंद करके, तो उसको देखते रहना है, क्योंकि कॉशस रहते हैं लोग, डॉक्टर लोग, कब रिएक्शन हुआ क्या। और रिएक्शन को काटने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है।
0: ओके, ओके।
1: तो फर्स्ट डे जनरली लोग कोशिश रहते हैं कि पता नहीं कहीं हेमरेज हो जाए. मेरे बच्चे भी थे, यूएस से भी लड़का आ गया था, यहाँ के जो डॉक्टर जो कैंसर के डॉक्टर वो भी था, वो रात में थे कि रात में कुछ हो सकता है, कोई ऐसी घटना हो जाए. तो उन्होंने वो बहुत चिंतित थे. मैंने कहा कि तुम आराम से सो, मुझे कुछ नहीं होगा.
0: अच्छा,
1: मैं सब चीज़ सह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. फिर भी रात में जो यूएस वाला लड़का था वो साथ में सोया था आकर के मेरे पास में, कि कोई ज़रूरत हो कोई बात हो. लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, आराम से वो भी सोया मैं भी सोया. बस केवल
0: अच्छा, आपको नींद आ गई?
1: हाँ नींद आ गई, सो गया मैं.
0: वहाँ कीमो था चल रही थी, आपको नींद?
1: नहीं, घर पर आने के बाद.
0: अच्छा, घर पर आने के बाद.
1: रात में घर पर आने, रात में वो लोग आईसीयू में रखने का ही किए हुए थे. मैंने कहा कि मुझे आप घर जाने दो आराम से, सबको टेंशन में डालने की क्या जरूरत है. अगर कोई बात होगी तो हम भाग कर चले आएंगे, हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल है, भाग कर चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आया गया, लोग कोशिश थे कि कुछ हो सकता है कि कहीं मेलना हो जाए, इपिस्टेक्सिस हो जाए, हेमरेज हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, ब्लड का वोमिटिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कहीं से खून आ सकता है. लेकिन वो सब हुआ नहीं,
0: कुछ नहीं हुआ.
1: हाँ, मैंने
0: वीकनेस आया लेकिन
1: नहीं, हिकअप हुआ, हिचकी जिसको कहते हैं.
0: अच्छा, हिचकी है.
1: और 4 घंटे तक हिचकी हुआ था मुझे शुरू में. तो उसके लिए दवा दिया गया ही करके, तो धीरे धीरे कुछ कम हुआ. हिकअप जो है बहुत बेचैनी करने वाला होता है. तो हिकअप हुआ था, और वर्टिगो तो होता ही था, चक्कर आना, खड़ा हुए तो लगे गिर जाए ऐसा होने. तो बाथरूम जाना अगर है तो बच्चे को साथ लेकर जाते थे मैं. लेकिन मेरा ये था, और जितना दिन भी हमारा कीमो हुआ, मैंने एक दिन भी मैंने मेडिटेशन नहीं ड्रॉप किया.
0: ओहो,
1: 3:30 बजे सुबह जो मैं उठता हूँ, तो 3:30 बजे सुबह मैं उठा हूँ, और उठने के बाद मेडिटेशन करने के लिए अगर बैठ करके कर सकता हूँ तो मैंने बैठ कर किया है.
0: अच्छा.
1: और जिस दिन नहीं बैठ कर सकते हैं तो सोए हुए किए.
0: एक चीज बताइए डॉक्टर साहब, कि मेडिटेशन मेडिटेशन तो बहुत बार हमने सुना है हमारे

0: श्रोता उन्हें भी सुना है मेडिटेशन होता है, कोई राजयोग बोलता है, कोई अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, और ये जो राजयोग मेडिटेशन आपने किया और सुबह उठ के 3:30 बजे उठ के करते थे, लेकिन उस समय मेडिटेशन करते समय आप क्या करते थे, एग्जैक्टली होता क्या है मेडिटेशन?
1: मेडिटेशन में क्या है, जो हमको ज्ञान दिया जाता है इस फाउंडेशन कोर्स जो 7 दिन का होता है, इसमें ये बताया जाता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो।
0: ओके,
1: पहला चीज। और तुम उस परम पिता परमात्मा की संतान हो जो इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और गीता ज्ञान सुना रहे हैं, अपना श्रीमत दे रहे हैं, उसी श्रीमत पर चलना है। तो और दूसरे चीज परमात्मा बताते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो मैं तुमको किसी मंदिर में नहीं मिलूंगा, मैं जहां का रहने वाला हूं परम लोक धाम, वहां तुमको आना पड़ेगा मेरे पास।
0: ये तो ठीक है, ये तो ज्ञान की बातें हो गई।
1: हाँ।
0: लेकिन जब आप मेडिटेशन करते थे 3:30 बजे उठ के,
1: हाँ।
0: तो मेडिटेशन में क्या करते थे?
1: बस मेडिटेशन में हमको अपने को, देखिए कहा जाता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, आत्मा तो शरीर से निकलेगी नहीं, निकली तो फिर वापस नहीं आएगी, तो ये मन बुद्धि को लेकर के हम परमात्मा के पास जाते हैं।
0: तो क्या विचार क्या करते थे? जैसे विचार, क्योंकि एक तो विचार आपके पास आया है कि कैंसर आपको हुआ है, ब्लड कैंसर हुआ है, किमो हो गई है, शरीर स्वस्थता भी।
1: उस समय कोई विचार नहीं है कि हमको कैंसर हुआ है, हमको किमो चला है, ये सब के कोई विचार नहीं।
0: कोई विचार नहीं
1: जी, नहीं।
0: लेकिन आप पूरे डिटैच हो सकते थे।
1: डिटैच होना है हमको, डिटैच होकर के हमको परमात्मा के पास पहुंचना है परम लोग।
0: तो ये डिटैच कैसे हो गए आप, ये बताइए।
1: डिटैच तो शुरू से प्रैक्टिस से होता है ना, काफी लंबा प्रैक्टिस होता है। मान लीजिए 2001 से एक से मैं इसमें था, और उसके बाद में 10 साल तक समय लगता ही है जनरली, धीरे धीरे धीरे धीरे डेवलप करने में। और जब वो सीख लेते हैं कि कैसे डिटैच हुआ जाता है, मन बुद्धि को कैसे लेकर के हम परम लोक धाम में बाबा के पास जाएंगे, और जो हैं जैसे हैं जहां पर हैं उनसे उनसे मिलते हैं, और तब उनकी जो किरणें जो हम लेते हैं सकाश उनसे लेते हैं, सारे गुणों को, जो सारे गुण हैं शक्तियां हैं उसको हम लेते हैं, सातों गुण।
0: तो उस समय आपके मन में जो संकल्प आता था, डिटैच तो हो गए, डिटैच हो गए, डिटैच होने के बाद गया, तो ये संकल्प आता था, वो संकल्प 2-3 शब्दों में हमें बताइए कि क्या संकल्प आप करते थे और कितने देर तक करते थे?
1: संकल्प में हम कभी भी ये नहीं करते थे कि हमारा जो कैंसर ठीक कर दो बाबा, ऐसा कर दो, वैसे नहीं, संकल्प नहीं करते।
0: बाबा को कुछ नहीं कहते,
1: नहीं, संकल्प नहीं करते हैं हम, बस अपने में विल पावर डेवलप करते हैं, शक्तियां मांगते हैं।
0: अच्छा,
1: कि हमें शक्तियां दो, जो 7 गुण है, सातों गुणों में शांति है, शक्ति है, में जो भी गुण है, सातों गुण जो, उन गुणों को परमात्मा से हम धारण करते हैं।
0: अच्छा,
1: कि परमात्मा से सारी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है, हम इसको धारण कर रहे हैं, हम शांति स्वरूपा बन रहे हैं, हम आत्मा का स्वधर्म शांति है, हम शांति में जा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: शांतित आत्मा बन रहे हैं। इसी तरह से शक्तियों में कि परमात्मा परम शक्तिमान है, उनकी शक्तियां हमको मिल रही है, उस शक्ति से हमको शक्तिशाली बनना है।
0: तो ये कितने देर तक करते थे आप?
1: करीब करीब 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक तो हम रहते हैं परमात्मा के पास में।
0: अच्छा,
1: उस समय हम कुछ नहीं,
0: ये तो ना आपको चिंता है कोई ब्लड कैंसर हुआ है, कुछ
1: चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं,
0: निश्चिंत है आप?
1: निश्चिंत है हम।
0: ओके,
1: बस परमात्मा से वो शक्तियां ले रहे हैं।
0: तो वो बैठ कर होने के बाद, मेडिटेशन होने के बाद आपके इसमें कुछ बदलाव आता था?
1: जो डेली जैसे बाकी रूटीन चला वैसे चला, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता था।
0: ओके,
1: दूसरी चीज की हमारा शुरू से आदत रही है कि मैं मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक जरूर करता हूँ, कहीं भी रहूं, यूएस में जाऊं, यहाँ रहूं, शांतिवन में रहूं, या फिर अहमदाबाद में जाऊं, अपने घर जाऊं, जहां भी रहूं।
0: अच्छा,
1: कभी कभी मैं गांव जाता हूं बिहार में, कभी भी, लेकिन मेरा 1 घंटे का वॉकिंग कम नहीं होता।
0: अच्छा, हमेशा
1: ये मैं,
0: चाहे बारिश हो, ठंड हो, जो भी हो,
1: यहाँ तक छाता लेकर के मैं निकलता हूँ यहाँ शांतिवन में टहलने के लिए।
0: अच्छा,
1: इसमें डायमंड हॉल में बरांडे में मैं टहलता हूँ।
0: कितने बजे आप वॉक के लिए जाते हो मॉर्निंग में?
1: मॉर्निंग में वॉक करने के लिए मैं जाता हूँ आपको करीब 6 बजे निकलता हूँ।
0: अच्छा,
1: 6:45 बजे तक मैं लौट करके आता हूँ।
0: ओके, ओके।
1: तो ये वॉकिंग जो है, ये वॉकिंग जो है कॉन्फिडेंस दिलाता है बहुत अधिक।
0: अच्छा,
1: कि हमको अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको हमको फिक्स रखना ही है, उसको हमको तोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें डिस्टर्बेंस आया।
0: अच्छा,
1: कीमो के बाद में हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि बैठ भी नहीं सकते,
0: बिल्कुल।
1: तो लेटे लेटे ही, और दूसरा क्या है कि सबसे बेनिफिट क्या है कि जो वॉकिंग हम करते हैं, मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ में सबसे अच्छा मेडिटेशन वॉकिंग में होता है।
0: अच्छा,
1: बेस्ट मेडिटेशन वॉकिंग में होता है।
0: वॉकिंग में होता है, चलते फिरते।
1: मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मुरली सुनते रहते हैं वॉकिंग में या गाना बजाने में बाबा का ही गाना बजाना सुनते रहते हैं, उस समय तो बेस्ट मेडिटेशन करना चाहिए बाबा के साथ में।
0: अच्छा।
1: केवल बस आपका लगा रहे, आत्मा कनेक्टेड रहे परमात्मा से डायरेक्ट केवल।
0: अच्छा।
1: बस उसी से कनेक्शन में रहिए कि हम उनके साथ हम कनेक्टेड हैं।
0: अच्छा।
1: और उन शक्तियों को लेते रहिए अपने में। ये मैं जो फिर से मैंने जो एक घंटा वॉक करता हूँ इसमें मैं पूरा का पूरा उनके साथ।
0: जब आप वॉक नहीं कर पाते थे जब केवल चलते समय, उस समय आप
1: बस बस वही लेट करके ही मैं
0: वो अनुभव करते थे।
1: हाँ, अनुभव करते थे।
0: ओके।
1: वो मैं नहीं छोड़ा। उसके बाद थोड़ा सा वॉक करने लायक हो गया तो स्टिक मंगा करके, लाठी मंगा करके, मोटा सा छड़ी वो मंगा करके मैं अपने ड्राइंग रूम में, जो मेरा अहमदाबाद में ड्राइंग रूम है, बड़ा सा है, 24 फीट लंबा है, करीब 18 फीट चौड़ा है।
0: ओ, अच्छा।
1: तो उसमें मैं दरवाजा खोल करके और मैं लाठी लेकर धीरे धीरे वॉक करता।
0: लेकिन वॉकिंग छोड़ा नहीं आप?
1: नहीं, वॉकिंग छोड़ा नहीं मैं।
0: अच्छा, तो ये किमो हो गई। किमो होने के बाद क्या हो गया?
1: तो किमो होने के बाद में धीरे धीरे रिकवरी होना शुरू, किमो बंद हो गया, 6 महीने के बाद बंद हो गया किमो।
0: ओके।
1: उस वक्त कमजोरी तो रहे ही, हर 21 दिन पर हमारा ब्लड, पूरे ब्लड का, शरीर का, मैंने डिफरेंट वेराइटी का जांच होता था सब चीज।
0: अच्छा।
1: कि क्या हो रहा है। उसके बाद एक पेट सीटी होता है, पेट सीटी करके होता है, जो पूरे बॉडी का जांच होता है कि कैंसर कहाँ कहाँ पर है।
0: ओ, ओ, ओ,
1: तो कीमो होने के पहले पेट सीटी हुआ तो मैंने ब्लड में तो था ही, और भी कहाँ कहाँ पर था, इंटेस्टिन के पास में कहाँ कहाँ था, वो आया था। लेकिन जो 3 महीने के बाद फिर दोबारा जब मेरा हुआ पेट सीटी, तो इसी पेट सीटी का ही अहमदाबाद का इंचार्ज है मेरा बेटा, जो है जो रेडियोलॉजिस्ट है इसका, ऑन्को का, तो वो तो पहले ही कहा पापा जी आपका तो खत्म हो गया होगा।
0: अच्छा। ओके।
1: हाँ, तो मैंने दोबारा जो हमारा पेट सीटी हुआ तो कंप्लीट एकदम कुछ भी नहीं था कहीं भी,
0: सब क्लियर हो गया।
1: 3 कीमो जब हुआ था उसी के बाद हमारा सारा चीज क्लियर हो गया था।
0: अच्छा।
1: लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, 6 का फुल कोर्स है, उसको ले लेना। हमने ठीक है सब दे दिया।
0: तो क्लियर होने के बाद भी 6 का पूरा कर लिया?
1: हाँ, पूरा कर लिया मैंने।
0: ओके।
1: पूरा कोर्स मैंने पूरा किया।
0: तो अभी ये एक चीज बताइए, ब्लड कैंसर जो हम बात सुनते हैं, हमारे श्रोतागण भी सुनते हैं, सबको उत्सुकता है कि ये ब्लड कैंसर एक्चुअली होता क्या है, ब्लड में क्या क्लॉट्स होते हैं, क्या होता है?
1: बताते हैं, ब्लड कैंसर कई एक वैरायटी होता है। इसे मुझे जो हुआ था फॉलिकुलर लिम्फोमा हुआ था।
0: अच्छा।
1: समझे, उसमें होता है ल्यूकीमिया होता है, अलग होता है, जो सबसे खतरनाक होता है ल्यूकीमिया होता है।
0: अच्छा।
1: अलग अलग वैरायटी है, सबके लिए अलग अलग कीमो होता है।
0: ओके।
1: सबके लिए अलग अलग होता है, किस स्टेज पर है उसके लिए अलग होता है।
0: ओके।
1: तो ये ऑन्कोफिजिशियन ही तय कर सकते हैं कि किस कौन सा देना है।
0: ओके।
1: और किस एज में कौन सा पावर का देना है, उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है। इसके पहले 2004 में मुझे CA प्रोस्टेट हुआ था।
0: अच्छा।
1: प्रोस्टेट का कैंसर मुझे हुआ था।
0: तो पहले भी आपको कैंसर हो चुका तो आप कैंसर स्पेशलिस्ट हो गए।
1: 2004 में हुआ, होने के बाद वो भी ऐसे ही डिटेक्ट हुआ था कुछ। मैंने
0: और प्रोस्टेट कैंसर भी मैंने सुना है काफी भयंकर है,
1: भयंकर चारों लोब, पूरे लोब में पकड़ लिया था।
0: ओ, ओ, ओ।
1: पूरा हमारा पूरा प्रोस्टेट काट कर ही निकालना था।
0: उस समय आपकी उम्र क्या थी?
1: अब समझिए ना, 2004 में अभी मतलब आपका 82-83 चल रहा है, तो उसके हिसाब से हुआ 60 प्लस तो थे ही।
0: 60 प्लस होगा। ओके।
1: 60 प्लस तो थे।
0: लेकिन उस समय आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग नहीं करते थे?
1: राजयोग मैंने आ तो कहते 2001 में ही है, लेकिन सीखा था, लेकिन अभी
0: प्रैक्टिस
1: उतना ये नहीं हुए थे, लेकिन विश्वास था।
0: अच्छा।
1: विश्वास था, जो मेरा ज्ञान जो हमको मिला वो महादेव नगर में चंद्रिका बहन जो है,
0: अच्छा,
1: उनके सेंटर पर मिला।
0: ओके।
1: और वहाँ ललित भाई करके जो अभी अकाउंट्स में है, यहाँ उनके द्वारा मुझे मिला।
0: अच्छा। ओके।
1: ललित भाई ने दिया था।
0: ओके।
1: तो उस ज्ञान को मैंने धारण किया, उस लाइन पर मैं चलता रहा।
0: बस उस समय खाली 1 साल हो गया होगा आपको?
1: हाँ, एक साल ही हुआ था। अच्छा। आया था, लेकिन हमको बाबा में दृढ़ विश्वास था पूरा।
0: अच्छा।
1: कि एक बल एक भरोसा शुरू से मेरे में था।
0: ओके।
1: कि जब उन पर हमको विश्वास है, उनका वरदानी हाथ हमारे सर पर है, हमको कुछ नहीं होगा। और उस समय भी प्रोस्टेट कैंसर में क्या हुआ कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे वहां के जो यूरोसर्जन जो है, तो जनक देसाई जिन्होंने, उनका था कि साहब इसमें मैनुअल करना पड़ेगा।
0: ओके।
1: रिपोर्ट अभी आया नहीं है, इंडिया में आ चुका था रिपोर्ट सर्जरी, लेकिन वहां नहीं आया था। उन्होंने कहा कि बेटर ये होगा कि सबसे एक्सपर्ट हैंड आपका TMH में है, डॉक्टर मेनन है करके।
0: ओके, ओके।
1: उनसे आप जाकर कराइए, आप अपने परिवार के हैं, चूंकि जनक देसाई उन लोगों से भी मेरे लड़के का काफी नजदीकी थी, फैमिली वाला ये था। मैंने उनको कहा कि क्या कॉम्प्लिकेशन होता है थोड़ा सा बताओ. उन्होंने कहा कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, मतलब ऑपरेशन होने के बाद सब चीज ठीक हो जाएगा लेकिन जब भी आप खांसोगे कोई भी करोगे तो हाँ यूरिन पास हो जाएगा, ड्रिबलिंग होगा, ये कंट्रोल नहीं होता है.
0: ओके,
1: हमने कहा कि अगर जनक वहां पर मैं कराऊं टीएमएच में तो नहीं होगा.
0: अच्छा,
1: ये आप कंफर्म करते हैं कि नहीं होगा? कहा कि नहीं, 15% लेकर चलना पड़ेगा.
0: ओके ओके.
1: हम कहे कि आप करोगे तो कितना परसेंट होगा? तो हंसने लगे, कहे कि 25% लेकर चलिए.
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैंने कम किया है वो अधिक किए हैं ऑपरेशन. तो मैंने कहा कि आप करो.
0: ओके, डॉक्टर के ऊपर आपका ज्यादा विश्वास?
1: हाँ, मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि यहाँ के टॉप सर्जन आप हो, यूरो सर्जन टॉप में हो, तो आप ही करो. ये 25% वाला रिस्क जो हम बाबा के ऊपर फेंकते हैं,
0: अच्छा
1: इसका रिस्क आप मत रखो, ये उनके ऊपर मैंने दे दिया कि बाकी सर्जरी मैं आपसे करा रहा हूँ, बाकी बाबा के ऊपर छोड़ दिया मैंने.
0: मीन जैसे प्रोस्टेट कैंसर का पता चला आप भी निश्चिंत थे?
1: एकदम निश्चिंत थे. और इसमें निश्चिंत करने वाले में सबसे अधिक मेरी ये जो बहन जो है ना, चंद्रिका बहन.
0: अच्छा,
1: चंद्रिका बहन मेरे पास हमेशा जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती,
0: चंद्रिका बहन जी जो ब्रह्मा कुमारी राजयोग महादेव नगर के हैं.
1: हाँ, महादेव नगर के हैं.
0: ओके,
1: वो बार बार मेरे पास आती थी हॉस्पिटल में भी. हमें बाबा का फोटो लगा, मैं आप मेरे सर पर हाथ रखे, कहें कि आप 100% कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ नहीं आपको.
0: ओ, ओ, अच्छा.
1: साथ साथ ललित भाई भी आते थे साथ साथ.
0: अच्छा, ओके.
1: तो उन लोगों ने कॉन्फिडेंस हमको दिया और वो कॉन्फिडेंस इस समय काम आया हमको. अभी भी
0: वो बीज था.
1: हाँ, उस समय जो था उस समय हमको जो हुआ, क्योंकि मेरे साथ एक और आदमी का VIP का ही ऑपरेशन जनक देसाई ने किया था.
0: अच्छा,
1: हाईकोर्ट के जज थे.
0: ओहो,
1: मेरे तीन चार दिन के बाद उन्होंने किया था.
0: अच्छा,
1: और मुझसे वो छोटे थे उम्र में, 3-4 साल छोटे थे. हम सोचते हैं 56-57 ईयर्स का हूँ मैं, नहीं बच सके थे.
0: ओहो,
1: समझे.
0: अच्छा,
1: और मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इसमें से निकल गया आराम से. तो ये मेरा दृढ़ संकल्प जो विश्वास है वो हमेशा रहता है.
0: तो चंद्रिका बहन जी जो थे वो आपको सेंटर पे बुलाते थे?
1: नहीं, सेंटर पर नहीं.
0: हाँ,
1: हॉस्पिटल आ जाती थी.
0: हॉस्पिटल
1: शाम को हॉस्पिटल आकर के मुझसे मिलती थी.
0: वहाँ दृष्टि,
1: बाबा का फोटो, दृष्टि देती थी, फोटो दे दे.
0: अच्छा, ओके ओके.
1: कहते हैं डॉक्टर साहब आप निश्चिंत रहो, एकदम फर्स्ट क्लास आपका होगा. और यहाँ तो कोई बात ही नहीं थी. यहाँ तो मतलब यहाँ हॉस्पिटल में तो यहाँ कोई किसी से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी. मैं खुद ही सक्षम था. मुझे पूरा विश्वास था, एक बल एक भरोसा कि बाबा का बल है, उन पर भरोसा है, तो हमारा सब सक्सेसफुल होगा.
0: वैसे मुझे ये सब सुनते समय ये लगा कि अभी मैं श्रोतागण को भी निवेदन करता हूँ और मुझे खुद को भी समझाता हूँ कि जब हम कई पेशेंट के पास जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट का हौसला मिलने वाले उसको खत्म कर देते हैं. उसको केस बताते, अरे उसको इतना ये हो गया,
1: निगेटिव बात
0: मर गया, निगेटिव बातें इतनी होती
1: है. अगर निगेटिव हमसे बात करता था या टेलीफोन पर किसी का आता था कि उसको भी ब्लड कैंसर हुआ था और उसके बाद में 3 कीमो लेने के बाद उसे सहा नहीं गया, उसका एक्सपायर
0: हो गया, ऐसे बोलते हैं.
1: तो मैंने कहा कि स्टॉप इट.
0: अच्छा,
1: मैंने कहा कि आप मुझसे बात मत करो, मेरे साथ ये नहीं होने वाला है.
0: ये सुनने के बाद मुझे हमारे दोस्तों से बताना है, श्रोताओं से बताना है कि ये दोस्तों कभी कभी जाने अनजाने में हम बड़े प्यार से बात करते हैं. हमारा इंटेंशन ये नहीं रहता कि उसका नुकसान हो, लेकिन हम प्यार से बात करते हैं.
1: सिंपैथी
0: क्रिएट करने के लिए बताते हैं कि बहुत मुश्किल है, आप कैसे जीते हो, आप क्या होगा, कैसे होगा, हमें बहुत चिंता है, और फिर बहुत सारे केसेस का जिक्र करते हैं. और उससे क्या होता है, जो हौसला वो जुटाने पाता है,
1: कॉन्फिडेंस और डाउन चला जाता है.
0: तो हम हौसला बढ़ाने की कोशिश करें, हम हौसला तोड़ने की कोशिश ना करें.
1: देखिए, कैंसर थेरेपी में चाहे ब्लड कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो, कैंसर थेरेपी में विल पावर नंबर वन है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: विल पावर जैसे है ना, डायबिटीज ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो डायबिटीज ट्रीटमेंट में कहते हैं कि चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, चेंज ऑफ फूड हैबिट, ये नंबर वन नंबर टू है इलाज का. थर्ड इलाज में आता है मेडिसिन.
0: अच्छा,
1: समझे, मेडिसिन थर्ड इलाज में है. अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, फूड हैबिट चेंज करो.
0: अच्छा,
1: और तब उसके बाद में मेडिसिन पर आओ. तो वैसे है कि कैंसर के इलाज में जो अंको सर्जन या अंको फिजिशियन जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए आप. लेकिन आपका ही आपकी हिम्मत कितनी है, आपका दृढ़ संकल्प क्या है, ये जो विल पावर को डेवलप करना चाहिए. जिसका विल पावर तगड़ा है वो कैंसर से निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा.
0: अच्छा, तो वे विल पावर बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन की सहायता लेनी है. अच्छा, जो मेडिटेशन चाहे किसी भी प्रकार का हो.
1: मैं तो और प्रकार का मेडिटेशन नहीं जानता. मैं तो राजयोग मेडिटेशन ही जानता हूँ.
0: ओके,
1: तो राजयोग मेडिटेशन से विल पावर बढ़ता है।
0: जो नहीं,
1: हाँ, जो नहीं भी मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी अगर कैंसर के रोगी हैं तो विल पावर पर रहना है, ये कॉन्फिडेंस रहना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बार बार आपका संकल्प आवे। अपने परिवार के लोग देखिए, कैंसर होता है एक आदमी को लेकिन सारे परिवार के लोग कैंसर से दुखी हो जाते हैं, और जैसे सारे को ही कैंसर रोग लग गया ये वाली बात हो
0: जाती है, बिल्कुल
1: सब घबरा जाते हैं और वो घबराहट में उस व्यक्ति का विल पावर और कम खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति विल पावर वाला है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं रिकवर करूंगा, तो वो अपने परिवार वालों को उठाएगा कि तुम घबराओ नहीं, और यही काम मैं करता था,
0: क्योंकि आप खुद डर जाओगे तो परिवार वाले तो पक्का डरने वाले हैं।
1: तो मैं जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, मोबाइल में हैं, चाहे इस संस्था के जो भी भाई बहन थे लोग, इस संस्था वालों ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस मामले में।
0: ओके,
1: क्योंकि दुआएं मुझको बहुत मिली है, डायमंड हॉल में भी मुझको दुआएं मिली है, जो मेडिटेशन होता था उसमें मेरे नाम पर हुआ है, मेडिटेशन हुआ है।
0: अच्छा।
1: और हमारा एवर हेल्दी हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ से लेकर के डॉक्टर्स लोग जो हैं, वो बैठते थे 5 मिनट बैठ
0: के, सब पता चला था कि आपको ऐसे ऐसे
1: हुआ है, तो वो अपना सकास देते थे।
0: तो वही चंद्रिका बहन जी और ललित भाई वो मिलने आते थे आपको?
1: नहीं, वहाँ उस समय।
0: अच्छा, उस समय
1: 2004 की बात।
0: अच्छा, उसके बाद जब ब्लड कैंसर का पता,
1: ब्लड कैंसर हुआ, तो इसमें तो खैर अपना मैं सक्षम था, तब तक मैं इतना डेवलप कर चुका था, तो मैं दूसरों को देता था।
0: अच्छा।
1: जो भी यहाँ के भाई लोगों का टेलीफोन आता था कि कैसे हुआ, क्या हो गया, हम एकदम ठीक हैं, हम कुछ नहीं हुआ है, आपको आवाज से नहीं लग रही है, हम पूरा फर्स्ट क्लास रिकवर कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमको पता ही नहीं। और जितने परिवार के लोग थे, जितने रिलेशन में थे, व्हाट्सएप पर मैं सबको देता था कि फर्स्ट सेकेंड कीमो वेंट वेरी वेल, आई एम 100% ओके।
0: अच्छा,
1: पहला मैसेज मैं
0: उनका हौसला बढ़ाते थे आप,
1: व्हाट्सएप पर मैं देता था, आई एम 100% ओके।
0: ओके, ओके।
1: तब उन लोगों का टेलीफोन आता था कि कैसे हैं आप, हमको एकदम ठीक है, हमको कोई तकलीफ ही नहीं है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, मैं एकदम रिकवर कर रहा हूँ। तो ये मैसेज मैं लोगों को देता था।
0: तो बहुत बार लोगों को ये लगता है कि ये मेडिटेशन जो है या भगवान के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है और मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले तो जमाने में बोलते थे कि ये एक अंधश्रद्धा है, लेकिन आजकल जब जमाना बदल गया तब अभी उसमें बोलते हैं प्लासिबो इफेक्ट है, और प्लासिबो इफेक्ट मानते हैं, लेकिन हम श्रद्धा कहते हैं तो उसे बोलते हैं अंधविश्वास है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं ये अंधविश्वास वाली बात मैं नहीं करता। मैं तो जब मन बुद्धि को लेकर मैं मेडिटेशन में परमात्मा के पास हम पहुंचते हैं, उस समय बाबा से हम 7 गुण और 8 शक्तियां धारण करते हैं अलग अलग रूप में, कि शांति की सकास में ले रहा हूं बाबा से, शांतित आत्मा में बन रहा हूं, वैसे शक्तियों को लेते थे। तो ये बाबा से हम लेते थे शक्तियां, 8 शक्तियां हैं उसको हम धारण करते हैं, और उसी समय बाबा के साथ वहां रहते हैं, इसको हम फील करते हैं बजाबता,
0: मींस ये अनुभव होना चाहिए।
1: हाँ, ये
0: थ्योरेटिकली हम कोई बता नहीं सकते मेडिकल टर्म में,
1: ये तो विश्वास की चीज है, एक विश्वास की चीज है कि शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मैं शांति स्वरूप आत्मा बनता जा रहा हूँ।
0: ये अनुभव जब होता जाएगा तब अपने आप शक्ति आ जाएगी।
1: शांति के सागर के साथ हम हैं, शांति के सागर के हम बच्चे हैं, शांति धाम मेरा घर है, तो शांति हमें आती जा रही है, हम शांति आत्मा बनते जा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, वैसे ही शक्तियां हम ले रहे हैं।
0: मुख्य रूप से जैसे शांति की वाइब्रेशंस आएगी, आपका मन शांत होगा, तब आपका हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे ये जब बातें सुन रहे थे तब मुझे भी एक बात याद आई कि हमारे ऑफिस में एक मित्र है, अभी भी है, शिव सिंह परदेशी करके नाम है उनका, और उनको जबड़े का कैंसर हो गया, जबड़े का वो खा रहे थे, माउथ का कैंसर हो गया, और फिर उनको ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन जब ऑपरेशन करना पड़ा, डेट फाइनल हो गई, तब उन्होंने बीच में बुक किया था फॉरेन ट्रिप।
1: अच्छा।
0: तो कितना हौसला, क्या विचार है, वो बोलते हैं पता नहीं बाद में जिंदा रहते या नहीं रहते हैं, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ट्रिप पे जाऊंगा। और वो ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन वो पहले ट्रिप पे गए फॉरेन से वापस आए, उनका ऑपरेशन हुआ और फिर नली डालनी पड़ी उनको गले में, और उससे जूस लेते थे, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए। अभी भले बोलने में तकलीफ है, लेकिन उनका भी हौसला, मेरा कहने का मतलब
1: सही बात है। लेकिन इस यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ, वो जो था मैंने बाहर जाने का टूर में जाने का उनका था, यहाँ पर मैं थोड़ा डिफर करता हूँ उनके आइडिया से, इसलिए डिफर करता हूँ कि स्टेज में अंतर आ जाएगा। माउथ कैंसर जब हुआ उनको, पहले डिटेक्ट हुआ उस समय जब उनका ऑपरेशन होता और एक महीने के बाद या डेढ़ महीने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, दोनों के स्टेज में अंतर आ गया।
0: अच्छा,
1: समझिए, तब बड़ा सा ऑपरेशन हुआ और बड़ा ऑपरेशन होने के बाद उनको खाने में दिक्कत होगी, सब चीज होगा, क्योंकि अधिक पोर्शन काट करके निकालना पड़ेगा। तो कैंसर का मतलब हुआ कि अर्लीस्ट जितना जल्दी इलाज शुरू होना चाहिए।
0: अच्छा, लेकिन शायद उनको डेट नहीं मिली थी, ऐसा कुछ था
1: जो हुआ हो। मतलब वही है कि कैंसर जब डिटेक्ट हो तो डिले नहीं करना है।
0: अच्छा, इन शॉर्ट ये मैसेज है कि अगर जब भी आपको पता चलता है कैंसर आपको हुआ है, तो चाहे कीमो हो या ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, उसको डिले नहीं करना है।
1: डिले नहीं करना।
0: अगर आपको डेट ही नहीं मिल रही है तो बात अलग है।
1: आजकल तो इतने कैंसर हॉस्पिटल हो गए हैं, इतने कैंसर सर्जन हो गए हैं, कितने ऑन्को फिजिशियन हो चुके हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा।
0: अच्छा, ओके,
1: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कमी नहीं है। अपना विल पावर चाहिए कि हमको कराना है। लोग डरते हैं कराने में कि कराएंगे ऑपरेशन, कराएंगे तो बड़ा सा ऑपरेशन होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होगा। तो ये है कि
0: और मुख्य रूप से एक ये है कि एक तो है कैंसर, एक मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
1: दूसरी बात एक और चीज बीच में मैं आपको बता दूं, कैंसर जो है वो चाहे उसका मेडिसिन हो, कीमो हो, रेडिएशन हो, या ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, है बहुत कॉस्टली इलाज। लेकिन अभी जो हो गया है कि मतलब जो गरीब आदमी जो है या जो भी है, जो हो गया है आयुष्मान वाला जो लेकर के 5 लाख का जो ये हो गया है, तो अब तो करने कराने में किसी को दिक्कत ही नहीं ना। उसके अंदर हो जाएगा, सबका ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, तो डरने की कहां बात है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और अगर सीनियर सिटीजन है 70 के ऊपर है तो उनका भी फ्री हो गया है, उनको भी 5 लाख का हो गया है, वो भी अपना करवा लें। तो ये तो अब डरने, पैसे वाला जो होता था कि पहले कैंसर होने का मतलब कि दरिद्र हो जाना, घर
0: बिल्कुल
1: जमीन जायदाद बिक गया। अब वो चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं है, वो चीज गवर्नमेंट ने अपने माथे पर ले लिया है। इसीलिए कभी भी कैंसर मरीज को डरना नहीं है कि कैसे हमारा ऑपरेशन होगा, कैसे क्या होगा।
0: तो ये आयुष्मान अभी अच्छी तरह से चल रहा है,
1: एकदम चल रहा है, हर जगह, हर हॉस्पिटल में एक सेंटर उसका बना दिया गया। वहां जाकर के अपना आयुष्मान कार्ड, स्मार्ट कार्ड आप दिखाओ।
0: तो आयुष्मान कार्ड लेना चाहिए, हर एक को लेना चाहिए आयुष्मान कार्ड।
1: जो बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल वाले जो जिनका राशन कार्ड है, उनका तो 5 लाख का तो है ही, एनुअल है ही, कवरेज है ही। और जो बीपीएल में नहीं है उनका नहीं है, लेकिन उसमें जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं 70 एंड अबव,
0: ओके,
1: उनका 5 लाख का बन रहा है।
0: अच्छा,
1: अब वो 5 लाख का शायद 10 लाख हो गया है।
0: चलिए, जो 5 लाख हो, 10 लाख हो, कम से कम कुछ ना कुछ सहारा तो मिल जाता है।
1: बहुत बड़ा सहारा,
0: क्योंकि आजकल मेडिकल में ऑपरेशन कराना है, इतना खर्चा उठाना है, और जो कुछ कर्जा लेके बाय चांस वो अगर पेशेंट गया तो फिर कर्जा चुकाते समय बच्चे
1: हालत खराब हो जाती है। वो चीज मिल गया, बहुत बड़ा। इसलिए कैंसर के इलाज में, उपचार में अब दिक्कत नहीं है। विल पावर चाहिए कि हमको कराना है, ये नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं तो कैसे होगा इलाज, कैसे होगा, गरीब है तो कैसे होगा, इसको कोई बहाना नहीं चलने वाला चाहिए।
0: ये तो हो गया कैंसर होने के बाद, लेकिन अगर कैंसर ना हो, इसके लिए आप जो लाइफस्टाइल की कुछ बात कर रहे थे, खान पान में क्या करना है।
1: देखिए, खूबी ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इस पर आश्चर्यचकित होता हूँ। देखिए, अपवाद हर जगह होता है। आप हिंदी में चाहे कहीं पढ़े हो कि अपवाद लिखा हुआ रहता है।
0: यस यस,
1: अपवाद हर जगह, मैं वो अपवाद हूँ। मैंने आज तक लाइफ में सिगरेट का, मैंने पैसिव स्मोकर में रहा हूँ, दूसरा कोई सिगरेट पिया है, डॉक्टर लोग हैं तो उसका धुआं मुझे मिला है।
0: अच्छा,
1: वो लेकिन मुझे आपने पता है, आज तक मैंने टच नहीं किया सिगरेट। अच्छा, को हाथ से नहीं टच
0: किया, ना टोबैको लिया
1: और ना शराब लिया।
0: अच्छा,
1: आर्मी में रहने के बाद भी, कारगिल में मेरी पोस्टिंग रही है, नवम्बर दिसंबर
0: कारगिल में
1: हमारी पोस्टिंग रही है, उस समय भी मैंने शराब को टच नहीं किया, जबकि वहाँ के खाने में ऑफिसर्स जो हैं उन लोगों को दिन में जिन दिया जाता है, और जो जवान जो हैं उन लोगों को रम दिया जाता है, फ्री है, डाइट में है, इंक्लूडेड इन डाइट।
0: यस,
1: तो मैंने टच नहीं किया आज तक।
0: तो कारगिल में रहते हुए भी आप शराब नहीं पीते
1: थे? कुछ नहीं, राजयोग में नहीं था, लेकिन एक संकल्प था।
0: अच्छा,
1: कि मुझे नहीं लेना है। मैं जब गया, हमारी फर्स्ट पोस्टिंग श्रीनगर में हुई थी, हमारे कमांडेंट एक मिस्टर भंडारी थे, कर्नल थे, तो मैं शराब नहीं लेता था। एक बटालियन में 1000 का स्ट्रेंथ होता है, बटालियन में 11 ऑफिसर्स होते हैं, क्लास वन अफसर 11 होते हैं, जिसमें एक मेडिकल अफसर भी है.
0: ओके.
1: तो उनकी मतलब मैरिज एनिवर्सरी थी, मैरिज में हम लोग सब जमा हुए फैमिली के साथ वहां से भाई. तो उनसे काफी नजदीकी थी हमारी, और उनकी पत्नी से हमारी पत्नी को भी काफी नजदीकी थी. तो जब पार्टी शुरू होनी थी तो उस समय शराब का दौर चला, तो उनके मिसेज ने कहा कि डॉक्टर सिंह अगर आप नहीं लेते हैं एक सिप भी आप लीजिएगा तभी पार्टी शुरू होगी.
0: अच्छा. ओके.

0: नहीं तो पार्टी नहीं शुरू होगी। लगता है कि मिसेज सिंह जो है आपको इशारा कर रही है, मना कर रही है। तो मेरी मिसेज ने कहा कि मैं क्यों मना करूंगी, इनका है, इनका चॉइस है।
1: अच्छा।
0: लेना है तो ले, नहीं तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, बहुत नजदीकी है आपसे, मैं जब आर्मी ज्वाइन कर रहा था तो मेरी माँ ने कहा था, एक ही उन्होंने कसम दिया था कि तुम जा रहे हो लेकिन शराब को हाथ मत लगाना।
1: अच्छा।
0: तो उसको क्या मैं तोड़ दूं आपके आपके मैरिज एनिवर्सरी के लिए? कहा नहीं, हाथ जोड़ कर कहा कि नहीं। हालांकि ये झूठा था,
1: बहुत अच्छा। अच्छा।
0: बचने के लिए मैंने कहा।
1: ओके, ओके,
0: तो अपना संकल्प था, मैंने नहीं किया। तो जान करके कमांडेंट ने हमारी पोस्टिंग कारगिल में की, हमारा टेस्ट करने के लिए, और भी नवंबर में हमारा एक यूनिट, मैंने एक कंपनी वहां पर थी एयरफील्ड के, मैंने रक्षा के लिए,
1: अच्छा,
0: एयरफील्ड को बचाने के लिए उसके चारों तरफ हमारी कंपनी लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आपको जाना पड़ेगा, कारगिल जाइए।
1: ओके, ओके,
0: जाकर हम कहीं ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, घूमने का अच्छा, मौका मिलेगा
1: कारगिल। ओके,
0: मैं जाऊंगा। तो हंसने लगे, कहे कि तुम्हारा टेस्ट होना है।
1: अच्छा। ओके,
0: टेस्ट ले लो ना, तुम देखो टेस्ट क्या होता है। जब मैं लौट करके आया, वहां ब्रिगेडियर जो थे मिस्टर चटर्जी, उनसे बात उन्होंने किया कि सर वो डॉक्टर जो है ऑफिस में इसमें शराब वराब पीता था कि नहीं? आता नहीं भाई, तो चाचा जिद्दी है कि कभी उसने हाथ नहीं लगाया।
1: लेकिन इतनी ठंड होने के बाद लोगों का एक धारणा है कि ठंड है तो शराब पीनी चाहिए, रम पीनी चाहिए, जिन पीनी चाहिए।
0: ठंड के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज इंतजाम रहता है ना भाई। रूम जो है उसमें जलता रहता है, बुखारी बुखारी रहता है, उसके बाद में हर रूम में आग जलाने का ही रहता है।
1: अच्छा, फायर प्लेस
0: रहता है, पूरा का रूम गर्म रहता है। और उसके अलावा बाहर निकलने के बाद आइस क्लोथिंग रहता है, आइस बैग रहता है पास में, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब बहाना है एक देने का।
1: बहुत अच्छा। तो ये और एक प्रेरणा आपके द्वारा मैं श्रोताओं को देना चाहता हूँ कि पीने वालों को पीने का
0: एक बहाना
1: चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है, क्योंकि पीने के बाद कुछ ना कुछ आपके सेहत में तकलीफ आती है।
0: चांसेस है एक बार आप शुरू करोगे दोस्तों के मंडली में तो एडिक्शन होने का डर रहता है।
1: यस,
0: सबसे बड़ी चीज ये है। और क्या वो अमृत है? और आजकल तो समाज में मैं ही जाता हूँ, यूएस में जाता हूँ, बच्चे बैठते हैं, सब चीज होते हैं, सारे लोग सारे पी रहे हैं,
1: सारे पी रहे हैं, सारे पी रहे हैं,
0: सारे पी रहे हैं। हम अलग बैठ करके अपना ये कर रहे हैं।
1: लेकिन बहुत अच्छी बात है कि माहौल अगर बदल जाता है फिर भी आपका संकल्प दृढ़ हो।
0: हाँ, संकल्प
1: वो दृढ़ता जो है वो आपको काम आई, आपके जब कैंसर की ट्रीटमेंट जब हो रही थी,
0: वो संकल्प मेरा दृढ़ संकल्प था। बाबा पर मुझे 100% फेथ है, विश्वास है, और ये संकल्प है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ।
1: तो और एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे आपने कहा 71 वॉर में आप थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ अनुभव आपने लिया होगा वॉर का, तो हमारे श्रोताओं को वो भी उत्सुकता होगी, क्योंकि एक तो वॉर आपने जीत लिया कैंसर के साथ, एक बार नहीं दो बार जीत लिया, भारत ने भी दो बार हमारी वॉर जीती है, लेकिन वो भी जंग है, ये भी जंग है, तो वो जंग का कुछ अनुभव बताइए।
0: 71 में जो वॉर छिड़ा ना, उसमें मैं बॉर्डर में था, इसमें मैं बेनापोल पेट्रापोल पड़ता है,
1: अच्छा,
0: बनगांव के पास में, बनगांव बॉर्डर है, वहां पर मेरी बटालियन थी, वहां से हम लोग इन कर गए बांग्लादेश में।
1: अच्छा।
0: अब बांग्लादेश में मैं अपने यूनिट के साथ था।
1: अच्छा।
0: यहाँ तक कि जिस समय सरेंडर हुआ, जब पाकिस्तान वाले पाकिस्तान आर्मी सरेंडर की पंजाब
1: 90,000
0: जो सरेंडर किया, उस समय हम लोग हमारी ट्रिप जो यूनिट जो था हमारा, हमारे बटालियन जो था, वो करीब करीब हार्डली 26 किलोमीटर ढाका से पहले थे हम लोग।
1: अच्छा। ओके, ओके।
0: तो मैं साथ साथ था।
1: अरे वाह।
0: मेडिकल टीम साथ में थी।
1: तो उसमें आपको कोई तकलीफ हो गई है, कुछ कठिनाई आ गई है?
0: आनंद आता था, घर की कोई चिंता ही नहीं, घर वालों को कुछ चिंता रहता घर, मैंने कभी कभी हम लोग उसमें तो टेलीफोन था नहीं, HF और VHF दो होता था हम लोग के पास में,
1: बिल्कुल
0: हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो होता था, उस पर बात हम लोग करते थे कभी फैमिली से,
1: बिल्कुल
0: हम लोग कहते थे कोई चिंता फिक्र तुम लोग मत करो, एकदम सब हम लोग ठीक है, तो कहे कि यहाँ चिंता फिक्र कोई बात ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: यहाँ तो जो है सारे फैमिली वाले एक साथ मिल करके हम लोग बैठ करके हाय करते रहते हैं, कोई डर भय नहीं रहता है।
1: तो ये एज ए मेडिकल ऑफिसर आप थे वहाँ, आपकी पोस्ट क्या थी
0: वहाँ? तो मेडिकल अफसर ही थी ना,
1: मेडिकल ऑफिसर ही थे। तो उस समय आपको कोई मरीज आते होंगे या कोई घायल जवान आते होंगे, उनको भी कुछ ट्रीटमेंट करनी होगी।
0: एक बार तो मैं खुद ही फंस गया था।
1: अच्छा।
0: बॉर्डर पर जो बता रहा हूँ, बेनापोल और पेट्रापोल बॉर्डर जो है, बॉर्डर पर हमारी यूनिट थी, और उसमें क्या हुआ कि चार पांच जवान लोगों को खाने में कोई गड़बड़ी होने की वजह से डायरिया हो गया.
1: अच्छा,
0: डायरिया हो गया.
1: ओके.
0: तो कमांडेंट ने हमको कहा कि डॉक्टर जाकर के आप थोड़ा उनको देखो. तो मैं एम्बुलेंस लेकर के गया.
1: ओके.
0: एम्बुलेंस लेकर के गया. एम्बुलेंस लेकर के जब मैं गया वहां पर, तो अभी यूनिट में वहां पर जवान लोगों के पास जो बंकर में थे वो पहुंचने के पहले पाकिस्तान के तरफ से ब्रस्ट फायर आना शुरू हो गया.
1: अच्छा.
0: ब्रस्ट फायर कहते हैं एमएमजी का, मीडियम मशीन गन का ब्रस्ट फायर हमारे एम्बुलेंस पर आना शुरू.
1: ओके ओके.
0: तो हमारा ड्राइवर जो था, एक सरदार जी था, उसने कहा कि सर गेट डाउन.
1: ओके.
0: दरवाजा मैंने खोला, हम लुढ़क गए नीचे.
1: ओके.
0: गाड़ी से नीचे चले आया. नीचे आने के बाद में रोड से नीचे जो गड्ढा जो था उसमें हम लोग लुढ़क गए.
1: ओहो.
0: लुढ़क गए.
1: अच्छा.
0: गाड़ी को जो है उसने उन्होंने एकदम छलनी बना दिया, खत्म कर दिया.
1: अच्छा.
0: उसके बाद तब तक तो क्या हुआ कि हमारे यूनिट को पता लग गया, इधर से क्रॉस फायर शुरू हो गया.
1: अच्छा.
0: उन लोगों के ऊपर, उन लोगों का क्रॉस फायर, बीच में हम लोग हैं, बीच में है. बाद में दोनों तरफ से बंद हो गया. तो मैं जाकर जवान लोगों को देखा, कमांडेंट घबरा गए थे कि भाई क्या हुआ. एम्बुलेंस तो खत्म हो गई थी, फिर दूसरी गाड़ी आई हम लोग को लेकर के गई.
1: नहीं कुछ हुआ नहीं. ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ?
0: नहीं, ड्राइवर को भी, ड्राइवर भी नीचे
1: ड्राइवर भी लुढ़क गया.
0: तो ट्रेनिंग होती है ना.
1: अच्छा, अच्छा.
0: कैसे रोल कर जाना है नीचे, कैसे ही कर जाना है. जो होता है, मैंने रोड ऊंचा रहता है, रोड के नीचे जो होता है नाले टाइप का जो होता है, उसमें रोल कर गए.
1: ओके. तो चलिए, बहुत अच्छा अनुभव था. एक जंग आपके भारत के अगेंस्ट जो थी वो जंग आपने जीती, और दूसरी जंग जो है आपके शरीर के अगेंस्ट जो थी वो भी आपने जीती. तो आप तो जंग बहादुर हो गए.
0: लड़ाई में होता क्या है ना कि घर वाले अधिक घबरा जाते हैं, इष्ट मित्र जो है घबरा जाते हैं कि क्या होगा.
1: ये, ये.
0: लेकिन जो फौज का जवान चाहे अफसर जो लड़ाई में है, उसको पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है.
1: अच्छा.
0: उसको तो वो धुन लगी रहती है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है. तो यही मतलब एक्सपीरियंस जो है.
1: अच्छा.
0: तो कहीं पर भी आपका विश्वास जो है, मेरे समझ से सबसे बड़ी चीज है, उसको लेकर के चलना होगा.
1: तो ये विश्वास,
0: धूलमूल नीति नहीं होनी चाहिए.
1: विश्वास बहुत बड़ी चीज है. और ये विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ
0: और कैंसर थेरापी में, थेरापी के बाद फुली रिकवरी का 100% चांस उसी को है जो पूरा दृढ़ संकल्प में है कि हम इससे रिकवर हो जाएंगे.
1: तो दोस्तों, ये जीती जागती मिसाल है कि हमारे डॉक्टर सिंह जो है, टीएन सिंह, उन्होंने दो बार कैंसर झेला है. एक बार प्रोस्टेट कैंसर हो गया, उसके बाद ब्लड कैंसर हो गया, किमो हो गई. इतनी उम्र होने के बाद, 80 साल की उम्र के बाद भी वो अभी भी इतने एक्टिव है. अभी भी वो कंसल्टेशन देते हैं एवर हेल्दी हॉस्पिटल में. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ वो बातचीत करते हैं, उनको इलाज करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है, एक तो आपका मनोबल, और जैसे डॉक्टर सिंह साहब ने कहा कि मनोबल बढ़ाने का आसान तरीका जो है वो है मेडिटेशन. मेडिटेशन हर एक की धारणा अलग होगी, हर एक की श्रद्धा अलग होगी, हर एक का विश्वास अलग होगा, लेकिन उनका जो अनुभव है वो राजयोग मेडिटेशन का है. और वे अनुभव के द्वारा उन्होंने अपने अनुभव बताए कि कैसा हौसला बढ़ा. तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन जो है, विशेष मुलाकात, आपको अच्छी लगी होगी. और ऐसे भी कोई मेरे दोस्त है जो इस दौर से गुजर रहे हैं, कैंसर से गुजर रहे हैं, या और कोई बीमारी जो है उससे गुजर रहे हैं, तो उसमें एक ही संदेश मैं डॉक्टर सिंह साहब के जरिए आपको देना चाहता हूं. और सिंह साहब को पूछता हूं कि हमारे श्रोताओं को, जो मरीज नहीं है उनको भी और जो मरीज है उनको भी, वो क्या संदेश देना चाहते.
0: पहला संदेश कि अच्छे डॉक्टर के इलाज में आप हैं, चाहे कैंसर के इलाज में हैं, ऑन्को सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, उन पर आप भरोसा रखो और ये कॉन्फिडेंस रखो कि मेरी रिकवरी होनी है, मैं प्रतिदिन रिकवर हो रहा हूँ, ये भावना अपने मन में रहनी चाहिए.
1: चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहे और ये सोचते रहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत भगवान के लिए आप थैंक्स देना है, आभार प्रदर्शन करना है.
0: अगर बस विश्वास करते हैं भगवान पर, उन पर पूरा विश्वास कीजिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: उनका समझिए कि उनका वरदानी हाथ हमारे सर पर है, तो हम रिकवर होंगे ही.
1: बहुत अच्छा रहा डॉक्टर सिंह साहब, आप रेडियो मधुबन पे आए, हमारे साथ बातचीत किए, आपके अनुभव शेयर किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज थोड़े से अंतराल के बाद हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। हमराही कार्यक्रम आप सब जानते हैं हमारा उद्देश्य होता है कि हम नई नई कहानियों से आप सबको रूबरू करवाएं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें जिस पर आप और हम शायद बात करते नहीं हैं, या कई बार जानबूझ करके हम बात करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती हैं और कई बार शायद उस लेवल तक हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन जीवन की एक ऐसी सच्चाई है किसी भी दिव्यांग के लिए, जिसको जितना जानने समझने का हम प्रयास करते हैं उतना ही उसमें डूबते चले जाते हैं। और यही कारण है कि हमराही प्रोग्राम में हम ऐसे ही समाज के, हमारे आपके बीच के लोगों के अनछुए किस्सों को, पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। और खासकर जब हमने शुरू किया था ये प्रोग्राम, तो आप सब जानते हैं कि विवाह के मामले में, शादी ब्याह के मामले में दिव्यांग साथियों को जो दिक्कतें आती हैं, उसके बाद किस प्रकार समाज का, परिवार का उनको सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, यही सब तो हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस सब में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने अब तक जानने समझने का प्रयास किया है, और हर एक कार्यक्रम के साथ कई सारे नए प्रश्न आते हैं, कई प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और कई प्रश्न अधूरे छूट जाते हैं। इसीलिए रेडियो मधुबन का ये प्रयास हमेशा से रहता है कि जहाँ तक शायद आप और हम नहीं सोच पा रहे हैं, वहाँ तक आप सबको ले जाने का प्रयास किया जाए, और कहीं ना कहीं समाज को उसके हाल पर छोड़ने की बजाय समाज में कुछ अपना भी हम योगदान दें, समाज में कुछ अपनी भी भूमिका का निर्वहन करें, यही सब हमको करना है और करना भी चाहिए। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आज हमारा ही कार्यक्रम, मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि विशेष है। वो विशेष इसलिए है कि आपको शुरू में ही बता देता हूँ, अब तक का केवल ये दूसरा प्रोग्राम है श्रोताओं जो मैं स्टूडियो में बैठ करके लाइव हमारे मेहमानों के साथ आमने सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना ज़्यादातर प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन माध्यम से रिकॉर्ड किया करते हैं। लेकिन आज मुझे ये अवसर मिला, अजमेर में हूँ मैं और अजमेर में ही हमारे मेहमान हैं, तो स्वागत करते हैं अर्पित चौहान जी और मीनल चौहान जी का। ये दोनों अजमेर में हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ किस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अर्पित जी और मीनल जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू। मेरा नाम अर्पित चौहान है और यहाँ मेरे साथ मेरी वाइफ है मीनल। आज हम दोनों इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए हैं संदीप त्रिवेदी जी के कहने पे, और इसमें हम हमारा जो भी जीवन का एक्सपीरियंस रहा है, जीवन का जो भी अनुभव रहा है, जो दिक्कतें एक विकलांग व्यक्ति को आती है, उसके बारे में हम खुल के चर्चा करेंगे आपके साथ, और जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको देंगे।
1: जी बिल्कुल अर्पित भाई और मीनल जी, आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चूंकि अर्पित जी आपने शुरुआत कर दी है, तो हम चाहेंगे आप अपने हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं, आपकी एजुकेशन क्या रही, अभी आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं आपके लिए।
2: मेरा नाम कैप्टन अर्पित चौहान है, मैं भारतीय सेना में कैप्टन रैंक पर एक आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई और स्नातक की पढ़ाई अजमेर शहर से ही हुई। मैंने कक्षा एक से लेके 12वीं तक मैंने सेंट एंस्लम स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से मैंने साइंस मैथ्स के साथ मैंने उसको कंप्लीट किया। तत्पश्चात मैंने सन 2011 में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसके 4 साल बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फिर मैंने यूपीएससी का कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करी, वो मेरा 7वां अटेम्प्ट था आर्मी में ज्वाइन करने का, और उसके बाद मैंने आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं भारतीय सेना की 235 इंजीनियर रेजिमेंट कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुआ, और आज मुझे भारतीय सेना में सेवा देते देते मुझे लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय था। अब मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ मीनल भी अपने बारे में थोड़ा बताएंगे।
1: जी जी जी मीनल जी, हमारे सुनने वालों को आप भी बताएं अपने बारे में।
3: मेरा नाम मीनल है, मैं भी अजमेर से ही हूँ। मैंने भी अपना पूरा एजुकेशन अजमेर सिटी से ही किया है। मेरी स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट अजमेर से रही है। मैं इन्फेंट क्लास से 12th क्लास तक सेंट मेरीज में ही पढ़ी हूँ। फिर मैंने बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से ही किया है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स भी गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से किया है, डिजिटल कम्युनिकेशन में। फ़िलहाल हमारी शादी 2020 में हुई थी, और उसके आगे मैं अभी UGC नेट की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। आगे के मेरे प्लान्स हैं कि मैं PhD की डिग्री पूरी करूँ। थैंक यू सो मच।
1: तो सुना श्रोता हूँ आपने कि हमारे आज के दोनों मेहमान काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी शिक्षा अर्जित की। अब तक आपको लग रहा होगा कि यार इस कहानी में क्या कुछ खास है। एक तो खास बात ये निकल करके आ रही है दोस्तों कि आप और हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं और हम 75वीं वर्षगांठ अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। और देखिए ऐसे में ये एक संयोग की बात है कि आज मुझे ये कार्यक्रम अनायास ही करने का अवसर मिला, और ठीक आज हमारा ये कार्यक्रम हमारे देश के आज़ाद होने से एक दिन पहले प्रसारित हो रहा है। और आप सब जब तक सुनेंगे तब तक या तो 75 साल का हमारा ये जश्न 15 अगस्त का मना चुके होंगे या फिर मना रहे होंगे। तो ऐसे में एक बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगता है कोइंसिडेंट है ये। तो इसीलिए अर्पित जी को जय हिंद कहते हुए एक बार फिर से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम को अब आपको धीरे धीरे बताएंगे कि क्या खास बात है इस कहानी में। दरअसल अर्पित के एजुकेशन के बारे में आपने सुना और मीनल जी के बारे में भी आपने सुना। तो मीनल जो है वो लो विजन है, लेकिन क्या कुछ रहा अब तक की इनकी जर्नी। और हाँ, शादी की बात हुई तो बताऊँ, इनकी शादी होने के बाद ही कोरोना आ गया था। तो 2020 में इनकी शादी फरवरी में हुई और मार्च में हम सब लॉकडाउन में थे, तो खैर वो भी एक कहानी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें आप दोनों के साथ। चलिए, जैसा कि मैंने बताया श्रोता हूँ आप सबको कि मीनल जी लो विजन है, तो हम उन्हीं से शुरू करते हैं। मीनल जी, कैसे ये सब शुरुआत हुई और कैसे पता चला आपको या आपकी फैमिली को?
3: जी भैया, मैं आपसे और आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि मुझे दोनों आईज में कैटरैक्ट मोतियाबिंद था बाय बर्थ, और सबसे पहले ये चीज़ मेरे फादर ने ऑब्जर्व करी। मैं सिर्फ 2 या 3 महीने की थी जब मैं किसी भी एक चीज़ को बिना अपनी आंखें ब्लिंक किए कंटिन्यूसली देखती रहती थी। तो मेरे फादर के दिमाग में आया कि इसकी आईज़ में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये चीज़ बहुत पहले ही समझ ली थी कि मुझे आईज़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना समझा। उस वक्त मैं बहुत शायद 2 या 3 महीने की थी, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी दोनों आँखों में कैटरैक्ट है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑपरेशन मेरा हुआ जब मैं 6 महीने की थी। लेफ्ट आई की सर्जरी सबसे पहले हुई और मेरा ऑपरेशन अमृतसर में हुआ। डॉक्टर दलजीत सिंह ने ऑपरेशन किया, क्योंकि कैटरैक्ट का ऑपरेशन दोनों आईज में अगर हो तो एक साथ नहीं होता। मेरा दूसरा ऑपरेशन जब मैं 1 साल की थी राइट आई में तब हुआ, बट दिक्कत ये आई कि लेफ्ट आई में तो विजन आ गया, लेकिन कुछ कारण से मेरी राइट आई में पूरा विजन न आने के कारण जो पूरा प्रेशर है अभी तक मेरी लेफ्ट आई उठाती है। तो मैंने अपनी जितनी भी स्कूलिंग है पढ़ाई है सिर्फ अपनी लेफ्ट आई के भरोसे पूरी की है। दिक्कतें मुझे ये आती है कि एक में प्रॉपर विजन होने की वजह से मुझे काफ़ी हेडेक या स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था जो अभी भी है। तो उसी जुनून की वजह से मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और मैं आगे भी और काफ़ी पढ़ना चाहती हूँ। इलाज तो चलता रहता है, मेरे कई सारे ऑपरेशंस भी हो रखे हैं, अब तक मेरे 7 ऑपरेशंस हो रखे हैं। और सभी ऑपरेशन अमृतसर में ही हूँ।
1: क्या बात है। तो ये श्रोताओं, मीनल जी की कहानी आप सबने सुनी, आपके जहन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, मेरे भी जहन में आ रहे हैं। तो मीनल, आपको कब पता चला कि आपको कुछ है दिक्कत? फैमिली को छोड़ दीजिए, आपको कब पता चला?
3: जब हम बहुत छोटी थी तब तो इतना नहीं एहसास होता, लेकिन हाँ जब 3 या 4 साल की हुई तब उस वक्त मुझे हमेशा काला चश्मा पहनाया जाता था और एक आंख पे पट्टी रहती थी, तो मुझे बहुत इरिटेशन होता था। मुझे लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, हमेशा मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ और पूरे टाइम मुझे काला चश्मा पहन के घूमना पड़ता है। मेरे फादर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था मुझे संभालना और उन्हें अकेले ही मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी मदर मेरे भाई के साथ रहती थी जो बहुत छोटा था। तो मुझे लग तो गया था कि कुछ तो मुझे दिक्कत है और मैं कई बार रोती थी, चिल्लाती भी थी कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, इलाज नहीं करवाना। तो उस वक्त मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे बचपन में ही बताया था कि हमें इस दौर से गुजरना होगा और तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। और मुझे कई बार लालच भी देते थे कि मैं तुम अगर अपना चेकअप सही से कराओगी तो मैं तुम्हें फ्रूटी पिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा। तो शायद उन्हीं का बहुत सपोर्ट रहा है जिस वजह से मैंने ये पूरी जर्नी पूरी करी। और हाँ, उन्होंने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था, सो यस, मैं बचपन से ही अवेयर हूँ उस चीज़ का।
1: तो श्रोताओं, बार बार फादर का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा हम मीनल जी के फादर के बारे में भी बात करते हैं। बताइए अपने फादर वदर के बारे में मीनल जी।
3: मेरे फादर एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में, और मेरी मदर होम मेकर है।
1: किस सब्जेक्ट से हैं आपके फादर?
3: मेरे फादर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, उनका नाम है डॉक्टर फुलाराम परिहार।
1: कहना चाहिए कि आज आप जिस मुकाम पर हैं उसमें नन अदर देन आपके फादर का बहुत बड़ा
3: जी बिल्कुल
1: रोल रहा है।
3: जी
1: राइट
3: जी।
1: तो उस समय जब आप छोटी थी, जब आपको पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है,
3: जी जी,
1: तो परिवार में आना जाना भी लगा रहता होगा,
3: जी
1: फंक्शंस में भी जाते ही होंगे,
3: जी
1: बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनका क्या रिएक्शन, कभी कुछ थोड़ा होश संभाला 8-10 साल की उम्र में जब पता चला हो आपको, उनका क्या रहता था?
3: हमारा काफी रूरल बैकग्राउंड है, लेकिन मेरे, क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, तो वो इस चीज को उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिया। लेकिन जो हमारे बाकी फैमिली रिलेटिव्स हैं जो कि काफी रूरल एरिया से हैं, राजस्थान के काफी रूरल एरिया से हैं, बेसिकली हम पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सो उनका ये था कि एक तो मैं गर्ल चाइल्ड हूँ प्लस मुझे आईसाइट में भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग एक हमेशा अफसोस जताते थे कि जैसे हम, जैसे मैं बहुत बेचारी हूँ और मुझे हमेशा एक हेल्प की जरूरत चाहिए और मुझे कभी मोटिवेट नहीं किया जाता था। तो जब मेरे पेरेंट्स ने हॉस्पिटल में देखा कि मेरे जैसे तो कहीं ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको यही प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ से फिर मेरे पेरेंट्स को बहुत हिम्मत आई कि कम से कम हमारी बेटी देख तो सकती है। तो फिर उन्होंने समाज से, सोसाइटी से
1: बंद कर दिया
3: कंप्लेन करना, और फिर उन्हें एक हौसला आ गया कि मेरे से भी कई वर्स्ट केसेस इस दुनिया में हैं और वो बहुत बेहतर आजकल की लाइफ में कर रहे हैं। सो मैं
1: कहते हैं ना, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, तो उस बात को आपके फादर ने जिया है राइट।
3: तो फिर उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं और किसी बात का कोई शिकायत भी
1: नहीं। तो फैमिली में कभी इस तरह की बात हुई कि आपको स्पेशल स्कूल में कहीं भेजना चाहिए एजुकेशन के लिए?
3: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी फैमिली में सारे डिसीजंस मेरे पेरेंट्स ने लिए हैं, उन्होंने इस मामले में कभी किसी की सलाह नहीं ली, उन्हें पता है मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि मैं, उन्होंने मुझे हमेशा उन बाकी बच्चों की तरह ही समझा, तो उनके दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं किसी स्पेशल स्कूल में जाऊँ, क्योंकि मेरी आईज में प्रॉब्लम थी, ब्रेन में नहीं। सो और मैं बहुत मतलब एवरेज स्टूडेंट ही थी, लेकिन हाँ मैं कर पा रही थी तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो मेरी पढ़ाई एक नॉर्मल स्कूल से ही हुई, नॉर्मल बच्चों के साथ।
1: बात वही बात मैं करना चाह रहा था कि आपने जो बताया जिस स्कूल का नाम लिया वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है
3: जी,
1: आपकी एजुकेशन भी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में रही
3: जी,
1: तो वैसे भी इंग्लिश मीडियम में वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाता है।
3: हाँ होता था। और
1: तो फिर कैसे आपने उसको, मतलब गुस्सा नहीं आया कभी?
3: प्रॉब्लम्स तो होती थी कि ये दिक्कत कि बाकी बच्चे, जैसे मुझे लगता था कि जो शार्प हैं और आगे निकल जाते हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो चैलेंज जो इन्फेंट क्लास से लगाकर 12th स्टैंडर्ड तक ये रहा कि मेरा पेपर कभी टाइम पे फिनिश नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड काफ़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और कई बार ऐसा होता था कोई सवाल आते हुए
1: ये चीज कभी टीचर्स ने कही आपको
3: टीचर्स ने ये बात कभी समझी नहीं।
1: अच्छा,
3: उन्हें लगता था कि क्योंकि मेरे को देख के कभी ऐसा लगेगा नहीं कि मैं डिसेबल्ड हूँ, उन्हें लगता था कि मैं एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह हूँ जिसको थोड़ा बहुत आईज में प्रॉब्लम है तो स्पेक्स पहनने से ठीक हो जाएगी। तो आई थिंक थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ अगेन मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया कि मुझे क्लास में जब पीछे बिठाया जाता था टीचर्स समझते नहीं थे तो मेरे फादर आके लड़ते थे टीचर्स से कि इसको देखने में प्रॉब्लम है इसको आगे बिठाऊं। तो उन्होंने हमेशा फाइट किया, हमेशा
1: करते रहे। ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत होता है
3: मुझे नहीं दिखता था। और बच्चे भी ऐसे होते थे कि अगर उनसे जैसे आप हेल्प मांगो तो हेल्प ही नहीं करते थे। सो एक तरह से मैंने लड़ाई खुद ही लड़ी। फिर मैं घर आके कई बार अपने फादर से भी कहते थे कि मुझे नहीं दिखाई दिया या मेरे नोट्स कम्प्लीट नहीं, उस वजह से मार्क्स भी कम आते थे।

0: कारण था कि मैं मेहनत बहुत करती थी लेकिन पेपर ख़त्म नहीं हो पाता था, तो मुझे कई बार क्लास में ह्यूमिलिएट भी किया जाता था, प्रॉब्लम नहीं समझी जाती थी। लेकिन सारे टीचर्स ऐसे नहीं थे, कुछ एक दो टीचर्स अच्छे भी थे और वो समझते भी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स नहीं समझते थे। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा, ये भी कारण था कि उन्हें लगता था कि मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ, चीज़ों को बहुत स्लो पिकअप करती हूँ।
1: 10th 12th में जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है बच्चों को, आपको मिला?
0: जी, मुझे CBSE ने 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया हर सब्जेक्ट के लिए 10th और 12th।
1: उसकी ज़रूरत पड़ती थी आपको?
0: बहुत ज़रूरत पड़ती थी, शायद अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता तो मेरी परसेंटेज बिल्कुल बन नहीं पाती। उसी 1 घंटे एक्स्ट्रा की वजह से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली पेपर लिख पाती थी और अच्छे मार्क्स मैंने गेन किए।
1: स्पेक्स वगैरह लगाते हैं?
0: जी, मैं स्पेक्टिकल्स लगाती
1: हूँ।
0: लगाती हूँ।
1: अच्छा, लगाते हैं।
0: जी,
1: कितने नंबर का है?
0: जी, +2.5 प्रोग्रेसिव।
1: अच्छा, अब लोग सोच रहे होंगे कि आपने इंजीनियरिंग की।
0: जी।
1: तो आपके साथ ही आईसाइट का प्रॉब्लम था, तो इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन वाले बंदे इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं अगर चाहें तो?
0: इंजीनियरिंग,
1: आपको इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम नहीं आई कभी?
0: प्रॉब्लम तो भैया अभी तक आई रही है, लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो मैंने वो फेस कर लिए। एक अंदर मेरे हमेशा से वो रहा है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, क्योंकि जब मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को देखती थी कि यार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता था नहीं, मैं भी कर सकती हूँ उनकी तरह।
1: क्या स्ट्रीम था आपका इंजीनियरिंग में?
0: BTech मैंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में।
1: ओके।
0: और फिर मैंने फर्दर मास्टर्स डिग्री भी करी है डिजिटल कम्युनिकेशन।
1: भाई स्कूल में तो थोड़ा सा दिक्कत थी टीचर्स को ये अंडरस्टैंड करने में कि आपको कोई प्रॉब्लम है। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कैसा रवैया था आपके टीचर्स का?
0: इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैंने
1: फेस किया है
0: प्रॉब्लम, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया क्योंकि कॉलेजेस में टीचर्स इतना ध्यान देते नहीं है पहली बात तो। लेकिन हाँ, मैं ब्लेस्ड रही कि मुझे कॉलेज के एग्जाम्स में भी 1 घंटा, कभी आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला, कभी 1 घंटा, डिपेंड करता है प्रिंसिपल का क्या मन है। तो हमने प्रिंसिपल को कन्विंस किया और वो हो भी गए, तो उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्स में आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया और कुछ एग्जाम्स में उन्होंने मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया। वो भी मेरे फादर ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, उनको सर्टिफिकेट्स दिखाए, तब जाके वो कन्विंस हुए और उन्होंने मुझे टाइम दिया पेपर लिखने के लिए। अगेन मेरी मुझे बहुत हेल्प मिली, शायद नहीं मिलती तो कुछ एग्जाम्स में मेरी बैक भी आ जाती। तो हाँ, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड काफ़ी स्लो है।
1: काफ़ी मतलब चैलेंजिंग रहता है इस तरह से, अगर जो बिल्कुल दिख रही है जिसकी डिसेबिलिटी उसको तो लोग फिर भी समझ जाते हैं एक बार को, लेकिन आपकी सिचुएशन में जबकि आपको देख करके कोई कह नहीं सकता, और ऐसे में लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। फादर कैसे समझाते थे आपके लोगों
0: को? मेरे फादर शॉर्ट टेम्पर्ड है काफी, तो वो ज्यादा नहीं समझाते थे। अगर कोई नहीं समझता था तो वो सीधा एक्शन लेते थे,
1: दूसरा तरीका था।
0: हाँ, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते किसी को समझाने में। वो सीधा कहते मैं हायर अथॉरिटी के पास जाऊंगा अगर मेरी बेटी को नहीं मिला उसका हक।
1: अच्छा।
0: सो वो मेरे लिए हमेशा उन्होंने फाइट किया और वो अभी भी करते हैं।
1: थ्रू आउट आपकी लाइफ में किसी और आपके जैसे बंदे से मिलने का मौका मिला कहीं?
0: अभी तक तो मैं नहीं मिली, क्योंकि पहली बात तो स्कूल और कॉलेज में बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे, सो इतना इंटरेक्शन
1: जाना भी नहीं हुआ।
0: नहीं, ऐसा
1: हॉस्पिटल्स वगैरह में किसी से इंटरेक्शन हुआ?
0: हॉस्पिटल्स में सिर्फ पेशेंट्स होते थे जो इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि खुद अपनी प्रॉब्लम को लेकर इतना मायूस होते थे।
1: तो इस सब में एजुकेशन तो हो गई, पढ़ते पढ़ते फिर बारी आती है शादी की। और कैप्टन साहब को अभी तक अपने बोलने का मौका नहीं दिया है, तो कैप्टन साहब सीधा गन चलाएंगे फिर। लेकिन आएंगे हम अर्पित जी के पास भी। तो मीनल जी, शादी का भी निर्णय हुआ ही होगा घर में कि भाई अब उम्र हो गई है आपकी मैरिज की, क्या सोचा फैमिली ने उस समय? ये क्वेश्चन दोबारा आया होगा सामने।
0: जी जरूर, बहुत बार आया। मेरे पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते थे कि इस प्रॉब्लम के साथ कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और अगर करता है तो मुझे क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर मैं किसी से शादी करूं तो मेरे पेरेंट्स को हमेशा प्रेशराइज किया जाए कि तुम्हारी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम है, फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट किया। सो उस हिसाब से कुछ डिमांड या कुछ करे वो मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं था। तो मैंने सोच लिया था इनकेस अगर मुझे ऐसा इंसान नहीं मिलता, सो आई विल बी हैप्पीली अनमैरिड। एंड क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं रुकने वाली तो थी,
1: कुछ
0: मुझे किसी के सहारे की भी ठीक है जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट सबको चाहिए होता था। फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैं खुद के लिए बना ली तो मेरे पेरेंट्स को मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट की चिंता नहीं थी, उनको ये थी कि क्योंकि पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, तो उनको था कि हमेशा इमोशनली और मेंटली मेरे साथ मेरा जीवन साथी रहे। ढूंढने में उनको बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मेरी आई साइट के बारे में बताया, पूरा नहीं बताया, क्योंकि किसी को अगर मैं अच्छी लगी उसके बाद ही, जैसे किसी लड़के ने मुझे पसंद किया तो तब उन्होंने बताना, उसके पसंद के बाद बताना मुनासिब समझा कि ये दिक्कत है।
1: तो उसके बाद क्या रिएक्शन रहता था उन लोगों का?
0: वो लोग डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहते थे, वो लोग कहते थे कि कुंडली में कुछ दिक्कत है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हमेशा ऐसा रहा कि जिस लड़के ने भी मुझे पसंद किया वो लड़का मुझे कभी पसंद नहीं आया, तो मुझे कभी अफसोस भी नहीं हुआ। मुझे लगता वो मेरे लायक ही नहीं है।
1: हे भगवान, मतलब देखिए कैसे कैसे इत्तफाक होते हैं लाइफ में। मतलब उन्होंने मना, यानी वो कर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं जा रहे थे मना ही कर दे भाई तू तो।
0: हाँ, क्योंकि उसने मुझे पसंद किया। फिर इस दिक्कत की वजह से शायद उसने कुछ नहीं कहा, फिर उसके पेरेंट्स ने
1: कॉन्फिडेंस उनका लूज हो रहा था, तो फिर मतलब ही नहीं बनता था, फिर बाद में दिक्कतें आती।
0: तो मैं सोचा बाद में दिक्कत आने से अच्छा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ फिर तो मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो न कभी लोग पसंद आए न कभी लड़का। मुझे लगा कि ठीक है, मैं इन सब चीजों से बच गई और मेरी किस्मत अच्छी रही।
1: तो अरविंद भाई, आपने भी बीटेक किया?
2: हाँ जी।
1: कभी मिले थे मीनल जी से?
2: हाँ, मैं मीनल को मैं
1: बीटेक के टाइम से ही जानते हो?
2: बीटेक के टाइम से तो नहीं बोलूंगा मैं मीनल को 11th क्लास से ही जानता हूँ।
1: तब से ही जानते थे आप?
2: मैं तभी से जानता हूँ, पर हम अच्छे दोस्त थे शादी का।
1: 11th में कैसे जाने लगे आप? तो बॉयज स्कूल में पढ़ते थे।
2: मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था, बट मीनल के फादर पहले IIT से AIEEE को कोचिंग देते थे ट्राइब्स अकेडमी के अंदर।
1: ओके।
2: तो मैं वहाँ पे हम जाते थे पढ़ने के लिए
1: जी,
2: और मीनल भी वहाँ पे आती थी
1: जी,
2: तो मैं उनको जानता तो था, लेकिन हमारी एक दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी, वो समय के साथ साथ बढ़ी, और शादी का डिसीजन तो हमने बहुत आगे चल कर लिया।
1: एक बात बताएं अर्पित भाई
2: जी,
1: जब आपने 11 से आप इनको जानते थे, मीनल जी से बातचीत भी होती होगी, इनको देखा भी होगा, आपको कभी फील हुआ कि इनको कुछ प्रॉब्लम है आई साइड में, या पहली बार में इन्होंने बता दिया था कि भाई मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है?
2: नहीं, पहले मुझे कभी फील नहीं हुआ, मतलब
1: कि इनको देख के आपको कभी लगा?
2: कभी लगा, एहसास नहीं हुआ कि इनको आई साइड में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम थी कि जब तक आप डीपली किसी को ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक आप किसी को जानोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो आप इसके बारे में जान नहीं पाओगे। मुझे कभी पहली नज़र में देख कर इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर जब हमने शादी करने का डिसीजन लिया, जब हम एक दूसरे के को अच्छे से जानने लगे, तब उस समय ही मीनल ने मेरे को पहले ही
1: अच्छा, इन्होंने बताया आपको आगे होकर?
2: इन्होंने मुझे आगे बढ़कर ही बताया कि मुझे प्रॉब्लम है।
1: क्या बात।
2: और मैंने, मेरे को उसको देख के कुछ लगा नहीं, कि मेरे को लगा कि ठीक है, ये बाय बर्थ है, तो इसमें कुछ इंडिविजुअल की गलती नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये किस्मत की बात है, ये अगर आज इनको है कल मुझे भी हो सकती है, और मैंने इसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। इसमें कुछ मुझे ऐसा कुछ संकोच नहीं हुआ एक्सेप्ट करने के लिए मुझे,
1: आपकी फैमिली को।
2: और हाँ, मैंने मेरी शादी जब हुई, जब हमारी शादी की बात चली, तब हमने पहले ही, मैंने मेरे माता पिता, मेरे भाई को, मेरे घर में सभी को मैंने बता दिया था
1: शादी से पहले,
2: शादी से पहले ही बता दिया था कि मीनल को आई साइड में प्रॉब्लम है, उसको लो विजन की प्रॉब्लम है उसको, और हमने इसको एक जीवन की रियलिटी मानते हुए इसको एक्सेप्ट करके हम आगे चले। तो यही था हमारे बारे में, इसको मैंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया, कोई संकोच नहीं किया, बिकॉज ये किसी को भी हो सकता है, इसमें इसमें इसमें संकोच करने वाली कोई बात मुझे नजर नहीं आती है।
1: तो जब आपने पहली बार उनको बताया, तो हैप्पीली उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, या कहीं कुछ सवाल थे उनके भी मन में?
2: उनके सवाल तो नहीं थे, जब उन्होंने मीनल को देखा, उनका चरित्र देखा, उनका व्यवहार देखा, तो उसके बाद ये सब चीजें बहुत कम प्राथमिक
1: सेकेंडरी हो गई,
2: सेकेंडरी चीजें होती है। एक इंसान की क्या खूबियां है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण कैसा है जीवन के लिए, वो किस तरह से उसका आचरण कैसा है, ये चीज मेरे और मेरे घर वालों के हिसाब से जीवन में ज्यादा प्राथमिकता रखती है बजाय एक डिसेबिलिटी के। तो यही था, हमने कभी इस चीज को हमारे बीच में आने नहीं दिया, और मैंने इसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। और मेरी शादी के बाद भी हमको दिक्कत आई, मीनल का ऑपरेशन हुआ एक, जो उसकी कैटरेक्ट सर्जरी हुई थी बचपन में, उस टाइम स्टील स्टूचर्स होते थे, स्टूचर्स मतलब टाके होते थे, जो बाद में इसको विजन में प्रॉब्लम आने लगी। तब इसका शादी के बाद भी ऑपरेशन हुआ, तो मेरे माता पिता भी इसके साथ थे, मैं भी इसके साथ में था। तो आगे चल के हमने चैलेंजेस को, हमने जो भी हमारे सामने समस्याएं थी उसका हमने मिलकर सामना किया। तो यही था।

0: आंखों पे स्ट्रेस लेकर नहीं, इसको इजी गोइंग और कंसिस्टेंट मेहनत रहकर ही आगे कर सकती है, और तभी से कर रही है ये। इसने शादी के बाद भी इसने अपनी थीसिस सबमिट करी है एमटेक की। अभी ये यूजीसी लैंड में जेआरएफ की तैयारी भी कर रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रही है। तो मेरा ये कहना था कि आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़े, उसी हिसाब से मेहनत करनी है, धीरे चलना है पर लंबी दूरी तक चलना है ये रह के, और तभी हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आगे हम जो इसको करना है जीवन में हम कर सकते हैं। तो मैंने इसकी समस्याओं को समझा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, क्योंकि मैं इसका जीवन साथी हूँ, तो समाज कई तरह के प्रश्न आपके सामने खड़े करता है, तो आपको उसको फेस करने की आप में सहन शक्ति होनी चाहिए, आपको लोगों को समझाने की सहन शक्ति होनी चाहिए। वो भी मैंने फेस किया शादी के बाद। और मैं एक तजुर्बा और कहना चाहूंगा,
1: बिल्कुल बताइए।
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उन्हीं को समझा सकता हूँ जिनमें समझने की काबिलियत होती है, उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है जो इस चीज़।
1: आपकी बातों में एक सच्चाई नजर आ रही है कि
0: जी
1: कई बार आपको भी फेस करना पड़ा, बताएं।
0: हाँ, मेरे को भी फेस करना पड़ा। आर्मी में कुछ लोग समझ पाते थे तो मैंने उनको जनरली समझाया, कुछ लोग मैंने भी उन्हीं को समझाया जिसमें समझने की शक्ति थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि लोग समझेंगे पर लोग नहीं समझते, तो मैं थोड़ा सा उन्हीं लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिनमें समझने की गहराई होती है, जिनमें उस चीज को समझने की शक्ति होती है। तो ये तो चैलेंजेस है हमारे सामने, पर मैं यही कहूँगा कि ये चीजें जो है इंसान के चैलेंजेस आते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि चलो ये तो बाय बर्थ है, पर इस दुनिया में ऐसे ढेरों ऐसे बहुत अनेक उदाहरण है जब लोगों ने अपनी शादी के बाद डिसेबिलिटी करी है। मैं भारतीय फौज का आपको उदाहरण दूंगा, आप गूगल पर पढ़ सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पैर गवा दिए, जिन्होंने अपनी आंखें गवा दी, जो परमानेंटली डिसेबल हो गए, व्हील चेयर पर आ गए, क्या उनका भी लोगों ने साथ देना छोड़ दिया? उनके जीवन साथी उनके साथ डटकर खड़े रहे, उनके माता पिता उनके। तो ये सब चीजें सब्जेक्टिव है, ये चीजें आपको रोक नहीं सकती। मैं यही कहूंगा कि आप हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं, और यही है कि हमारे विवाह का मूल मंत्र भी यही है। डिसेबिलिटी तो इंसान को जीवन के किसी भी फेज में आ सकती है, चाहे वो बाय बर्थ है जैसे मीनल का एग्जांपल है, चाहे लोग कोई एक्सीडेंट में लेते हैं, कुछ लोग अपने जीवन के आखिरी पलों में डिसेबल हो जाते हैं, कुछ लोग बीच में हो जाते हैं, कुछ लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती है। तो जीवन का तो हम नहीं कह सकते, पर जो जीवन हमको मिला है उसको हमें खुशी खुशी साथ में जीना चाहिए।
1: जब आपको बताया मीनल ने, तो आपने कुछ सवाल नहीं किया अपनी तरफ से कि बस आपने ठीक है, हाँ भाई आपने बताया मैंने सुन लिया?
0: नहीं, मैंने मीनल से सवाल पूछे कि ये क्या है, मैंने मेरे लिए भी ये चीज नहीं की, तो मैंने पूछा, डेप्थ में जाने की कोशिश की कि ये इसकी समस्या क्या है, मीनल की समस्या क्या है, उसको क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है अपने डे टू डे लाइफ में। मैंने उसको समझा और फिर मैंने उसको समझने की कोशिश की गहराई में, क्योंकि मेरे लिए नई चीज नहीं थी, पर सामने वाले के नजरिए से भी मैंने देखने का प्रयास किया, और धीरे धीरे मैंने समझा कि हाँ, मीनल के लिए ये चीज अलग है थोड़ी, मैं उसको एक आम इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, उसके लिए हर चीज के पैरामीटर्स अलग है, चाहे वो मेहनत करने के हो, चाहे वो अपने डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए हो, चाहे बहुत सी चीजें हो, जहाँ मैंने अपने आप स्वयं को उसकी पोजिशन में रखकर देखा और फिर समझा कि उसको क्या दिक्कतें आती है, कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं ये कर पाता। उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे, मुझे समय लगा, पर हाँ मैंने इसका कोशिश मैंने जारी रखी इसको समझने की, तो बाद में चीजें चल के काफी सुलझ गई, कोई आपको कोई समस्या नहीं आई एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में। तो यही कुछ था, धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी इसलिए हम एक दूसरे को समझते गए, पर हाँ मैंने इसको मीनल को समझने का कोशिश हमेशा से की है।
1: फैमिली भी समझ गई अब तो?
0: हाँ जी, फैमिली भी समझ गई, थोड़ा सा टाइम लगा पर हाँ दे एक्सेप्टेड कि हाँ मीनल को प्रॉब्लम है, पर ठीक है। पर मैं यही कहूँगा कि ये चीजें बहुत छोटी हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए।
1: अच्छा, इनके पेरेंट्स वगैरह ने भी कुछ बात की थी आपसे इस बारे में?
0: जी हाँ, जब हमारी शादी की पहली बार बात हुई थी, जब मीनल के माता पिता हमारे घर पे आए थे, तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मीनल को आईज में प्रॉब्लम है, और हमने पूरी खुलकर बात की थी, इसको छुपाया नहीं हमने कि क्या समस्या है, हमने खुल के बताया इसको कि इसको बचपन से बाय बर्थ प्रॉब्लम है, ताकि चीजें आगे चल के भी ट्रांसपेरेंट रहे, कोई बीच में मन मुटाव नहीं आए लोगों के लिए, इसलिए ये सब चीजें हमने पहले ही क्लियर कर ली थी। यही एक अच्छा कारण था कि हमारी शादी के बाद भी, शादी से पहले भी कोई दिक्कतें नहीं आई, जब शादी हुई भी तब दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि

0: पहले से इसकी समस्या का पता था, तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया, सबको पहले से अवेयर थे और मेरे पेरेंट्स ने भी इसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। तो मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स भी, उनकी भी समझ को मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस चीज़ को समझा, हालांकि वो भी थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, पर अगर व्यक्ति समझना चाहे किसी की समस्या तो वो जरूर समझ सकता है। अगर वो सोच ले कि नहीं मैं नहीं समझूंगा तो उसके आगे फिर कुछ नहीं हो सकता।
1: कभी इस तरह की भी बात तो नहीं है कि और कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी?
0: नहीं, कभी कुछ रिश्तेदार बोलते थे पर मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मीनल से ही प्यार करता हूँ और मैं मीनल को ही चाहता हूँ और मीनल ही मेरे को समझ सकती है। तो ये सब चीज तो लालच की तरह है, लालच तो आज है कल नहीं है, पर इंसान अगर आपके साथ है तो आप जीवन में और आगे उन्नति करेंगे, आप साथ मिलके चलेंगे तो जीवन की आधी कठिनाइयां आपसे, आप साथ मिलके हिम्मत से उसको निभा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैं ये कहूँगा कि एक लालच ही, एक टेम्पटेशन सी है कि आप और अच्छा मिल जाएगा, पर इंसान एक अच्छा होना चाहिए, इंसान का चरित्र मेरे लिए
1: ज़्यादा इम्पोर्टेंट
0: है बजाय एक्सटर्नल ब्यूटी या आँखें। तो यही था मीनल के बारे में।
1: क्या तो श्रोताओं, आज सुन रहे हैं आप हमराही कार्यक्रम और उसमें अर्पित चौहान जी और मीनल जी से बातचीत हो रही है। और देखिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि परिस्थितियां अलग अलग तरह की होती हैं, वही आप सबको भी यहां पर जानने समझने को मिल रहा होगा कि अगर कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा यार कि बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, लेकिन डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी है, आज भी ऑपरेशन हो रहे हैं, आज भी डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, आज भी वही सब बातें हैं पढ़ने में, खासकर जो प्रिंट डिसेबिलिटी जो हो सकती है वो है ही है अपनी जगह पर, और डे टू डे लाइफ में भी जो चैलेंजेस हैं वो है ही हैं। अगर एक कम्प्लीटली अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड होता है तो उसको पता रहता है कि भाई मेरे पास क्या ऑप्शन हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जिसको ये है कि कुछ है भी कुछ नहीं भी, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, कार्यक्रम का नाम है हमराही, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो मीनल जी, आपने बताया कि कोई पसंद आया नहीं जी, ये भाई साहब पसंद आए कि नहीं?
2: जी पसंद तो आए, लेकिन पहले मैं देखना चाहती थी कि मेरी प्रॉब्लम जानने के बाद इनका क्या रिएक्शन रहता है। उसके बाद ही मैं कुछ
1: डिसीजन,
2: सिर्फ एक आउट ऑफ ब्यूटी से मैं कैसे डिसीजन ले पाती, वो मुझे कुछ दिन अट्रैक्ट करती, कुछ दिन अच्छी लगती, लेकिन फिर बाद में ये चीजें वाकई में काम नहीं आती। जो चीज काम आती है कि वो इंसान आपकी सच्चाई जानने के बाद आपके साथ कैसे बिहेव करेगा, वो आपको लॉन्ग लाइफ के लिए समझेगा या नहीं, वो हमेशा आपका साथ देगा या नहीं। तो मैं इस चीज का वेट कर रही थी कि अर्पित का क्या रिएक्शन रहता है, और क्योंकि इनका हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव और अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन आया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कई समय तक संतुष्टि नहीं रही कि कोई इतना इजीली कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। सो मैं तब भी काफी महीनों तक डाउटफुल थी, क्योंकि मुझे कभी इतना इजी रिस्पॉन्स नहीं मिला। So, मुझे कभी कई बार हमको कोई चीज मिल जाती है तो हमें उस पर भी हमेशा डाउट होता है, यकीन नहीं होता कि ये वाकई में इतना इजीली कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, इनके पास बहुत बेटर ऑप्शंस थे, काफी सारी लेडी ऑफिसर्स भी होती है जो भी इनके पास मतलब जो इनके बैचमेट्स थी, सो आई थिंक ही हैड numerous options. तो इन्होंने मुझे क्यों चूज कर रहे हैं, जिसमें ऐसी बात नहीं है मैं किसी को खुद से कम समझती हूँ या खुद को मैं डीमोरलाइज कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाले की नज़र में मेरी क्या रिस्पेक्ट है, मेरी प्रॉब्लम को वो समझे नहीं समझे। सो मैं थोड़ा रुकना चाहती थी, मैं इतना एक्साइटेड नहीं हुई।
1: कितने समय तक चली आप लोगों की बातचीत?
2: आई थिंक कुछ शायद इनिशियली तो 3-4 महीने।
1: अच्छा, 3-4 महीने। हाँ, तो फिर मतलब कब जाकर के यकीन हुआ कि नहीं यार ये बंदा तो वाकई बहुत अच्छा है, ये तो सही तरीके से सोचता है, ये शादी के बाद यकीन हुआ या पहले ही हो गया था?
2: नहीं, पहले हो गया था, तभी तो शादी करी मैंने।
1: ये भी ठीक है,
2: वरना मैं काफी अपने बहुत स्टबर्न हूँ इस मामले को लेकर, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं सफर नहीं करना चाहती थी, और मुझे चाहिए था कि नहीं, अगर मुझे परफेक्टली कोई हर इस प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट करे तो ही मैं हाँ करूँ, क्योंकि उसके बाद के जो रिपरकशंस हो सकते हैं मैं नहीं चाहती थी मेरे पेरेंट्स फेस करें किसी भी टाइप की, कोई मेरी वजह से कोई इंसल्ट या कुछ भी, जो कि ऐसा हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ। मेरे इन लॉज हैं वो हमेशा इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और अभी भी समझते हैं। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया, वो मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो ये लेकिन इन चीज़ों को मुझे यकीन, खुद को यकीन दिलाने में काफ़ी वक्त लगा, कम से कम 5-6 महीने लग गए जब मुझे यकीन हुआ कि नहीं हाँ वाकई अर्पित समझदार इंसान है और मुझे समझते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो इन्होंने एफर्ट्स भी किए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इंसान आपसे शादी करना चाहता है वो हर सिचुएशन में आपको पाने के एफर्ट्स
1: करता है और एक्सेप्ट करता है हर तरीके से।
2: जी, इन्होंने मुझे हर तरीके से कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया।
1: और जब आप बाकी लोगों को देखते हैं फैमिली मेंबर्स को, तो सेम थिंग या कभी कभी कुछ?
2: नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। स्पेशली हम बहुत छोटी और प्यारी सी फैमिली है हमारी, मम्मी, अर्पित के पेरेंट्स, अर्पित के बड़े भैया। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में इस चीज़ को लेके कुछ डाउट है, क्योंकि ये इस चीज़ का मुझे यकीन तब हो गया। तो यकीन तो पहले से था लेकिन और ज़्यादा यकीन मेरा पक्का हो गया जब मैरिज के बाद भी मेरा एक ऑपरेशन हुआ, वो भी काफ़ी मेजर सर्जरी थी जो अजमेर के JLN हॉस्पिटल में हुई। उस टाइम मेरे जो आंखों में जो स्टिचेस थे वो लूज हो गए थे, तो जो लूज स्टिचेस थे डॉक्टर को उनको काटने पड़े, तो वो काफ़ी पेनफुल सर्जरी थी जो पिछले साल फरवरी में हुई।
1: अच्छा।
2: और उस वक्त मैं अपने ससुराल में थी और मेरी मदर इन लॉ और फैमिली के सभी मेंबर्स ने मेरा बहुत ध्यान रखा, तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई मैं ब्लेस्ड हूँ।
1: ये बात तो माननी पड़ेगी। देखिए, फादर और मदर वगैरह सब आपको बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, और उसके बाद यहाँ भी जो फैमिली मिली आपको, वो लोग भी बहुत ही फूली, मतलब आपको ऐसे
2: अंडरस्टैंडिंग है काफी। उन्होंने हमेशा समझा और आप यकीन ही करेंगे मैं थ्रू आउट अपने ऑपरेशन के टाइम पे मैं अपने ससुराल में ही रही, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई।
1: अच्छा, एजुकेशन में तो आपने बताया दिक्कतें आती हैं
2: जी,
1: डे टू डे लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं?
2: डे टू डे लाइफ में एक तो जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी शादी पार्टी में, तो मैं बहुत समय नहीं बिता पाती वहाँ पे। जैसे हम कई बार स्पेशली
1: चीज पे फोकस करना हो लगाता
2: है, जैसे किसी चीज को देख, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है 2-2, 3-3 घंटे तक मुझे उसके सामने देखना है, तो मैं लगातार नहीं देख पाती क्योंकि मेरी आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। मुझे एक टाइम के बाद में सोने की आदत है, जैसे आर्मी की पार्टी स्पेशली जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक चलती है, कई बार नाइट्स तक भी चलती है, तो मैंने उन लोगों को भी बताया कि मेरे साथ दिक्कत है। यही है कि मेरा भी मन करता है कि मैं और इंजॉय करूँ, लेकिन मेरी आईज कई बार अलाउ नहीं कर पाती। सो हाँ,
1: मूवी वगैरह में
2: मैं मूवीज बहुत कम देखती हूँ पहली बार। अगर अच्छा। कोई बहुत ही अच्छी मूवी हो तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। आजकल तो मूवीज भी 2 या 2 घंटे से ज़्यादा की होती नहीं और मैं बहुत कम देखने जाती हूँ, और अगर नॉर्मल सी मूवी हो तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स हो या बहुत एक्शन सीन्स हो तो मैं नहीं देख पाती, मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि उससे मुझे स्ट्रेस पड़ता है।
1: अच्छा, एक बात बताया मैंने कि आपकी फैमिली, आपके फादर के अलावा कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत मोटिवेट किया हो आपको पूरी लाइफ में?
2: फैमिली और फादर के अलावा तो मेरे हस्बैंड ही हैं।
1: हाँ।
2: और तो किसी को
1: टीचर्स में या फ्रेंड सर्कल में, मेरा मतलब वो था, आपने कहा फ्रेंड्स तो आपके बहुत कम होते हैं।
2: नहीं, फ्रेंड्स में से तो कोई है नहीं,
1: ऐसा नहीं है।
2: जी नहीं, एक मेरी बचपन की दोस्त है जो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है, कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं उससे बात करती हूँ।
1: अच्छा।
2: तो उसने मोटिवेट भी किया, लेकिन हाँ वो मेरे साथ खड़ी रही और मेरी प्रॉब्लम को समझा। जी, और इसके अलावा टीचर्स में से जैसे कुछ टीचर्स हैं तो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, लेकिन वो मुझे बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट
1: करते थे।
2: तो एज अ टीचर्स में तो कहो तो, क्योंकि मेरे फादर खुद एक टीचर हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि उनसे बेहतर तो किसी ने समझा नहीं।
1: भाई, टीचर्स का भी रोल उन्होंने कर लिया, फादर का तो कर ही लिया।
2: जी सर।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो श्रोता हूँ, मीनल जी और अर्पित जी से बातचीत जारी है और लगभग अब हम प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में है। आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अर्पित भाई, थोड़ा सा अब चूंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आप आर्मी से हैं, तो बताएं ज़रा कुछ आर्मी के अपनी यादें, अपनी बातें और कैसी लाइफ है वहाँ की, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: मैं बताना चाहूँगा कि आर्मी में मैंने अभी तक 3 जगह सर्व किया है। मेरी पहली पोस्टिंग लद्दाख में थी सन 2018 में, वहाँ पे मैंने लगभग 8-9 महीने बिताए थे और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया में थे जहाँ नेटवर्क नहीं आता है, जहाँ बिजली नहीं होती है, वहाँ सब जनरेटर से चलता है और काफ़ी ठंड होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। वो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और चूँकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो धीरे धीरे हमको एहसास नहीं होता, पर हमारी बॉडी की मेमोरी वीक होने लगती है। जो भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हाई एल्टीट्यूड या सियाचिन जैसे एरिया में रहता है, मैं सियाचिन में तो नहीं था, मैं सेकंड स्टेज हाई एल्टीट्यूड पे था, मैं 14,500 फीट की ऊंचाई पे था, तो उस जगह के अलग चैलेंजेस हैं। आपको खासकर आपकी मेमोरी वीक पड़ने लगती है, आपको पता नहीं पड़ता लेकिन धीरे धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। और फिर उसको रिकवर होने में मुझे काफ़ी समय लगा, एक साल लग गया। उसके बाद मैं भटिंडा में मैं 2.5 साल रहा। भटिंडा के बाद मैं अभी गैंगटॉक सिक्किम में पोस्टेड हूँ। तो आर्मी का एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि आप भारत के लगभग हर एक प्रांत, हर एक रीजन के लोगों से आप जानते हैं, उनकी संस्कृति को समझते हैं, उनके साथ रहते हैं। मैंने सरदारों खालसों के साथ भी सर्व किया है, मैंने पहाड़ियों के साथ सर्व किया है, मैंने गुरखाओं के साथ सर्व किया है, मैंने तंबी यानी जिनको हम फौज में साउथ इंडियंस लोग बोलते हैं, हमने उनके साथ भी सर्व किया है। और देर आर लॉट मोर, मतलब अलग अलग तरीके के कल्चर, मतलब आप
1: पूरा भारत होता है,
0: पूरा भारत आपके साथ में होता है। और एक अलग ही, एक बहुत ही अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप अलग अलग जगहों पे
1: साथ किस तरह का रहता है।
0: मोरल आर्मी में मैं ये कहूँगा कि एक आर्मी एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। डिसिप्लिन बहुत गहराई तक है आर्मी के अंदर, आर्मी के रूट्स तक अंदर है। और जो मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक जो देश में सबसे जो एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो मैं सही मायने में कहूँ वो एक आर्मी है।
1: क्या बात।
0: क्योंकि हर एक पर्व पे चाहे जो भी ऑफिसर होता है वो वही धर्म फॉलो करता है, वही धर्म की पूजा करता है यूनिट के अंदर जो उसके जवानों का होता है। आप देखेंगे, आपने कहीं देखा भी होगा, कहीं न्यूज़ में सुना होगा कि आर्मी ऑफिसर सरदार है, लेकिन अगर उसके बंदे क्रिश्चियन है तो वो मंदिर में वो चर्च में जाके पूजा करेगा। अगर ऑफिसर मुस्लिम है लेकिन उसके जवान हिंदू है तो वो आरती भी करेगा, पाठ भी करेगा, सब कुछ करेगा। अगर जवान मुस्लिम से तो उसके साथ नमाज भी पढ़ेगा। और एक मैं ये कहूँगा कि एक फौज एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा भाईचारे की है। और हमारे फौज में कभी भी मंदिर गुरुद्वारा नहीं होता, वहाँ पे हमेशा सर्वधर्म स्थल होता है जहाँ सभी तरह के लोग मिल बांट के पूजा करते हैं। तो ये एक मुझे संस्था की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पर वाकई में कौमी एकता है जिसको भारत की ज़रूरत है। आज के इस टाइम पर जो भी हालात हैं इस देश के, एक फौज एक इसके लिए बहुत बड़ा एक बेमिसाल उदाहरण है। साथ में कहूँगा कि एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। डिसिप्लिन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में होती है। और तीसरी बात कहूँगा कि काफ़ी फिजिकली फिट चीज़ है जो मैंने फौज में आके सीखी कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने जीवन में फिजिकल फिटनेस को एक प्रायोरिटी देना, ये सब चीज़ें हैं फौज की जो मैं उसको बहुत ही सराहना करता हूँ उसकी। और ये कहूँगा कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपको काफ़ी सीखने को मिलता है। और आप नहीं नहीं करते हुए पूरा भारत आप घूम लेते हैं, आप नहीं चाहते हुए भी। मैंने साउथ में भी गया हूँ, मैं बैंगलोर में रहा हूँ, पुणे में रहा हूँ, मुंबई में रहा हूँ, चेन्नई में ट्रेनिंग की है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, अभी नॉर्थ ईस्ट देखने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा मौका शायद बहुत ही कम लोगों को मिलता होगा।
1: क्या बात। तो ये डोकलाम कहीं आप जब थे तभी तो नहीं हुआ?
0: नहीं, डोकलाम मैं उस टाइम मैं लद्दाख में था मैं, लेकिन अभी जहाँ पर हूँ वो मेरे वहाँ से बहुत नजदीक ही है।
1: अच्छा।
0: तो अलग अलग जगह की एक भारत एक
1: गुस्सा आता है चीन वालों पे कभी?
0: हाँ, गुस्सा तो जरूर आता है, पर ये एक वही है कि एक अच्छा एक एक्सपोजर है। पर भारत एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो मैंने देखा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का बौद्ध धर्म, वहाँ के लोग बहुत अलग है भारत से, बहुत अच्छी चीज सीखने को भी मिलती है।
1: एक जिक्र किया था आपने अर्पित भाई, थोड़ा सा चर्चा उस पर भी कर लेते हैं 30-40 सेकंड में, कि जो लोग आर्मी में डिसेबल्ड हो जाते हैं उसके बाद उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है? मतलब मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल ट्रीटमेंट
0: आर्मी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जिनको इंजरीज हो जाती है
1: वो आर्मी कैसा ट्रीटमेंट करती है?
0: आर्मी सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, क्योंकि जो भी डिसेबल्ड होता है सर्विस के अंदर उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। पर उसके लिए सर्विस करना थोड़ा सा दिक्कत आता है बिकॉज
1: बिहेवियरल चेंज होता है क्या पर्सनैलिटी का?
0: नहीं, वो मैं कहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत सपोर्ट करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीशन के रूप में उसको डिसेबिलिटी पेंशन देना, उसको स्पेशल जगह पोस्टिंग करवाना, उसकी ऐसे उसको हाई रिस्क एरिया में नहीं भेजना,
1: जॉब आइडेंटिफाई उसके लायक करना,
0: तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट तो है ही है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जो मैन पावर सपोर्ट है, जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं आर्मी में, मैं जैसे मैंने बताया कि बहुत ही भाईचारा है, लोग समझते हैं आपको बिकॉज वो खुद भी आपकी जैसी समस्याओं को फेस कर ही ऊपर बढ़े हैं, वो भी लोअर रैंक से हायर रैंक पर गए हैं। तो मैंने जो ये देखा है मेरे 4.5 साल के टेन्योर में कि लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे सोल्जर्स हैं जो किसी कारणवश इंजर्ड हो गए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सपोर्ट किया, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनके जो स्टाफ ने उनको सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं भारतीय सेना की या इंडियन आर्म फोर्सेज के जनरल में कहना चाहता हूँ।
1: क्या बहुत खूब। तो श्रोता हूँ, अब कार्यक्रम बिल्कुल अब हम समाप्त करने की ओर हैं और उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम तो ज़रूर पसंद आएगा ही, चूँकि आज हम आज़ादी की पूर्व संध्या पर, हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज का ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं आपके लिए। तो अब कार्यक्रम के अंत में कुछ रैपिड फायर हो जाए आप दोनों के साथ, पूछे जवाब दे दोगे कैप्टन साहब? फेल तो नहीं हो जाओगे?
0: अच्छा
1: चलिए, तो बताइए मिनल की फेवरेट बुक।
0: मिनल की फेवरेट बुक है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक बहुत ही अच्छी किताब है, मैं यही रिकमेंड करूंगा, सबसे सस्ती और उसमें इतना नॉलेज है कि आपके जीवन को आपको लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए, आपको लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है डेल कार्नेगी की, एक बहुत ही यूएस के ऑथर है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
1: क्या बात, एक बार वापस नाम बता दीजिए।
0: मैं फिर से बताऊंगा, डेल कार्नेगी की किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 99 से 100 रुपए की है, अमेजन पे उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, बहुत ही अच्छी किताब है, मीनल की फेवरेट बुक है और मेरी भी फेवरेट बुक है।
1: सही कहा मीनल
2: जी, बिल्कुल।
1: चलिए मीनल की फेवरेट डिश बता दीजिए।
0: मीनल की फेवरेट डिश चूंकि राजस्थान की है तो दाल बाटी चूरमा है। तो
1: फास्ट फूड वगैरह नहीं है?
0: फास्ट फूड
1: में तो बच्चों को फास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता है।
0: फास्ट फूड में मीनल को चाउमीन और नूडल्स पसंद है जो कि मुझे पसंद नहीं है, मैं ज्यादा, मेरे को इंडियन डिश ज्यादा अच्छी लगती है।
1: अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों में ज्यादा डिसिप्लिन कौन है?
0: ज्यादा डिसिप्लिन तो मैं ही हूँ।
1: तो अगर कभी फॉरेन जाना हो,
0: हाँ,
1: तो मीनल आपको कहाँ जाने के लिए कहेगी?
0: पेरिस।
1: सारे राज मालूम है मतलब। ठीक है, तो मीनल की फेवरेट मूवी बता दीजिए। कहीं तो आउट करना पड़ेगा ना आप तो कैप्टन साहब।
0: मीनल की फेवरेट मूवी, ये तो मीनल ही
1: बता। बताइए जी।
2: जी मुझे लक्ष्य मूवी बहुत पसंद।
1: सुन लिया, आज देखो आपका भी नॉलेज बढ़ा दिया हमने।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है।
1: हाँ जी, अब मीनल जी आपकी बारी है, बताइए अर्पित की पसंदीदा सिटी।
2: अजमेर।
0: अजमेर को कोई भूल नहीं सकता। अजमेर
2: मेरी और अर्पित की आई थिंक इस वर्ल्ड में सबसे फेवरेट जगह अजमेर ही है, हम कहीं पे भी चले जाए बट अजमेर हमेशा हमारे दिल के करीब है। अजमेर एक सिटी नहीं है हमारे लिए, इट्स एन इमोशन।
1: क्या बात है, वाह गुड। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कार्यक्रम भी अजमेर में रिकॉर्ड हो रहा है। और स्पोर्ट्स,
2: स्पोर्ट्स में अर्पित का फेवरेट स्पोर्ट साइकिलिंग ऑफ कोर्स एंड स्विमिंग।
1: सही कह रहे हैं
0: आप, बिल्कुल सही।
1: मैं बताऊं श्रोता हूँ, ये साइकिलिंग भाई साहब जो है वो आप और हम तो मिनटों करते हैं, ये कई किलोमीटर तक साइकिलिंग करते हैं। कुछ बताना जरा कितनी साइकिलिंग की है आपने?
0: मैंने एक BRM कॉन्सेप्ट होता है साइकिलिंग के अंदर, तो उसमें आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस साइकिलिंग होती है, तो मैंने उसमें 200 किलोमीटर की होती है, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, तो ये चारों रेस मैंने अलग अलग समय पे 2 महीने के अंदर मैंने 2 बार कर रखी है, तो 600 किलोमीटर मेरा जो हाईएस्ट है वो मैंने 2 बार कर रखा है, तो ये मेरा अभी तक रिकॉर्ड है, अभी और भी आगे करना है, अब नेक्स्ट टारगेट 1000 किलोमीटर का है।
1: क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा बताइए मीनल जी, चूंकि अर्पित तो आर्मी में है, किससे इंस्पायर्ड है ये सबसे ज्यादा?
2: अर्पित किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है? अर्पित
1: नहीं हिंट दे दिया।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

क्या आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें,

महिमा करते हो, लेकिन यथार्थ पहचान के आधार पर महिमा करते हो। इसीलिए बाबा की सभी महिमा को यथार्थ रीति करने से उसका सुख अनुभव होता है। साथ ही साथ आज बाबा कहते हैं, जैसे भक्त गाते हैं कि भक्तों का रक्षक भगवान है, लेकिन वो भक्तों का रक्षक कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, किस तरह की रक्षा करते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि बाबा यथार्थ रूप में भक्तों का रक्षक कैसे बन करके भक्ति का फल ज्ञान देते और ज्ञान के आधार से सच्चा वैराग्य आ जाता है। बुद्धि का योग इस पुरानी दुनिया से हटकर एक बाप और नई दुनिया की ओर लगाते हैं। ये बेहद का वैराग या बेहद का संन्यास बच्चे करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है? उत्तर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त है उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है, वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे बाबा कहते, जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का, पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। वो जो 5-7 बच्चे हैं उनकी रचना है। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे, यह भी बच्चे जानते हैं। रचना को रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है, रचना को हमेशा रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है। मनुष्य को दो बाप तो होते ही है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हैं। है तो सब बच्चे, वैसे तो सारी संसार की आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है तो सारी रचना का रचयिता है। बेहद के बाप को हमने जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते हैं। सतयुग में तो है ये एक बाप, लौकिक बाप होते हैं लेकिन पारलौकिक को वहां याद नहीं करते हैं, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहां पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है, हर एक बात का यथार्थ ज्ञान देते हुए बाबा बच्चों

समझदार बनाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को ही नहीं जानते हैं, कहते भी है परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, पत्थर में, कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं, तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। यथार्थ महिमा के आधार पर उसको याद करते हैं तो हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद, कलयुगी पति दुनिया पूरी हो फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। बाप के द्वारा ही ये पावन दुनिया स्थापन होती, जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खेवैया हमको इस विषय सागर से निकाल, क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ, तुम सब हो सीताएं भक्तियां, और वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं, वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहां भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है, इसलिए बाबा ऐसे कोई धक्के नहीं खिलाते हैं। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है, भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवताएं रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं, धीरे धीरे सीढ़ी को नीचे उतर नहीं है। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता, श्रीमद भगवत माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया ये कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा बाबा कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं तो बच्चियां भी कहते, दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्म का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। न शिव कौन था वो जानते हैं, न रावण कौन था वो जानते हैं। शिव हमारा बेहद का बाप है,
ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखाए मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूं। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं। द्वापर के बाद फिर यज्ञ आरंभ होते हैं और कलयुग में परमात्मा स्वयं आकर ये ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है। अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गई हुई है। भारत माता शिव शक्ति सेना गई हुई है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, अब फिर से तुमको समझाता हूं। बाप आकर फिर से समझाते हैं। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूं। ऐसी बात दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कि मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूं। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। देहधारी कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता है। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। बाबा कहते तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा, ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक
निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो या जानते हैं, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखदाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुना रहा हूं, मैं ही ज्ञान का सागर हूं। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं, वह सच खंड था तो भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरों के महल बनते थे। सतयुग में ज्ञान भी नहीं था तो अज्ञान भी नहीं था, लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध थी जिससे भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए? इनसॉल्वेंट अर्थात गरीब विश्व को फिर सॉल्वेंट यानी शाहूकार कौन बनाए? ये बाप का ही काम है। एकदम खाली हो गया उसको भरपूर करने का कार्य बाप का है। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाता हूं, नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाता हूं, भक्तों का रक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूं। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होंगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है, उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है तमो प्रधान बन पड़े हो, अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब बाबा कहे ऐसी याद होंगी एक के सिवाय और किसी की नहीं, तब तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता, तब ही कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। यह भारत की ही बात है। सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूं। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूं। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है। शिव कहो रुद्र कहो सब उनके ही नाम है। अथाह नाम रख दिए हैं।
बाप कहते मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। मैं शिव हूं, तुम शालिग्राम बच्चे हो, तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। हम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। जो स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर चलते हैं, वह अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। आज का स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वो फाइनल में फेल हो जाता है। कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वो फाइनल में फेल हो जाता है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य, मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। मम्मा कहते हैं, यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूमाते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते, परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया। फिर जब जागृति में आता है तो उस रात के स्वप्न की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं।
फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम ये देख कर आए हैं। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है, ये ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध-बुध भूल जाती है। देखो डॉक्टर, जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती है। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। ये ध्यान में रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरण। जो जितना ज्ञान का सिमरण करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं, सहज ही पार कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।